0: जमीन घोटाले के सबूत है।
1: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है।
2: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
3: क्या सरकार बस्ती में जाति बनाती है, जाति का गुना?
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति

0: वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रिज मोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
1: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
2: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो SIT के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, SIT को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
0: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान

0: कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
1: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
2: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
3: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
4: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
2: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
5: पासपोर्ट is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity.
2: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए NRC में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में NRC की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में NRC NPR की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें NRC बनाना अनिवार्य किया गया। NRC में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम NRC में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: NCERT ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
2: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
6: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
2: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
7: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
2: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
8: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
2: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
9: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
2: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हावभाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हावभाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: चेतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर मौसम के बिगड़े मिजाज की। महाराष्ट्र में मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें आने लगी। पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। जलगांव से तो बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।
6: पहली ही बरसात में तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसी जलधारा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। देखिए ये जलगांव की तस्वीरें, पहली ही बरसात में ये आलम है। जलधारा के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है। पानी का वेग ट्रैक्टर को बहा ले जाने पर आमादा है। इसी जलगांव की दूसरी तस्वीर देखिए, बेहिसाब बरसात हुई और इस बरसात में ये बस यहाँ फंस गई। पानी में आधी बस डूबी हुई और जान बचाने के लिए ये लोग बस की छत पर खड़े हैं। जलगांव के मुक्ताई नगर और रावेर में बादलों ने तबाही मचाई है। मौसम की मार अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ी है। यजाली में कल बादल फटने जैसी तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ रास्ते बंद हैं। देखिए कैसे लोग अपनी बाइक और सामान लादकर निकल रहे हैं। दार्जिलिंग में भी कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन हुआ जिसके बाद रास्ता बंद है। अब यहाँ मलबा हटाने का काम हो रहा है। मुंबई में भी मानसून ने दस्तक दी तो परेशानियों का अंबार लग गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। अभी तो मानसून आया ही है और अभी से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आज तक देरो
3: बहुत छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर गबन मामले में बड़ा एक्शन, 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR, सभी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव पर शिकंजा, आपराधिक षड्यंत्र, अमानत में खयानत की धाराओं में केस दर्ज। राम मंदिर चंदा चोरी केस में बड़े नाम गायब होने पर भड़का विपक्ष, अखिलेश का आरोप, बीजेपी राज में नाइंसाफी की झांकी, बड़ी मछलियों को बचाने में जुटी सरकार, आम आदमी पार्टी ने चंपत राय की भूमिका पर ही सवाल उठाए। यूपी में बीजेपी का मिशन हैट्रिक, नई टीम में 70% नए चेहरों के साथ टीम तैयार, पिछड़ों दलितों और महिलाओं पर दांव, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। पुणे मर्डर केस में सिया गोयल के पिता का बड़ा दावा, कहा केतन ने की थी लोहगढ़ जाने की जिद, जो दोषी मिले उसे सजा, सिया केतन कैफे में मुलाकात का नया वीडियो सामने आया। और NCERT के पाठ्यक्रम में आपातकाल शामिल, पहली बार 9वीं क्लास को पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का चैप्टर, कांग्रेस ने कहा इतिहास बदलने की कोशिश, बीजेपी बोली काला अध्याय याद रखना जरूरी।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू में चल रहे विवाद को लेकर के माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। निहंग सिखों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर आस पास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल रात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड के देहरादून की ओर बढ़ रहे सैकड़ों निहंग सिखों की विकास नगर में पुलिस से झड़प हुई। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आगे बढ़ गए। निहंगों का एक जत्था मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शाहिदान से उत्तराखंड पहुंचा, जबकि दूसरा जत्था हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब गुरुद्वारे से निकलकर विकास नगर होते हुए आगे बढ़ा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घंटों प्रदर्शनकारी निहंग सिखों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों के पुलिस, खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बलों को सीमा पर तैनात किया गया। अब हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बीती रात की तस्वीरें, उत्तराखंड की सीमा पर तनाव। निहंग सिख वहां पहुंचे, बैरिकेड तोड़े, हेमकुंड साहिब की ओर कूच किया। तो इसके पहले हमने देखा कि नगरासू में बवाल हुआ, कर्णप्रयाग में बवाल हुआ, और अब ये बवाल उत्तराखंड की सीमा पर पहुंच चुका है। निहंग सिखों ने यहां कूच किया है और सरकार इनके सामने, पुलिस प्रशासन व्यवस्था बेबस नजर आती है। ये बीती रात के हंगामे की वो तस्वीर है। इसके पहले कर्णप्रयाग में पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के सामने लगभग सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद एक बार फिर ये देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह धराशायी होती हुई। तो निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच, कर्णप्रयाग में सबसे पहले हेमकुंड यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था, और उसके बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हुई थी। 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, और नगरासू में फिर लंगर साहिब गुरुद्वारा में प्रबंधन को लेकर के विवाद हुआ। हमने देखा कि कैसे कर्णप्रयाग में निहंग सिख छत पर चढ़ गए, गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर जाकर खुद को बंद कर लिया, और उसके बाद वो पुलिस से, प्रशासन से बातचीत करते रहे। निहंग सिखों के बारे में कहा जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब सिखों पर अत्याचार हो रहे, तब निहंग सिख ने समुदाय की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन यहां ये स्वतंत्रता देश की कानून व्यवस्था के साथ और जिस तरह की लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, निहंग सिखों को परेशान करने के दावे किए गए। लेकिन अब निहंग सिख, जिनके बारे में माना जाता है कि इनके अंदर युद्ध कौशल होती है, निहंग घुड़सवारी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, भाला चलाते हैं, खालसा परंपरा का संरक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ वो कानून व्यवस्था, सरकार, प्रशासन, हर किसी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। निहंग सिखों को परेशान करने के दावे किए गए, उन्होंने उत्तराखंड का कूच कर लिया है, तो खालसा परंपरा का संरक्षण करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो कानून व्यवस्था के लिए ही चुनौती बनते जा रहे हैं। बैटल ऑफ चमकूर, बैटल ऑफ मुक्तसर, ऐसे कई सारे सिख एम्पायर में माना जाता है कि इनकी भूमिका रही है, लेकिन ये देखिए, हाथों में तलवार लेकर के, कृपाण लेकर के कैसे वो पुलिस प्रशासन को चिताई दिखे। वर्दी वालों पर आप बिल्कुल इस तरह देख रहे हैं कि हथियार तान रहे हैं, हाथों में हथियार लेकर के ताने जा रहे हैं, और ये सब पुलिस बस मूक दर्शक बनी देख रही है।
1: इस समय हम जोगीवाला चौक में मौजूद हैं, और जिस तरह से निहंग जो जत्था है वो लगातार देहरादून भी पहुंचा, पौंटा साहिब में पुलिस के साथ गतिरोध हुआ, और पुलिस अलर्ट के बाद यहां पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसको लगा दिया गया है, और पुलिस यहां पर लगातार चेकिंग कर रही है, और जो व्हीकल्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी कुछ निहंग के व्हीकल्स भी यहां पहुंचे थे जिनको डाइवर्ट किया गया और दूसरे रूट से पीछे की ओर भेजा जा रहा है। पुलिस इंश्योर कर रही है कि किसी भी तरीके से जो निहंगों का जत्था है, जो वार्निंग थी ऊपर जाने की, उनको किसी भी तरीके से यहां रोका जाए। और देखा जा सकता है कि यहां पर जो ट्रैफिक जैम, पीछे से एक लंबा विशाल लाइन लगी हुई है, उसकी वजह से पूरा देहरादून कह सकते हैं कि उसका ट्रैफिक पूरा जाम हो गया है।
0: तो आस्था के नाम पर एक हंगामा उत्तराखंड में देख रहे हैं, लेकिन आस्था की एक चोट पहुंची उत्तराखंड में, और उस चोट के बाद आखिरकार राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में FIR दर्ज हो गई। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बीते दिन अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि कोतवाली में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, लेकिन ये सारे आरोपी छोटे कर्मचारी हैं। जबकि SIT की जांच के बाद ये माना जा रहा था कि क्या बड़े लोगों पर भी केस दर्ज होगा, क्योंकि पूछताछ उनसे भी हुई थी, उनका भी नाम आ रहा था। कहीं बड़े लोगों को बचा तो नहीं लिया गया।

0: जिस दिन ये खबर आई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो गई और जब से यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एक ही सवाल उठ रहा था कि एफआईआर कब होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी क्यों बना दी, जब एफआईआर ही नहीं है तो एसआईटी क्या जांच करेगी, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन 25 जून की शाम को इस केस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई और वो भी ट्रस्ट की तरफ से की गई। लेकिन एफआईआर में 2-3 नामों को छोड़कर कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने पहले सुना होगा। बड़े लोगों के नाम तो मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि वो 8 लोग कौन हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इस चढ़ावा चोरी में इनकी क्या भूमिका थी। सबसे पहला नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसका नाम आप पहले से सुनते होंगे, ये चंपत राय का खास था, मुख्य आरोपी है। दूसरा है अनुकल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पांचवा नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। छठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था, इससे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। सातवां नाम है करुणेश पांडे का और आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे।
1: तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में एफआईआर में शामिल किया गया, लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी तो एसआईटी ने जो संस्तुति की उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया।
0: यानी सभी छोटे कर्मचारी थे, सभी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या की श्री कृष्ण जन्मभूमि कोतवाली में यह केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से केस दर्ज करवाने वाले श्री कृष्ण मोहन खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट का सदस्य चुना गया था। हरदोई के रहने वाले श्री कृष्ण मोहन भारतीय वन विभाग के अधिकारी रहे हैं और अब उन्हीं की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि जिन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है उनमें क्या क्या प्रावधान है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है, इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा है। बीएनएस धारा 306 के तहत मालिक या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी का मामला बनता है, इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। बीएनएस की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का केस बनता है, जिसे अमानत में खयानत भी कहते हैं। धारा 316 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपी जाती है और वो व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का गबन कर ले या अपने निजी इस्तेमाल में ले ले। बीएनएस धारा 317 में चोरी की संपत्ति लेने के संबंध में है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का अपराध। यानी धाराएं तो गंभीर लगी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसमें छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है।
2: उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो, इन सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो नृपेंद्र मिश्रा जी की है।
0: इस केस की चोरी को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था। 7 जून को अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया था। उससे पहले अयोध्या के लोकल अखबारों में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें आ रही थी। सबसे पहले मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे में हेरा फेरी की शिकायत मिली, जिसके बाद यूपी सरकार ने 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई। जांच शुरू हुई तो मंदिर से जुड़े लोगों, ट्रस्ट और बैंक से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी और अब 25 जून को इस केस में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे की जांच में और किन किन लोगों के नाम आते हैं और ये चढ़ावा चोरी का केस कितना बड़ा बनता है। लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: मेरे पास कुछ नाम है, ये रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमाशंकर में सुभाष श्रीवास्तव, नाम सुना था आपने कभी। लेकिन ट्रस्ट में कौन कौन है? राम मंदिर ये जो ट्रस्ट है बड़ा नाम, इनके नाम तो आपने अक्सर सुने होंगे। हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जितने नाम मैंने बताए हैं ये वो लोग हैं जिनके नाम पर FIR है, इनकी भूमिका क्या है? क्या जो दर्शक देख रहे हैं कन्विंस हो पाएंगे, मान पाएंगे? ऐसे जांच होती है? जिस राम मंदिर में पेन से लेकर के पिन की एंट्री नहीं है, वहां ये चार कर्मचारी करोड़ों अरबों रुपए गबन कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं? जांच के नाम पर जो हो रहा है उसे जांच कहेंगे? या फिर जो सवाल हमने उठाया है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, आप भी वही देख रहे हैं?
4: देखिए, जो आपने कहा कि बिना जांच के पिन नहीं जा सकती है, बिल्कुल सही कहा। हम और आप जब जाएंगे तब बिना जांच के पिन नहीं जा सकती। ये तो वो लोग थे जो राम मंदिर ट्रस्ट का आई कार्ड लगाकर धड़ल्ले से जाते थे, और क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या लेकर वापस जा रहे हैं, इसकी कभी कोई तलाशी ही नहीं ली गई। और यही वजह थी कि इनके द्वारा जो चोरी किया जा रहा था चढ़ावे की रकम, वो इनसे उसमें इन FIR में इन सभी आठ लोगों को नामजद किया गया है। इन आठ नामों में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम है रामशंकर यादव टिन्नू को, जो व्यवस्थापक है पूरे राम मंदिर परिसर का, यानी कि उसके पास सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी। दूसरा सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष श्रीवास्तव बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और उस जो मंदिर ट्रस्ट के कमरे में जो हुंडी यानी कि जो दान पेटी है उसको गिनने के पूरे इंचार्ज थे। बाकी छह नाम इसमें कर्मचारी हैं जो नोट गिनते थे। तो दो को सिर्फ एक बड़े नाम अगर कहा जा सकता है, बड़े क्या, बहुत छोटे में भी बस इनकी निगरानी करने वाले, बाकी दोनों लोग नोट गिनने वाले लोग हैं जिन पर नामजद हुई है। अभी जांच का दायरा बढ़ाएगा, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये जरूर है कि शुरुआत हुई है, SIT की रिपोर्ट के आधार पर इन आठ लोगों के खिलाफ नामजद FIR है BNS के गंभीर धाराओं में। और सबसे बड़ी बात आशुतोष कि ये सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। देर रात अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में इन सभी आठ लोगों की गिरफ्तारी के दस्तावेज पूरे कर लिए गए हैं। आज इनको जेल भेजा जाएगा। जो सभी आठ आरोपी जो राम मंदिर ट्रस्ट से के द्वारा जो कमरा था वो जहाँ पे नोट गिनने का काम
3: होता था, एक चीज आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि इनको जेल भेजा जाएगा, रिमांड नहीं लेगी पुलिस? अगर आप रिमांड नहीं लेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, तो बाकियों का नाम कैसे आएगा? ये तो यूपी पुलिस की स्टाइल नहीं है। हम तो इतना तो पता है कि ये लेने का सबसे पहला काम तो होता है आप रिमांड पे लेके पूछताछ करते हैं।
4: आज इनको, आज देखिए मुहर्रम है, मुहर्रम पे सरकारी छुट्टी है, तो आज इनको पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस इनको PCR मांगेगी, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी, और उसके बाद फिर इनके संरक्षणदाताओं, इनके मददगारों, इनके आकाओं का नाम तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लेकर आएगा। बिल्कुल इनको PCR पर लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि किसके संरक्षण में कैसे ये सब पूरा खेल हो रहा था। तो आज ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी ये शुरुआत है, ये छोटे नाम हैं, और अब लेकिन देखना होगा कि पुलिस कितना फ्रीली इसमें जांच कर पाती है। और
3: ये जो आपने लास्ट में कह दिया ना, पुलिस कितना फ्रीली जांच कर पाती है, इसी सवाल ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस दिन से यूपी सरकार ने SIT बनाई है तब से लगातार यही बात हो रही है कि जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ FIR होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। साजिशों की तमाम कहानियां आती जाती रहेंगी, बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे, चढ़ावे से पैसे से लेकर जेवरात तक गायब पाए गए, लेकिन किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। साफ दिख रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है। 20 दिन लगे हैं, 20 दिन चोरी की पहली खबर आने से लेकर के सियासी हंगामे से लेकर FIR होने में 20 दिन लगे हैं।
5: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
6: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या SIT की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब FIR दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है।
0: क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये चार नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया?
7: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
0: ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई?
8: एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई।
0: क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता ना रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: मामले की जांच में कितना पक्षपात होगा, कितना निष्पक्ष होगा, ये समय बताएगा। लेकिन अयोध्या सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का भी केंद्र है और इसीलिए जब चुनाव की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी राजनीतिक तैयारी भी हो रही है। बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जातीय क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, कई महिला चेहरों को शामिल किया गया है।
9: सत्ताईस का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: पासपोर्ट लेकर के एक भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, वो दस्तावेज है। पासपोर्ट को लेकर के आमतौर पर यह धारणा थी कि पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को मिलता है, लेकिन दरअसल विदेश मंत्रालय की ओर से एक ऐसा जवाब आता है जिसको लेकर के बड़ा हंगामा मच गया। तो पासपोर्ट को लेकर के मचे सियासी बवाल की भी बात अब आपको कर लेते हैं कि एक तरफ जब ये कहा गया कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि क्या भारत में भारत सरकार, भारतीय संस्थाओं द्वारा भारतीयों को मिलने वाला कोई दस्तावेज भारतीय नागरिकता का सबूत है क्या? अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत उबल रही है। देखिए बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये।
10: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
11: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
12: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
10: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
13: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
10: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: चलिए बात करेंगे अब स्कूल कॉलेज में होने वाली पढ़ाई की। एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। अब इमरजेंसी पर भी सियासी रण छिड़ा हुआ है।
10: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
14: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
10: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
15: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
10: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
16: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
10: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
17: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
10: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें। Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
19: जमीन पर बने मकान और छत पर बने फ्लैट के वास्तु में अंतर होता है? फ्लैट में किस चीज का सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए? और सही फ्लैट का वास्तु हो, सही घर का वास्तु हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या है वास्तुशास्त्र के सामान्य नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ
20: Did you know improper disposal and use of batteries can spark fires? Improper disposal of rechargeable batteries in household trash, overcharging, and using incorrect charging cords have caused multiple fires in trash and recycling centers, collection trucks, homes, and apartments. Batteries do not belong in regular trash or recycling and need to be used properly. Learn more at gorecycle.org. Brought to you by the District Department of Energy and Environment and Prince William County.
21: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
22: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
23: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
22: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा

लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, सभी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर भी शिकंजा। चंदा चोरी केस में बड़े नामों के गायब होने पर विपक्ष भड़का। अखिलेश का आरोप, बीजेपी राज में नाइंसाफी की झांकी। बड़ी मछलियों को बचाने में जुटी सरकार। यूपी में मिशन हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी। नई टीम में 70% नए चेहरों के साथ टीम तैयार। पिछड़ों, दलितों, महिलाओं पर दांव। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। पुणे मर्डर केस में सिया गोयल के पिता का बड़ा दावा। कहा, केतन ने की थी लोहगढ़ जाने की जिद। जो दोषी मिले उसे सजा मिले। और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में आपातकाल शामिल। पहली बार 9वीं क्लास को पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का चैप्टर। कांग्रेस ने कहा, इतिहास बदलने की कोशिश।

ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ जो आ रही है मध्य प्रदेश से। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान किए गए एक प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वीडियो में एक वैन को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया जाता है। लटकाने के बाद इस गाड़ी में विस्फोट किया जाता है, ये दिखाया जाता है, जबकि उस पर खड़े दो युवक झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। वैन पर ले फिर आगे लिखा है। वीडियो वायरल होने के बाद जैन पुलिस ने आयोजक समेत 4 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं, FIR दर्ज कर लिया है, कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, कानून के मुताबिक आगे कार्यवाही की जाएगी। देखिए, दो झंडे नजर आ रहे हैं, लोग वहां पर आते हैं, मुहर्रम का जुलूस है, क्रेन से गाड़ी लटकाई जाती है और उस गाड़ी में धमाका हो जाता है जिस पर लिखा हुआ है कि लो फिर आ गए। मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ और पुलिस ने जब मामला दर्ज कर लिया, अब आगे इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आवारा सांड का आतंक एक बार फिर सामने आया है। सड़क से गुजर रही एक युवती पर पीछे से दौड़कर आए सांड ने जोरदार हमला कर दिया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि युवती सड़क पर गिरकर कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत युवती की मदद की। राहत की बात यह रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है। झारखंड के पलामू में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की वारदात सामने आई है। पंजाब नेशनल बैंक के केंद्र में बाइक सवार बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे, पिस्टल दिखाकर संचालक से करीब 1,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां राख से भरे एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने सड़क पर जमकर कहर मचाया। स्टेयरिंग फेल होने से अनियंत्रित हुआ यह ट्रॉला, कई वाहनों को टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे दीवार से जा टकराया। हादसे में दो बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बाइक सवार बाल बाल बच गए। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस वायरल वीडियो में कोतवाली के कंप्यूटर रूम के अंदर एक महिला और एक कांस्टेबल आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां एक चौंकाने वाला CCTV सामने आया। एक व्यक्ति के घर में बरामदे से आइसक्रीम लेने दौरान अचानक संतुलन खो बैठा, वो नीचे गिर गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद मौके पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने तुरंत मदद की, वो मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात यह रही कि इस व्यक्ति को चोट नहीं आई, उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब खबर उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की, जिसने पूरे राम भक्तों को, ईश्वर के भक्तों को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई। आखिरकार राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में FIR दर्ज हो गई है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि कोतवाली में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, लेकिन ये सारे आरोपी छोटे कर्मचारी हैं। जबकि SIT की जांच के बाद दावे किए जा रहे थे, माना जा रहा था कि बड़े लोगों पर भी केस दर्ज होगा, क्योंकि पूछताछ तो उनसे भी हुई थी, उनका भी नाम सामने आ रहा था। अब सवाल ये है, कहीं बड़े लोगों को बचा तो नहीं लिया गया?

जिस दिन ये खबर आई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो गई और जब से यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एक ही सवाल उठ रहा था कि एफआईआर कब होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी क्यों बना दी, जब एफआईआर ही नहीं है तो एसआईटी क्या जांच करेगी।

0: नहीं है जो आपने पहले सुना होगा। बड़े लोगों के नाम तो मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि वो आठ लोग कौन है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और इस चढ़ावा चोरी में इनकी क्या भूमिका थी। सबसे पहला नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसका नाम आप पहले से सुनते होंगे, ये चंपत राय का खास था, मुख्य आरोपी है। दूसरा है अनुकल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, SBI के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पांचवा नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। छठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था, इससे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। सातवा नाम है करुणेश पांडे का और आठवा नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे।
1: तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में FIR में शामिल किया गया, लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी तो SIT ने जो संस्तुति की, उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया।
0: यानी सभी छोटे कर्मचारी थे, सभी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन ने SIT की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या की श्री कृष्ण जन्मभूमि कोतवाली में यह केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से केस दर्ज करवाने वाले श्री कृष्ण मोहन खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट का सदस्य चुना गया था। हरदोई के रहने वाले श्री कृष्ण मोहन भारतीय वन विभाग के अधिकारी रहे हैं और अब उन्हीं की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि जिन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है उनमें क्या क्या प्रावधान है। ये FIR भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज की गई है। BNS की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है, इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा है। BNS धारा 306 के तहत मालिक या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी का मामला बनता है, इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। BNS की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का केस बनता है, जिसे अमानत में खयानत भी कहते हैं। धारा 316 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपी जाती है और वो व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का गबन कर ले या अपने निजी इस्तेमाल में ले ले। BNS धारा 317 में चोरी की संपत्ति लेने के संबंध में है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का अपराध। यानी धाराएं तो गंभीर लगी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसमें छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है।
2: उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन नीपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उस पर अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो, इन सब चीज़ों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो नीपेंद्र मिश्रा जी की है।
0: इस केस की चोरी को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था। 7 जून को अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया था। उससे पहले अयोध्या के लोकल अखबारों में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें आ रही थी। सबसे पहले मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे में हेरा फेरी की शिकायत मिली, जिसके बाद यूपी सरकार ने 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई। जांच शुरू हुई तो मंदिर से जुड़े लोगों, ट्रस्ट और बैंक से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी और अब 25 जून को इस केस में 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई गई। अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे की जांच में और किन किन लोगों के नाम आते हैं और ये चढ़ावा चोरी का केस कितना बड़ा बनता है। लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: तो जिस दिन से यूपी सरकार ने SIT बनाई, लगातार ये बात हो रही थी कि जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ FIR होगी, जेल भेजा जाएगा। साजिशों की तमाम कहानियां आती रहीं, बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे, चढ़ावे के पैसे से लेकर जेवरात तक गायब पाए गए, लेकिन किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पर देखिए कितने बड़े बड़े नाम है, कितने सारे सदस्य हैं, सरकार की रसूख से रखने वाले से लेकर कौन बड़ा नाम उसमें नहीं है। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि ट्रस्ट में बड़े बड़े नामों को बचाया जा रहा है।
4: हम लोगों ने

0: ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये चार नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया?
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
1: ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में पड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई?
3: एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई।
1: क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता ना रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
4: कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए, जातीय क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। देखिए रिपोर्ट।
5: का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: और अब बात पासपोर्ट को लेकर मचे सियासी बवाल की। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में भारत सरकार भारतीय संस्थाओं द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाला कोई भारतीय दस्तावेज भारतीयता का सबूत है, भारतीय नागरिकों को माना जाएगा कि है। लेकिन अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पूरे मामले पर सियासत उबल रही है, देखिए रिपोर्ट।
6: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
7: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
8: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
6: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
9: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
6: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बुलेट में वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: क्या जमीन पर बने मकान और छत पर बने फ्लैट के वास्तु में अंतर होता है? फ्लैट में किस चीज का सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए? और सही फ्लैट का वास्तु हो, सही घर का वास्तु हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या है वास्तु शास्त्र के सामान्य नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
12: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will

आठ लोगों के खिलाफ नामजद FIR, सभी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर तीनू यादव पर भी शिकंजा। चंदा चोरी केस में बड़े नामों के गायब होने पर विपक्ष भड़का। अखिलेश का आरोप, बीजेपी राज में नाइंसाफी की झांकी। बड़ी मछलियों को बचाने में जुटी सरकार। यूपी में मिशन हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी। नई टीम में 70% नए चेहरों के साथ टीम तैयार। पिछड़ों, दलितों, महिलाओं पर दांव। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। पुणे मर्डर केस में सिया गोयल के पिता का बड़ा दावा। कहा, केतन ने की थी लोहगढ़ जाने की जिद। जो दोषी मिले उसे सजा मिले। और NCERT के पाठ्यक्रम में आपातकाल शामिल। पहली बार 9वीं क्लास को पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का चैप्टर। कांग्रेस ने कहा, इतिहास बदलने की कोशिश।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको वास्तु शास्त्र के कुछ सरल नियम बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर जमीन पर बना हुआ मकान है या छत पर बना हुआ फ्लैट है तो इनके वास्तु में किस तरह का अंतर होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 7:16 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:33 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वास्तुशास्त्र होता क्या है और वास्तुशास्त्र जीवन पर असर कैसे डालता है, कैसे काम करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी निर्माण हो, उसकी शुभता क्या है, अशुभता क्या है, ये वास्तुशास्त्र बताता है। कोई निर्माण जो है, कोई कंस्ट्रक्शन जो है, उसके कारण अगर समस्या हो रही है तो उसके कारण को और उसके निवारण को भी बताता है। वास्तुशास्त्र भूमि, दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। और जैसे कुंडली में हम 5 को संतुलित करते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी 5 को संतुलित किया जाता है। वास्तुशास्त्र बड़ी प्राचीन विद्या है, इसको वर्तमान आधार पर समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में बिल्डिंगों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल गया है। पहले इतनी इतनी ऊंची 24-25 फ्लोर के निर्माण नहीं होते थे, तो अब जो फ्लैट सिस्टम आ गया है और जो पहले जमीन पर मकान ही बनते थे, उन दोनों में बहुत अंतर हो गया है। तो मॉडर्न समय में, वर्तमान समय में इसको कैसे समझेंगे, ये जानना जरूरी है। वास्तुशास्त्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, लेकिन आज परिवार में विवादों से बचिएगा। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

तू इस्तेमाल करने लगी, बिल्कुल मत करिए ऐसा। कुछ बातों को समझिए, कुछ बातों को जानिए और तब वास्तु शास्त्र का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली को देखना चाहिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि कुंडली में जो दिशा गड़बड़ है दरअसल वही दिशा आपके घर में भी गड़बड़ होगी। जमीन पर जो सीधे मकान बने हुए हैं उसके वास्तु में और जो छत पर बने हुए फ्लैट हैं उसके वास्तु में बहुत अंतर है। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। एक बात जो हर घर में लागू होती है बराबर मात्रा में वो है घर का रंग। घर में कौन सा कलर आप करवाते हैं, घर में कौन सा रंग आप रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, इस घर में आया तो तरक्की नहीं हो रही है। अरे भाई, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस घर में 24 घंटे कलेश होता हो, जिस घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता हो, जिस घर में गलत तरीके से धन आता हो, उस घर का वास्तु कितना भी अच्छा हो घर में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। तो घर का रंग कैसा है और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, ये भी वास्तु से जुड़ा हुआ है। वास्तु पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

आएगी, लेकिन खान पान में थोड़ी सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं

आज का पहला प्रश्न आनंद दीक्षित ने हमें लिखा है और आनंद दीक्षित हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1985, दोपहर में 2:40, जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी 2 महीने पहले छूट गई है, तो क्या मुझे नौकरी आगे मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी में ही जाइए और नौकरी आपको 25 सितंबर के पहले मिलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में। अभी व्यापार करना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो व्यापार करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जो घर है उसके वास्तु शास्त्र में किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके घर की मुख्य दिशा क्या है, इसका ध्यान जरूर रखिए। घर से निकलते समय आपका चेहरा जिस दिशा में होता है वही आपके घर की मुख्य दिशा है। सूर्य के प्रकाश का ध्यान जरूर रखिए, घर में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। और घर के मुखिया की जो कुंडली है, घर के मुखिया के जो ग्रह हैं, उसके हिसाब से घर के वास्तु का तालमेल जरूर देख लीजिए। और अगर घर में कोई गड़बड़ी है तो हर जगह तोड़ फोड़ मत करिए, रंगों का प्रयोग करके, कलर का प्रयोग करके आप वास्तु को बेहतर कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का बहुत ध्यान रखें, पूजा करते समय आपका चेहरा अगर पूरब या पश्चिम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में एक पूजा स्थान होना चाहिए और घर में नियमित रूप से अगर पूजा उपासना करें तो लाभ होगा। एक बात मैं और बता दूं, जो वास्तु का बड़ा गोल्डन रूल है, जो फ्लैट में और घर में दोनों जगह चलता है इक्वली, खाना बनाते समय, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, खाना बनाते समय आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। साउथ की तरफ चेहरा करके खाना न बनाएं, चाहे आप फ्लैट में रहते हो चाहे आप मकान में रहते हो। फ्लैट के वास्तु में, फ्लैट के वास्तु के नियमों में किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन का नुकसान हो सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। राशि, करियर में सफलता मिलेगी,

कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो घर का वास्तु, जो मकान जमीन से सीधे ऊपर तक बने हुए हैं, जो मकान ग्राउंड फ्लोर से आपके पास है, ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं, उसके वास्तु के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, चाहे अपर ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, 13वें फ्लोर पे, 15वें फ्लोर पे, तो उसमें वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आप कभी इस बात पे दिमाग मत लगाइएगा कि पूरब का लूं कि पश्चिम का लूं, दक्षिण का ना लूं, ये सब दिमाग फ्लैट में मत लगाइएगा। फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट में सूर्य के प्रकाश का बहुत ध्यान दीजिए। सूर्य का प्रकाश फ्लैट में आना ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब ग्राउंड फ्लोर का मकान होता है तो वो जमीन से एनर्जी पाता है। जो फ्लैट है उसके पास जमीन नहीं है, वो छत पे है, तो वहां पे सूर्य का प्रकाश आना जरूरी है। सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान रखें। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान आपको बनाए रखना है, और घर में पूजा स्थान को जागृत रखें। रोज पूजा स्थान की साफ सफाई करें और रोज शाम को दीपक जलाकर प्रार्थना करें। घर के प्रवेश द्वार को, वैसे तो ग्राउंड का मकान हो या फ्लैट हो, मेन डोर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लेकिन फ्लैट में मेन डोर को अच्छा रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, फ्लैट के वास्तु और जमीन पर बने हुए मकान के वास्तु में बहुत अंतर है, इसीलिए

सोते हैं उसी से सटा हुआ टॉयलेट है या टॉयलेट वाली दीवार के दूसरी तरफ किचन आ गया है, इस तरह की चीजों को लेके फ्लैट में परेशान मत होइए, क्योंकि फ्लैट स्पेस को एडजस्ट करते हुए बनाया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश और वेंटिलेशन। अगर आपके फ्लैट में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, आप कितने भी वास्तु का पालन कर लें, आपको दिक्कत जरूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शंख को कहीं कहीं पर लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र से हुआ था और शंख भी समुद्र से ही निकलता है। शंख का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था, इसीलिए समुद्र से चूंकि दोनों का जन्म हुआ है इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जिस घर में शंख होता है, नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, वहां पर दरिद्रता नहीं आती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रानी ने हमें लिखा है और रानी हमें मेल लिखती हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1993। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है पटना बिहार। रानी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, हालांकि मेरा करियर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रानी, आपका विवाह साल 2027 में होगा। 2027 के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो आपके विवाह के लिए उपयुक्त दिखाई देता है। उस समय में आपके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन चूंकि आपका टेम्परामेंट थोड़ा गर्म है, मंगल का पाठ ज्यादा है, तो एक बार कुंडली अगर मिला ली जाए तो मुझे लगता है काफी ठीक रहेगा।
एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के लोगों को सावधान रहना होगा।

तुला राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है, शुक्रवार की द्वादशी अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु, तो आज श्री हरि विष्णु की उपासना करने से लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, सभी 8 नामजद आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में दर्ज हुई पहली FIR। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज किया गया। 8 नामजद के अलावा अज्ञात आरोपियों का भी उल्लेख है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। चोरी मामले में FIR पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में नाइंसाफी की झांकी है, ये फुनकी को फांसी है, शाखाओं को माफी मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि SIT ने पहले रिपोर्ट बनाई, फिर उसी हिसाब से अब जांच की जा रही है। SIT की जांच पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद ही FIR हो रही है। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने CM योगी पर जमकर हमला बोला, कहा आरोप लगने के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राम मंदिर मामले में FIR पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से सब डरते हैं, उनका नाम FIR में नहीं है, मुख्य आरोपी वही है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में कहा कि चढ़ावे में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा महज एक औपचारिकता है। अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा बिना FIR के बनी SIT पूरी तरह अवैध है, चंपत राय के पास कौन कौन से राज। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, संतों ने केजरीवाल पर राजनीतिक लाभ के लिए आने का आरोप लगाया। यूपी बीजेपी का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान, प्रदेश में संगठन की नई टीम में पिछड़ों का दबदबा। CM योगी ने संत कबीरनगर में योजनाओं का उद्घाटन किया, कहा अच्छे विधायक अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। इशारों ने योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा भ्रष्ट सरकार किसानों के हक पर डाका डालती है, पर त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक बने, आंतरिक सुरक्षा के मामलों का लंबा अनुभव है। कल से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मोदी की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी इसमें हिस्सा लेंगे। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा, ढाका ने भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ऐलान किया। पासपोर्ट बनवाना और महंगा हो गया है, 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए, 1 जुलाई से नए नियम लागू होंगे। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते UCC का लागू हो सकता है, CM शुभेंदु के नेतृत्व में बीजेपी ये नया विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट पेशी के दौरान TMC नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत परिसर में बीजेपी समर्थकों ने चप्पल और नारेबाजी दिखाई। मालदा हिंसा मामले में NIA ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय राजनीतिक नेता संयम चौधरी को पुलिस हिरासत में लिया, अब तक कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बड़ी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारतला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 और 19 हुई है, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप में

24 जुलाई तक जारी रहेगी यह प्रक्रिया। आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी बीएलओ करेंगे। हर घर में कम से कम 3 बार विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प डाउनलोड स्वयं भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद है। सीएम भगवंत मान के विवादित वीडियो पर विक्रम मजीठिया का दावा। मजीठिया ने सीएम मान की मास्क थ्योरी को नकारा। मजीठिया ने कहा कि सीएम मान से सेल्फ गोल है। यदि पहले दिन से मास्क की बात थी तो गुरुग्राम के लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत थी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की। मान के कथित वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, विवादित वीडियो का सच बाहर आ गया है। फर्जी मास्क लगवा कर बनाया गया था यह वीडियो। पंजाब के लोग ईडी को नहीं करेंगे माफ। भगवंत मान ने विवादित वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि मैं अकाल तख्त को चुनौती नहीं दे सकता, मुझे बदनाम करने की साजिश। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज हुआ। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जयपुर में गिरफ्तार महिला के मामले में खुलासा। जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की योजना थी। 27 जून तक पुलिस कस्टडी में आरोपी बबीता धाकड़ और खदीजा। पाकिस्तानी सेना शाहबाज सरकार के दमन और हिंसा के खिलाफ पीओजेके में जोरदार विद्रोह। 17वें दिन रावलकोट में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने आवाज बुलंद की। उदयगुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आया। सांसद संजय दीना पाटिल पर पत्रकारों को धमकी देने का पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले इस्तीफा दे दे बागी सांसद संजय। महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी को लेकर बहस पर एनसीपी के विधायक सना मलिक के बहुविवाह पाकिस्तान का जिक्र वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया। विधायक सना मलिक के पाकिस्तान वाले बयान पर राज्य गृहमंत्री योगेश कदम ने कहा, धर्मग्रंथ के आधार पर कानून नहीं बनते। पुणे के केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी साजिश का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में मंगेतर सिया गोयल बैठी दिखाई दी। पुणे हत्याकांड में सिया के माता पिता ने बयान दिया, कहा हमने कई बार पूछा था, उसने कहा था कि केतन ही पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं है। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी सेशन सुवर्ण को कोर्ट ने 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा। बॉर्डर पर निहंगों ने जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तराखंड में घुस गए निहंग, तोड़फोड़ कर तलवारें लहराई। हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ। दहशत में आए लोग जान बचाने के लिए भगदड़ वहां मच गई, जिसके चलते पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित निहंगों ने एक यात्री बस को भी रोक दिया था, जिससे यात्रियों में खौफ का माहौल बन गया। हाईवे पर खड़े कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे और तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन निहंगों को काबू करने में नाकाम साबित हुआ। निहंगों का जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरते हुए देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने पर सहमति जताई। एमपी के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में योगी युक्ति के शव संदिग्ध हालत में मिले। एसपी ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू करवाई। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतर गई, करंट लगने से बाल बाल बची। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया, खाने में नींद की गोली मिलाई थी, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। मेरठ में किडनैपिंग का वीडियो वायरल हो गया, घरेलू झगड़ा निकला, वो पुलिस ने अपहरण की बात को नकार दिया। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान कार में नकली धमाके से विवाद हो गया है। 4 लोगों पर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मेरठ के मवाना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। निहंगों के जत्थे ने उत्तराखंड सीमा पर भारी हंगामा किया, बैरिकेड तोड़कर देहरादून की ओर बढ़े। अगरतला के एक अपार्टमेंट में भीषण विस्फोट की घटना में 3 लोग घायल हो गए। लगभग 12 से 13 के आसपास फ्लैटों को काफी नुकसान हुआ। यूपी के जालौन के थाने के कंप्यूटर में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत का वीडियो सामने आया है, सिपाही को सस्पेंड किया गया। पंजाब के मोगा में पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगई दिखाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया, 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिर गया, 10 लोग घायल हो गए। पटना में फैजल खान के कोचिंग में बने बिजली घर में आग लग गई, धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग को लेकर के विवाद हो गया, 15 साल के युवक पर चाकू से हमला हुआ। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत हुई, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क

0: जमकर प्रदर्शन किया।
1: एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार का ट्रक कहर देखने को मिला, ट्रक बिजली खंभे से टकराए, दो बाइक सवार घायल हुए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट हुई, स्कूल की लापरवाही पर सवाल उठे। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव देखने को मिला, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया, वीडियो सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। खबरें सिनेमा से, वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू जंगल आज बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सितारे मौजूद होंगे। बॉक्स ऑफिस पर आज ही रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता, एक फैमिली ड्रामा फिल्म, 79वें कान फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्रव्याह सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फिल्म में तुषार कावले, सतीश पवार, प्रतीक्षा सिंह लीड रोल्स में हैं। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी आज रिलीज होने वाली है, एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की यह कहानी। डीसी यूनिवर्स फैंस के लिए भी आज दस्तक दे रही है फिल्म सुपरगर्ल, सुपरमैन के ही कजिन कारा जोरेल किरदार पर आधारित है यह फिल्म। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से पटकनी दी। शेफाली वर्मा ने 53 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जेम्मा ने 26 रन बनाए, गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजय रहा है भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार 4थी जीत। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक, 175 गेंदों पर बनाए 132 रन। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का यह 9वां शतक है, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके भी शामिल हैं। आज से शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड की T20 मैचों की सीरीज, आईपीएल 2026 के बाद मैन इन ब्लू की यह पहली T20 सीरीज होगी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का बना सकते हैं रिकॉर्ड। T20 सीरीज एक दिन पहले मैच के समय में 1 घंटे का बदलाव हुआ, 28 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण समय बदला गया। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रचा इतिहास। अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर है कि दक्षिण लेबनान में बफर जोन के हिस्से से पीछे हट गई इसराइल की सेना। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हॉर्मुज और ईरान के साथ समझौते पर दो टूक कहा, अमेरिका ये स्वीकार नहीं करेगा कि हॉर्मुज पर एक देश का अधिकार हो।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
4: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
7: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी।
8: Water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war next year, definitely.
7: भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने LOC पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
9: तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
7: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे।
10: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
11: इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है जो आपके छीन दिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
12: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
13: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
7: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हाँ, LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है, इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर LOC के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है। पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: Lion O's family, super action family.
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: हम भारत के लोग कौन? 134 करोड़ 54 लाख लोग जिनके पास आधार कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 97 करोड़ लोग जिनके पास वोटर कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 14 करोड़ 70 लाख जिनके पास पासपोर्ट है। जवाब है नहीं। भारत का नागरिक कौन है? ये पहली एक बार फिर राजनीतिक हवा की उलझन में उलझ रही है। नई बहस पुरानी कहानी से जुड़ी है। जब पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। इसी पर विवाद हुआ। कपिल सिब्बल कहने लगे पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है? जावेद अख्तर ने लिखा सच में तो पासपोर्ट बिना तय किए जारी हो रहे हैं कि धारक भारतीय है या नहीं। ओवैसी दो कदम आगे बढ़े और बीजेपी की सदस्यता वाले कार्ड की फोटो डालते हुए तंज किया कि नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज निर्णायक नहीं, 2030 तक एक ही दस्तावेज नागरिकता का सबूत होगा। कानून कहता है हाँ, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान और यात्रा का दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं। यह और बात है कि भारत का चुनाव आयोग जब भारत के नागरिकों का वोटर कार्ड बनाता है तो पहचान के तौर पर उसी पासपोर्ट को मंजूर करता है। हालांकि 12 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा कि भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता कानून से नियंत्रित होती है, आधार पैन वोटर कार्ड से नहीं। पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। ये और बात है कि भारतीयों में ये भ्रम है कि पासपोर्ट मतलब भारतीयता की पहचान। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयता की पहचान पर अब नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज न बताने पर उन्हें शक होने लगा कि कहीं फिर से कागज तो नहीं मांगे जाएंगे। भारत के विपक्षी दलों को ये शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब से नागरिकता कानून बना और कागज नहीं दिखाने के नाम पर दिल्ली से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद नागरिकता के दस्तावेज तलाशे जाने लगे। पता चला कि आधार कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत की नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या किसी जमीनी हिस्से के विलय पर निर्भर करती है। इसमें जन्म वंश के आधार पर नागरिकता तय करने का मानदंड है कि व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो। मतलब जन्म प्रमाण पत्र बड़ा दस्तावेज है। इसके अलावा वंश परंपरा और रजिस्ट्रेशन से मिली नागरिकता भी मान्य है। इसी सवाल का जवाब भारत सरकार 1951 से खोज रही है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए NRC में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में NRC की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में NRC NPR की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें NRC बनाना अनिवार्य किया गया। लेकिन 2019 में जब नागरिकता कानून बनाकर पूरे देश में NRC शुरू करने की तैयारी हुई तो करीब 250 याचिकाएं अदालत में पहुंच गई। देश भर में विरोध शुरू हो गया। अफवाह फैली कि अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कागज नहीं दिखा पाएंगे। ये अफवाह असम से शुरू हुई क्योंकि असम में NRC हुआ, जहां 3,30,00,000 लोगों ने NRC में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। इसमें 19,00,000 से अधिक के आवेदन रद्द हो गए और 3,11,00,000 लोगों को भारतीय नागरिक माना गया, क्योंकि NRC में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम NRC में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर भी अरेस्ट की तलवार लटक रही है। एसआईटी की सिफारिश के बाद सरकार ने की कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच, आज केजरीवाल जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का जबरदस्त हंगामा, बैरिगेटिंग तोड़कर देहरादून जाने की कोशिश। पुलिस की घेराबंदी टूटी, बातचीत के बाद मार्च को रोका गया। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा केतन ने की थी लोहगढ़ जाने की जिद, बेटी दोषी हो तो उसे खाई में फेंक दो। कैफे में मर्डर की प्लानिंग का वीडियो आया सामने। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 235 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग घायल, 100 से ज्यादा इमारतें तबाह, 70,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत और बचाव काम जारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और खबरों के सुपर 8 के बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं अलग अलग खबरों के साथ। आपको बताएंगे सबसे पहले ये देखिए कि सुपर 8 में आज क्या खास है। उज्जैन में मुहर्रम की हुड़दंग की बात करेंगे, साथ ही उत्तराखंड में निहंग सिख और प्रशासन के नया मोर्चा का क्या खुलासा हुआ है, कुछ समझौते भी हुए हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। तो वहीं चढ़ावा चोर पकड़ लिया गया है, ये खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही चौथी खबर होगी यूपी बीजेपी की 2027 स्ट्रेटेजी की, कि क्या है 2027 की बीजेपी की स्ट्रेटेजी। तो वहीं राहुल गांधी के माफीनामे की बात भी आपको बताएंगे। पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। साथ ही होर्मुज में अब किसने बारूद बरसाए हैं, और आखिरी खबर वेनेजुएला में आपदा की गवाही की, इसके अलावा कई और खबरें होंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड में निहंग सिखों और प्रशासन के बीच तनातनी हो गई है। निहंग सिखों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा था, जैसे ही ये जत्था हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हुआ तो पुलिस ने बैरिगेटिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे कि काफी ज्यादा बवाल हो गया। सैकड़ों निहंग सिखों की विकास नगर में पुलिस से झड़प हुई, उन्होंने बैरिगेट्स तोड़ दिए और आगे बढ़ने लगे। निहंगों का एक जत्था मोहाली स्थित गुरुद्वारा सिंह शहीदान से उत्तराखंड पहुंचा है, जबकि दूसरा जत्था हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब गुरुद्वारे से निकलकर विकास नगर होते हुए आगे बढ़ा। उत्तराखंड सीमा पर निहंग सिखों के पहुंचते ही तनाव बढ़ने लगा, उनको समझाया जा रहा था, बैरिगेटिंग तोड़ी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निहंग सिखों को रिहाई की मांग की जा रही है। तो अब ये विवाद कैसे बढ़ा, पूरा विवाद क्या था, चलिए आपको समझा देते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बैरिगेटिंग्स को तोड़ा गया, उत्तराखंड की सीमा पर पहुंचते ये पूरा हंगामा हुआ। अब देखिए, हेमकुंड यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प वहां पर शुरू हो गई, जिसके बाद बैरिगेटिंग्स को तोड़ने की भी कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई। 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया। हेमकुंड यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर ये विवाद बढ़ा है। जब निहंग सिखों उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे थे, जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट वायरल हो रहा था, कैसे विवाद बढ़ाया वो आप समझिए। निहंग सिखों को परेशान करने के दावे उस पोस्ट में किए जा रहे थे, जिसको लेकर ये विवाद बढ़ा। सुनियोजित तरीके से कार्रवाई के आरोप लगाए गए, और अभी जो निहंग सिखों की गिरफ्तारी है उनको भी रिहाई की मांग की जा रही है।
1: इस वक्त हमारी जो है कुल्हाल में है, जहां मेरे पीछे आप देखेंगे कुल्हाल पहुंचने को लेकर जो निहंग है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तलवारों से लैस निहंगों के जत्थे अब आक्रोशित हो चुके हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में भारी तोड़फोड़, तलवार लहराते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। तलवारधारी निहंग जो है लगातार पहुंच रहे हैं, और देखिए हाथों में हथियार लिए हुए ये लोग। सीधी तस्वीरें आपको आज तक भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, आज तक की सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए हाथों में तलवार लिए हुए निहंग जो है लगातार उत्तराखंड में बढ़ चुके हैं और आगे की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार उग्र होता निहंगों का ये प्रदर्शन, ये गुस्सा इलाके में भयावह स्थिति पैदा कर चुका है। पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासनिक लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि लगातार बढ़ता विरोध, कहीं ना पुलिस जो उस विरोध को काबू करने में नाकाफी साबित हो रही है। भारी तनाव आप देखेंगे मौके पर मौजूद है, तलवारों के पीछे बसों को रोक लिया गया है, निहंग लगातार गुस्से में है। आपसे सीधी तस्वीरें आज तक को देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से निहंग जो उत्तराखंड में पूछ के लिए आए थे, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा उग्र होता जा रहा है।
0: तो निहंग सिखों का ये जत्था पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आया था, जब उत्तराखंड सीमा में घुसे तो पुलिस की कार्रवाई की वजह से बवाल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने समझौता कर मामला रफा दफा करने की बात कही है।
2: ये तस्वीरें उत्तराखंड हिमाचल सीमा की हैं, जहां देर रात हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। कर्णप्रयाग और नगरासू में चल रहे विवाद पर नाराज निहंग सिख उत्तराखंड में प्रवेश करना चाहते थे। घंटों अधिकारियों ने समझाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। निहंगों सिखों का जत्था बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ गया। उत्तराखंड कूच पर निकले निहंग सिखों की मांग है कि कर्णप्रयाग में गिरफ्तार किए गए 4 सिखों को तुरंत रिहा किया जाए।
3: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं, गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए।
2: उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में किए जा रहे दावों का खंडन किया है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
4: ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए और उसमें उनके विरुद्ध एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया।
2: निहंग सिखों के साथ बातचीत फेल होने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।
0: अब बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां पर मुहर्रम को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। दरअसल उज्जैन में सरेआम हुड़दंग की गई और एक गाड़ी को क्रेन से हवा में लटकाया गया, फिर उसमें से धमाका किया गया। सरेआम हुड़दंग की वजह से पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई की बात कही है।
5: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे, इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
6: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
5: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है, ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो आज मुहर्रम है और इसको लेकर यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। लखनऊ, एटा, दरभंगा, गढ़वा समेत कई जिलों में पुलिस ने एहतियाती फ्लैग मार्च भी किया, साथ ही हुड़दंगियों को चेतावनी भी दी है कि गड़बड़ी की तो कार्रवाई सख्त होगी।
7: त्योहारों और संवेदनशीलता के मद्देनजर देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए पुलिस बल सड़कों पर उतर आया है। लखनऊ और सहारनपुर समेत कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने खुद कमान संभालते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लिया।
8: पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा जा रहा है, कंट्रोल रूम बना है जहां हर एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है, HHMD के माध्यम से संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है जिससे कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
7: मुहर्रम पर कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए बिहार में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। बिहार के दरभंगा से भी फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, जगह जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया गया है। झारखंड के गढ़वा में मुहर्रम को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। गढ़वा को झारखंड का संवेदनशील जिला माना जाता है। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पुलिस चुस्त और दुरुस्त दिखी। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की। दरअसल अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है।
2: राम मंदिर के चंदे में गबन की खबरों के साथ ही सवाल उठ रहे थे कि इस मामले में FIR कब दर्ज होगी। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की, तब भी FIR और एक्शन को लेकर विपक्ष हमलावर था, लेकिन 25 जून की शाम FIR दर्ज करवा दी गई और वो भी ट्रस्ट की तरफ से। सबसे पहला नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसका नाम आप पहले से सुनते होंगे, ये चंपत राय का खास था, मुख्य आरोपी है। दूसरा है अनुकुल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था।
9: चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पांचवा नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। छठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था, इससे कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं। सातवां नाम है करुणेश पांडे का और आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। यानी सभी छोटे कर्मचारी थे, सभी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि कोतवाली में ये केस दर्ज हुआ है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज की गई है। आपराधिक षड्यंत्र, चोरी, विश्वासघात और अमानत में खयानत जैसे आरोप लगे हैं। यानी धाराएं तो गंभीर लगी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसमें छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: तो वहीं बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है।
10: सत्ताईस का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बात कर लेते हैं राहुल गांधी की माफी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफी मांग ली है। ये मामला शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ा हुआ था, देखिए।
11: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफी मांग ली है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने 8 साल पहले राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। लंबी कानूनी सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के इस आदेश के बाद भोपाल की स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही भी अब खत्म मान ली गई है। दरअसल 2018 में झाबुआ की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में गलती से कार्तिकेय का नाम ले लिया था। राहुल गांधी ने कोर्ट को बताया कि उनका आशय छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे से था और वे अपनी भूल सुधार कर पहले ही खेद जता चुके हैं। इसके बाद कार्तिकेय ने भी इस विवाद को आगे न बढ़ाने पर सहमति दे दी। इस फैसले के आते ही सियासी घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की इस माननीय भूल पर तो राजनीति कर रही है, लेकिन इस कड़वे सच से भाग रही है कि पनामा पेपर से लेकर तमाम बड़े घोटालों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के करीबियों के नाम ही क्यों आते हैं। आज तक भी।
0: और चलिए अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट को लेकर मचे हुए सियासी बवाल की। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है।
12: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
13: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
14: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
12: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
15: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
12: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। होर्मुज में फिर से तनाव हो गया है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसके बाद सारा ठीकरा ईरान पर फोड़ दिया गया है कि उसने अटैक किया, जबकि ईरान कह रहा है कि हमने जहाजों की सुरक्षा का ठेका नहीं लिया।
16: ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस कार्गो शिप पर पहले एक अज्ञात मिसाइल या गोले से हमला किया गया और उसके तुरंत बाद ईरानी नौसेना ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। इस सनसनीखेज हमले का सीधा असर अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 2% से ज्यादा उछल गई हैं। जानकारों का कहना है कि अगर खाड़ी देशों में जहाजों की आवाजाही इसी तरह प्रभावित रही तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया भर की नजरें इस वक्त हॉर्मुज की जंग पर टिकी हुई हैं। इस हमले के बाद यूएन एजेंसी ने हॉर्मुज में फंसे नाविकों को बाहर निकालने के ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया है। यूएन का कहना है कि जब तक इस रूट पर सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती तब तक ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं ईरान की गल्फ अथॉरिटी ने भी 2 टूक चेतावनी दे दी है कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले जहाजों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सीज फायर और शांति समझौतों के बीच हुए इस हमले के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गल्फ में तैनात ब्रिटिश नेवी ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर बनी हुई है। उधर भारतीय नौसेना भी एडन और ओमान की खाड़ी में बनी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात कर लेते हैं वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप की। वेनेजुएला में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 180 से ज्यादा लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। दरअसल पीएम मोदी ने इस संकट की घड़ी में वेनेजुएला को मदद की पेशकश भी की है।
16: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही हुई है। राजधानी काराकास समेत कई इलाके भूकंप से दहल गए। वेनेजुएला के तटीय शहर ला गुआयरा से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रिहायशी इमारतें, पूरे के पूरे मोहल्ले और औद्योगिक इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। वेनेजुएला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के मुताबिक इस आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 200 से अधिक लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ला गुआयरा में रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोग दिन रात मलबे को हटाकर अपनों की तलाश में जुटे हैं। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वेनेजुएला में आई सदी की सबसे बड़ी आपदा के बाद दुनिया भर से मदद की पेशकश की गई है। पीएम मोदी ने भी इस आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही मदद का आश्वासन भी दिया। बुधवार की दोपहर वेनेजुएला में एक के बाद एक 2 जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका रिक्टर पैमाने पर 7.2 और उसके ठीक 1 मिनट के भीतर दूसरा झटका 7.5 की तीव्रता का था, जिससे वहां भारी तबाही मची है। आज तक ब्यूरो।
0: तो भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 सीरीज का शंखनाद होने जा रहा है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया इस दौरे पर एशियाई टीम को उसी के घर में चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिच और मौसम को देखते हुए मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। जहां पर आयरलैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा, तो वहीं भारतीय टीम के युवा सितारे खुद को साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वैभव सूर्यवंशी भी टीम इंडिया स्क्वाड में शामिल है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्लेइंग 11 में वैभव को मौका मिलता है या नहीं। और चलिए सुपर 8 में अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आवारा सांड ने सड़क से गुजर रही एक युवती को मारी टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि युवती सड़क पर गिरकर कुछ देर से बेहोश हो गई। झारखंड के पलामू में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की वारदात। पंजाब नेशनल बैंक के केंद्र में बाइक सवार बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे और पिस्टल दिखाकर संचालक से करीब 1,00,000 रुपए लूटकर फरार। मध्य प्रदेश के खरगोन में राख से भरे एक तेज रफ्तार ट्राले ने सड़क पर जमकर कहर बचाया। स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित ट्राला कई वाहनों को टक्कर मारते हुए दीवार से जाकर टकराया। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। कंप्यूटर रूम के अंदर एक महिला और एक कांस्टेबल आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में व्यक्ति घर के बरामदे से आइसक्रीम लेने के दौरान अचानक नीचे गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आरएमसी मिक्सर चालकों की पिटाई। सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने पर मिली उठक बैठक लगाने की सजा। बारामूला में पुल गिरने की वजह से 10 लोग घायल हुए। कंस्ट्रक्शन में बड़ी गड़बड़ी के कारण पुल बनने के कुछ ही घंटों बाद गिरा पुल। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव। घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया गया हमला, कई लोग घायल। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
18: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
19: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
20: What about me, Jack? What about me?
19: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
21: Well played, Jack. Well played.
19: Jack FM, playing what we want.
22: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
9: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
13: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहां खबर वहां खबरदार।
18: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
20: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: फरवरी के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तस्वीरों में नजर आ रही लड़की के मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये वीडियो उस फंक्शन का है जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल का रोका हुआ था। तस्वीरों में सिया काफी खुश नजर आ रही है, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया ने केतन की मौत की पूरी साजिश रची भी और उसे अंजाम तक पहुँचा भी दिया। यही वजह थी कि केतन के घर वाले उसकी मौत को शुरुआत में हादसा मानते रहे।
2: जैसे 19 तारीख को इनका महाबलेश्वर में बर्थडे कर रहे थे, फिर ये वो कहाँ गए, क्यों गए, तो उस हिसाब से हमने अपने मन की शंका पुलिस में जाहिर की, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया।
1: केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के पिता अपने बेटे के बचाव में सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि चेतन बेगुनाह है।
3: अब उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
4: किस तरह फंसाया जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है?
3: क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं।
1: लोहागढ़ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का दिल दहला दिया है। चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों ही 29 जून तक पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में क्या कोई और भी शामिल था। पुणे से श्री कृष्ण जगन्नाथ पंचाल आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, सभी 8 नामजद आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने नाम सभी 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज किया गया मामला। FIR में 8 नामजद के अलावा अज्ञात आरोपियों का भी उल्लेख, आरोपियों से जारी है पूछताछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। SP प्रमुख का आरोप, कहा SIT ने पहले रिपोर्ट बनाई फिर उसी हिसाब से की जांच। SIT की जांच पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद FIR हो रही। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने CM योगी पर जमकर बोला हमला, कहा आरोप लगने के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। राम मंदिर मामले में हुई FIR पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से अब डरते हैं, उनका नाम FIR में नहीं है, मुख्य आरोपी वही। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में कहा है कि चढ़ावे में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा महज एक औपचारिकता। अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल बोले बिना FIR के बनी SIT पूरी तरह से अवैध, चंपत राय के पास है कौन से राज। आज अयोध्या दौरे पर केजरीवाल, संतों ने केजरीवाल पर राजनीतिक लाभ के लिए आने का आरोप लगाया। यूपी बीजेपी का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान, प्रदेश संगठन की नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। CM योगी ने संत कबीर नगर में कई योजनाओं का किया उद्घाटन, बोले अच्छे विधायक अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान सुरक्षा मिलेगी। इशारों में CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले भ्रष्ट सरकार किसानों के हक पर डाका डालती है और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित बने खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक, आंतरिक सुरक्षा के मामलों का लंबा अनुभव। कल से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। PM मोदी की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा, ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, अब 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए 1 जुलाई से नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर AIMIM प्रमुख ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले उन्होंने कहा कि 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते UCC हो सकता है लागू, CM शुभेंदु के नेतृत्व में विधेयक पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान TMC नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत परिसर में बीजेपी समर्थकों ने दिखाई चप्पल और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में NIA की कड़ी कार्रवाई, स्थानीय राजनीतिक नेता संयम चौधरी पुलिस हिरासत में, अब तक कुल 30 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 और 19 घायल, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, सभी प्रत्यक्षदर्शियों से की जा रही है पूछताछ। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, CM रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति ने जांच की। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकी मानहानि केस बंद, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, राहुल बोले कंफ्यूजन में पनामा पेपर में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर घर जाकर BLO भर रहे फॉर्म, 24 जुलाई तक जारी रहेगी।

स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने पर जताई सहमति। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। अमेरिका में आचार्य लोकेश के शांति अभियान पर रिपब्लिकन डेमोक्रेट का समर्थन। 1 जुलाई को कैपिटल बिल्डिंग से वॉर फ्री वर्ल्ड का संदेश। रेल यात्रियों के लिए एक राहत। घर वापसी को मध्य रेलवे की 5 अतिरिक्त ट्रेनें। प्रयागराज में खेल को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल की गई। बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खेली गई खास क्रिकेट अकादमी। भारत में पहुंची प्रीमियम अमेरिकन चेरी। बड़े आकार और बेहतरीन स्वाद के साथ चुनिंदा स्टोर्स और ऑनलाइन में उपलब्ध है। एमपी के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में मिले। एसपी ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू की। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी, करंट लगने की वजह से बाल बाल बचती हुई नजर आई महिला। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया। खाने में मिलाई थी नींद की गोली। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मेरठ में किडनैपिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घरेलू झगड़ा निकला वो वीडियो। पुलिस ने अपहरण की बात नकारी। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान कार में नकली धमाके से विवाद हुआ। 4 लोगों पर केस दर्ज। मेरठ के मवाना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए एक युवक ने आत्महत्या की। परिजनों ने थाने के बाहर शव रख कर किया प्रदर्शन। निहंगों के जत्थे ने उत्तराखंड सीमा पर भारी हंगामा किया और बैरिगेड्स तोड़कर देहरादून की ओर बढ़े। अगरतला के एक अपार्टमेंट में भीषण विस्फोट की घटना की वजह से 3 लोग घायल। लगभग 12 से 13 आसपास के फ्लैट्स को भारी नुकसान। यूपी के जालौन थाने में कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई। वीडियो वायरल होते ही सिपाही सस्पेंड। पंजाब में मोगा पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगाई दिखाना पड़ा भारी। 13 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 10 लोग घायल। पटना में फैजल खान के कोचिंग में बने बिजली घर में लगी आग। धुआं देखकर मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ा। 15 साल के युवक पर चाकू से हमला। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली खंभे से जाकर टकराया। 2 बाइक सवार घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट की गई। स्कूल की लापरवाही पर उठे सवाल। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव। घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया गया हमला। वेलकम सीरीज की 3री फिल्म वेलकम टू द जंगल आज बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सितारे रहेंगे मौजूद। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी आज सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी आज रिलीज होगी। एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए आज दस्तक दे रही है फिल्म सुपरगर्ल। सुपरमैन की ही कजिन कारा जोर-एल किरदार पर आधारित है ये फिल्म। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया। 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। बांग्लादेश को 5 विकेट से पटकनी दी।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 7:16

तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 12:33 तक राहु काल का समय, प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, लेकिन आज परिवार में विवादों से बचिएगा। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, लेकिन खान पान में थोड़ी सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन का नुकसान हो सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: राम का नाम बदनाम ना करो, किसी भी आस्थावान हिंदू की भावना यही होती है, लेकिन चढ़ावा चोरी मामले की जितनी परतें खुल रही हैं, संदेह के उतने बादल घुमड़ रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया था? 23 जून को अयोध्या के डीएम कार्यालय को भेजी गई अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी की ये चिट्ठी देखिए। इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से अब तक की समस्त आय, व्यय, दान, बैंक खातों, भूमि क्रय विक्रय और संपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। चिट्ठी में साफ लिखा है कि सचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में SIT जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के BJP नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी जानकारियां मांगी थी, जिसे पीएमओ ने अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा, लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन को पीएमओ को जवाब देने के लिए ट्रस्ट से क्या जवाब मिला आपने जान लिया?
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पे डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की SIT जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते।
0: इन्हीं परिस्थितियों में अब ट्रस्ट को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोग भी उठाने लगे हैं। VHP ने मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
2: जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों की आस्था श्रद्धा, जिनने अपना दान दिया है, चंदा दिया है, उनकी भावना को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी तरह की उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। संजय सिंह ने SIT को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री को वो संदिग्ध बता रहे हैं।
3: भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: 2024 में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर करोड़ों भक्तों के अयोध्या कूच को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब उन्हीं भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ छल के आरोपों पर
4: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
3: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको SDM लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है, जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा, उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपतराय खरीद रहा है 5,60,00,000 रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18,50,000 रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव भी अरेस्ट। एसआईटी की सिफारिश के बाद सरकार ने की कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच, आज केजरीवाल जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का जबरदस्त हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून जाने की कोशिश, पुलिस की घेराबंदी टूटी। बातचीत के बाद मार्च को रोका गया। मुहर्रम को लेकर यूपी में जबरदस्त अलर्ट, पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, पुलिस ने लिया एक्शन। मंगेतर मर्डर मामले में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा केतन ने की थी लोगढ़ जाने की जिद, बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। कैफे में मर्डर की प्लानिंग का वीडियो आया सामने।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों का रुख कर लेते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियां शुरू, लेकिन क्या सिर्फ छोटी मछलियां फंसेंगी? आरोपियों में चंपत राय का नाम होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। केतन मर्डर मामले के आरोपी सिया के माता पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत, क्या कहा उन्होंने थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। क्या वैभव सूर्यवंशी तोड़ पाएंगे सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा सचिन का रिकॉर्ड, ये खबर भी इस बुलेटिन में प्रमुख तौर पर शामिल होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत राम मंदिर चंदा चोरी मामले से कर रहे हैं। यूपी की सियासत में घमासान मचाने वाले इस केस में कल अचानक एक्शन का दौर शुरू हो गया। शाम को पहले FIR दर्ज की गई, फिर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है? 8 गिरफ्तारियां कल हुई हैं, सभी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। विपक्ष ने बड़े नामों को बचाने का आरोप लिया है क्योंकि चंपत राय का नाम FIR में नहीं है।

0: रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, ये वो आठ चेहरे हैं जो अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के केस में नामजद हैं। यूपी की सियासत में तूफान मचाने वाले चढ़ावा चोरी केस में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। विशेष जांच दल यानी SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कल शाम ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि थाने में पहली FIR दर्ज की गई थी और उसी के चंद घंटे बाद सभी नामजद आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चढ़ावा चोरी केस में जिन्हें नामजद किया गया है उनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव सबसे चर्चित नाम है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। दूसरा है अनुकल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, SBI के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पांचवा नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। छठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था, इससे कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं। सातवां नाम है करुणेश पांडे का और आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। इन नामों से साफ है कि अभी जांच की आंच सिर्फ छोटे नामों पर आई है, बड़े नाम नदारद हैं।
1: एकदम संतुष्ट नहीं है, उसमें सभी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छोटे कर्मचारी तो बेचारे वो ड्राइवर हैं, कोई छोटा कर्मचारी है उनको क्यों बेचारे को आप केवल खत्म कर रहे हो, बड़े लोगों को शामिल करो। और उसमें जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर ने पैसा छिपा रखे थे, जो गाड़ियों में छुपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पर उसमें सारी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की होती है, चंपत राय और जो उसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर होनी चाहिए।
0: विपक्ष FIR में बड़े नामों को शामिल न करने से नाखुश है। विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात से है कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम क्यों नहीं है।
2: चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है।
3: इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मैं इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जब से विश्व हिंदू परिषद को यह सौंप दिया है लूट मची हुई है।
0: यानी चढ़ावा चोरी पर कार्रवाई तो शुरू हुई है लेकिन ये कार्रवाई भी सवालों में है कि क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, इस वक्त विपक्ष की सुई सिर्फ एक ही नाम पर टिक गई है, वो है चंपत राय का नाम। क्या उनका नाम SIT रिपोर्ट में शामिल है या फिर नहीं, या फिर उन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ नामजद FIR नहीं है, और कौन से बड़े नाम है जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है?
5: देखिए, जो नाम हमलावर जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये तमाम पदाधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि SIT के द्वारा जो इशारा किया गया साफ तौर पर कि राम मंदिर में मैनेजमेंट के लोगों ने लापरवाही बरती, चाहे वो फंड मैनेजमेंट का यानी कि चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया उसके बाद चढ़ावा का जो मैनेजमेंट, चाहे नोट गिनने की प्रक्रिया हो या उस प्रक्रिया से जुड़े हुए कर्मचारियों की चेकिंग और फ्रिस्किंग का प्रोसेस हो, इन तमाम प्रोसेस पर SIT ने एक तरीके से आपत्ति जताई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं थी, निगरानी सही नहीं हो रही थी। इसके बाद SIT की ही जांच रिपोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद माना जा रहा है कि अयोध्या के इस राम जन्मभूमि थाने में FIR दर्ज हुई है और इस FIR में आठ लोग नामजद हैं। ये आठ में छह वो व्यक्ति हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, ये वो हैं जो नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल थे। कोई गड्डी बनाता था, कोई नोट गिनता था, कोई SBI तक पहुंचाता था, कोई इस वाउचर को मिलाने का काम करता था, तो सभी इसी प्रक्रिया से जुड़े थे। लेकिन दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक रामशंकर यादव टिन्नू यादव जो मंदिर का व्यवस्थापक है, और दूसरा सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और इनके ऊपर इस पूरी चढ़ावा जो गिनने का जो प्रोसेस था, नोटों के गिनने का प्रोसेस था, उसके एक तरीके से अगर कहा जाए कि सुपरवाइजर थे। इनकी निगरानी में ही ये सारा काम नोट गिनने का हो रहा था और अब कहा जा रहा है कि इसीलिए ये नामजद हुए हैं क्योंकि इन्हीं की निगरानी थी तो इन्हीं के अधीन में चोरी हो गई। तो इसके बाद अब ये 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से ये जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजे जाएंगे।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जुड़ावा चोरी मामले में 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर अयोध्या के संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है देखिए।
6: जो आशंका थी अंततो गत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी अयोध्या में रहने वाले अयोध्या में आश्रम हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
7: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलंब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया SIT ने।
4: और जिस दिन से यूपी सरकार ने SIT बनाई है तभी से लगातार ये बात हो रही है कि जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ FIR होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। साजिशों की तमाम कहानियां आती रहीं, बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे, चढ़ावे के पैसों को लेकर जेवरात तक गायब पाए गए लेकिन किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ FIR दर्ज ही नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। साफ दिख रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है।
8: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो यह माना गया कि क्या SIT की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब FIR दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या SIT को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या SIT ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है इस केस में ये 4 नाम पहले दिन से आ रहे थे, जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन 4 पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। FIR में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी 3 के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया?
9: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ FIR है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
0: ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि SIT ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ FIR होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि FIR में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर ली गई?
10: SIT की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, FIR होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने FIR फाइल करने में 1 दिन की भी देरी नहीं लगाई।
0: क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता न रहा हो। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें FIR में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
4: और इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं। आज वो रामलला के दर्शन करेंगे, इसका भारी विरोध किया जा रहा था। केजरीवाल ऐसे समय अयोध्या पहुंचे हैं जब चढ़ावा चोरी मामला चल रहा है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वो क्या बोलेंगे। क्यों आम आदमी पार्टी इस मामले में लगातार हमलावर हो रही है?
11: घर में चोरी की है, महापाप किया है और बहुत मन व्यथित है, इसलिए श्री राम जी के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ।
4: सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सिमर, भारी विरोध किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वहां पर दर्शन पूजन का, इसके बावजूद वो पहुंच गए हैं, क्या मंशा है, क्या मकसद है, क्या आम आदमी पार्टी इस चंदा चोरी मामले को पूरी तरीके से अपने फेवर में करना चाहती है और चाहती है कि इसका फायदा आने वाले आगामी चुनाव में उन्हें मिले?
12: बिल्कुल नया, इस चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक तापमान तो बढ़ा दिया है। हमने देखा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, ऐसी कई पार्टीज हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, राजनीतिक जो अपने इंटरेस्ट हैं उसको भुनाने का काम कर रही है। पहले हमने देखा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बारे में ट्वीट किया, लगातार इस पर आक्रामक हुए। अब आम आदमी पार्टी जो है वो इस पर लगातार मुखर होकर बात कर रही है और ऐसे समय में जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पे है, मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। उसके बाद वे हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पर संतों से भी मुलाकात करेंगे, तो एक तरीके से कह लिए पूरा फोटो ऑफ जो है वो भी होगा। कल हमने देखा संजय सिंह जो है उन्होंने आक्रामक तौर पर हमला किया भाजपा सरकार पे, जो SIT के प्रमुख थे विजय विश्वासपंत, उनके साथ उन्होंने मिलकर अपनी 11 पन्ने की रिपोर्ट भी सौंपी, सबूत सौंपे। उनका कहना है कि राम मंदिर मामले में जो चोरी हुई है उनके सबूत उनके पास है, जमीनों के खरोद फिरोद में जिसमें चंपत राय शामिल है उसके खिलाफ उन्होंने कई सबूत मिलकर SIT को दिए। अब हमने देखा है कि इस पे मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे समय में जहां ये जताया जा रहा था कि उनका विरोध हो सकता है अयोध्या आने पे, कल की वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल शाम को ही अयोध्या पहुंच गए थे, आज कुछ ही समय बाद वो राम मंदिर जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद वे हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां संतों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक मैसेज देने की जो है उनकी तरफ से बातचीत आ रही है। हमने देखा कि स्टेटमेंट भी आया कि लगता है चंपत राय के पास कुछ प्रधानमंत्री मोदी का कुछ सीक्रेट है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस तरीके की स्टेटमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज और देख सकते हैं कि किस तरीके के इल्जाम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी लगाती है इस पूरे मामले में।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मचे तूफान का असर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने महाकाल ओंकारेश्वर समेत बड़े मंदिरों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग की है। तो दूसरी ओर सरकार मंदिरों में दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी में जुट गई।
13: जिस तरह की चोरी अयोध्या के राम मंदिर में हो रही है, कम और ज्यादा इसी तरह की चोरियां मध्य प्रदेश के भी उन बड़े धर्म स्थानों पर हो रही है जहां बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि महाकाल मंदिर से के प्रबंधन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खातों की जांच करें।
14: जैसे अभी उज्जैन महाकाल मंदिर में हमने ये डिजिटल व्यवस्था शुरू की है, QR कोड वाली व्यवस्था शुरू की है, प्रयास ये रहेगा कि अन्य मंदिरों में भी ये व्यवस्था चालू हो जाए, पारदर्शी व्यवस्था मध्य प्रदेश में रहे और बेहतर करने के प्रयास सरकार कर रही है कि प्रबंधन मंदिरों का प्रबंधन बेहतर हो, केवल आर्थिक रूप से नहीं, हर प्रकार का प्रबंधन मंदिरों का बेहतर हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार जल्दी ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर उसको मध्य प्रदेश के मंदिरों में हम लागू करने का काम करेंगे।
4: और बात उत्तराखंड में देर रात हुए बवाल की करेंगे। यहां पर निहंग सिखों और पुलिस में आमने सामने भिड़क हुई, निहंग सिख कर्णप्रयाग जाना चाहते थे और पुलिस उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। बॉर्डर पर कई घंटे तक मचे बवाल के बाद आखिरकार मान मनोवल हुआ, उसके बाद निहंग सिख कर्णप्रयाग कूच स्थगित करने पर राजी हो गए।
0: हंगामे की यह तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ है उत्तराखंड पुलिस और दूसरी तरफ है निहंग सिखों का जत्था। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया। उत्तराखंड पुलिस के लिए कल की रात तनाव की रात थी, मामला बेकाबू होता दिख रहा था।
15: हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, और जैसे ही हमारे हम उत्तराखंड वासियों के जितने जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं।
0: उधर कुलहाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की स्थिति थी।
16: आज तक की सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए हाथों में तलवार लिए हुए निहंग जो है लगातार उत्तराखंड में बढ़ चुके हैं और आगे की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार उग्र होता निहंगों का ये प्रदर्शन, ये गुस्सा इलाके में भयावह स्थिति पैदा कर चुका है। पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासनिक लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं क्योंकि लगातार बढ़ता विरोध, कहीं ना पुलिस जो उस विरोध को काबू करने में नाकाफी साबित हो रही है। भारी तनाव आप देखेंगे मौके पर मौजूद है, तलवारों के पीछे बसों को रोक लिया गया है।
0: दरअसल पूरा बवाल नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों हुए हंगामे से जुड़ा हुआ है। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था। जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।
17: जिस तरह से निहंग जो जत्था है वो लगातार देहरादून भी पहुंचा, पौंता साहिब में पुलिस के साथ गतिरोध हुआ और पुलिस अलर्ट के बाद यहां पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसको लगा दिया गया है और पुलिस यहां पर लगातार चेकिंग कर रही है और जो व्हीकल्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी कुछ निहंग के व्हीकल्स भी यहां पहुंचे थे जिनको डाइवर्ट किया गया और दूसरे रूट से पीछे की ओर भेजा जा रहा
0: है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बॉर्डर पर बवाल को रोका नहीं जा सका। हालांकि राहत की बात यह है कि काफी मान मनोवल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदार मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
4: और बात बिहार में हुए बवाल की, जहां पर शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान बवाल हुआ, चमकर पत्थरबाजी मारपीट की गई, 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 45 लोगों को नामजद करते हुए FIR भी दर्ज की गई है। दरअसल शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारी को लेकर निकले अखाड़ों के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे शहर के अलग अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान थाना रोड स्थित गुप्ता मेडिकल के पास अखाड़ों के क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया।
18: ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस के दौरान दो अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाए।
4: रोहित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, दरअसल विवाद शुरू कहां से हुआ और क्या अब स्थिति वहां पर शांतिपूर्ण है?
19: देखिए, ये घटना जो दरअसल कल सुबह 4 बजे की है, जब शिवहर में ये प्रैक्टिस चल रहा था और ये मुस्लिम समुदाय के ही दो गुट थे, यानी दो अखाड़े थे मुस्लिम समुदाय के, दोनों अपना अपना ताजिया निकालकर प्रैक्टिस कर रहे थे मुहर्रम को लेकर जो आज है, और उसी दौरान ये दो अखाड़े जो है मुस्लिम समाज के वो आपस में आमने सामने आ गए और उसके बाद ही वहाँ पर रास्ता देने को लेकर जो है वो बवाल शुरू हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि ये दोनों पक्ष ही जो आपस में है वो भिड़ गए और फिर जमकर पत्थरबाजी हुई और एक तरीके से कहें हालात जो है वो बवाल में तब्दील हो गया और फिर पुलिस को वहाँ आनंद फानंद में पहुँचना पड़ा और हालात पर जो है काबू पाना पड़ा। और इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है पत्थरबाजी में वो घायल भी हुए हैं। 45 लोगों को नामजद जो है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन ये घटना दरअसल जिस तरीके से हुई है उसने एक बार फिर से मुहर्रम जो आज मनाया जा रहा है इसको लेकर प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस है वो अब और अलर्ट पर चली गई है, क्योंकि इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। इसको लेकर प्रशासन और राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है।
4: अगर मुहर्रम इतना संवेदनशील मौका था, और जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी एक भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, ना कोई बैरिकेडिंग दिख रही है, अगर ये पता था वहां पर प्रैक्टिस होनी है तो ये बात तो पुलिस और प्रशासन को भी मालूम होगी ना।
19: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी जा रही है, क्योंकि मुहर्रम को लेकर तो तैयारियों का बात की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो जहाँ स्थानीय प्रशासन है जहाँ मुहर्रम मनाया जाएगा, सब कह रहे हैं कि आज को लेकर तैयारी है। लेकिन कल जब एक दिन पहले ही ये प्रैक्टिस हो रहा था, यानी कि जिस तरीके से ताज़िया निकाल के ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बारे में शायद पुलिस को जो है उतनी जानकारी नहीं रही होगी कि इस तरीके का बवाल मच सकता है। और प्रैक्टिस के दौरान जब मुस्लिम समाज के ही 2 पक्ष आमने सामने हो गए, उसका सुबह सुबह का वक्त था 4 बजे का, इसीलिए हम देख रहे कि पुलिस की वहां पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है पुलिस का कोई भी कर्मी, और इसीलिए बवाल और ज्यादा बढ़ गया। और जब तक बवाल पूरा मतलब कह सकते हैं बढ़ चुका था, उसके बाद ही आनंद फानंद में पुलिस वहां पहुंच के सुबह सुबह जो है हालात पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी जमकर पत्थरबाजी रोड़ेबाजी हो चुकी होती है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके होते हैं। जी
4: बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां पर मुहर्रम को लेकर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त है। शहर शहर फ्लैग मार्च हो रहा है, संभल में खास तौर पर जबरदस्त सुरक्षा है। आज ताजिए का जुलूस निकलना है, ऐसे में आप फ्लैग मार्च देख सकते हैं। आला अधिकारी से लेकर तमाम जवान भी उन रूट्स पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं जहां से ताजिया निकलना है या जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकलना है। प्रशासन व्यवस्था बेहद चाक चौबंद।
20: सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है, सभी जगह ड्यूटी हमारी लगी हुई है, रूफ टॉप में भी ड्यूटी लगी हुई है, सादे कपड़ों में भी लोग कमर्शियल हैं। पूरे एरिया को CCTV कैमरे की नजर से देखा जा रहा है, कंट्रोल रूम बना है जहां हर एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है, HHMD के माध्यम से संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है जिससे कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
4: अभिनव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरीके से लगातार संभल सुर्खियों के केंद्र में रहता है, कोई भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ त्योहार हो चाहे वो मुहर्रम ही क्यों ना हो, वहां पर सुरक्षा को लेकर जबरदस्त तैयारी देखी जाती है।
21: बिल्कुल यार, देखिए 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से संभल का माहौल चूंकि इतना अति संवेदनशील रहता है, जब जो है त्यौहार आते हैं तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिससे कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब ना हो। और यही वजह है कि आज जब मुहर्रम का दिन है तो एक बार फिर संभल में सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े इंतजाम है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए रैपिड रिएक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी टुकड़ी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएगी। देखिए किस तरीके से इसी तरह से जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि SBKK बिश्नोई ने साफ किया था कि 3 कंपनी PAC को तैनात किया गया है। और उसी के साथ देखिए किस तरीके से रैपिड रिएक्शन फोर्स हथियारों से लैस ये वो पूरे जवान हैं जिनको यहां पर फिलहाल सुबह से ही यहां पर अलर्ट मोड पर जो है रखा गया है, और जुलूस मार्ग जो भी हैं उन पर इसी तरह से रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे। और आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से ये वो संवेदनशील इलाके हैं जिन इलाकों में 24 नवंबर को हिंसा भी हुई थी, लेकिन अब वहां पर देखिए सुबह से ही किस तरह से जो सुरक्षा का कड़ा पैरा है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि DM अंकित खंडेलवाल ने कहा कि इन्हीं पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी हैं उनको भी लगाया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई समस्या खड़ी होती है तो उसको समय रहते हुए सुलझाया जा सके। और यही वजह है देखिए किस तरह से यहां आप देखेंगे तो देखिए हथियार और जो भी राइफल और जो डंडे हैं, जो बॉडी प्रोटेक्टर हैं, चाहे वो आंसू गैस की गन हो उससे लैस तमाम ये जो भी जवान है उनको फिलहाल यहां पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सके। फिलहाल संभल में पूरी तरह से सुबह से ही मुस्तैदी बढ़ती जा रही है।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की, सिया गोयल के परिवार ने भी अब चुप्पी तोड़ दी है। सिया के माता पिता ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि 17 तारीख को यानी कि जिस दिन केतन का मर्डर हुआ उस दिन लोहगढ़ का किला जाने की जिद केतन ने ही की थी। सिया ने लोगर जाने से मना किया था। इसे लेकर केतन की मां से भी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अगर केतन कह रहा है तो चले जा।
1: जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
2: हाँ, मुझे इसमें पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
1: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
2: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
1: जी,
2: और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
1: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
22: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
1: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
22: नहीं थी, पहचानते नहीं।
1: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे,
2: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था, उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था, उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे, तो बोले ठीक है मम्मी जी मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
4: और अब बात भारतीय क्रिकेट की सनसनी वैभव सूर्यवंशी की करेंगे। आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मैच है, सबकी निगाहें वैभव पर हैं कि क्या उन्हें आज इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिलेगा, अगर हाँ तो आज वैभव को इस बात का भी मौका होगा कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सके, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। तो बिना ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
23: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव अरेस्ट। एसआईटी की सिफारिश के बाद सरकार ने की कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच। आज केजरीवाल पहुंच गए हैं अयोध्या। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का जबरदस्त हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून जाने की कोशिश, पुलिस की घेराबंदी टूटी। बातचीत के बाद मार्च को रोका गया। मोहर्रम को लेकर यूपी में जबरदस्त अलर्ट, पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। मंगेतर मर्डर मामले में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा केतन ने की थी लोगर जाने की जिद, बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। कैफे में मर्डर की प्लानिंग का वीडियो आया सामने।

बिहार के शिवहर मुहर्रम अखाड़े के दौरान दो पक्षों में विवाद, क्रॉसिंग और रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट, घटना में 10 से 15 लोग के घायल होने की सूचना, 45 नामजद, 30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। हापुड़ मामली विवाद के बाद दो पक्ष भिड़े, लाठी डंडे और पथराव से मचा बवाल। हापुड़ हिंसा में छतों पर चले ईंट पत्थर, 6 घायल, पुलिस ने मौके पर संभाले हालात। मुहर्रम से पहले प्रतापगढ़ में सख्ती, राजा भैया के पिता समेत 13 लोगों को किया गया हाउस अरेस्ट। कौशाम्बी में LPG टैंकर में भीषण आग, कोखराज टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी। दरभंगा में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, 500 जगहों पर पुलिस तैनात, CCTV ड्रोन से निगरानी। गढ़वा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, शांति समिति बैठक और फ्लैग मार्च जारी। सहारनपुर में DIG के साथ फ्लैग मार्च, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। झांसी मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया, 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज किया गया मामला। FIR में 8 नामजद के अलावा अज्ञात आरोपियों का भी उल्लेख, आरोपियों से जारी है पूछताछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर अखिलेश यादव ने फिर बोला BJP पर हमला, कहा BJP राज में नाइंसाफी की दिखेगी झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। SP प्रमुख आरोप, कहा SIT ने पहले रिपोर्ट बनाई फिर उसी हिसाब से की जांच। SIT की जांच पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा यह निश्चित कर लिया गया है कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने CM योगी पर जमकर बोला हमला, कहा आरोप लगने के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राम मंदिर मामले में FIR पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से सब डरते हैं, उनका नाम FIR में नहीं है, मुख्य आरोपी वही है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में कहा कि चढ़ावे में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा महज एक औपचारिकता है। अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल बोले बिना FIR के बनी SIT पूरी तरह अवैध है, चंपत राय के पास है कौन से राज। आज अयोध्या दौरे पर हैं केजरीवाल, संतों ने केजरीवाल पर राजनीतिक लाभ के लिए आने का आरोप लगाया। UP BJP का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान, प्रदेश संगठन की नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह शामिल। CM योगी ने संतकबीर नगर में कई योजनाओं का किया उद्घाटन, बोले अच्छे विधायक अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान सुरक्षा मिलेगी। इशारा में CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर सवाल निशाना, बोले भ्रष्ट सरकार किसानों के हक पर डाका डालती है, पर्व त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करती है। वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित बने खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक, आंतरिक सुरक्षा के मामलों का लंबा अनुभव। कल से 29 जून तक सेशेल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये सेशेल्स की दूसरी उनकी यात्रा है, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। 28 जून को भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के टूरिस्ट वीजा, ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1500 की जगह देने होंगे 2500, तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर ओवैसी का केंद्र पर हमला, कहा 2030 तक BJP की सदस्यता ही नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते UCC हो सकता है लागू, CM शुभेंदु के नेतृत्व में विधेयक पेश करेगी BJP। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान TMC नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत परिसर में BJP समर्थकों ने दिखाई चप्पल और की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, स्थानीय राजनीतिक नेता संयम चौधरी पुलिस हिरासत में, कुल 30 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे, मृतकों की संख्या 14 हुई, 19 घायल, 5 को किया गया गिरफ्तार। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप, CM रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति की जांच। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, राहुल बोले कन्फ्यूजन में पैनामा पेपर में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। पंजाब मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर घर जाकर BLO भर रहे हैं फॉर्म, 24 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे BLO, हर घर में कम से कम होगी 3 बार विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद। CM भगवान मान के विवादित वीडियो पर शिरोमणि

है विवाद। विधायक सना मलिक के पाकिस्तान वाले बयान पर राज्य गृह मंत्री योगेश कदम बोले, धर्मग्रंथ के आधार पर नहीं बनते हैं कानून। पुणे के केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सामने आया साजिश का सीसीटीवी, बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी सिया गोयल। पुणे हत्याकांड में सिया के माता पिता का बयान, बोले हमने कई बार पूछा था, उसने कहा कि केतन पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं है। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी रोशन सुवर्णा को कोर्ट ने 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा। कुलहाल बॉर्डर पर निहंगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तराखंड में घुसे निहंग, तोड़फोड़ कर लहराई तलवारें। हाईवे पर मचा कम, दहशत में आए लोग, जान बचाने की मची भगदड़, जिसके चलते कुछ देर पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित निहंगों ने एक यात्री बस को रोक दिया, जिसमें यात्रियों के खौफ का माहौल बन गया। हाईवे पर खड़े कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन निहंगों को काबू करने में नाकाम, निहंगों का जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरते हुए देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत, निहंगों ने वापस लौटने पर सहमति जताई। एमपी के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में पाए गए हैं, क्षेत्र सदस्य टीम जांच कर रही है। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी, करंट लगने से बाल बाल बची। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया, खाने में लाई थी नींद की गोलियां, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मेरठ में किडनैपिंग का वायरल वीडियो, घरेलू झगड़ा निकला, पुलिस ने अपहरण की बात नकारी। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान कार में नकली धमाके से विवाद, चार लोगों पर केस। मेरठ के मवाना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए एक युवक ने की आत्महत्या, थाने के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। निहंगों के जत्थे ने उत्तराखंड सीमा पर भारी हंगामा किया, बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून की ओर बढ़े। अगरतला के कार्टन में भीषण विस्फोट की घटना में 3 लोग घायल, 12 से 13 आसपास के फ्लैट्स को भारी नुकसान। यूपी जलौन थाने में कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल। पंजाब के मोगा में पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगई दिखाना पड़ा भारी, 13 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 10 लोग घायल। घटना में फैजल खान की कोचिंग बने बिजली घर में लगी आग, धुआं देखकर मची अफरा तफरी। मराठी पालघर में बाइक पार्किंग विवाद को लेकर 15 साल के युवक पर चाकू से हमला। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम की। एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली खंभे से टकराया, 2 बाइक सवार घायल। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर के प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट, स्कूल की लापरवाही पर उठे सवाल। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी पटखनी। शेफाली वर्मा ने खेली 53 रन की शानदार अर्धशतक की पारी, जेमाइमा ने बनाए 26 रन। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजय रहा है भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार 4थी जीत है। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गोल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक। साई सुदर्शन ने फर्स्ट क्लास करियर का ये 9वां शतक लगाया है, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल। आज से शुरू हुई भारत और आयरलैंड की 2 मैचों की T20 सीरीज, IPL 2026 के बाद मेन इन ब्लू की ये पहली T20 सीरीज। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू बनाकर बना सकते हैं रिकॉर्ड। T20 सीरीज से एक दिन पहले मैच के समय में हुआ 1 घंटे का बदलाव, 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया है समय। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो करके रचा इतिहास। अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल आज बड़े पर्दे पर होगी रिलीज, इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सितारे मौजूद। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता, एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी आज सिनेमाघर में देगी दस्तक, फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल में है। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम आज होगी रिलीज, एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है फिल्म की कहानी। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए आज दस्तक दे रही है सुपर गर्ल, सुपरमैन की कजन कारा जोल एल किरदार पर आधारित है ये फिल्म।

0: की चाबी रहती थी। गिरफ्तार अनुकल्प मिश्र लवकुश मिश्रा का वो जीजा बताया जा रहा है, साथ ही उसे ट्रस्टी अनिल मिश्रा का रिश्तेदार बताया गया है। ट्रिनी राधा के भतीजे मनीष की भी चढ़ावा गणना प्रक्रिया में भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अब तो ये बढ़ता ही जाएगा हिरासत में लेने और गिरफ्तारियों का सिलसिला, क्योंकि एक लंबी चौड़ी चेन है।
1: देखिए नेहा, निश्चित तौर पर अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसे कि राम जन्मभूमि परिसर में ही फिलहाल रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर बाद इनके मेडिकल कराए जाएंगे और उसके बाद, आज हालांकि मुहर्रम है लेकिन मैजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जा सकता है। आधिकारिक तौर पर अभी भी पुलिस बहुत ज्यादा या प्रशासन बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन जो जानकारी है सभी 8 लोग इस वक्त जो राम जन्मभूमि परिसर थाना है भीतर में, वहीं पर रखे गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो निगाह है वो ये कि क्या 8 लोगों के अलावा भी और कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, लेकिन चूंकि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इसलिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर जिन 8 लोगों के नाम सीधे सामने आए हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ तो पहले से चल रही है, लेकिन अब गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि क्या आज ये पेश किए जाते हैं कि नहीं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
4: This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

राम मंदिर मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 5 और लोगों को इस मामले में हिरासत पर लिया गया है। उन लोगों से पूछताछ हो रही है, पहले भी 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव को लेकर दावा किया जा रहा है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में वो हस्तक्षेप रखता था, उसके पास गणना कक्ष

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबा केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: देखिए बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने एलओसी पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
1: तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
0: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे।
2: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
3: इस मुल्क की आवाम में इतना ताकत है जो आपके छीन दरिया में वो वापस हासिल भी कर सकते।
4: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
1: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
0: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हाँ, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है, इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है। पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हम भारत के लोग कौन? 134 करोड़ 54 लाख लोग जिनके पास आधार कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 97 करोड़ लोग जिनके पास वोटर कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 14 करोड़ 70 लाख जिनके पास पासपोर्ट है। जवाब है नहीं। भारत का नागरिक कौन है? ये पहली एक बार फिर राजनीतिक हवा की उलझन में उलझ रही है। नई बहस पुरानी कहानी से जुड़ी है। जब पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। इसी पर विवाद हुआ। कपिल सिब्बल कहने लगे पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है? जावेद अख्तर ने लिखा सच में तो पासपोर्ट बिना तय किए जारी हो रहे हैं कि धारक भारतीय है या नहीं। ओवैसी दो कदम आगे बढ़े और बीजेपी की सदस्यता वाले कार्ड की फोटो डालते हुए तंज किया कि नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज निर्णायक नहीं, 2030 तक एक ही दस्तावेज नागरिकता का सबूत होगा। कानून कहता है हाँ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान और यात्रा का दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं। यह और बात है कि भारत का चुनाव आयोग जब भारत के नागरिकों का वोटर कार्ड बनाता है तो पहचान के तौर पर उसी पासपोर्ट को मंजूर करता है। हालांकि 12 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा कि भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता कानून से नियंत्रित होती है, आधार पैन वोटर कार्ड से नहीं। पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। यह और बात है कि भारतीयों में ये भ्रम है कि पासपोर्ट मतलब भारतीयता की पहचान। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयता की पहचान पर अब नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज न बताने पर उन्हें शक होने लगा कि कहीं फिर से कागज तो नहीं मांगे जाएंगे। भारत के विपक्षी दलों को ये शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब से नागरिकता कानून बना और कागज नहीं दिखाने के नाम पर दिल्ली से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद नागरिकता के दस्तावेज तलाशे जाने लगे। पता चला कि आधार कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत की नागरिकता जन्म वंश रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन या किसी जमीनी हिस्से के विलय पर निर्भर करती है। इसमें जन्म वंश के आधार पर नागरिकता तय करने का मानदंड है कि व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो। मतलब जन्म प्रमाण पत्र बड़ा दस्तावेज है। इसके अलावा वंश परंपरा और रजिस्ट्रेशन से मिली नागरिकता भी मान्य है। इसी सवाल का जवाब भारत सरकार 1951 से खोज रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। लेकिन 2019 में जब नागरिकता कानून बनाकर पूरे देश में एनआरसी शुरू करने की तैयारी हुई तो करीब 250 याचिकाएं अदालत में पहुंच गई। देश भर में विरोध शुरू हो गया। अफवाह फैली कि अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कागज नहीं दिखा पाएंगे। ये अफवाह असम से शुरू हुई क्योंकि असम में एनआरसी हुआ जहां 3,30,00,000 लोगों ने एनआरसी में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। इसमें 19,00,000 से अधिक के आवेदन रद्द हो गए और 3,11,00,000 लोगों को भारतीय नागरिक माना गया, क्योंकि एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू भी अरेस्ट। 5 और लोगों से हिरासत में पूछताछ जारी। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाए अधूरे एक्शन के आरोप। अखिलेश ने कहा फुनगी तो को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच, आज केजरीवाल जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का जबरदस्त हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून जाने की कोशिश। पुलिस की घेराबंदी टूटी। बातचीत के बाद मार्च को रोका गया। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अलर्ट। पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट। पुलिस ने लिया एक्शन। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगले एक घंटे हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। आगे बात होगी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर एक्शन की। एसआईटी रिपोर्ट के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज हुई है बल्कि गिरफ्तारी भी हुई है। सवाल है कि क्या बड़े नामों को बचाया गया, छोटे किरदार नप गए? सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है। साथ ही बताएंगे कि निहंग सिखों के सवाल पर क्यों उबला उत्तराखंड? क्या देहरादून कूच पर अड़े हुए थे निहंग? क्यों प्रशासन ने की थी बैरिकेडिंग? और बताएंगे कि मुहर्रम पर कहां कहां एक्शन है, कहां कहां पुलिस फ्लैग मार्च है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर एक्शन शुरू हो गया है। SIT रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने FIR फौरन कराई और FIR में दर्ज 8 के 8 नामों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव समेत सभी वो नाम है जो चढ़ावे की गिनती में शामिल थे। 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में भी लिया है। अब सवाल यह है कि क्या चढ़ावे की व्यवस्था देखने वालों को क्लीन चिट मिल गई है? उनके खिलाफ ना तो FIR हुई और ना ही कोई एक्शन। ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव का कोई जिक्र नहीं है। SIT जांच में इन नामों के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले। क्या इन नामों का जिक्र कहीं नहीं आया? विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बड़े नामों को बचाने के लिए छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। तो इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आइए सीधा रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। अभिषेक, इस SIT की रिपोर्ट पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। माना कि गिरफ्तारियां हुई हैं, FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि बड़े लोग तो छूट गए।
1: निश्चित तौर पर अंजलि, जो जिसकी जिम्मेदारी थी इस पूरे व्यवस्था को देखना, अगर सिर्फ उसके नीचे के कर्मचारियों को या फिर लोगों को ही गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें ही मोहरा बनाया गया तो नेचुरल है सवाल उठेंगे और सवाल उठने शुरू भी हो गए हैं। अखिलेश यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के तमाम नेता हैं जो सीधे सीधे चंपत राय का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया और छोटी मछलियों को पकड़ा गया। ये विपक्ष का आरोप है कि अगर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रहा है तो इसमें ऊपर के लोगों को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? जो SIT की रिपोर्ट अभी तक शासन को सौंपी गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसका कोई भी डिटेल सामने नहीं है, लेकिन उसी आधार पर 8 लोग पहले हिरासत में लिए गए, उनकी गिरफ्तारी है, इस वक्त लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उनका मेडिकल होगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा जो फोकस है, मुझे लगता है कि सिर्फ इन 8 लोगों तक ही फोकस है। तो क्या जो नाम बड़े हैं, चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, क्या इनको कोई ग्रेसफुल एग्जिट देने जैसी कोशिश हो रही है? अगर इनके नाम SIT में नहीं है तो निश्चित तौर पर एक ग्रेसफुल एग्जिट इनको दिया जाएगा। हालांकि चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं कि आखिर उनके नाक के नीचे ये चोरी अगर हुई तो वो कहां थे, आखिर वो इसे क्यों नहीं रोक पाए और शुरू में क्यों वो इसका एक तरीके से लीपापोती करते रहे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो नजरें इस पर हैं, आज दिन भर देखना है क्या होता है। लेकिन जिन बड़ी मछलियों की बात की जा रही है, जिन बड़े नामों की बात की जा रही है, आने वाले वक्त में उनका नाम भी हो सकता है।
0: जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहें। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी पर एक्शन को बड़े नामों को बचाने वाला बताया जा रहा है। हैरानी ये है कि ट्रस्ट को देखने वाले किसी को भी चढ़ावा चोरी से बिल्कुल जोड़ा ही नहीं गया है। वो सभी बच गए हैं जो मंदिर में दान चढ़ावे के कर्ता धरता हैं। फिर चाहे वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हो या फिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा या गोपाल राव।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
3: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो यह माना गया कि क्या SIT की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब FIR दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये चार नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया?
4: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई?
5: एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई।
3: क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता न रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: और हमारे दोनों सहयोगी आशीष और संतोष दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट में भी हमने देखा कि टिन्नू यादव सहयोगी ड्राइवर जो भी कह लीजिए वो चंपत राय के ही है, और अगर रिपोर्ट में पहले ऐसे सूत्र कहते हैं कि नाम थे कुछ, तो बाद में वो गायब कैसे हो सकते हैं?
1: देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसने, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर यह जरूर कहा है कि जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग थे, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों की निगरानी में कमी थी, यानी कि लापरवाही थी और वो सही व्यवस्थाएं नहीं थी, ये जरूर कहा गया। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें 8 लोग नामजद किए गए, उसमें जो सबसे बड़ा नाम और प्रमुख नाम है वो 2 हैं, एक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर है और वो उस मंदिर का व्यवस्थापक भी है, यानी कि मंदिर के अंदर सारी व्यवस्थाएं वो देख रहा था, चाहे वो श्रद्धालुओं से संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं मंदिर के अंदर के, इस तरीके से जो दान पेटिकाएं हैं वो रखी जाएंगी, कहाँ रखी जाएंगी, और यही वजह है कि टिन्नू यादव इस एफआईआर में नामजद है। दूसरा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है वो है सुभाष चंद्र एक रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं और ये एक तरीके से आप मान लीजिए सुपरवाइजर थे और जिनकी निगरानी में ये नोटों की गिनती होती थी। तो ऐसे में ये 2 बड़े नाम हैं, बाकी सब छोटी मछली हैं, इसमें कोई भी बड़ी मछली नहीं नामजद की गई है, यानी कि छोटे जो नोट गिनने वाले कर्मचारी थे, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, मनीष यादव हो या तमाम रमाशंकर मिश्रा हो, ये तमाम नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े थे। अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाता था, वो वाउचर में हेरा फेरी करता था, ओवरऑल ये कर्मचारी ही थे, लेकिन जो सुपरवाइजिंग नोड में थे, जो अधिकारी के मोड में थे, वो थे सिर्फ टिन्नू यादव और
6: ये सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, ये दो लोग थे, बाकी किसी भी बड़े नाम का सुपरवाइजिंग या बड़े ओहदेदार का नाम ही नहीं है। अब इनको रिमांड पर लिया जाएगा और खास करके रामशंकर यादव, टिन्नू यादव को रिमांड पर इसलिए लिया जाएगा कि जो कर्मचारी अगर चोरी कर रहे थे तो उसकी जानकारी में था, तो इन्होंने अपनी जानकारी अगर इनकी जानकारी में आया तो किसको शेयर किया, यह पुलिस कस्टडी रिमांड जब बनेगी तब इनसे पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
0: बिल्कुल, आप दोनों से ताजा जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन उधर कांग्रेस के यूपी चीफ ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। अजय राय ने पूछा है कि चंपत राय पर एक्शन क्यों नहीं।
7: एकदम संतुष्ट नहीं है, उसमें सभी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छोटे कर्मचारी तो बेचारे वो ड्राइवर हैं, कोई छोटा कर्मचारी है उनको क्यों बेचारे को आप केवल खत्म कर रहे हो, बड़े लोगों को शामिल करो। और उसमें जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर में पैसा छिपा के रखे थे, जो गाड़ी में छिपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पर उसमें सारी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की होती है, चंपत राय और जो उसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर होनी चाहिए।
0: वहीं इस एक्शन से साधु संत खुश हैं, उन्हें लगता है कि सही दिशा में कार्रवाई हो रही है।
8: जो आशंका थी अंततो गत्वा वही हुआ, और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
9: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलम्ब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया SIT ने।
0: और बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी दान चोरी पर एक्शन को सही माना।
10: आज जो है हमारे देश की स्थिति और हमारे देश की बदनामी जो हुई है वो बहुत बड़ी बदनामी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ, FIR दर्ज हुआ। तो आज हमारी भी आस्था भगवान पे है, हम भी जो है भगवान का उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। मुख्यमंत्री होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश के जैसा होना चाहिए, माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। आज जो है भगवान की रक्षा के लिए माननीय जो है योगी जी बिल्कुल स्वयं खड़े रहे। आज जिन लोगों ने हार गायब किया, चरण पादुका गायब किया, वो लोग पकड़े जाएंगे और बरामद भी होगा, ये हमको पूरी उम्मीद है।
0: तो चलिए सीधा रुक करते हैं एक बार फिर से अयोध्या का, जहां से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग खुश हैं इस जांच से लेकिन कुछ लोग नाराज हैं, तो इस वक्त जो जांच चल रही है उसमें पूछताछ भी चल रही है, थोड़ा जांच के बारे में भी बताएं कि किस दिशा की तरफ जा रही है जांच।
1: देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जो जिनको हिरासत में लेकर गिरफ्तारी के बाद जिनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है वो तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनका ट्रस्ट के उप बड़े जो पदाधिकारी हैं या जो बड़े नाम हैं उनसे संपर्क तो है, लेकिन ये लोग सीधे सीधे मंदिर के कामों से जुड़े होते हैं, जिनके पास चढ़ावा जो गिनती की जाती है या जहां तक बैंक को पहुंचाया जाता है, बैंक में जमा किया जाता है, जो मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, तो इनसे पूछताछ तो हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि भाई आप ऊपर के लोगों को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं जब उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है, पूरा ट्रस्ट के भीतर ही ये जो अगर चोरी हुई है तो आप ऊपर के लोगों को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। और यही बात निकल करके आ रही है कि ये बात जरूर है कि लापरवाही तक का जिक्र कर दिया गया कि हाँ जो ट्रस्ट के बड़े नाम हैं उनके स्तर से लापरवाही हो सकती है, लेकिन चोरी में कोई और शामिल नहीं है, चोरी सिर्फ इन्हीं 8 लोगों ने या 2-4 और लोगों ने की होगी। और यही विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई जब मुखिया जिसको कि हेड बनाया गया, जो कि इतने समय से इसका प्रबंधन देख रहे हैं, चंपत राय का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और इसीलिए शायद ये बात भी कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें धीरे से ग्रेसफुल एग्जिट, क्यों अपने आप इस्तीफा दे दें, चले जाएं, छोड़ दें, इस तरह की बातें चल रही है। देखिए जिस तरीके का माहौल बन चुका है, अब चंपत राय या अनिल मिश्रा का ट्रस्ट में रहना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये छोड़ेंगे या फिर पुनर्गठन होगा, यह भी एक बड़ी बात है कि हो सकता है कि ट्रस्ट के को नए तरीके से पुनर्गठित किया जाए। तो एक तरफ ये जांच जिसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रस्ट को नए सिरे से बनाने की एक तैयारी, दोनों बातें इस वक्त हैं। देखना है कि क्या चंपत राय को कोई राहत मिल रही है, मिल जाएगी
0: और नजर रहेगी इस जांच पर। हमारी शुक्रिया आपका कुमार अभिषेक। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब संजय राउत की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की दान देते हुए तस्वीर के साथ अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दान वाली चांदी की ईंट आखिर कहां गायब है। यूबीटी नेता संजय राउत का दावा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट के बारे में ट्रस्ट की ओर से कोई रसीद या कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिली है। संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और चांदी की यह ईंट दान की थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं मुंबई का, जहां हमारी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, संजय राउत की अपनी मुश्किलें, यूबीटी की अपनी मुश्किलें एक तरफ रख के अब वो एक नए विवाद में कूद चुके हैं, क्या जानना चाह रहे हैं वो राम मंदिर चढ़ावे को लेकर?
11: जी देखिए, अगर ये जो डोनेशंस हैं ये 2 समय पे दिए गए थे। एक जो सिल्वर ब्रिक की जहाँ बात कर रहे हैं वो 2018 के आसपास, जब राम मंदिर की शुरुआत हुई नहीं थी, राम मंदिर बनना शुरू होने वाला था, उस समय वो गए थे। उन्होंने मोदी सरकार की क्रिटिसिज्म कर रहे थे वो, और उस समय उन्होंने एक सिल्वर ब्रिक दिया था वहाँ पर। और उसके बाद जब उन्होंने अलग पार्टी, जो अगर आपको याद हो महाविकास अघाड़ी बनी थी 2019 के बाद, तो उसके बाद जब 100 दिन उन्होंने कंप्लीट किए थे महाराष्ट्र की सरकार में एज मुख्यमंत्री, तब वो गए थे अयोध्या, और वहाँ पर 100 दिन के कंप्लीशन पे उन्होंने वादा किया था कि वो 100 करोड़ देंगे। इसके बाद जब वहाँ के जो संत थे, उन्होंने संतों ने जब बताया कि नहीं, उन्होंने वादा जरूर किया था लेकिन अभी तक दिया नहीं है, मार्च में 2020 की बात है, तब जुलाई, अराउंड जुलाई के आसपास 27 जुलाई को RTGS के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू उन्होंने 1 करोड़ जो पार्टी है उन्होंने दिया था। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत जैसा कह रहे हैं कि उनको रसीद ना ही वो सिल्वर ब्रिक की कभी मिली, उसके बाद
0: 100 करोड़ नहीं दिए, 1 करोड़ दिया, और उसका हिसाब मांग रहे हैं अब संजय राउत और यूबीटी सेना। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसे समय अयोध्या पहुंचे हैं जब चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर है राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वो क्या बोलेंगे, क्यों आम आदमी पार्टी इस मामले में लगातार हमलावर है।
12: चोरी की है, महापाप किया है और बहुत मन व्यथित है, इसलिए श्री राम जी के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ।
0: तो 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने SIT जांच को आंखों में धूल झोंकने वाला कहा था।
13: ये SIT कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ED को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
0: तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक.
7: रिश्तों के बनने और मिटने की एक ऐसी कहानी है जिसमें 20 साल की एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम देती है कि भरोसे का भी कत्ल हो जाए. इसमें रिश्तों की नर्सरी है, जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का कत्ल है. इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं: सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी. इनमें से केतन अब दुनिया में नहीं है. सिया और चेतन ने केतन को ठिकाने लगा दिया. केतन अग्रवाल और सिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घड़ी आती, सिया ने अपने होने वाले पति केतन को ठिकाने लगा दिया. सिया ने केतन को कैसे मारा, केतन को मारने के लिए सिया ने कितने प्लान बनाए, सिया का प्लान बी क्या था, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौहान इस हत्याकांड के खुलासे में कैसे अहम कड़ी साबित हुआ, आज हम सब कुछ बताएंगे. क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये मानेगा ये लड़की अपने होने वाले पति की हत्या कर देगी? क्या इन हंसी खुशी के इन पलों में कहीं से लग रहा है कि सिया और केतन के बीच में कोई अविश्वास, दरार या तनाव है? तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिया ने ही अपने होने वाले पति को मार डाला, लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच का सार यही है कि सिया ने केतन को मार डाला. पुणे में जून की गर्मी में हुडी, मुंह पर मास्क, पीठ पर बैग लेकर एक शख्स लोहगढ़ के किले में दाखिल होता है. ये शख्स कोई और नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है. पुणे पुलिस ने जब लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चेतन चौधरी सिया और केतन के आसपास दिखा. कुछ फुटेज में चेतन और सिया इशारों में बातचीत करते हुए भी दिखे. बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया. पुलिस ने चेतन चौधरी की हर गतिविधि को ट्रैक करना शुरू किया. पुणे पुलिस ने सबसे पहले इस चेतन चौधरी को उठाया, क्योंकि लोहगढ़ किले में चेतन का होना, हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा सब संदिग्ध था. पुलिस को शक हुआ कि 35 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क पहने हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है. फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था. केतन का परिवार गम में था. घर का इकलौता बेटा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन परिवार को एक बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि केतन फिसल कर गिरा तो गिरा कैसे, क्योंकि केतन अग्रवाल अच्छा ट्रैकर था. पहाड़ों पर ट्रैकिंग में वो एक्सपर्ट था. सकरे रास्तों पर चलना, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना उतरना केतन के लिए नई बात नहीं थी. फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो कुछ और ही कहानी पता चली. सिया की एक फोन नंबर पर इस साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी और ये नंबर केतन का नहीं था, तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी निकला। चेतन से जब पुलिस ने सख्ती से बात की तो सारी कहानी खुल गई। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय का ड्राइवर टेनू यादव भी अरेस्ट। 5 और लोगों से हिरासत में पूछताछ जारी। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच, आज केजरीवाल जाएंगे अयोध्या। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अलर्ट। पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, पुलिस ने लिया एक्शन। आज से इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने जा रहे हैं सबसे कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल 71 दिन में डेब्यू। आयरलैंड से टी20 मुकाबले में दुनिया

0: बात करते हैं पुणे के केतन मर्डर केस की, जहां पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वारदात की साजिश रचने के लिए आरोपी सिया गोयल ने यूट्यूब पर लोहगढ़ के वीडियो देखे थे और साजिश भी रची थी। वहीं हत्या को अंजाम देने से पहले सिया और चेतन ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात की। साथ ही पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच 6 महीने में 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स भी हुई। इसी बीच सिया के माता पिता ने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सिया दोषी पाई जाती है तो उसे भी उसी खाई में फेंक दिया जाए। तो केतन हत्याकांड के आरोपी सिया गोयल के परिवार ने पहली बार कैमरे पर अपना पक्ष रखा है। सिया के माता पिता ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि 17 जून को जिस दिन केतन की मौत हुई, उस दिन लोहगढ़ किला जाने की जिद केतन ने ही की थी। सिया ने लोहगढ़ जाने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके माता पिता कह रहे हैं कि सिया के माता पिता ने कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी दे दी जाए और उसे भी लोहगढ़ किले से खाई में धक्का दे दिया जाए।
1: केतन अग्रवाल की हत्या के बाद सबसे पहला नाम सामने आया वो था सिया गोयल का, और उसका कनेक्शन जोड़ा गया वो था चेतन चौधरी के साथ। इन दोनों के कुछ संबंध थे और इसी में से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो सिया के पापा यानी कि प्रवीण गोयल और उनकी माँ पूजा गोयल, एग्जैक्टली उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है उन्हीं से समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये गोयल्स और अग्रवाल ये कैसे मिले एक दूसरे को और ये रिश्ता कैसे फाइनलाइज हुआ?
2: हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था तो हम गोवा गए थे। गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़के की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे, उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेणु मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे। तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे, जो भी है तो लड़का अच्छा है बढ़िया है वो हिसाब से आगे की बात करते हैं। तो इतनी बात होने के बाद अगले दिन जब वो पुणे शादी अटेंड करके वापस आए तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रेणु मित्तल का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए रिश्ता आया है तो तेरी क्या इच्छा है? मैंने वही बोला कि अभी तो दीदी ये 19 साल की है और 20 की भी पूरी हुई नहीं है और अभी तो मेरे को पहला शादी मेरे बेटे साहिल की करनी है, 3-4 साल बाद फिर देखेंगे सिया का। तो उन्होंने मेरे पे यानी कि बोला कि अच्छा खानदान है, अच्छी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो देख ले लड़की अच्छे घर में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे रिश्ते फिर कभी आते नहीं हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, जो भी आपकी भाभी पूजा से बात करके आज शाम को कल आपको बताता हूँ।
1: ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ, मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। नहीं, क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
2: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
1: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं
2: पहचानते? नहीं थी, पहचानते नहीं।
1: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि

0: है जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्स ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
1: केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगाव उनको उनके ऊपर हो गया था और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में,
0: हाँ।
1: कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों
0: क्योंकि
1: से।
0: क्योंकि देखो अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था?
1: कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है।
0: माँ से भी कभी बात नहीं की बेटी ने?
2: केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था, घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी, काफी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे उसने।
0: क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी?
2: नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है।
0: अब तहकीकात में सामने आ रहा है कि सिया इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर थी, यानी कि आपकी लड़की ने बैठ के चेतन के साथ ये सब कुछ किया है। तो अग्रवाल्स ने आपके साथ इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं की क्योंकि रिश्ता तो तय हो चुका था, फरवरी में एंगेजमेंट भी हो चुकी थी।
1: फरवरी में एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ, रिज कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, दोनों परिवार बहुत खुश थे। बीच में आना जाना मिलना हमारी मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से, मैंने बहुत सारी बात की सब, यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया था कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके, मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया।
0: तो जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
2: हाँ मुझे इसमें पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो?
0: हाँ।
2: बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
0: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
2: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
0: जी,
1: और मैंने
2: केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
0: तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सिक्वेंस है क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे?
2: हाँ जी,
0: उसके बाद फिर 14 को गए तब बताया था?
2: हाँ, बता के गई थी।
0: और 17 को 18 को जब जा रही उसका 17 को आपका कॉल हुआ होगा?
1: कॉल हुआ था कि उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
0: जी,
1: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी।

0: तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है,
1: जी
0: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
1: ओके हाँ,
2: और ये सीआई के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
1: ये मोबाइल में चैट है उसका।
2: चैट है कि
1: हाँ,
2: केतन मुझे नहीं जाना है,
1: हाँ
2: अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर,
1: जी।
2: अपन चलते हैं।
1: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
2: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
1: ये चैट्स भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया।
2: हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
0: और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
2: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: देखो आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता थे तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी।
2: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
0: मैं
1: आप माँ हो उसकी।
2: हाँ जी, अगर वो उसने ये
0: मैं तो बोलता
2: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
1: हाँ जी,
0: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
3: वहीं केतन अग्रवाल की दर्दनाक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। केतन के पिता ने आज तक से बातचीत में कहा कि सिया के परिवार ने बेटी की कम उम्र के बावजूद जल्दी शादी की जिद की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द केतन के हत्यारों को कड़ी सजा मिले।
4: क्या बताना चाहोगे, आपका जो पोता है केतन अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो कभी लगा था कि कुछ अपने ही लोग ऐसा कर पाएंगे?
5: सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हुए बाद उनका वो क्या रहता है, प्री शूटिंग के लिए वो बाली जाने वाले थे। बाली जाते टाइम भी उनका कुछ ऐसी चालाकी हुई कि ये लड़की मेरी पोती, पोता और उसका भाई लड़की का, ये चारों जा रहे थे, तो शायद वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, उसने मेरे पोते का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो टूर उनको कैंसिल करके वापस आना पड़ा। उसके बाद ये लोही किला है पे वो ले गई, दूसरी बार एक बार जाके आए, फिर दूसरी बार वहीं ले गई। वहाँ जब ले गई तो इसने उसको थोड़ा ढकले जैसा महसूस हुआ, बच्चे को क्या है क्या है क्या है क्यों मेरे को ढकले रही, बोलते वो बोली यार सांप सांप सांप सांप बोल के एक्टिंग कर ली। उसको भी लगा होगा कुछ तो भी सांप होगा, नहीं तो कुछ तो निकल गया होगा, क्योंकि तो दिल में तो ये था ही ना ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बाद फिर 18 तारीख को वापस से चले गए।
6: नहीं, लेकिन ये 14 तारीख का जो इंसिडेंट है वो आपको बताया था केतन ने उसके पापा को या फिर आपके घर में?
5: नहीं नहीं नहीं नहीं,
6: फिर ये इंसिडेंट किसने बताया आपको?
5: ये शायद किसने बताया 14 तारीख का
7: पुलिस स्टेटमेंट में बताया,
8: केतन ने उसकी मम्मी को बताया था?
7: नहीं, पुलिस स्टेटमेंट में ना उस लड़के के जवाब में आया,
5: पुलिस स्टेटमेंट में लड़के के जवाब में आया ये कि भाई हम 14 तारीख को भी गए थे और 18 तारीख का तो वो टीवी में आ गया था, मतलब कैमरों में आ गया था कि लड़का इनका पीछा कर रहा था, कभी आगे था कभी पीछे था, जिससे पुलिस वहां तक पहुंची। और ऊपर ये चले गए, ऊपर गए बाद इसने कुछ उनके इशारे होंगे पता नहीं, लड़का जब ऐसा कर रहा था हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी, शायद दोनों ने मिलके भी दिया हो, उन्होंने दे दिया।
3: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: I have had no luck lately. Wait, lady luck?
12: Bretsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
11: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
13: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
16: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
17: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today? Sokudo.
19: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
20: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
23: एक ही बताता हूँ आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन, जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5.60 करोड़ रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

0: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है, हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय का ड्राइवर टेनू यादव अरेस्ट। 5 और लोगों को हिरासत। पूछताछ आज, बड़ी कार्रवाई की तैयारी।
1: चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत राय की हो जांच। संजय राउत का सवाल, कहां गई हमारी चांदी की ईंट।
0: मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो।
1: मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अलर्ट। पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन को लटकाकर किया ब्लास्ट। पुलिस ने लिया एक्शन।
0: आज इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने जा रहे हैं सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल में 71 दिन में डेब्यू। आयरलैंड से टी20 मुकाबले में दुनिया देखेगी वैभवशाली आगाज।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।

0: चढ़ावा चोरी केस के बीच अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, आज रामलला के करेंगे दर्शन। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का तीखा वार, अखिलेश यादव बोले फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चंपत राय की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग। संजय राउत का बड़ा आरोप, कहां गई हमारी चांदी की गीट, जांच पर सवाल खड़े किए। संजय राउत का आरोप, अयोध्या दान पेटी चोरी का इस्तेमाल सांसदों विधायकों को तोड़ने के लिए किया गया। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नए तथ्य सामने आए। जांच में 5 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी, सूत्रों के मुताबिक कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में। रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव पर अहम जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप के आरोप, गणना कक्ष की चाबी रखने और व्यवस्था में दखल के दावे सामने आए। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के रिश्तों की भी जांच, अविनाश के खाते से 5 लाख रुपए मिलने की बात भी जांच में सामने आई। चढ़ावे की निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच, पुलिस ने कहा मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई संभव, जांच जारी।
1: एसआईटी की जांच में सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है, किसे फंसाना है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला, का आरोप लगने के बाद भी एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राम मंदिर मामले में हुई एफआईआर पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से सब डरते हैं, उनका नाम एफआईआर में नहीं है, मुख्य आरोपी वही है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में कहा कि चढ़ावे में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा महज एक औपचारिकता है। अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल बोले बिना एफआईआर के बनी एसआईटी पूरी तरह अवैध है, चंपत राय के पास है कौन से राज। कल से 29 जून तक सेशेल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, सेशेल्स के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी की सेशेल्स की दूसरी यात्रा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत लेंगे हिस्सा। 28 जून से भारत फिर शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा, ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए, जुलाई से नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता पर बोले ओवैसी, केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते यूसीसी हो सकता है लागू, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायक पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान टीएमसी नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत परिसर में बीजेपी समर्थकों ने दिखाई चप्पल और की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, स्थानीय राजनीतिक नेता संयम चौधरी पुलिस हिरासत में, अब तक कुल 30 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को किया ध्वस्त। कोलकाता के ताराताल गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14 और 19 घायल, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, सभी प्रत्यक्षदर्शियों से की जा रही पूछताछ। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति की जांच। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद, हाईकोर्ट ने दिए आदेश, राहुल गांधी बोले कंफ्यूजन में पैनामा पेपर्स में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर घर जाकर बीएलओ भर रहे हैं फॉर्म्स। 24 जुलाई तक जारी रहेगी ये प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी करेंगे बीएलओ, हर घर में कम से कम होगी 3 बार की विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर स्वयं भी भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद।
1: सीएम भगवंत मान के विवादित वीडियो पर श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया का दावा, मजीठिया ने सीएम मान की मास्क थ्योरी को नकारा। मजीठिया ने इसे सीएम मान का सेल्फ गोल बताते हुए सवाल किया, कहा अगर पहले दिन से मास्क की बात थी तो गुरुग्राम की लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्या थी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष फोरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम मान से इस्तीफे की मांग की, बोले नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए। भगवान मान मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, विवादित वीडियो का सच बाहर आया, फर्जी वीडियो मास्क लगवाकर बनाया गया है। सीएम भगवान मान ने विवादित वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा, मैं अकाल तक को चुनौती नहीं दे सकता, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। जयपुर में गिरफ्तार महिला के मामले में खुलासा, जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की थी योजना, 27 जून तक पुलिस कस्टडी में है आरोपी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के दमन और हिंसा के खिलाफ POJK में जोरदार विद्रोह, 17वें दिन रावलकोट में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने आवाज बुलंद की। उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी, पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो आया सामने। सांसद संजय दीना पाटिल पर पत्रकारों को धमकी देने के मामले में भड़के आदित्य ठाकरे, बोले इस्तीफा दें बागी सांसद संजय सिंह।
0: कुल्हान बॉर्डर पर निहंगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़, उत्तराखंड में घुसे निहंग तोड़फोड़ कर लहराई तलवारें। हाईवे पर मचा हड़कंप, दहशत में आए लोग, जान बचाने के लिए मची भगदड़, जिसके चलते कुछ देर के लिए पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हुआ। आक्रोशित निहंगों ने एक यात्री बस को भी रोक दिया, जिससे यात्रियों में खौफ का माहौल बन गया, हाईवे पर खड़े कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे और तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन निहंगों को काबू करने में नाकाम साबित हुई और निहंगों का जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरते हुए देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने पर सहमति जताई। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश से भारी तबाही हुई है, पहाड़ से आया मलबा बाजार में घुस गया, मलबे की चपेट में कई दुकानें और वाहन दबे, बाजार में मची अफरा दफरी। आपदा के बाद राहत बचाव कार्य शुरू, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य तेज किया। हावड़ा कोलकाता में तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, लगातार बारिश और वज्रपात से शहर में जलभराव, कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब।
1: बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान दो पक्षों में विवाद, टॉसिंग और रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट, घटना में 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना, 15 नामजद, 30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। हापुड़ में मामूली विवाद के बाद दो पक्ष भिड़े, लाठी डंडे और पथराव से मचा बवाल। हापुड़ हिंसा में छतों पर चले ईट पत्थर, 6 घायल, पुलिस ने मौके पर संभाले हालात। मुहर्रम से पहले प्रतापगढ़ में सख्ती, राजा भैया के पिता समेत 13 लोगों किया गया हाउस अरेस्ट। कौशाम्बी में LPG टैंकर में भीषण आग, कोखराज टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी। दरभंगा में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, 500 जगहों पर पुलिस तैनात, CCTV ड्रोन से तैनाती। गढ़वा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, शांति समिति बैठक और फ्लैग मार्च जारी। सहारनपुर में DIG के साथ फ्लैग मार्च, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। झांसी में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी।
0: MP के अशोक नगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में मिले, SP ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू करवाई। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी, करंट लगने से बाल बाल बची। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया, खाने में मिलाई थी नींद की गोलियां, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मेरठ में किडनैपिंग का वायरल वीडियो, घरेलू झगड़ा निकला, पुलिस ने अपहरण की बात नकारी। उत्तर प्रदेश के जालौन थाने के कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल होते ही सिपाही सस्पेंड। पंजाब में मोगा पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगई दिखाना पड़ा भारी, 13 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 10 लोग घायल। पटना में फैजल खान के कोचिंग सेंटर में बने बिजली घर में लगी आग, धुआं देखकर मची अफरा तफरी।
1: महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग विवाद में 15 साल के युवक पर चाकुओं से हमला, गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम की। MP के खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकराया, 2 बाइक सवार घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 15 मिनट तक मारपीट, स्कूल की लापरवाही आई सामने। UP के महोबा में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। वेमेन सी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी मात। शेफाली वर्मा ने खेली 53 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी, जेमाइमा ने बनाए 26 रन, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजय रहा है भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार चौथी जीत है। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गोल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक, 175 गेंदों में बनाए शानदार 132 रन। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का ये नौवां शतक, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल।
0: आज से शुरू हो रही भारत और आयरलैंड की दो मैचों की टी20 सीरीज, आईपीएल 2026 के बाद मेन इन ब्लू की ये पहली टी20 सीरीज। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का बना सकते हैं रिकॉर्ड। टी20 सीरीज से एक दिन पहले मैच के समय में हुआ एक घंटे का बदलाव, 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया समय। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रचा इतिहास। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए भी किया क्वालिफाई। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल आज बड़े पर्दे पर होगी रिलीज, इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सितारे मौजूद। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता, ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक, फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल्स में हैं। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी आज होगी रिलीज, एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए आज दस्तक दे रही है फिल्म सुपरगर्ल, सुपरमैन की ही कजिन कारा जोल एन किरदार पर निर्धारित है ये फिल्म।
1: अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में बफर जोन में एक हिस्से में पीछे हटी इसराइल की सेना, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की होमस और ईरान के साथ समझौते पर दो टूक का, अमेरिका ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि होमस पर हो रही किसी एक देश का एकाधिकार। ईरान के IRGC का नया बयान, बढ़ा सकता है होमस से आने जाने वाले जहाजों की चिंता का, ईरान को बिना बताए होमस में नए रास्ते पर जहाजों की आवाजाही मंजूर नहीं है। रूस पर नई थमरा, यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रात 1 बजे रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेनी शहर होरलिवका में रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की दो बड़ी आर्थिक मदद की, 90 अरब यूरो के लोन पर पहली किश्त यानी 3.2 अरब यूरो को किया जारी। रूसी सरकार ने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता की तारीफ की, कहा क्रेमलिन यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए ट्रंप के प्रयासों की रूस करता है सराहना। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो गठबंधन के प्रति हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के सहयोगी देशों को रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। अमेरिका द्वारा चीन की टेक कंपनियों पर पाबंदी लगाने से भड़का चीन, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा सैन्य ड्रोन बनाने वाली और दुर्लभ खनिजों के खनन से जुड़ी कुछ अमेरिकी कंपनियों पर लगाया गया है प्रतिबंध। वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 235 से अधिक लोगों की मौत जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल। दक्षिणी ताइवान में तूफान और भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ की तस्वीरें, प्रशासन ने स्कूल और दफ्तरों को किया बंद, दक्षिणी ताइवान के कई इलाकों में बारिश और तेज होने की आशंका। आज मुहर्रम है और इसे लेकर शहर शहर अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं पर फ्लैग मार्च हो रहा है तो कहीं जुलूस को बवाल के बाद एक्शन में तब्दील कर दिया गया है। यूपी में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा सख्त है, शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, संभल, दरभंगा, गढ़वा, हापुड़ और शिवहर, जहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। संभल में खासतौर पर भारी सुरक्षा है, वहां ताजिए का जुलूस निकलना है।
0: तो मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल में भारी सुरक्षा है। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। संभल एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और ये तस्वीरें आपको फ्लैग मार्च की दिखा रही है।
1: दरअसल ये फ्लैग मार्च ताजा जुलूस को लेकर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन होता है। ऐसे में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और संभल में खास तौर पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता है।
2: मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर संभल पुलिस अलर्ट है और इस वक्त डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा अधीनस्थ अफसरों के साथ आप यहां पर देख सकते हैं लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। और आप यहां जो देखेंगे तो देखिए किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर आपको जो है नजर आएगी। जहां आप जो देखेंगे तो देखिए महिला पुलिसकर्मी के साथ ही जो पुरुष पुलिसकर्मी है, तकरीबन 3 कंपनी PAC को यहां पर पैदल मार्च में लिया गया है। और किसी भी तरह से जो मुहर्रम का जुलूस है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए आप यहां पर जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से आपको भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी इस वक्त जो सड़कों पर जो है नजर आएगी। जहां आप जो देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो यहां पर लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
1: वहीं मुहर्रम जुलूस को लेकर लखनऊ में शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात पुलिसकर्मी कई इलाकों में गश्त करते फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आला पुलिस अफसर भी शामिल थे। दरअसल मुहर्रम को लेकर प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ऐसे में वहां पर ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है, उनको तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप उस वक्त की कल देर रात देख सकते हैं जब अफसर तमाम सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए कि किस तरह से निगरानी करनी है।
3: सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है, सभी जगह ड्यूटी हमारी लगी हुई है, रूफटॉप में भी ड्यूटी लगी हुई है, सारे कपड़ों में भी लोग कमर्शियल है, पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा जा रहा है, कंट्रोल रूम बना है जहां हर एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है, HHMD के माध्यम से संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है जिससे कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
0: और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के एटा से इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। एटा में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोगों को करंट लगा और वो झुलस गए। सभी घायलों को बताया जा रहा है कि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 3 घायलों का उपचार जारी है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजिया जो बहुत ऊंचा भी बनाया जाता है कई बार, उसी के हाई टेंशन वायर से लगने की वजह से यह मामला बताया जा रहा है कि हादसा हो गया, करंट फैला जिसकी वजह से मौत हुई है।
1: अरे बात बिहार के बवाल की, जहां पर शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान बवाल मच गया, जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई जिसमें 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 45 लोगों को नामजद करते हुए FIR भी दर्ज कर दी गई है। शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारी को लेकर निकले अखाड़ों के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इतना यह बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
0: और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
5: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: Today's Match Day Preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
8: Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points.
7: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबां केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: देखिए बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू अरेस्ट, 5 और लोग हिरासत में पूछताछ, आज बड़ी कार्रवाई की तैयारी।
1: चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत की जांच हो। राउत का सवाल कहां गई हमारी चांदी की ईंट।
0: मंगेतर मर्डर मामले में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो।
1: मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अलर्ट, पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, पुलिस ने लिया एक्शन।
0: आज इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने जा रहे हैं सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी से 15 साल 71 दिन में डेब्यू। आयरलैंड से T20 मुकाबले में दुनिया देखेगी वैभवशाली आगाज।

0: और बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की। अयोध्या में रामलला के घर हुई चोरी के खुलासे के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई।
1: राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर अयोध्या पुलिस ने मुकदमा लिखा है। इसमें कुल 8 आरोपी बनाए गए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन एक सवाल ये है, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है ये मंदिर के छोटे कर्मचारी हैं, नोट गिनने वगैरह का काम करते थे।
0: क्या बड़े किरदारों को बचा लिया गया है, क्या ट्रस्ट को वाकई कुछ नहीं पता था कि चढ़ावे का क्या हो रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा एकदम अनभिज्ञ थे इस चोरी से।
1: हर राम भक्त ये जानना चाहता है कि आखिर उनके आराध्य के घर चोरी होती रही और जिन पर जिम्मेदारी थी प्रबंधन की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई।
0: बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में खुलासा हुआ है। इस मामले में पूरा मोडस ऑपरेंडी अब सामने आ गया है।
1: कैसे चोरी होती थी, कैसे खुलासा हुआ, चोरी प्लान भी क्या था, चढ़ावा चोरी नेटवर्क कैसे काम करता था, सब कुछ आज तक के पास है। चोरी का शक कैसे हुआ, इसका खुलासा भी हुआ है। मई के आखिरी सप्ताह में ट्रस्ट ने बैंक जमा राशि का मिलान किया तो दान पेटियों से निकलने वाली रकम में लगातार कमी दिखी।
0: एक दान पेटी से आमतौर पर 7 से 8 लाख निकलते थे, 500 रुपए की गड्डियों में कमी मिलने का शक गहरा है और फिर जाल बिछाया गया, पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, जरा लिंक और चेन समझाइए कि कैसे ये मोडस ऑपरेंडी काम करती थी, कौन कौन से लोग उस सर्कल में थे, कौन सी चेन थी और जब तक बैंक में पैसा पहुंचता था तब तक कितने हाथों से गुजर जाता था।
2: देखिए, जब दान पेटी में पैसा गया, श्रद्धालु ने दान डाला, उसके बाद जब दान पेटी भर जाती तो उस कमरे में खोली जाती थी और उसके बाद जो बैंक कर्मचारी और जो राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ जो बैंक जो नोट गिनने के कर्मचारी थे, करीब 24 कर्मचारी लगाए गए थे, तो 24 कर्मचारी लगे होते हैं एक शिफ्ट में, तो वो नोट छांटते हैं, फिर गड्डी बनाई जाती है और गड्डी बनाए जाने के बाद उसको बैंक को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन इसमें जो चोरी की बात आ रही है वो दो तरीके से आ रही। शुरुआत हुई कि जो बैंक में गड्डी जो कर्मचारी गड्डी बनाने वाले थे, एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, चाहे वो 500 की गड्डी हो, 100 की हो, 200 की, तो इस तरीके से जो 100 नोट होते थे उसमें 110 120 नोट जमा कर दिए जाते, उनकी गड्डी गिनी जाती, डिनोमिनेशन नोट नहीं गिने जाते थे। और जब इनके वाउचर बन जाते कि इतने रुपया है, तो जो एक्स्ट्रा नोट जमा होते थे वो निकाल लिए जाते थे। तो ये शुरुआत हुई। उसके बाद जब देखा गया कि घर वापसी समय किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही है, तो इनके हाथ खुल गए, इनके हौसले बढ़ गए और उसके बाद ये लोग नोट गिनने के दौरान, नोटों की गड्डी बनाए जाने के दौरान ही ये चोरी करने लगे और बाद में इनकी गड्डी बनाई जाती थी। यही वजह थी कि ये पूरा रैकेट फैलता चला गया। इसके बारे में जब मई के अंतिम सप्ताह में जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लास्ट वीक जो मई का था उसमें ट्रस्ट के लोगों को जानकारी मिली तो सीसीटीवी लगाया गया, उसके बाद हिडन सीसीटीवी से इस बात की जानकारी हुई कि कुछ लोग नोट चोरी कर रहे हैं और तब ये पूरा मामला पकड़ में आया है और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए।
1: जी, तो छुपे हुए कैमरों से ये बात सामने आई है और कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इन समस्या के अगर जड़ में है तो टहनियां काटने से आखिर क्या होगा।
0: और सवाल यह भी है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में पुलिस ने गंभीर धाराओं में जो मामला दर्ज किया है उसमें आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
1: अब जरा यह भी जानिए कि इस मुकदमे में कौन फंसा और कौन बचा।
3: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
4: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
5: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है।
6: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं।
7: मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर, जो सारा माल चंपत कर गए।
8: तो बात एफआईआर तक आ पहुंची है, एसआईटी ने अपना काम कर दिया, अब पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में बचा कौन और फंसा कौन, बचाने वाला कौन और फंसाने वाला कौन। जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उनमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम है। टिन्नू के अलावा अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का नाम है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत केस दर्ज हुआ है।
9: अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में चंदा चढ़ावा और भेंट नजराने, इसमें गबन के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के जिन धाराओं में दर्ज की गई है उसमें अमानत में खयानत, पद का दुरुपयोग, यानी बीएनएस की धारा 61, 116, 117, 106 सहित कई धाराएं हैं, जिनमें मुख्य यही धाराएं हैं जिसमें यह कहा गया कि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते, अमानत में खयानत यानी आपके ऊपर भरोसा करके भरोसे को तोड़ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इन एफआईआर में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, यानी अभी तो सिर्फ 8 लोग दायरे में आए हैं, लेकिन अब जब बात निकलेगी तो हो सकता है दूर तलक चली जाए। और ऐसे में वो सारे नाम जो अभी बच गए हैं, हो सकता है उनसे भी एसआईटी पूछताछ करे और वो भी जांच के दायरे में आए।
8: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अत्यंत गंभीर है। ये सीधे तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। जिन लोगों को एसआईटी ने मुख्य किरदार बनाया है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। पहला नाम तिन्नू यादव का है। ये चंपत राय का सहयोगी है, केस में मुख्य आरोपी है। ये मंदिर में कहीं भी आ जा सकता था। दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा, जो भगवान के चढ़ावे की गिनती करता था। इस पर आरोप है कि इसने चढ़ावे की रसीदों में हेर फेर किया। तीसरा नाम लवकुश मिश्रा का है। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से कई लाख रुपए बरामद हुए हैं। चौथा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। ये SBI का रिटायर्ड कर्मचारी है और चढ़ावा गिनती का इंचार्ज था, यानी पूरी गिनती इसी की देखरेख में होती थी। पांचवा नाम मनीष यादव का है। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। ये तिन्नू यादव का भतीजा है। इसके घर से भी कैश मिले थे। छठा नाम अविनाश शुक्ला का है। ये भी गिनती में शामिल था। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। सातवां नाम है करुणेश पांडे का। ये भी राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में शामिल था। आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से भी कैश बरामद हुआ है। क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी इतना सेंट्रलाइज था कि इन 8 व्यक्तियों के अलावा कोई और शामिल नहीं था? क्या यही वो 8 लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया? इस FIR के बाद विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी

0: गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उस पर अनिल मिश्रा जो जो उन्होंने कमीशन खाया रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है, तो ये साबित हो इस सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
1: छोटे कर्मचारियों पर मुकदमे से विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के अजय राय तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि पैसा दिल्ली तक गया है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था कि बड़े खिलाड़ियों को बचाया गया है, अब विश्व हिंदू परिषद भी खुलकर सामने है। वीएचपी के आलोक कुमार ने तो हर संदिग्ध की जांच की मांग कर दी, चाहे उसका नाम एफआईआर में हो या ना हो।
2: इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं उनकी जांच हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें।
1: चढ़ावा चोरी के खुलासे के 20 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सभी बड़े लोग बच गए हैं। ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नामजद किया गया है और जिन्हें बचा लिया गया है, अब इसको लेकर सियासत भी जारी है।
3: पुलिस ने इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपनी तफ्तीश में अब साफ करेगी कि इस पूरे चोरी के मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे, किसके संरक्षण में श्रद्धालुओं के द्वारा दान की गई रकम को चोरी किया जा रहा था। अयोध्या से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।
4: चढ़ावा चोरी में किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। ट्रस्ट ने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है, चंपत राय, अनिल मिश्रा या कोई भी सदस्य, किसी का नाम ही नहीं है।
5: विपक्षी दल इसी बात को लेकर सरकार पर हमलावर है कि बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कोई बचेगा नहीं, जांच में सभी दोषी पकड़े जाएंगे।
6: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
7: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये चार नाम पहले दिन से आ रहे थे, जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई?
2: एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई।
7: क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता ना रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसी

0: एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा है कि किसी को बचाया नहीं जा रहा है। रामलला के घर चोरी में जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। विपक्ष के आरोपों को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। बड़े लोगों को बचाया गया है, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है।
2: पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी।
3: ये बार बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो
2: अभी तरीके से अभी एसआईटी भी कर अभी अभी अभी, अभी, अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए।
3: ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से
2: आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी।
4: तो चलिए सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, देखा जाए तो सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन आता रहा है और ताजा बयान फिर से आ गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
5: निश्चित तौर पर अंजलि, सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री ने कहा हो या आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि जिन लोगों को नामजद किया गया है या फिर जिन पर एफआईआर की गई है, जिन 8 लोगों को, ये वो कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है जो ट्रस्ट में अपनी कोई बड़ी भूमिका रखते हों। तो क्या ट्रस्ट के भीतर रहते हुए अगर इतने बड़े चढ़ावा चोरी का कांड सामने आया
1: है, बृजेश पाठक कह रहे हैं विवेचना की जाएगी, अब इससे ज्यादा विवेचना क्या हो सकती है? अगर मुख्यमंत्री आश्वासित कर रहे हैं कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई, उस एफआईआर में बड़े नाम नहीं आए शामिल हुए, अब वो कह रहे हैं कि सभी पर कार्रवाई होगी, तो ये कार्रवाई होगी कैसे? कौन सी विवेचना है जिसकी वो बात कर रहे हैं?
5: देखिए नेहा, एक तो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी जांच जारी है, ऐसा सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अभी आगे जांच चलेगी। तो चलिए आगे जांच चलेगी और आगे किसी का नाम आता है कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन इतना तो जरूर है क्योंकि आप देखें तो वीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि जिनका नाम एफआईआर में नहीं हो फिर भी उनकी जांच होनी चाहिए। यानी इशारा जो चंपत राय या फिर दूसरे बड़े नाम हैं इस वक्त ट्रस्ट में उनकी ओर भी है। देखिए, बदनामी जबरदस्त तरीके से हुई है और कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि बड़े नामों की बदनामी होती रहे और रामलला का दरबार और अयोध्या में इस तरीके से जिसे कहते हैं बदनामी होती रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज न कल इनकी जांच तो होगी चाहे जैसे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है तो इनके नाम है, बताया जा रहा है इनके नाम नहीं है, तो क्या इन्हें कोई सेफ रूट देने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से चाहे चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, ऐसे लोगों को कोई सेफ एग्जिट दिया जा सके। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद जल्द ही ये लोग बाहर भी हो सकते हैं, इस्तीफा हो सकता है। तो इस तरह की बातें
1: चल रही हैं। कुमार अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
4: और बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां देर रात हुए बवाल में उत्तराखंड में निहंग सिखों और पुलिस कल आमने सामने थे। निहंग सिख कर्णप्रयाग जाना चाहते थे और पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी बॉर्डर पर। कई घंटे तक मचे बवाल के बाद आखिरकार मान मनोबल के बाद निहंग सिख कर्णप्रयाग कूच स्थगित करने पर राजी हो गए।
6: हंगामे की यह तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ है उत्तराखंड पुलिस और दूसरी तरफ है निहंग सिखों का जत्था। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया। उत्तराखंड पुलिस के लिए कल की रात तनाव की रात थी, मामला बेकाबू होता दिख रहा था।
7: हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जितने जिनके साथ लड़ाई हुई है हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं।
6: उधर कुलहाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की स्थिति थी।
8: आज तक की सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, हाथों में तलवार लिए हुए निहंग जो है लगातार उत्तराखंड में बढ़ चुके हैं और आगे की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार उग्र होता निहंगों का ये प्रदर्शन, ये गुस्सा इलाके में भयावह स्थिति पैदा कर चुका है। पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासनिक लोगों के हाथ पांव फूल चुके हैं क्योंकि लगातार बढ़ता विरोध, कहीं ना पुलिस जो उस विरोध को काबू करने में नाकाफी साबित हो रही है। भारी तनाव आप देखेंगे मौके पर मौजूद है, तलवारों के पीछे बसों को रोक लिया गया है।
6: दरअसल पूरा बवाल नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों हुए हंगामे से जुड़ा हुआ है। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था। जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।
9: जिस तरह से निहंग जो जत्था है वो लगातार देहरादून भी पहुंचा, पौंटा साहिब में पुलिस के साथ गतिरोध हुआ और पुलिस अलर्ट के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसको लगा दिया गया है और पुलिस यहाँ पर लगातार चेकिंग कर रही है और जो व्हीकल्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी कुछ निहंग के व्हीकल्स भी यहाँ पहुंचे थे जिनको डाइवर्ट किया गया और दूसरे रूट से पीछे की ओर भेजा जा रहा
6: है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बॉर्डर पर बवाल को रोका नहीं जा सका। हालांकि राहत की बात यह है कि काफी मान मनोवल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदार मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
4: तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
11: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
12: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
15: Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
14: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
16: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Lebatard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
17: Sanitary Solutions.

0: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
1: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
0: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था, लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
2: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है। मेरा सुरक्षा
0: कर रहे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपतराय का ड्राइवर टिनू यादव भी अरेस्ट, 5 और लोगों से हिरासत में पूछताछ, आज बड़ी कार्रवाई की तैयारी। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने लगाया अधूरे एक्शन का आरोप, अखिलेश यादव ने कहा फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। संजय सिंह बोले चंपत ही की हो जांच। राउत का सवाल, कहां गई हमारी चांदी की ईंट। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अलर्ट, पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, पुलिस ने लिया एक्शन। आज से इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने जा रहे हैं सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 15 साल 71 दिन में डेब्यू। आयरलैंड से T20 मुकाबले में दुनिया देखेगी वैभवशाली आगाज।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर में शुरुआत चढ़ावा चोरी केस की। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर एक्शन शुरू हो गया है। कल शाम FIR दर्ज करने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर है कि 5 और लोगों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला चढ़ावा चोरी का है जिसमें FIR दर्ज कर ली गई है।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में FIR दर्ज हो गई है। 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई इस FIR में नामजद रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के साथ साथ नोट गिरने वाली प्रक्रिया के सुपरवाइजर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव भी शामिल हैं। वहीं 6 वो कर्मचारी हैं जिसमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, जो नोट गिरने की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। अब इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे गिरफ्तारी के दौरान जो पूछताछ की गई है उसको पुलिस अपने दस्तावेजों में दर्ज कर रही है। मेडिकल के बाद आज इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर इनके इस पूरे चोरी के रैकेट में शामिल शरणदाताओं, संरक्षणदाताओं, आकाओं के बारे में भी जानकारी जुटाएगी और उनको भी बेनकाब करेगी।
0: चढ़ावा चोरी केस में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है, खास तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छोटी मछलियों को ही निशाना बनाया जा रहा है।
2: चढ़ावा चोरी विवाद में जो सबसे बड़ा नाम निकल करके आया है वो नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। हम अयोध्या में टिन्नू यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई भीतर से निकलने को तैयार नहीं है। टिन्नू यादव इस वक्त राम मंदिर परिसर में है जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि कल आज तक से जब बात हुई थी तो उसने हर बात को डिनाई किया था, लेकिन अब जबकि 8 लोग हिरासत में गिरफ्तार हैं और पूछताछ चल रही है तो जो सबसे बड़े 2 नाम सामने आए हैं उसमें एक टिन्नू यादव का नाम है और दूसरा सुभाष चंद्र का, जो कि बैंक से जुड़ा हुआ है। इस वक्त सबसे बड़े सवाल ट्रस्ट पर उठ रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि टिन्नू यादव ही ट्रस्ट के सबसे बड़े जो पदाधिकारी महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी रहा है। आप देखिए, ये उनका घर है टिन्नू राय का, लेकिन फिलहाल घर के बाहर कोई सदस्य न तो आ रहा है न ही कोई बात करने को तैयार है। कई बार कोशिश की गई है लेकिन फिलहाल इनके परिवार से कोई भी बात करने को बाहर नहीं आ रहा है।
0: आइए आपको दिखाते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार क्या जवाब दे रही है।
3: जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छोटे कर्मचारी, तो बेचारे वो ड्राइवर हैं, कोई छोटा कर्मचारी है, उनको क्यों बेचारे को आप केवल खत्म कर रहे हो? बड़े लोगों को शामिल करो और उसमें जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर में पैसा छिपा के रखे थे, जो गाड़ी में छुपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पर उसमें सारी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की होती है, चंपत राय और जो उसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर होनी चाहिए।
4: पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और FIR दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
5: जी, ये बार बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो
4: अभी अभी अभी अभी अभी जांच हो रही है और इसमें FIR दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए।
5: ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से
4: आप वेट करें, इसमें कार्रवाई हो।
0: अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा, यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो गया, भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो गई, सोने चांदी के आभूषण सब चोरी हो गए। हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जो लोग इस तरह से महापाप कर रहे हैं उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। उन्होंने कहा कि FIR सिर्फ एक दिखावा है, 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से जो घोटाला चल रहा था इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और छोटे लोगों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है।
6: जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज
0: 12:12 रिपोर्टर में खबरों का सिलसिला जारी है। राम मंदिर चढ़ावा केस में अब शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की एंट्री हो गई है। संजय राउत ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना द्वारा दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट भी गायब होने का आरोप है। और संजय राउत ने आगे लिखा कि उद्धव ठाकरे ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में खुले मन से 1 करोड़ रुपए और पवित्र चांदी की ईंट दान में दी थी, फिर भी सालों बाद भी ट्रस्ट से कोई रसीद या अपडेट नहीं मिला है। ये ईंट कहां गई? अब पूरी जांच और जवाबदेही का समय आ गया है।
7: राम मंदिर जेवरात चोरी का मामला देश भर में राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर एक राज्य में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का भी नाम जुड़ गया है। आज सुबह संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए और 4 किलो चांदी की ईंटें भेंट स्वरूप दी गई थी और ये सबके सामने हुआ था, लेकिन आज तक इन ईंटों का कुछ पता नहीं चला और न ही इसकी उन्हें कोई रिसीट मिली। उन्होंने शंका जताई है कि उनकी दी गई ईंटें भी चोरी हो चुकी हैं और इस मामले की और गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रुख क्या होता है और क्या इस मामले में नए खुलासे होते हैं।
0: तो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से मचे तूफान का असर अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुका है। कांग्रेस ने महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर समेत बड़े मंदिरों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग उठाई है, तो दूसरी ओर सरकार मंदिरों में दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी में जुट गई है।
8: अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मांग उठाई है कि मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों का भी सरकार को ऑडिट करवाना चाहिए और वहां जो चढ़ावा आ रहा है उसकी जो जानकारी है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धर्म स्थल है उनके व्यवसायीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई गई है कि मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे तमाम बड़े मंदिरों का ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। वहां कितना चढ़ावा आया है, कौन कौन से श्रद्धालु थे जिन्होंने बड़े चढ़ावे दिए हैं, उनकी जानकारी को सरकार सार्वजनिक करे। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी अयोध्या जैसी कोई घटना ना हो, इसके लिए अभी से सरकार को कदम उठाने होंगे।
0: देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा रुख करते हैं वहीं का।
9: और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ, और दूसरा पक्ष हुआ है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम लोगों की जो दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे, लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता? जब इनकी सरकारें थी क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहस से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है, और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रोंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गया।
0: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है देवरिया में। वहां पर संबोधित करते हुए लोगों को उन्होंने कहा है कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना ली जाए। उन्होंने SIT की जांच के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सबूत हैं तो सबूत दो, ये चेतावनी उन्होंने उन विपक्षी पार्टियों को दी है जिनको वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी आप बंद कर दीजिए। वो कहते हैं कि हमें मत सिखाइए कि आस्था क्या होती है। उन्होंने इशारों में पहले अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें सिखा रहे हैं कि आस्था क्या होती है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। उन्होंने ये भी कहा कि SIT की जांच हुई है और जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ऐसा हुआ है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उसके सबूत हैं तो SIT को दीजिए। और अब बात मुहर्रम पर। उत्तर प्रदेश में अलर्ट की। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा सख्त है। शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कल लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने और शरारती तत्वों को चेतावनी का संदेश देने की कोशिश की। वहीं सबकी नजर संभल पर है, जहां आज मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है वहां भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे इंतजाम के बारे में बता रहे हैं आज तक के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
10: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है। पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है सभी पुलिसकर्मियों को। यहां तक जो संवेदनशील जगह है, फिर चाहे वो सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ हो, इन सभी जगह पर ड्रोन कैमरे और CCTV से निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के DGP ने किसी भी तरीके की विवाद स्थिति आने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह मार्च कर रही है और साथ ही साथ ऐसी जगहों संवेदनशील जगहों पर जाकर ड्राइव भी चला रही है। मुहर्रम के इस त्यौहार को पुलिस ने अपनी नज़र पूरे उत्तर प्रदेश में पैनी बनाकर रखी हुई है और किसी भी सस्ती से निपटने के लिए पूरी फोर्स को तैनात किया गया है।
0: बिहार में हुए बवाल की। बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान बवाल मच गया, जमकर पत्थरबाजी और मारपीट भी हुई। 10 से 15 लोग घायल भी माने जाते हैं और पुलिस ने 45 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है।
11: बिहार के शिवहर में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर दो अखाड़े आमने सामने आ गए और फिर जमकर हिंसा और बवाल हुआ। दरअसल घटना कल की है, जब मुहर्रम की तैयारियों को लेकर ये दो अखाड़े जो है रास्ता देने को लेकर आमने सामने थे और फिर बवाल बढ़ा और फिर जमकर हिंसा हुई और पत्थरबाजी और डंडे भी चले। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं और फिर आनन फानन में पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर हालात को किसी तरीके से नियंत्रित किया गया। इस पूरी घटना में तकरीबन एक दर्जन से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने अब तकरीबन 45 लोगों के खिलाफ नामजद FIR भी कर लिया गया है। हालात को फिलहाल शिवहर में नियंत्रित कर लिया गया है।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। कल रात वहां निहंग सिखों और पुलिस आमने सामने थे, जमकर बवाल हुआ। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी अंकित शर्मा।
12: रात को 9 बजे के आसपास निहंग सिखों ने उत्तराखंड की ओर कूच किया और उनका गुस्सा पहले भी लगातार फूट रहा था। जिस तरह से 16 जून को और 20 जून को नगरासु में जो घटनाएं हुई, 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे और हेमकुंड साहिब यात्रा की ओर कूच करते हुए अपने साथियों की रिहाई भी करवाएंगे। इसके साथ ही गुरुवार रात को जिस तरह से निहंग सिख उत्तराखंड पहुंचे, भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर देहरादून के शहर में प्रवेश किया और प्रेमनगर से लेकर जोगीवाला चेक पोस्ट तक भारी ट्रैफिक जाम लग गया। देहरादून को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। और देर रात जब निहंग सिंह रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारा पहुंचे तो वहां प्रशासन ने उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद लगभग 3 बजे ये मामला सुलझा लिया गया, जिसके बाद निहंग सिंह अपने गंतव्य पोंटा साहिब की ओर वापस लौट गए और अभी मामला शांत बना हुआ है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप बात पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसमें नया खुलासा हुआ है। केतन के कत्ल के एक दिन पहले का पुणे के कैफे का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें केतन की मंगेतर सिया कत्ल के एक अन्य आरोपी चेतन के साथ नजर आ रही है।
13: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे, जहां शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई। और उसके बाद ही 18 को सुबह ही अपने खुद की जुपिटर पर चेतन चौधरी वहां आ पहुंचा और उससे पहले ही सुबह 8 से 8:30 बजे सिया ने ऑलरेडी होने वाले अपने जो फियांसे है उसे पिक कर लिया था और केतन अग्रवाल और वो दोनों साथ में वहां पहुंचे और उसके बाद ही पूरे मामले को अंजाम दिया गया। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई।
0: वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
15: लुकिंग टू ट्रेड इन योर करंट व्हीकल? वी'ल गेट यू द मोस्ट फॉर योर ट्रेड। At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
16: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
15: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
17: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
18: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
19: Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
18: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
20: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
21: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
20: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
22: You're listening to MSNBC.
20: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
23: Pure Ayurvedic Beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. Hey.
5: देवरिया में चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले एसआईटी रिपोर्ट आते ही शुरू होगी कार्रवाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा। राम जन्मभूमि और आस्था को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद करें, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला, बोले पहले यूपी माफिया और दंगों से ग्रस्त था। मुहर्रम पर मुख्यमंत्री योगी का सख्त संदेश, अब यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, उपद्रवियों को भुगतान भुगतना होगा परिणाम। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, राम मंदिर में तीन लोग ही असली कर्ता धर्ता, चंपत राय, गोविंद देवगिरी और अनिल मिश्रा पर भी हो कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले के बीच अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन के बाद लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा रामलला के चढ़ावे की चोरी महापाप, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर दान विवाद पर अरविंद केजरीवाल का हमला, बोले एफआईआर दिखावा, असली जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही जांच। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का तीखा वार, अखिलेश यादव बोले फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चंपत राय की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग की। राम मंदिर दान विवाद में संतोष दुबे का बड़ा बयान, बोले छोटे आरोपियों पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। संतोष दुबे ने ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और सभी पर समान कार्रवाई की मांग। संजय राउत ने दान मामले की जांच पर खड़े किए गंभीर सवाल, कहां गई हमारी चांदी की ईंटें। संजय राउत का आरोप, अयोध्या दान पेटी चोरी का इस्तेमाल सांसदों और विधायकों को तोड़ने के लिए किया गया। राम मंदिर दान मामले पर विपक्ष पर पलटवार, दिनेश शर्मा बोले सरकार की कार्रवाई सबसे तेज और पारदर्शी, ट्रस्ट ने खुद दर्ज कराई एफआईआर और एसआईटी ने की तेज कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नए तथ्य सामने आए। जांच में 5 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी, सूत्रों के मुताबिक कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में। रामाशंकर उर्फ टिनू यादव पर अहम जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप के आरोप, गणना कक्ष की चाबी रखने और व्यवस्था में दखल के दावे सामने आए। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के रिश्तों की भी जांच, अविनाश के खाते में 5 लाख रुपए मिलने की बात भी जांच में सामने आई। चढ़ावे की निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच, पुलिस ने कहा मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई संभव, जांच जारी। हापुड़ हिंसा में छतों से भी चले ईंट पत्थर, 6 घायल, पुलिस ने मौके पर संभाली हालत। मुहर्रम से पहले प्रतापगढ़ में सख्ती, राजा भैया के पिता समेत 13 लोगों को किया गया हाउस अरेस्ट। झांसी में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर में भीषण आग, कोखराज टोल प्लाजा के पास अफरा दफरी। प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, मानक पूरे न करने पर कई कोचिंग सेंटर सील, कोचिंग सीलिंग से छात्रों की मुश्किलें बढ़ी।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा एसआईटी की रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। विपक्ष पर उठाए सवाल, कहा आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है, सबूत हो तो दो लेकर आओ वरना बंद करो आरोप लगाना।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के चोर अब बच नहीं पाएंगे। 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, 5 संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है, एक सिरा हाथ चढ़ा है तो इस चोरी और लुटेरों के गैंग की डोर की छोर तक भी पुलिस पहुंची जाएगी अगर रोक टोक नहीं हुई तो। लेकिन अयोध्या मामले में पिछले 2 दिन में जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है वो दरअसल उम्मीद जगाती है।

0: राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, राम मंदिर का व्यवस्थापक, गिरफ्तार। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव SBI के रिटायर्ड कर्मी, नोट गिनने के प्रभारी, गिरफ्तार। मनीष कुमार यादव दान पात्र में मिले असली नकली नोट की छटाई, गिरफ्तार। अविनाश शुक्ला दान पात्र से हॉल तक नोट पहुंचाना, गिरफ्तार। लवकुश मिश्रा नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। अनुकल्प मिश्रा नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। रमाशंकर मिश्रा नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। करुणेश पांडे नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। इन सभी आरोपियों को राम मंदिर में भक्तों की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे की रकम की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
1: पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और FIR दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई।
0: और मुकदमा अयोध्या के ही राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुआ है। FIR का ब्यौरा गोपनीय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 305, धारा 306, धारा 316(5), धारा 317(4), 317(5), धारा 61, धारा 35 और PC एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं। और गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पुलिस की पूछताछ भी शुरू हो गई है।
2: जो FIR दर्ज हुई उसमें 8 लोग नामजद किए गए, उसमें जो सबसे बड़ा नाम और प्रमुख नाम है वो 2 हैं, एक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर है और वो उस मंदिर का व्यवस्थापक भी है, यानी कि मंदिर के अंदर सारी व्यवस्थाएं वो देख रहा था। दूसरा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है वो है सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र एक रिटायर्ड बैंक कर्मी है और ये एक तरीके से आप मान लीजिए सुपरवाइजर थे और जिनकी निगरानी में ये नोटों की गिनती होती थी। तो ऐसे में ये 2 बड़े नाम है, बाकी सब छोटी मछली है। इसमें कोई भी बड़ी मछली नहीं नामजद की गई है, यानी कि छोटे जो नोट गिनने वाले कर्मचारी थे, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, मनीष यादव हो या तमाम रमाशंकर मिश्रा हो, ये तमाम नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े थे। अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाता था, वो वाउचर में हेरा फेरी करता था। ओवरऑल ये कर्मचारी ही थे, लेकिन जो सुपरवाइजिंग नोड में थे, जो अधिकारी के मोड में थे, वो थे सिर्फ टिन्नू यादव और ये सुभाष चंद्र श्रीवास्तव।
0: कृष्ण मोहन, खबर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 6 महीने पुराने और ट्रस्ट के सबसे नए सदस्य, पूर्व ब्यूरोक्रेट और अवध प्रांत के RSS संघ चालक कृष्ण मोहन ने SIT की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर यह मुकदमा दर्ज कराया है।
3: आज खुद ट्रस्ट ने अपनी FIR दर्ज कराई है, SIT का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती वो लगाई गई हैं।
0: हालांकि जो ट्रस्ट SIT की जांच के घेरे में, उसी ट्रस्ट को SIT की वो अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें बताई गई जिनके बिना पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक SIT की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशें थी कि संदिग्धों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए।
2: SIT की जो रिपोर्ट थी उसने, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर यह जरूर कहा है कि जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग थे, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों की निगरानी में कमी थी, यानी कि लापरवाही थी और वो सही व्यवस्थाएं नहीं थी।
4: अयोध्या में क्या हो रहा है? जिन लोगों ने इसमें अपना पूरा जीवन लगाया, आपने उनकी बात नहीं सुनी? कौन सी SIT है? सब मैनेज हुए लोग हैं और ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। आप मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। इतना सोचने समझने के बाद आपने ड्रामा खड़ा किया। हमने तहरीर दी नामजद, आपने क्यों नहीं लिखा?

0: यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है, मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति हो गया, उस चोर को आप बचा रहे हो राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया? आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे हैं।
1: हालांकि मुकदमे का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है, मंदिर ट्रस्ट ने उसमें क्या शिकायत की है वो भी सामने नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में ट्रस्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रस्ट ही खुद को शिकायतकर्ता बनाकर अपनी साख बचाने की जुगत में जुटा नजर आ रहा है। आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
2: आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर, चंपत राय से इस्तीफे की मांग के बीच हरिशंकर जैन ने चंपत राय का बचाव किया है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि आरोपों के आधार पर इस्तीफे की मांग ठीक नहीं है। इससे पहले वीएचपी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने चंपत राय के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन पहली बार चंपत राय के बचाव में हरिशंकर जैन का बयान सामने आया है।
3: जो रिपोर्ट हुई और जांच हुई है कि वो रामलला कुछ चढ़ावा आता था उनमें हेराफेरी हुई है, गबन हुआ है, चोरी हुई है। मैं किसी बेकारी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, किसको इस्तीफा देना किसको नहीं देना है, किसी के आरोप लगा देने मात्र से कोई इस्तीफा किसी को नहीं देना चाहिए, और तथ्य है और गिल्टी है जरूर देना चाहिए। अब कौन गिल्टी कौन नहीं है ये तो जाँच का विषय है, कोर्ट देखेगी और लोग कोर्ट में इसको साबित करें।
2: राम मंदिर के चढ़ावे के चोरी मामले की जांच में गिरफ्तारी के साथ ही चोरी को लेकर नए खुलासे भी सामने आने लगे हैं। दरअसल बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले का पता खुद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ही लगा लिया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चोरी की शंका पैदा होने के बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा ट्रस्ट की ओर से हिडन कैमरे भी लगाए गए थे, जिसमें नोट गिनने वाले कर्मचारियों की गतिविधि देखकर पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ था। ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में से 7 से 8 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह से 500 की गड्डियां कम होती जा रही थी। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगाए गए थे। ट्रस्ट ने अपनी ओर से जो खुफिया कैमरे लगाए थे उसमें चोरी की हरकतें कैद हो गई और पूरा मोडस ऑपरेंडी सामने आया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे और दूसरा साथी 500 की गड्डी नोटों में छिपा लेता था, 500 की गड्डी वाले नोट छिपा लेता था और उन्हें अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता था। असली सीसीटीवी कैमरे में ये छिप जाते थे, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी चोरी पकड़ी गई। इसके अलावा चोरी का दूसरा तरीका भी था, जहां नोट गिनने वाले कर्मचारी जो थे वो हर गड्डी में 100 नोटों से ज्यादा नोट डाल दिया करते थे। एक गड्डी 100 नोट की होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा नोट डाल दिए जाते थे और रकम जब बैंक के लिए रवाना होने वाली होती थी तो वहां केवल गड्डी गिनी जाती थी और उसका वाउचर बनता था, जबकि बैंक में नोट जमा करने से पहले हर गड्डी से वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे। लापरवाही या मिलीभगत कहें कि ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली जाती थी। और हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं उन्हीं का, अयोध्या में मौजूद है। संतोष, ये जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अब ये खुलासा भी है कि ट्रस्ट को पहले से जानकारी थी और हिडन कैमरे लगाए गए थे।
4: देखिए बिल्कुल, ये जो चोरी का खुलासा हुआ ये ट्रस्ट के लोगों को लगातार शिकायत मिल रही थी। मई के लास्ट वीक की बात है जब ये लगातार शिकायतें मिली और बवाल बढ़ने लगा, ट्रस्ट के अंदर ही लगातार शिकायतें बढ़ी और उसके बाद जब दान पेटियों के कैश का मिलान किया गया तो वो भी कम दिखाई पड़ने लगा। उसके बाद हिडन कैमरे लगाए गए, एक हफ्ते का डेटा देखा गया और जब उसका फुटेज देखा गया तो उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिली, फिर उनके बैंक अकाउंट चेक कराए गए। तो ये तमाम चीजों की पड़ताल के बाद ये पता चला कि इसको दो तरीके से चोरी किया जाता था। एक, बैंक में जाने से पहले ही गड्डी बनने से

0: पहले ही नोट चोरी कर लिए जाते थे, और दूसरा जब नोट गड्डी बन जाती थी तो 100 नोट की गड्डी में 110 125 की गड्डी बनाई जाती और बैंक में जमा होने से पहले, बैंक के चेस्ट में जमा होने से पहले उन एक्स्ट्रा नोट्स को निकाल लिया जाता था। ये प्रोसेस पहले शुरू हो रहा था, ये शुरू से चल रहा था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि एक आदमी काम कर रहा है, अनुकल्प मिश्रा
1: संतोष, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये मामला अब यूं सामने आ रहा है कि ट्रस्ट ने खुद ही चोरी पकड़ी है, खुद ही एसआईटी की मांग करके जांच कराई है और खुद ही एफआईआर दर्ज कराकर आरोपियों को पकड़वाया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इसी ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चोरी के आरोपों के सामने आने के बाद इनकार क्यों कर रहे थे? 7 जून को जब मामला सामने आया तो चंपत राय ने क्यों कहा था कि कोई चोरी नहीं हुई है? दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में भले ट्रस्ट खुद से जांच कराने का दावा कर रहा हो, लेकिन अब जिस तरह दान की रकम से दान के सोने चांदी ईंट बिस्किट सब का हिसाब मांगा जा रहा है, वैसे में ट्रस्ट भी जांच के दायरे में आ चुका है। और एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एसआईटी ने चोरी में शामिल प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत तत्काल केस दर्ज करने की सिफारिश की थी, जो हो चुकी है। ट्रस्ट ने आगे चढ़ावे की निगरानी के लिए दान पेटियों, ऑनलाइन और कैश काउंटर से मिलने वाले चढ़ावे की रोज की एंट्री और हर हफ्ते अनिवार्य ऑडिट की सिफारिश की है। इसके अलावा एसआईटी ने सिफारिश की है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान मंदिर में आए पूरे चढ़ावे और दान का नए सिरे से विस्तृत ऑडिट किया जाए और नोटों की गिनती वाले कमरों और मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरों का फुटेज बैकअप 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाए। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, वो भी अयोध्या में मौजूद है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईटी ने चढ़ावे के चोरों को तो पकड़ लिया है, लेकिन बात आगे जा रही है, अब चंदे की रकम और जमीन खरीद तक भी जांच पहुंच चुकी है, तो इसमें आगे एसआईटी क्या क्या कर सकती है?
2: देखिए, जो प्रिलिमिनरी जांच हुई और जो जांच रिपोर्ट आई वो तो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अब बात ये आ रही है कि आगे भी इसकी जांच जारी रहेगी, क्योंकि अगर आप माने ना माने, लोग इसको चाहे जितना तवज्जो दे, लेकिन जो बड़े अधिकारी, जो बड़े नाम हैं ट्रस्ट के, उनकी भूमिका पर सवाल हैं। तो क्या ये सिर्फ लापरवाही तक सीमित है, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया और उन्हें पता नहीं चला, या फिर जब उन्हें पता चला तब वो लोग इनकार करते रहे? बात चंपत राय की भी इसमें शामिल है। इसी वजह से जब देखिए माहौल इस तरीके का हो गया है कि इतनी बड़ी चोरी हो गई है और साथ साथ जितने बड़े नाम हैं सब कहीं ना कहीं शक के घेरे में हैं, तो अब विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी का नाम एफआईआर में नहीं है तब भी उनकी जांच होनी चाहिए। यानी कि अब ये रायता इतना फैल चुका है कि इसे लेकर के जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो जांच है, जांच अपनी जगह होगा, लेकिन ट्रस्ट की साख बचाने या फिर कम से कम राम जन्मभूमि परिसर में जो ये चीजें हुई हैं इसकी साख बचाने के लिए कुछ बड़े कदम लिए जा सकते हैं। बड़े कदम में क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा ऐसे लोगों की स्थिति,
1: बिल्कुल
2: क्या इन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा?
1: जी बिल्कुल, और जांच आगे बढ़ रही है लेकिन चिंता सबकी है। दरअसल राम मंदिर में ये बात चढ़ावे की चोरी से निकली थी, लेकिन देखते ही देखते बात आगे निकल गई। देश भर से तरह तरह के दावे सामने आने लगे, कभी सिंधी समाज अपने 200 किलो चांदी का हिसाब मांगने लगा, तो कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी चांदी वाली ईंट की पर्ची मांगने लगी, किसी ने काक भिशुंडी की गुमशुदगी का सवाल उठा दिया तो काक भिशुंडी दूसरे दिन ही हाजिर हो गए। लेकिन अब राम भक्तों के मन में सवाल इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि बात सिर्फ चढ़ावा नहीं, राम मंदिर के नाम पर मिलने वाले दान तक जा पहुंची है। उसमें भी आगे जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने पेश होकर चंपत राय की ओर से की गई जमीन खरीद वाले प्रकरण के 13 दस्तावेजी सबूत पेश किए तो एसआईटी के जांच का दायरा और व्यापक हो गया। वहीं यही वजह है कि जिस एसआईटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा किया था, अब उसे कथित धांधली के पुराने अपराधों और आरोपों की जांच के लिए ज्यादा समय और ज्यादा अधिकारी लगा दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि एसआईटी ने राम मंदिर के ट्रस्ट को पूरी तरह क्लीन चिट भी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई संदिग्ध अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा। एसआईटी ने पूरे मामले में ट्रस्ट पर सवाल भी उठाए हैं और लचर इंतजामों को बदलकर मंदिर के वित्तीय और दैनिक कामकाज को प्रोफेशनल तरीके से संभालने के लिए किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है। तो सबसे बड़ी बात, एसआईटी की सिफारिश में यह भी है कि उसने ट्रस्ट को भंग कर पुनर्गठन की सिफारिश की है। तो इस बीच एक और बड़ा बयान आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दे दिया है। अवि मुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि इस मामले में चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में तीन ही लोग, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी, करता धरता है, लिहाजा प्रमुख जिम्मेदारों का नाम एफआईआर में शामिल होना चाहिए था। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आस्था से खिलवाड़ का मामला है, लेकिन उससे ज्यादा सियासी मामला भी हो गया है, क्योंकि इसका आखिरी असर तो सियासी नफे नुकसान से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा राजनीतिक बयानबाजी और स्कोरिंग भी खूब हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीति में हमारे देश के कथित साधु संत सन्यासी धर्माचार्य भी बढ़कर शामिल हो रहे हैं। और अब बड़ा बयान अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ आ गया है। दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ही शिष्य होने का दावा करने वाले गोविंदाचार्य सरस्वती ने आरोप लगाया है।
3: अवि मुक्तेश्वरानंद ने खुद ही पूरा देश में करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। अवि मुक्तेश्वरानंद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्घोषण किया, सोना इकट्ठा किया। पहला चोर कौन है? अवि मुक्तेश्वरानंद। अंदर की चोरी के बारे में अभी पता चला, बाहर की चोरी की काम के बारे में किसी को पता नहीं चला। एक बात है, राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले इकट्ठा करना अलग बात है।
1: और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Ugh, I have had no luck lately. Wait, Lady Luck?
6: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
5: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
9: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
10: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
11: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
10: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
12: Hicks Organic.
13: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
14: Money, money, money, money every month.
15: सोच बदलो और बैंक भी.
0: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप. जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
16: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन, जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है, हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।

चढ़ावा चोरी मामले पर गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, कहा जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं। विपक्ष पर उठाए सवाल, कहा सबूत हो तो लाओ वरना बंद करो आरोप लगाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 गिरफ्तार, चंपत का ड्राइवर टेन्नू भी अरेस्ट। विपक्ष ने कहा अधूरा एक्शन, कहा मछलियां फंसी मगरमच्छ बचे। बंगेतर मर्डर मामले में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो। मुहर्रम को लेकर यूपी में जबरदस्त अलर्ट, पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च, संवेदनशील जिलों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। उज्जैन में क्रेन पर वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, पुलिस ने लिया एक्शन। आज से इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने जा रहे हैं सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 15 साल 71 दिन में डेब्यू। आयरलैंड से T20 मुकाबले में दुनिया देखेगी वैभवशाली आगाज।

चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले एसआईटी रिपोर्ट आते ही शुरू हो गई कार्रवाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा। राम जन्मभूमि और आस्था को लेकर विपक्ष पर सा निशाना, बोले सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद करें, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना लें। देवरिया में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले पहले यूपी माफिया और दंगों से ग्रस्त था। मोहर्रम में सीएम योगी का सख्त संदेश, अब यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, उपद्रवियों को भुगतना होगा परिणाम। शंकराचार्य विगुप्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, राम मंदिर में तीन लोग ही असली कर्ता धरता, चंपत राय, गोविंद देवगिरी और अनिल मिश्रा पर हो कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले के बीच अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन के बाद लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर केजरीवाल का बयान, कहा रामलला के चढ़ावे की चोरी महापाप, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर दान विवाद पर केजरीवाल का हमला, बोले एफआईआर दिखावा, असली जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है जांच। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का तीखा वार, अखिलेश यादव बोले फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। आप सांसद संजय सिंह ने चंपत राय की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग की। राम मंदिर दान विवाद में संतोष दुबे का बड़ा बयान, बोले छोटे आरोपियों पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। संतोष दुबे ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और सभी पर समान कार्रवाई की मांग। दान मामले की जांच पर गंभीर सवाल, कहां गई हमारी चांदी की ईंट। संजय राउत का आरोप, अयोध्या दान पेटी चोरी का इस्तेमाल सांसदों विधायकों को तोड़ने के लिए किया गया। दान मामले पर विपक्ष का पलटवार, दिनेश शर्मा बोले सरकार की कार्रवाई सबसे तेज और पारदर्शी, ट्रस्ट ने खुद दर्ज कराई एफआईआर। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले बड़ा खुलासा, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नए तथ्य सामने आए। जांच में 5 और लोग हिरासत में लेकर पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में। रमाशंकर और टिन्नू यादव पर अहम जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप के आरोप, गणना कक्ष की चाबी रखने और व्यवस्था में दखल के दावे सामने आए। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के रिश्तों की जांच, अविनाश के खाते से 5 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई। चढ़ावे की निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच, पुलिस ने कहा मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई संभव, जांच जारी। अमित शाह का बड़ा संदेश, ट्रक तस्करों पर रूथलेस कार्रवाई, पीड़ितों के प्रति अपनाए संवेदनशील रवैया। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले सभी एजेंसियों और समाज को साथ आना होगा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास से हटाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, मकान खाली करने की तैयारियां तेज। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सख्त चेतावनी, कहा बगावत करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। ममता बनर्जी का बड़ा हमला, पार्टी छोड़ने वालों को बताया गद्दार, कहा अब कोई माफी नहीं है। कल से 29 जून तक सीशेल्स का दौरा करेंगे मोदी, सीशेल्स के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी की यह दूसरी सीशेल्स यात्रा होगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत लेंगे भाग। 28 जून से भारत फिर शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा, ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना महंगा, अब 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए, 1 जुलाई से नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर ओवैसी का केंद्र पर हमला, कहा 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते यूसीसी हो सकता है लागू, सीएम शुभेंदु के नेतृत्व में विधेयक पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान टीएमसी नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत परिसर में बीजे समर्थकों ने दिखाई चप्पल और की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, स्थानीय राजनीतिक नेता सईम चौधरी पुलिस हिरासत में, कुल 30 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14, 19 घायल, 5 को किया गया गिरफ्तार। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति ने की जांच। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, राहुल बोले कंफ्यूजन में पनामा पेपर में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर घर जाकर बीएलओ भर रहे फॉर्म। 24 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे बीएलओ, हर घर में कम से कम होगी 3 बार विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर स्वयं भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद। फिलहाल बॉर्डर पर निहंगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तराखंड में घुसे निहंग, तोड़ फोड़ कर लहराई तलवारें। हाईवे पर मचा रकम, दहशत में आए लोग जान बचाने के लिए
भागे, जिसके चलते कुछ देर के लिए पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित मेहंगों ने एक यात्री बस को रोक दिया। यात्रियों में खौफ का माहौल, हाईवे पर खड़े कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे और तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन निहंगों को काबू करने में नाकाम साबित हुई और निहंगों का जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरते हुए देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और सिख समाज के प्रतिनिधियों में बीच हुई बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने पर जताई सहमति। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश से पहाड़ में तबाही, पहाड़ से आया मलबा बाजार में घुस गया। मलबे की चपेट में कई दुकानें वाहन दबे, बाजार में मच गई अफरा तफरी। आपदा के बाद राहत और बचाव का काम शुरू, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य तेज किया। हावड़ा कोलकाता में तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। लगातार बारिश और वज्रपात से शहर में जलभराव, कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब। बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान दो पक्षों में विवाद, क्रॉसिंग और रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ था ये विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट, 10 से 15 लोग के घायल होने की सूचना, 45 नामजद, 30 के खिलाफ FIR दर्ज। हापुड़ में मामूली विवाद में दो पक्ष भिड़े, लाठी डंडे और पथराव से मचा बवाल। हापुड़ हिंसा में छतों पर चले ईंट पत्थर, 6 घायल, पुलिस वालों ने मौके पर संभाले हालात। मुहर्रम से पहले प्रतापगढ़ में सख्ती, राजा भैया के पिता समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। कौशाम्बी में LPG टैंकर में भीषण आग, कोखराज टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी। दरभंगा में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, 500 जगहों पर पुलिस तैनात, CCTV ड्रोन से निगरानी। गढ़वा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, शांति समिति बैठक और फ्लैग मार्च जारी। सहारनपुर में DIG के साथ फ्लैग मार्च, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। झांसी में मुहर्रम से पहले फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। MP के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में मिले, क्षेत्र सदस्य जांच समिति बनाई गई। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी, करंट लगने से बाल बाल बची। बोले में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया, खाने में लाई थी नींद की गोलियां, वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। मेरठ में किडनैपिंग का वायरल वीडियो, घरेलू झगड़ा निकला, पुलिस ने अपहरण की बात नकारी। यूपी जलौन थाने में कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल होते ही सिपाही सस्पेंड। पंजाब के मोगा में पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगई दिखाना पड़ा भारी, 13 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 10 लोग घायल। पटना में फैजल खान के कोचिंग बने बिजली घर में लगी आग, धुआं देखकर मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग विवाद, 15 साल के युवक पर चाकू से हमला। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर में छात्रा की मौत, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। MP के खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकराई, 2 बाइक सवार घायल। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजनगर में प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट, स्कूल की लापरवाही आई सामने। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश पर आया, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी मात। शेफाली वर्मा ने खेली 53 रन की अर्धशतकीय पारी, जेमाइमा ने बनाए 26 रन, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजय रहा है भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार 4th जीत। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गोल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जाने पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक, 175 गेंद में बनाए शानदार 132 रन। साई सुदर्शन की फर्स्ट क्लास करियर का ये 9वां शतक इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल।

0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चंदा चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। अब बड़ी खबर यह है कि सबसे बड़ा नाम चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार ये मांग की जा रही थी विपक्ष की ओर से कि चंपत राय इस्तीफा दें, हालांकि कल जो नामजद एफआईआर थी उसमें चंपत राय का नाम शामिल नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस दान चोरी के मामले में। अब उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार सिर्फ उनका ही नाम और दो अन्य नाम इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे थे कि उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, लगातार दबाव के चलते और नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा, क्योंकि एफआईआर में तो उनका नाम नहीं है।
1: अब बिल्कुल देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर पहले ही साफ कहा है कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, और कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर भी देखा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी घोटाला, इतना बड़ा चंदा चोरी का मामला आया था तो उसमें अब चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं और अनिल मिश्रा, इन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। ये जानकारी आई है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट कठोर संतुष्टि के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, और एसआईटी की सिफारिश मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसके बाद अब ये इस्तीफा आया है सामने। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर दान प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम ये सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त आदेश दिया था, सख्त एक तरीके से उनके लहजा था, उन्होंने कहा था इसमें कार्रवाइयां होंगी और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। तो अब
0: आशीष, क्या हम ये माने कि मुख्यमंत्री के एक्शन से पहले ये इस्तीफा आया है, उनका एक्शन अभी आगे हो सकता है दोनों पर, क्योंकि लगातार इस बात का दबाव है कि ये दो बड़े नाम थे, ये ट्रस्ट में थे, इसलिए सीधे तौर पर ये जिम्मेदार है।
1: अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि एसआईटी जो वहाँ जांच कर रही है उसने बहुत बारीकी तरीके से जांच की है और उसमें कहीं ना कहीं रोल आया जरूर है, और यही वजह है कि चंपत राय जो महासचिव है और अनिल मिश्रा, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि जिम्मेदारी तय की गई है और कठोर कार्रवाई हो भी सकता है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस्तीफे के बाद भी कार्रवाई हो, लेकिन अभी शुरुआती दौर में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप के ये पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट पाया गया एसआईटी का, और इसी वजह से वहां पर ये इस्तीफा सौंपा गया है नैतिकता के आधार पर। अब ये कार्रवाई आगे क्या होती है ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, और किस तरीके की आगे कार्रवाइयां होंगी ये भी वो तय करेंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि जो राम मंदिर को चला रहे थे, जो ट्रस्टी थे, जो वहां के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो अब इस्तीफा उन्होंने सौंपा है, और साथ साथ अनिल मिश्रा ने वो इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि कई संगीन आरोप लगे, कई गंभीर आरोप लगे, और आरोप के बाद अब ये इतनी बड़ी कार्रवाई इस तरीके से देखने को मिली, चाहे वो सरकार के दबाव में हो या जिस कार्रवाई जिस लेवल पे चल रही है उसको लेकर किया गया हो।
0: आशीष, आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ भी हुई होगी, पूछताछ में हो सकता है ये दो नाम बार बार आरोपियों की तरफ से लिए गए हों, यही वजह है कि कल की एफआईआर के बाद आज इस्तीफा आ गया।
2: अब बिल्कुल देखिए, जो दो नाम लिए
1: है कि किस,
2: उन्होंने इस बारे में ब्रीफ भी किया है कि किस तरीके से ये पूरा मामला, ये पूरा जो पूरा नेक्सस कह सकते हैं चल रहा था राम मंदिर में, उसको लेकर जरूर नाम सामने आया है, और आठ के तो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा पांच और अन्य लोगों से हिरासत में पूछताछ की जा रही थी, तो सभी ने कोई ना कोई नाम लिया है और एसआईटी को ये संतुष्टि दी है, ना कि पुलिस को। पहले एसआईटी ने ही इसकी जाँच कर ली थी और उस जाँच के बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई, तो ये तो साफ है कि रोल बड़ा है। अब नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दिया गया, अब आगे कार्रवाई चंपत राय पर क्या होगी या जो ट्रस्ट के अनिल मिश्रा है उस पर क्या होगी, ये तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तय करेंगे, लेकिन राम मंदिर मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी कह सकते हैं डेवलपमेंट है, या एक तरीके से दबाव की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, जिसमें पहले तो आठ लोगों ने गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद जस्ट ये एक बड़ा एक्शन हो रहा है, और एक्शन भी अब चूंकि चीफ मिनिस्टर भी अभी 10 मिनट पहले ही मुश्किल से बोले होंगे और ये संदेश दे दिया उन्होंने कि हम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, तो ये हो सकता है कि दबाव हो।
0: कुमार अभिषेक भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अब इस इस्तीफे के बाद हम ये माने कि एक बड़े एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आगे अभी राह मुश्किल है चंपत राय के लिए।
3: देखिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं वो था कि क्या चंपत राय पद छोड़ेंगे, क्या उनका इस्तीफा होगा, हटाए जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये एक तरीके का कॉन्फर्मेशन आ गया है कि चंपत राय जो कि महासचिव हैं ट्रस्ट के, एक तरीके से कहा जाए तो सर्वे सर्वा हैं, और अनिल मिश्रा, दोनों का इस्तीफा हो चुका है। यानी कि अब ट्रस्ट में ये दोनों नहीं है। अगर देखा जाए तो अब ट्रस्ट एक तरीके से फिलहाल डिफंक्ट है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा इस वक्त ट्रस्ट में अब नहीं है उनके इस्तीफे के बाद। रही बात, 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं उनको फिलहाल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई सेफ एग्जिट ढूंढा जा रहा है, तो ये एक सेफ एग्जिट है। दरअसल लापरवाही के सवाल उठाए गए हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, सीधे सीधे इन्हें इंडिक्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनके स्तर पर लापरवाही की बात आई है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात आई है। और जब इतना ज्यादा इनके खिलाफ मामला सामने आ गया कि आखिर उनके रहते इस ट्रस्ट में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई, उसके बाद इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी था, सरकार का भी दबाव था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में थे जहां वो लगातार उन्होंने ये बात कह दी कि अब कार्रवाई का समय है, हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद इस्तीफे की खबर आ गई है। और ये सरकारी सूत्रों से ये इसका कंफर्मेशन भी आ गया है कि ये दोनों बड़े नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा हो गया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से। तो जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, जिसे बताया जा रहा था, वो अब बिल्कुल सामने है।
0: और इस पूरे मामले में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सेफ एग्जिट देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट है एसआईटी की, उसमें नाम है दोनों का या फिर नहीं है, या फिर जो आगे विस्तृत रिपोर्ट आएगी उसमें नाम हो सकता है, उसी आशंका के चलते पहले इस्तीफा देकर पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है हमने नैतिकता के आधार पर दे दिया।
3: देखिए नया, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इनके नाम लापरवाही में हो सकते हैं, चोरी में इनके नाम नहीं है। और जिन 8 लोगों के नाम हैं, दरअसल उनके खिलाफ एविडेंस है। इसके अलावा जो 6 दिनों की पूछताछ हुई, जो बातचीत हुई, जो जांच हुई, उसमें उन 8 लोगों के नाम आए। लेकिन इन 2 लोगों के नाम जो कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम है, बेसिकली चूंकि ये लोग सर्वे सर्वा हैं इस ट्रस्ट के, इनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए, इनकी लापरवाही की चर्चा है, नाम है या नहीं है, लेकिन इन पर सवाल उठे, इनकी भूमिका संदेह के घेरे में कि आखिर इनके रहते ऐसा कैसे हो गया। हालांकि अब कहा जाता है कि चंपत राय की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, बहुत सारे लोगों ने इसकी बात कही, निष्कलंक जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए कि निष्कलंक है। बावजूद इसके, जब वो इसके महासचिव हैं, वो सर्वे सर्वा हैं और उनके नाक के नीचे ये हुआ है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए आज उनका इस्तीफा हो गया है सरकार की तरफ से। इसको एक तरीके से कंफर्मेशन कर दिया गया है कि ये दोनों अब ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं, दोनों का इस्तीफा हो चुका है। ठीक
0: है, आपके पास संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी देर हो गई है इस्तीफा आने में? सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी इस मामले में, विपक्ष ने भी दोनों के नाम लेकर कई सवाल उठाए और उसके बाद ये इस्तीफा आया, यानी कि लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि विपक्ष ने यह भी कह दिया कि देखिए छोटी छोटी मछलियां फंस जाएंगी, बड़े मगरमच्छ रह जाएंगे।
4: देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में अगर ये कहा जाए कि जब पूरा रायता फैल गया तब ये समेटने चले हैं, ये हाल हो गया कि पूरी किरकिरी हो गई, राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े हो गए, चोरी की बातें आने के बाद तमाम जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, विपक्ष हमलावर हो गया, और उसके बाद एसआईटी तक गठित करनी पड़ी। और एसआईटी ने जब इस पूरे मामले में सिफारिश कर दी कि इस जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए, जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, जो कदम उठाए जाने चाहिए, इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े ट्रस्ट और इतनी बड़ी जगह पर जब करोड़ों का, लाखों रुपए का चढ़ावा आ रहा है, तो उसके मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए गए। जो लोग वहां पे ड्यूटी देने जा रहे हैं सेवादार, उनकी कोई चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं हो रही है, वो जब लौट के घर जा रहे हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं हो रही है, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। इन तमाम बिंदुओं पर जब एसआईटी ने अपनी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी है और उसके बाद जब किरकिरी हो गई है तब एफआईआर हुई, 8 लोग गिरफ्तार हुए और अब चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा दे दिया गया। तो कहा जाए कि अब ये इस पूरे मामले में सेफ एग्जिट की बात तो जरूर है, लेकिन जो नुकसान होना था, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इमेज वाइज, चाहे जो कुछ भी नुकसान होना था, ये हो चुका है और अब इस मामले में कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है।
0: ठीक है, इकबाल अंसारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल जी, इस इस्तीफे से काम चल जाएगा या फिर अभी भी कार्रवाई में कहीं ना कहीं त्रुटि है, गैप है, और ये सिर्फ एक माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है, खाना पूर्ति है।
5: देखिए ऐसा है कि अब ये जो है ये परिसर के अंदर की बात है, जो भी खबरें बाहर से जो है बाहर से आ रही है उसी की सच्चाई है, क्योंकि अभी जो लोग 7-8 लोग पकड़े गए हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, और कुछ लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। अब जब तक वो सब गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है कोई चीज बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है मामला बहुत सुरक्षा के घेरे में रहता है, क्योंकि चोरी तो हुई है।
0: ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या ऐसी कोई रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी संभावना है कि आप ट्रस्ट के महासचिव हैं, बड़े पद पर हैं, आपकी आंख के नाक के नीचे रोज चंदा गिना जा रहा है, सोने चांदी की जो आभूषण है वो दान के तौर पर आ रहे हैं, और वो गायब हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, आपको कानों कान खबर नहीं है? या तो आपने आंख नाक कान बंद कर रखा था, या तो आप जानते थे ये सब कुछ हो रहा है फिर भी आप चुप थे क्योंकि उसी में आपकी भलाई थी।
2: बिल्कुल, देखिए जो इस्तीफा पहले दिया गया नेहा, वो तो ये कहा गया है कि नैतिकता के आधार पर दिया गया है, क्योंकि उन्हें ये अब महसूस हो गया है कि यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हो रही थी और कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में थी या नहीं, इस पर अभी विचार विमर्श होना। लेकिन अभी जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो ये मान के दिया है कि उनकी जिम्मेदारी थी इस चोरी को पकड़ना और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो पिछले कई वर्षों से हो रहा था, जिसको नहीं किया। चंपत राय जो महासचिव हैं और अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, इन दोनों की नज़रों में ये सब चंदा चोरी की बात चल रही थी, लेकिन क्या उन्होंने कार्रवाई की, नहीं की। इसी वजह से अब वो नैतिकता के आधार पर अपना समझते हैं कि हमें इस्तीफा देना चाहिए राम मंदिर मामले पर, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा ये दिया है। और अब इसमें इन जांच SIT जो अभी कर रही है और आगे की भी कार्रवाई होनी है कि कितनी संलिप्तता है और किस कितनी जानकारी है इनको, ये कार्रवाई पर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआती ये नैतिकता के आधार पर जरूर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राम मंदिर।
0: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। संजय, बार बार SIT की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जाते हैं और इस मामले में तो खास तौर पर उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि SIT भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो छोटे लोग हैं उन पर ही गाज गिरेगी। लेकिन आज चंपत राय के इस्तीफे से क्या उनकी कुर्सी जाने से बात यहीं खत्म हो जाएगी?
6: ये जो पूरी कहानी है चंदा चढ़ावा चोरी और चंपत राय, ये चार स्तंभों पर चलती है और इसमें चंपत राय का इस्तीफा ऐसा है जिससे दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। विश्व हिंदू परिषद चंपत राय और बाकी अन्य लोगों को ने राहत की सांस ली कि चलो विपक्षियों का मुंह बंद हो गया। विपक्षियों ने ये सोचकर खुश हो रहे हैं, विपक्षी जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, कि चलो हमारी मांग के बाद चंपत राय का इस्तीफा हो गया। लेकिन टिन्नू यादव और बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें संकल्प मिश्रा हैं, बाकी और मिश्रा हैं, तो उनकी गिरफ्तारी वो चिंगारी नहीं, वो एक पलीता है। पलीते की आग कहाँ तक जाती है? वो मुख्य जगह तक जाती है जहाँ बड़ा विस्फोटक होता है। क्या वो वहाँ तक पहुँचेगी, ये जांच का विषय है। और साथ ही जो बात कर रहे थे अपने सहयोगी, वो ये बता रहे थे कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे ये सारा गोरख धंधा चल रहा था, तो ऐसे में ये भी बड़ी बात है कि विपक्षी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब मुखिया अगर धृतराष्ट्र हो जाए तो महाभारत होना लाजमी है, महाभारत होता है, तो उस समय क्या सचमुच उनको पता नहीं था, उन्होंने अनदेखी की? क्या टिन्नू यादव से इतना उनका लगाव था कि उनके सारे कुकर्मों पर या सात खून माफ जैसी चीज हो गई थी? तो ये तमाम चीजें हैं।
0: मैं आपसे टेक्निकल बात समझना चाहती हूँ। अगर SIT की रिपोर्ट में जो प्राथमिक रिपोर्ट है इसमें दोनों का नाम नहीं है, लेकिन अगर पूछताछ जो 8 गिरफ्तार लोग हैं उसमें इनका नाम बार बार सामने आ रहा है और साक्ष्य भी मौजूद हैं, तो क्या इन पर अब एक एडिशनल FIR दर्ज हो सकती है कल वाली FIR के बाद?
6: अंतरिम रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट तक जाने में कितना रूप बदलेगी, ये सचमुच दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। और जाहिर है कि जांच से, पूछताछ से, टिन्नू यादव और बाकी अन्य लोगों के पूछताछ से कुछ न कुछ तथ्य आगे आए होंगे, क्योंकि कल जब हमारी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं से बात हो रही थी, बड़े पदाधिकारियों से, तो उन सारे लोगों ने कहा कि जो लोग चंपत राय के इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो सारे लोग या तो चंपत राय को नहीं जानते हैं।
0: आपके पास वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जी, आपसे तो कानूनी एंगल मुझे समझना होगा कि क्या सिर्फ ट्रस्ट के पद से इस्तीफा देना काफी होता है अगर आपका नाम बात की एसआईटी रिपोर्ट में आता है तो क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इन दोनों के खिलाफ जो मुख्य नाम इसमें सामने आ रहे हैं?
7: देखिए ऐसा है, आरोप लगाने से बाकी बातों से कोई मतलब नहीं होता। आरोप आया है, नैतिकता के नाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि जांच प्रभावित ना हो, और जांच होगी, जांच में जो सामने आएगा सामने आएगा।
0: मैं कह रही हूँ अगर एसआईटी रिपोर्ट में इनका नाम आता है जो बाद में जो एक एसआईटी रिपोर्ट पूर्ण रूप से आएगी।
7: देखिए कंजेक्चर पर अगर ऐसा होता है तो कोई बात कानून में नहीं होती है, कानून में जो कोई भी सामने आ जाती तब उस पर बात होती है।
0: आपको लगता है कि इस्तीफे पर बात रुक जाएगी और इतना ही काफी होगा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा?
7: इस्तीफा का मतलब तो होगी वो हट गए, इस्तीफा का मतलब पार्टी टाइम नहीं हट गए कि ताकि जांच हो सके, तो किसी को कहने उन्हें कि हमने जांच को प्रभावित किया बस, अब जांच होने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है, जांच होने के पहले अभी कोई बात नहीं कही जा सकती।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंपत राय का ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा आ गया है, ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा आ गया है। दो प्रमुख नाम जो लगातार लिए जा रहे थे इस पूरे धांधली मामले में, पूरे दान चोरी के मामले में, दो प्रमुख नाम जिनका आज इस्तीफा आया है लंबे वक्त के बाद, जब दोनों के नाम शुरुआती दौर से ही चल रहे थे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, विपक्ष इन दोनों का नाम देना बंद कर देगा, इस्तीफा ही काफी है?
3: नहीं, स्टॉप बिल्कुल फुल स्टॉप इनके इस्तीफा देने के बाद नहीं लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत जरूर, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर सरकार हो, एक राहत उनको मिलेगी, क्योंकि अभी तक यही बात चल रही थी कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों तक है और जो बड़े नाम है उनको बख्शा जा रहा है, तो अब इन्होंने खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। तो अब सरकार कहेगी कि आगे की जो जांच होगी उसमें अगर इनके खिलाफ कोई सबूत आते हैं या फिर इनके खिलाफ कहीं कुछ मिलता है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: यानी ये विन-विन सिचुएशन नहीं है कुमार,
3: जो आठ लोग
0: क्योंकि कल जो संजय सिंह ने जमीन घोटाला मामले में भी साक्ष्य सौंपे हैं उसमें चंपत राय का ही नाम प्रमुख तौर पर उन्होंने बार बार लिया है, उस मामले में भी अब इनकी फांस अभी लगी हुई है, कम नहीं हुई है इनकी मुश्किलें?
3: देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो संजय सिंह ने जो भी दस्तावेज सौंपे हैं ये दो साल पहले जो एक मामला खुल कर आया था उसके तमाम ये दस्तावेज हैं, उस वक्त भी चंपत राय पर आरोप लगे थे लेकिन उस वक्त तमाम तरह के जवाब दिए गए। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने अपनी तरफ से कहा था जिनके पास भी कोई सबूत हो वो सब सामने आए और अपना सबूत सौंपे, तो सिर्फ संजय सिंह सामने आए, बाकी तमाम लोग जिन्होंने आरोप लगाए थे कोई सामने नहीं आया। तो देखिए एक राहत जरूर, चाहे ट्रस्ट की तरफ से देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद को, पूरे इकोसिस्टम को, सरकार को, सबको एक राहत मिली है, क्योंकि इन दोनों नाम की वजह से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती, एक रायता फैल चुका था जो सरकार से लेकर के और पूरे विश्व हिंदू परिषद या फिर ट्रस्ट और तमाम लोगों को बहुत अखर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी हो रही थी। अब इस इस्तीफे के बाद वो कुछ हद तक थम जाएगा ये जरूर है, लेकिन सिर्फ इस्तीफा दे देने मात्र से दाग धुल जाएगा ऐसा नहीं है, जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती और उसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, यानी कि वो साफ नहीं करता कि हाँ इसमें चंपत राय का कहीं कोई रोल नहीं था, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कहीं कोई लापरवाही नहीं थी, तब तक इनका नाम लिया जाता रहेगा। और जिस तरीके से देखिए विपक्ष ने सिर्फ चंपत राय को मुद्दा बनाया, चाहे आप केजरीवाल को सुन लें, चाहे आप संजय सिंह को सुन लें, चाहे समाज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुन लें, समाजवादी पार्टी को सुन लें, सबके निशाने पर चंपत राय थे, तो फिलहाल वो हट गए हैं, इस्तीफा दे दिया है, नैतिकता का आधार बताया है, अब आगे की आज में देखते हैं क्या आता है, लेकिन फिलहाल एक राहत जरूर सरकार तक को हुई होगी।
0: संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजय ये इस्तीफा बीजेपी के दबाव में या फिर वीएचपी या फिर दोनों के दबाव में?
6: जब वीएचपी के बड़े नेता यानी उनके संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी से जब हमारी बात हो रही थी तो डॉक्टर जैन ने यह साफ कहा था कि जहां तक इस्तीफे की बात है जो लोग ये इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा नहीं देने का और कुर्सी से चिपके रहने का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानते या चंपत राय को नहीं जानते। चंपत राय के दिमाग में जैसे ही आ जाएगा वो एक क्षण नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कल मेरे से बातचीत में कि वो हो सकता है कि आज शाम को इस्तीफा दे दें, हो सकता है कल सुबह दे दें। तो मैंने उनसे उस समय भी पूछा था कि क्या ऐसी बात चल रही है, उन्होंने इच्छा जताई है या कोई ऐसी चर्चा चल रही है। उस समय तो वो बात को टाल गए थे, लेकिन आज वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि वीएचपी का कहना है कि उन्होंने जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, बिना दबाव के तरीके से करने के लिए ही उन्होंने अपनी बैठक, जो विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी अहम बैठक थी, वो अयोध्या में 25 तारीख को आयोजन होना था उसका, उसे स्थगित किया ताकि लोग ये आरोप ना लगाएं कि बैठक करके सारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े लोग यहाँ पर जांच पर दबाव डालना चाहते हैं, इसलिए उसको स्थगित किया गया ताकि किसी तरह का आरोप नहीं लगे। और उसी का अगला चरण है जिस समय कि इस्तीफा दिया गया, ताकि जांच पे जो फाइनल रिपोर्ट आनी है उससे पहले कोई ये ना कहे कि कुर्सी से चिपके हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजी है। और डॉक्टर जैन से आज भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है ताकि कोई आरोप लगाने वालों का मुंह बंद किया जा सके और ये कहा जा सके कि हमने अपनी मीटिंग स्थगित की है, साथ ही वहां उनका इस्तीफा भी ले लिया है। और दूसरी बड़ी चीज, जिस तरह से अनिल मिश्रा के साथ उनके रिश्तेदारों के संपर्क बताए जा रहे हैं जो इस मामले में FIR में नामजद हैं, और चंपत राय के साथ उनके करीबी यानी उनके ड्राइवर रहे टिन्नू यादव की बात की जा रही है, रमाशंकर यादव की बात की जा रही है, जो अगर इन लोगों के ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के नजदीकी लोग इसमें फंस रहे हैं और जिनके नामजद हैं, उन सारे लोगों को आखिर इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी, इन्हें पता नहीं था, तो क्या चीज थी वो जांच स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।
0: मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष जी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, चंपत राय को तो बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि जब से राम जन्मभूमि और वहां पर मंदिर बना है तब से उनका नाम सामने। ये अनिल मिश्रा की शख्सियत के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को।
2: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि अनिल मिश्रा जब किसी पद पर भी नहीं थे और ट्रस्ट में थे, और ट्रस्ट के नाते उनके पास सबसे ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी का मतलब यह है कि सारा जितना राम मंदिर का खजाना था, या कह सकते हैं कि जितनी भी एक्सेस थी, वो अनिल मिश्रा के पास थी।
0: PMO को चिट्ठी लिखने वाले डॉक्टर रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रजनीश, क्या आप इस इस्तीफे से संतुष्ट हैं, यहीं पर फुल स्टॉप लग गया है या फिर आगे कार्रवाई की संभावना आपको दिख रही है?
8: जी नमस्कार। देखिए, इस्तीफे से संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी है। ये इस्तीफा जिस दिन ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा था, विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाया गया था, अगर उस दिन आ जाता तो ट्रस्ट का कद शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बराबर होता। इन्होंने राम की मर्यादा का पालन नहीं किया। ट्रस्ट के ऊपर जब इस तरीके का दबाव बना और अनिल मिश्रा जैसे लोगों की संपत्तियां आकाश छूने लगी, जो साफ साफ अयोध्या वासियों को नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था, ये चीजें जब सब पूरी गंध मच गई उसके बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया। मुझे लगता है ठीक है इस्तीफा दिया है, लेकिन इन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, इन्होंने नैतिकता में इस्तीफा नहीं दिया है।
0: रजनीश जी, आपको SIT की जांच पर भरोसा है या नहीं है?
8: देखिए, SIT की जांच पे मुझे पहले दिन से कह रहा हूँ, SIT की जांच से ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भरोसा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरक्ष पीठ की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। 3 पीढ़ियों का बलिदान रहा है, तो इसलिए मुझे जितना विश्वास गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री पे था उतना विश्वास SIT पे नहीं था, लेकिन SIT उन्हीं के नियंत्रण में काम कर रही थी इसलिए पूरा विश्वास भी SIT के ऊपर था। इनके अलावा मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 100% विश्वास गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री पे था कि वो ऐसी कार्रवाई करें। आप देखिएगा कि दोनों जेल भी जाएंगे,
0: दोनों जेल जाएंगे, अनिल मिश्रा और चंपत राय
8: जी।
0: और अगर साक्ष्य नहीं मिले तब क्या होगा रजनीश जी?
8: साक्ष्य, अनिल मिश्रा के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अनिल मिश्रा सामान्य सा चिकित्सक, जिसका घर देख लीजिए, 3 मंजिला मकान, लिफ्ट लगी हुई है, कहाँ से पैसा आ रहा है, नाका विदेश में पड़ रहा है। आप इन लोगों के संपत्ति की जांच करा लीजिए ना, खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है।
0: लेकिन रजनीश जी, योगी आदित्यनाथ जी ने आज खुद एक सार्वजनिक मंच पर कहा है कि जो लोग बार बार कुछ नाम ले रहे हैं और बड़े नाम ले रहे हैं, वो उनके खिलाफ साक्ष्य लेकर आए तभी उन पर आरोप लगाएं, ऐसे नरगल आरोप ना लगाएं।
8: देखिए, SIT ने किया होगा और मजबूत साक्ष्य SIT के समक्ष आया होगा, तभी SIT के दबाव में इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, वरना ये लोग कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं, इनके पास इतना नैतिक बल नहीं है कि पहले दिन इस्तीफा दे देते। इन्होंने कार्रवाई के दबाव में इस्तीफा दिया है और आप देख लीजिएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इन लोगों के संपत्ति की भी जांच होगी और उसमें लोग दोषी पाए जाएंगे और जेल जाएंगे।
9: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमार अभिषेक भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से इस्तीफा आया, अचानक ये खबर आई कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि दोनों के नाम प्रमुख तौर पर लिए जा रहे थे, लेकिन बार बार ये बात विपक्ष जरूर उठाएगा कि आखिरकार इस्तीफे पर ही क्या मुख्यमंत्री ने इस बात का ही दबाव बनाया, या फिर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अगर संपत्ति की जांच होती है या फिर कुछ अन्य साक्ष्य सामने आते हैं जिसमें इररेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो इससे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आज के सार्वजनिक मंच में वो ये बात कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि बहुत सारे दोषी हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, हमारी और आपकी कल भी बातचीत हो रही थी, कल में और आज में बहुत कुछ बदल चुका है, पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया है, दो मुख्य नाम, दोनों का इस्तीफा, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं?
10: ऐसा है, ये इस्तीफा जो आज लिया गया है, ये इस्तीफा तो जब SIT का गठन हुआ था उसके पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था, जांच के पहले ही इनको आउट कर देना चाहिए था ट्रस्ट से, वो नहीं किया गया। और ये देखिए, जब इनका इस्तीफा हो गया तो निश्चित तौर से ये जिम्मेदार माने जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी और होल सोल कस्टोडियन तो यही लोग थे, तो इनको भी FIR में तो नाम होना चाहिए।
9: अवधेश जी, योगी जी

0: किया जा रहा है?
1: हाँ यस, अभी तक तो यही लग रहा है कि ये कहावत भी है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों खाती हैं। ये कहावत पुरानी कहावत है, हमारी नहीं है। तो बड़े लोग, जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को उसके नाम पर लिपा पोती हो रही।
0: ये मुद्दा इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी रहने वाला है अवधेश जी?
1: हाँ 101%, 101%, क्योंकि वहाँ के देवतुल मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि ये लोग राम मंदिर पे नाम पे आए हैं, सरकार बनाए हैं, राम के साथ ही उन्होंने धोखा किया है। तो अब हम पर कितना धोखा दे दें, ये विश्वास पात्र लोग नहीं है, ये कानी लोग नहीं है, इनके ऊपर भरोसा करने लायक लोग नहीं है। अब लोगों ने मान लिया है कि भरोसे का कोई व्यक्ति है, भरोसे का कोई नेता है तो वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी है, भरोसे के लिए है, उन्हीं को सरकार में लाना चाहते हैं। ये डिसाइड कर लिया है, ये जनता आपकी देवतुल मतदाता आपकी चुनाव लड़ेगी।
0: सब चुनाव तक सब निपट जाएगा, मतलब जांच पूरी हो जाएगी या फिर ये चलता रहेगा?
1: ये तो ऐसा है, ये जांच तो बहुत बड़ी जांच है, ये बड़ी जांच है। जब से मंदिर बनना हुआ उसके पहले से चढ़ावा आ रहा था, ईट चांदी की ईट न जाने कितनी आई है। तो ये सिलसिला, ये चोरी डकैती का लूट का सिलसिला लंबा है, तो जांच भी लंबी चलेगी।
0: सिर्फ हिंदू इससे आहत हुए हैं या फिर पूरे देश की जनता आहत हुई है जिस तरह से ये मामला सामने आया?
1: ये जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी हिंदू है, धार्मिक है, उनका उनकी भावना आहत हुई है। हम सनातन सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे दिल पे चोट लगी है, हमारी धार्मिक भावना पे चोट लगी है, प्रहार लगा है। हम प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है। ऐसे हमारे जैसे इस देश में करोड़ों करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो यहाँ लाखों की तादाद में रोज आते थे, 5-5 लाख।
0: ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अवधेश प्रसाद जी, सांसद समाजवादी पार्टी से, जो बता रहे थे कि इस्तीफा देने में लगभग देर हो गई है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ हैं। संजय, जाहिर तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में तो मिल ही गया है, लेकिन वाकई क्या टाइमिंग इस इस्तीफे की लेट है?
2: देखिए, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही? एफआईआर दर्ज हो गई तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? इस्तीफा हो गया तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल तो अनंत हैं, सवालों का सिलसिला चलेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले यूपी के चुनाव में ये मुद्दा जीवंत रहेगा। और कई पार्टियों ने तो अभी से घोषणा कर दी कि उनके घोषणा पत्र में ये सारी चीजें रहेंगी कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे, ये हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालेंगे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके घोषणा पत्र में होगा। अब ये देखना कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल कितना करती है, कितनी गंभीरता से करती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसमें ये, चूंकि जिन लोगों ने दान किया हो या नहीं किया हो वो सर ट्रस्ट से सवाल तो
0: मैं
2: जरूर पूछेंगे।
0: आपको इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त आज तक के पास है, यानी कि एफआईआर की जो डिटेल्स है वो इसमें दर्ज थी। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, कौन कौन से लोग हैं जो एफआईआर में नामजद हैं, उन सब की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है। 8 लोग इसमें बताए जा रहे थे, पहले 6 नाम सामने आए, उसके बाद सभी नाम सामने आ गए। अब वो एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है। ये देखिए एफआईआर की वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। इस एफआईआर में तमाम डिटेल्स हैं, सभी धाराएं लिखी हुई हैं और इस कॉपी के बारे में आशीष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या क्या डिटेल्स हैं, अब तो कॉपी सामने आ गई है?
3: अब बिल्कुल नया देखिए, जिसकी आज तक ने इस खबर को सबसे पहले भी दिखाया था और आप जो कॉपी सामने भी है, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो बीएनएस की धारा है वो 305 सेक्शन के तहत लगाई गई है, 306 सेक्शन के तहत लगाई गई, जो मैं आपको कॉपी पढ़ के भी बता रहा हूँ, 316 और 317 और

0: 61 इसके तहत ये जो धाराएं हैं ये पूरी लगाई गई हैं, जिसको हम शुरुआत से कहते आए हैं और दिखाते भी आए हैं। आज वो चीज़ की पुष्टि पूरी तरीके से आज तक कर रहा है, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में उपस्थित यहाँ के जितने भी लोग थे, वो बाकायदा यहाँ पर किस तरीके से चढ़ा जो धनराशि थी उसकी चोरी, गबन, आपराधिक इन मामलों को लेकर इस मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि ये जो गबन किया गया, चोरी की गई, दान पात्रों से छेड़छाड़ की गई, इसको लेकर पूरा ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें पीसी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नाम देखिए दिए हुए हैं अविनाश शुक्ला, अनकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इसके साथ मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, साथ साथ रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, और अज्ञात, ये सोचिए आप, इसमें अज्ञात भी हैं, जो हम कल से कह रहे हैं कि अज्ञात आशुतोष तिवारी श्री के माध्यम से दर्ज किया गया। एक तरीके से इसमें अभी भी और अज्ञात लोग हैं, यानी कि ये 8 लोगों के वजह से पूरी FIR कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसमें और भी अभी लोग शामिल हैं और उन पर भी पुलिस सब जांच कर रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस FIR की बात हम कर रहे थे, जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं, वो FIR अब आज तक पर है, स्क्रीन पर है, और उसमें एक एक वो नाम है जिसको हम जिक्र कर रहे हैं, कल से बता रहे हैं, और साफ तौर से उन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने आज उसको जारी भी किया है कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कार्रवाई है अभी तक की इस राम मंदिर मामले पर, जिसमें वो 8 आरोपी हैं और उसके अलावा अज्ञात के साथ जांच की जा रही है, और भी लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं, जिसको हम जानकारी दे रहे हैं, और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश के,
1: कार्रवाई जारी रहने वाली है। कुमार अभिषेक भी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये अज्ञात नाम से जो FIR में बात है, इसके माने ये निकाले कि आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी और इनके नाम सामने आएंगे, अभी कुछ तथ्य कुछ साक्ष्य जुटाने बाकी हैं, या फिर ये इसी तरह से अज्ञात रहने वाले हैं? क्योंकि कई एजेंसीज, आपने कहा था कि बैंक ने एम्प्लॉय करी थी, उनके कुछ नाम हो सकते हैं जो अभी सामने नहीं आ पा रहे हों, और कौन सी वो धाराएं हैं जो इतनी संगीन है कि अगर उनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है?
2: देखिए नया, निश्चित तौर पर ये जो जांच शुरू हुई है, इसमें अज्ञात लिखने का मतलब ये नहीं है कि लोगों पर यूं ही इसे खुला छोड़ दिया जाएगा। 8 लोगों के नाम आ चुके हैं, तकरीबन 150 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, इसके बाद भी ये जांच आगे रहेगी, तो आगे और भी नाम आ सकते हैं। क्या अनिल मिश्रा, क्या चंपत राय, ऐसे नाम भी आगे आएंगे? हालांकि इन दोनों की तरफ से जो इस्तीफे की बात आ रही है, उसमें नैतिकता का आधार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूंकि बात इतनी बढ़ चुकी है, किरकिरी इतनी ज्यादा हो चुकी है, कि अब नैतिकता ही वो एक आधार है जिसके आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन लापरवाही के चार्जेज और कहीं ना कहीं SIT के रिपोर्ट में इनकी तरफ उंगली उठाई गई है, तभी इनके इस्तीफे हुए हैं। अब आगे इनकी भी जांच हो सकती है, क्या आखिर अनिल मिश्रा को लेकर के जो बातें आई हैं, क्या उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या जो आय से अधिक संपत्ति जैसे मामलों में में इन्वेस्टिगेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेगी। तत्काल या तात्कालिक राहत के तौर पर यह माना जा सकता है कि इन दोनों के इस्तीफा होने के बाद अब ट्रस्ट फिलहाल ट्रस्ट में कोई नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखें तो फिलहाल ट्रस्ट में कोई ऐसा एक्टिव मेंबर नहीं है जो इस वक्त आपको दिखाई देगा, लेकिन जांच जारी रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है, SIT की तरफ से भी कहा गया है। तो अज्ञात की तरह कई और नाम इसमें आगे आ सकते हैं, इसीलिए अज्ञात छोड़ा गया है। हालांकि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कई कठोर धाराएं हैं, तो जो भी पकड़े गए हैं या जिन पर सिद्ध होता है उनको कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा।
1: ठीक है, संजय भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। संजय, आप कह रहे थे कि बहुत से विपक्षी पार्टियों के, और इस बीच बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, SIT के कड़े एक्शन की सिफारिश पर इस्तीफा दिया गया है, यानी कि SIT का कड़ा एक्शन हो सकता है, उसी आधार पर अब ये इस्तीफा दिया गया है। रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती में कई खामियां पाई गई हैं और हो सकता है इसके बारे में चंपत राय को पूर्णतः जानकारी हो, खामियों पर ही SIT ने कार्रवाई की सिफारिश की थी, यानी कि वो कौन से लूप होल्स थे इस चढ़ावे की गिनती में जिसके बारे में चंपत राय जानते थे और उन्होंने उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आशीष, एसआईटी के कड़े एक्शन की सिफारिश पर इस्तीफा आया है?
0: बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी ने इसमें एक बड़ा एक्शन और संतुष्टि दी थी कि इसमें लापरवाही, जो मिसमैनेजमेंट है, वो चंपत राय जो महासचिव हैं अनिल मिश्रा के जरिए हुआ है, यानी कि उनकी अनदेखी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट ने कहा है कि चढ़ावा या गणना कक्ष में जहाँ पर संचालन थी और जहाँ पर प्रबंध में बड़ी खामियां आई, यानी कि जो मैनेजमेंट इन्होंने बनाया था, सेट किया था, एक डेमो सेट करते हैं कि आप ऐसे काम करेंगे, वो उसमें ही खामियां थी। जो मैनेजमेंट इन्होंने बना के तैयार किया था वही बेकार था। और दूसरा सबसे बड़ी जो चढ़ावा आ रहा है उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था कि वो कहां जाना है, किसके पास जाना है। तो इस खामियों के चलते ही एसआईटी ने रिकमेंड किया कि जो चंपत राय है उन पर कार्रवाई की जाए, या जो कह सकते हैं कि उन पर अनिल मिश्रा पर।
1: बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, टिकते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
7: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfacion.
8: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
9: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
8: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
9: Remember, around here, we use the F Word,
8: never the S Word.
7: The S Word, available now on TuneIn,
10: wherever you get your podcasts,
7: and on the S Word YouTube channel.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: In association with Hind, बड़े आराम से
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Vimal, bolo zuban kesri.
8: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। भारी दबाव के बाद हुई छुट्टी। दोनों पर भी दान के रखरखाव की जिम्मेदारी। चढ़ावा चोरी पर गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, कहा जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं। विपक्ष पर उठाए सवाल, का सबूत हो तो लाओ वरना बंद करो आरोप लगाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपित गिरफ्तार। चंपत का ड्राइवर टिन्नू भी अरेस्ट। 8 आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी में मिले हैं सबूत। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा, अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली, जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो। पटना मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्रवाई पर विवाद। एक्शन के बाद पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। कहा, मुझे बर्न इंजरी थी, सीनियर को बता कर ली थी छुट्टी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में आपके सामने हाजिर है। और न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। संत कबीर जी ने कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाए छप छूट। लेकिन अयोध्या में कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि राम दान की लूट है, लूट सके तो लूट, काहे का पछताना, मिल बांट की लूट, कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी रख रखाव की, अब उन लोगों का इस्तीफा हो रहा है। चंपत राय महासचिव इस्तीफा दे दिया ट्रस्ट के, अनिल मिश्रा ट्रस्टी इस्तीफा दे दिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तो बहुत से नाम आने बाकी हैं। यानी जांच जब और गहराई तक जाएगी तो बहुत से नाम हैं जो बेनकाब होने जा रहे हैं, जिनकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हो। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर, और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भगवान राम के घर लूट की छूट किसने दी, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन रामलीला के दरबार में चोरी होती रही और ट्रस्ट के पदाधिकारी मूर्ख दर्शक बने रहे। अब भारी फजीहत हुई तो उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे इनसे बात कर लेते हैं। आशीष, अब जग हसाई हो रही है, सब सवाल खड़े कर रहे हैं कि राम चढ़ावे की लूट हो रही है, चोरी हो रही है, तो उसके बाद अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, और क्या जानकारी आ रही है आपके पास?
1: देखिए मानसू, सबसे बड़ी बात है कि आज तक ने जिस हिसाब से खबर शुरू किया और उसके बाद ये साफ हुआ कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। 8 आरोपियों पहले की गिरफ्तारी की गई और अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। चंपत राय, जिनके ऊपर पूरे राम मंदिर की जिम्मेदारी थी, करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर ये आरोप लगा। उसके बाद अरिंद मिश्रा, उनके ऊपर आरोप लगता है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। वजह साफ थी कि आखिर SIT ने जो जांच की थी उसमें ये पाए थे पर्याप्त सबूत कि इनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और इसी वजह से नैतिकता के आधार पर आपने मिसमैनेजमेंट हुआ, आपके सामने आपने पूरे तरीके से इस मैनेजमेंट को ख्याल नहीं रखा, CCTVs का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा, आपके हाथों में जिम्मेदारी थी, यानी कि राम मंदिर की चाबी अंदर चोरी होती रही, ये सब।
0: देखिए मैं आपको रोकता हूँ आशीष, इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। CCTV फुटेज उपलब्ध कराए गए थे जांच के लिए और 27 अप्रैल से 5 जून तक का, यानी जो करीब 42 दिन का फुटेज दिखाया गया, उसमें 70 बार चोरी और गबन देखा गया। यानी CCTV से बचाकर पैसे गायब करना, गड्डी गायब करना, नोट गायब करना, चोरी करना, आप कह सकते हैं चोरी करना, ये CCTV फुटेज की जब जांच हुई तो उसमें पता चला। और देखिए फिर आपको बता रहे हैं, 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक ये CCTV फुटेज उपलब्ध कराया गया था। आशीष जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। आशीष, जो 42 दिन का CCTV फुटेज उपलब्ध कराया गया, 70 बार गबन या पैसे चोरी का उसमें मामला सामने आ रहा है, क्या जानकारी मिली इससे?
1: हिमांशु देखिए, ये तो सिर्फ 3 महीने का CCTV फुटेज है जिसमें 70 बार चोरी की गई है। अभी आप सोचिए कि जब पूरे साल का निकलेगा तो उसमें कितनी बार चोरी होगी। इस बात का SIT ने रुख किया था, SIT ने कहा भी कि बहुत से मायने पर हमें CCTV मिले ही नहीं, हमें पुराने CCTV चाहिए थे जिसमें और भी हम बैकअप ले सकते थे, जिसके लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की बात की गई थी SIT के द्वारा। आज तक ने पहले इस बात को बताया भी है, यानी कि आप 70 बार चोरी हो रही है 3 महीने के ही रिकॉर्ड में, तो उस चोरी का लेवल आप सोचिए कि लगातार हो रही है, और ऐसे में इस्तीफा नैतिकता तौर पर दिया है, यानी उनकी आंखों के सामने हो रही थी, इसी वजह से इस्तीफा उनको देना पड़ा। और कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा को कि आखिर इतने बड़े राम मंदिर में जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था थी, वहां पर आपके सामने CCTV पर चोरी हो रही है, लोग कर रहे हैं वहां के जो अंदर हैं, वो 8 आरोपी अभी सामने आए हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, वो सब गिरफ्तार हुए हैं, तो ये चोरी चल रही थी चंदे की, जिस चोरी की बात कही जा रही थी, चढ़ावे की बात कही जा रही थी, वो चोरी CCTV में की जा रही थी। आज तक इस बात पे हमारे पास बिल्कुल वो SIT के पॉइंट थे जिसमें ये कहा गया है साफ तौर से कि 3-3 महीने की जो रिकॉर्डिंग देखी गई है उसमें इतनी इतनी बार चोरी मिली है, यानी 1-2 बार नहीं, ये लगातार 70-70 बार अगर चोरी मिल रही है तो आप सोचिए। यही नहीं, इसके अलावा जो आंकड़े मिलाए जाते हैं वो भी हुंडियों।
0: और देखिए इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। SIT की तरफ से जब प्रारंभिक जांच की गई तो उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि ये इस्तीफे की झड़ी अब शुरू हुई है। चंपत राय के इस्तीफे को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है कि SIT की तरफ से प्रारंभिक रिपोर्ट में भेंट चढ़ावा जो काउंटिंग होती थी उस कक्ष तक नकदी के संचालन और प्रबंधन में कई बड़ी खामियां पाई गई। नकदी की जो गिनती होती थी, प्रबंधन की व्यवस्था थी, उस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और यह बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में की गई सख्त सिफारिशों के बाद अंततः ये फैसला लिया गया है कि महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियां पाई गई थी। तो इतनी गड़बड़ियां पाई गई जिसके बाद एसआईटी ने कार्रवाई की सिफारिश की और एसआईटी के कड़े एक्शन की सिफारिश पर अब यह इस्तीफा हो गया। फिर आपको बता दें चंपत राय जो कि महासचिव थे ट्रस्ट के, अनिल मिश्रा ट्रस्टी थे। अब जब इन दो लोगों की बात की जा रही है, चंपत राय की बात की जा रही है, चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा की बात की जा रही है, तो रिजाइन क्यों दिया? तो यहां पर समझिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जो कठोर सिफारिश की गई, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात की जा रही है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो आप उसे ऐसे समझिए कि कठोर सिफारिश यहां पर की गई एसआईटी की तरफ से, जो प्रारंभिक जांच हुई, पूरे ट्रस्ट की फजीहत हुई, पूरे ट्रस्ट की फजीहत ऊपर से लेकर नीचे तक जिनके पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, फजीहत तो होगी, करोड़ों श्रद्धालु आते थे यहां पर, और ये जो ट्रस्ट था ये चोरी रोकने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुआ, ये स्पष्ट हो गया 42 दिन के फुटेज में, 70 बार गबन हो रहा है ये दिख रहा है इसमें, और इसीलिए कहा गया कि चोरी रोकने में ये असमर्थ थे, और इसीलिए ये इस्तीफे की बात की जा रही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, नैतिक आधार पर ये त्याग पत्र की बात अभी तक सामने आई है, अंदर की आवाज आती है, जिम्मेदारी तय की जाती है, और आप सोचिए पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई, विश्व हिंदू परिषद पर विपक्ष का दबाव भी था, ये भी हमने देखा, दबाव था, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इस रिपोर्ट में लगातार गड़बड़ियां सामने आई हैं, ऑडिट रिपोर्ट की बात की जा रही है, मतलब हर तरफ गड़बड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक, ऑडिट रिपोर्ट में लगातार गड़बड़ियां मिली हैं, ये भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 से लेकर 2025 तक जो ऑडिट हुआ उसमें बहुत सी गड़बड़ियां पाई गई हैं। 2025 आपको याद होगा जब घाटन हुआ था, करोड़ों श्रद्धालु जुटे थे, खुश हुए थे, लेकिन अब सबकी भावनाएं हाथ हो रही है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, एक तो एसआईटी की रिपोर्ट, जिम्मेदारी तय हुई उसके बाद अब यहां पर इस्तीफा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि एक नहीं ना जाने कितनी गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों का अंत नहीं हो रहा है।
2: हिमांशु, देखिए जब एसआईटी रिपोर्ट आई है तो सिर्फ एसआईटी रिपोर्ट ने 8 लोगों के खिलाफ ही अपने सबूत जुटाए हैं, ऐसा नहीं है। इस पूरे परिसर में जो खेल चल रहा था शुरुआती तौर पर, जो जो चीजें सामने हैं, मसलन 1.25 महीने में 70 चोरियों के प्रमाण, खास करके सीसीटीवी से मिले हुए प्रमाण, 3 साल के ऑडिट के भीतर के मिले हुए प्रमाण, ये तमाम चीजें सामने आई हैं, और उसके बाद नैतिकता के आधार पर कहा जा रहा है इस्तीफा दिया। अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था तो जिस दिन ये जांच शुरू हुई थी उस वक्त ही नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे करके और तब जांच में जाना चाहिए था। देखिए ये किसी के गले नहीं उतर रहा कि ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा है। दरअसल जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा स्टैंड ले लिया है और जांच रिपोर्ट में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ है। तो इस्तीफे को बहुत आसान शब्दों में इसलिए कि मेरे नेतृत्व में चीजें हैं और यहां गड़बड़ियां पाई गई इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ा दबाव इस वक्त बना हुआ है विश्व हिंदू परिषद से लेकर के जो तमाम पूरा इकोसिस्टम है जो कि इसको देखता है, रन करता है, और जो भी राम भक्त हैं ऐसे लोगों का पर भी काफी।
0: अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बात बहुत तय है, एक बात बहुत तय है और ये सबको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट को इस बारे में जानकारी तुरंत अभी मिली हो, काफी पहले से इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन चंपत राय रोक ही नहीं पाए जो लूट हो रही थी, जो चोरी हो रही थी, और अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे शुरुआत से लेकर एंड तक। आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का खुलासा अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब मई के आखिरी सप्ताह में ट्रस्ट ने दान पेटियों से निकलने वाली रकम और बैंक में जमा हो रही राशि का मिलान किया। एक दान पेटी से आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए निकलते थे, लेकिन लगातार 500 रुपए की गड्डियों में कमी दिखने लगी और यहीं से शक गहरा गया।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही FIR दर्ज कर ली गई हो, लेकिन इस चोरी का खुलासा कुछ वक्त पहले ही हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लगातार शिकायतें मिलने लगी कि दान पात्र से मिली रकम चोरी हो रही है, जिसके बाद जिस कमरे में नोट गिने जाते थे वहां कुछ हिडन कैमरे लगाए गए और इन हिडन कैमरे की फुटेज देखी गई तो कुछ कर्मचारी इसमें चोरी करते पकड़े भी गए।
0: शक के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। जांच में दावा है कि कैमरों में फुटेज में कर्मचारी सामने लगे CCTV को ढाल बनाकर खड़े हो जाते थे और दूसरा कर्मचारी नोटों की गड्डियों से नकदी निकालकर कपड़ों में छुपा लेता था। यही नहीं, जांच में चोरी का एक और तरीका सामने आया। आरोप है कि नोटों की गड्डियों में अतिरिक्त नोट रख दिए जाते थे। बैंक में हर नोट गिनने के बजाय पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता था। बाद में बैंक ले जाते समय गड्डियों से अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह रिकॉर्ड भी सही दिखाई देता था और चोरी भी पकड़ में नहीं आती थी।
1: एक गड्डी में जो 100 नोट जमा होते थे उसमें 110, 120 नोट जमा कर दिए जाते और जब उस 100 नोटों की गड्डी का वाउचर बनता और बैंक में जमा करने से पहले ये कर्मचारी उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लेते। इस तरह से जिसको जहां मौका मिल रहा था चढ़ावा चोरी कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही निगरानी रखने वाले, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या फिर मुख्य व्यवस्थापक के तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव या फिर सुपरवाइजर सुभाष श्रीवास्तव।
0: जांच एजेंसियों का दावा है कि वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। इसी मामले में अनुकल्प मिश्रा, उनके बहनोई लवकुश मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जांच में ये भी सामने आया कि नोट गिनने वाले कई कर्मचारी आपसी रिश्तेदार या परिचित थे। आरोप है कि मुख्य आरोपित रामशंकर यादव और तिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को इस काम में लगाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को। ड्यूटी के बाद कर्मचारियों की तलाशी न होने का भी आरोपियों ने कथित तौर पर फायदा उठाया।
1: पुलिस ने इस मामले में इन सभी 8 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है और अब हर एक व्यक्ति की भूमिका की जांच और उसके बाद इनके शरणदाताओं संरक्षणदाताओं आकाओं के बारे में ही पूछताछ की जाएगी।
0: SIT का दावा है कि सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए देवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, कंगन और पायल जैसे जेवरों को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले ही निकाल लिया जाता था। जांच में अविनाश शुक्ला के बैंक खाते में संदिग्ध रकम जमा होने का दावा किया गया है। फिलहाल इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस और SIT पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक में इतनी बड़ी कथित चोरी लंबे समय तक कैसे चलती रही। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट पर भी है, जब ये चोरी मई में ही पकड़ी गई, तो FIR कराने में 26 दिन क्यों लग गए। 7 जून को जब मामला खुला तब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय क्यों कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: और देखिए विपक्ष गंभीर सवाल उठा रहा है और सवाल उठाए भी क्यों ना, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। जब आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चढ़ावा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और राम भक्तों को बदनाम ना करे विपक्ष।
3: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
2: तो जैसा आपको बताया था, बयानबाजी लगातार हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान आया और उनका यह कहना है कि कुछ लोगों को बचा लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावे पर बयान आता है शंकराचार्य का और कहते हैं कि असली आरोपियों को बचा लिया गया है। ये बयान आया है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, सवाल भी पूछ रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, कौन बचा रहा है उन आरोपियों को जिन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। सुनिए,
4: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वो उनका क्या मतलब है, वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है।
2: और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर है आज तक के पास है, एक्सक्लूसिव वो कॉपी हम आपको दिखाएंगे और जिसमें बताएंगे कि क्या क्या उस एफआईआर में लिखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आज तक के पास चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर की कॉपी है और चढ़ावा चोरी केस में पुलिस केस डायरी की कॉपी है और इसमें नाम भी लिखा गया है कि क्या क्या इस एफआईआर में। टिन्नू यादव का भी नाम है। और सीधे बात कर लेते हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानूनी जानकार भी हैं। संजय जी जरा बताइए आप कि जो एफआईआर है, एफआईआर में खास क्या है, क्या क्या लिखा गया है?
5: एफआईआर में कई सारे अपराधों में, आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे खतरनाक है 316(5), जिसको अमानत में खयानत कहते हैं। हाँ। कि आपको विश्वास के साथ कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। हाँ। और आपने उस जिम्मेदारी से उसके विश्वासघात किया हो। अच्छा। तो ये सबसे खतरनाक धारा है जिसकी सजा मिनिमम 10 साल है। अच्छा। और इसको उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना अनिवार्य है, तो उसमें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा 317 है, 61 है, 306 है। तो ये सारी धाराएं, 361 तो ये कहती है संगठित अपराध। हाँ। जिसमें आप एक साथ किसी साजिश को, साजिश रचते हैं कई लोग मिलके और उस साजिश को अंजाम देते हैं, तो इसमें सारे लोग, अगर वो साजिश ऐसे अपराध के लिए है जिसकी सजा 2 साल या इससे अधिक की हो सकती है, संगीन अपराध है, तो सारे जो लोग उस साजिश में शामिल हैं मुख्य आरोपी की तरह ही उन सारे लोगों को उसी सजा के हकदार होंगे। यानी ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, आप भी जितने लोग उसमें शामिल हैं वो सारे लोग उसके ही उस सजा के हकदार होंगे। और ये तमाम धाराएं हैं ये बताती हैं कि अपराध कितना संगीन था। और अभी आज तक ने खुद ही बताया कि पिछले 45-47 दिनों में 70 बार से ज्यादा, तो जितनी बार सीसीटीवी की निगाह में आ गया उससे कई गुना ज्यादा बार, कई गुना ज्यादा समय से पहले ये सारी चीजें चल रही थी। तो क्या मजबूरी क्या थी, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो ये सारे दोनों तीनों मुख्य आरोपी हैं जिनके, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, आरोपी अच्छा, अभी नहीं है। लेकिन वो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एफआईआर में चर्चा चल रही है कि वो अन्य कौन है। वो अन्य, ये टेक्निकल चीज है जिसमें उसको अन्य इसलिए रखा जाता है कि इन 8 लोगों से पूछताछ में और तमाम खुलासे होंगे तो वो अन्य सामने आ जाएंगे।
2: दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जल्दी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।
5: जी हाँ बिल्कुल, अब जाहिर है कि इन 8 लोगों को तो अभी तो एसआईटी ने लिखा है, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। हाँ। और फिर वो एसआईटी, पुलिस उनको कस्टडी में लेगी।
2: मतलब पुलिस और एसआईटी ने पूरी तैयारी कर ली और किसी को भी बख्शा यहाँ पर नहीं जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: सत्ताईस का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। भारी दबाव के बाद हुई छुट्टी। दोनों पर थी दान के रखरखाव की जिम्मेदारी। चढ़ावा चोरी पर गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले सीएम योगी। कहा जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं। विपक्ष पर उठाए सवाल, कहा सबूत हो तो लाओ वरना बंद करो आरोप लगाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार। चंपत का ड्राइवर टिन्नू भी अरेस्ट। 3 महीने के सीसीटीवी में 70 बार चोरी के मिले सबूत। मंगेतर मर्डर केस में सिया गोयल के पिता ने आज तक से कहा अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी खाई में फेंक दो। मां बोली जरा भी गलती निकले तो हमारे परिवार को फांसी दे दो। पटना मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्रवाई पर विवाद। एक्शन के बाद पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। कहा मुझे बर्न इंजरी थी, सीनियर को बता कर ली थी छुट्टी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक।
2: उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
3: अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को। तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब पहली बार कैमरे पर आए हैं सिया गोयल के माता और पिता। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ भी बेहद कड़ा रुख अपनाया। यहां तक कह दिया कि अगर सिया दोषी साबित होती है तो उसे भी वही सजा मिले। माता पिता का दावा है कि उन्हें चेतन चौधरी और सिया के कथित रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। दोनों ने तो यहां तक कह दिया कि सिया दोषी है तो उसी खाई में उसे धक्का दे देना चाहिए।

0: कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
1: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ तस्वीर यही बन रही है कि सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की। लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस मामले में पहली बार सिया गोयल के माता पिता कैमरे पर आए। दोनों आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिया को लेकर काफी सख्त दिखे। दोनों ने कहा कि सिया ने गुनाह किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, उसे भी खाई में धक्का दे दें।
0: वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
1: एक पिता के मुंह से निकले ये शब्द उनके सदमे की कहानी भी कहते हैं। सिया के पिता का कहना है उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी का नाम किसी हत्या की साजिश में आएगा। सिया की मां पूजा कोयल ने भी अपने पति की तरह बेटी को लेकर कड़ा रुख अपनाया।
0: ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
2: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हुई बात की बच्चों का ऐसे था तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को। ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
0: मैं
3: आप माँ हो उसकी।
2: हाँ जी, अगर वो उसने ये
0: तो बोलता
2: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
1: सिया के माता पिता ने उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें चेतन चौधरी और सिया रिश्ते की पहले से जानकारी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कभी चेतन को देखा तक नहीं था और ना ही बेटी ने कभी दूसरे रिश्ते की बात बताई।
2: मुझे तो 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं उनका, कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था।
3: तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं इस तरीके से, अलग अलग पार्टियां फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में दोनों साथ में बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं था?
2: मुझे कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: गोयल परिवार का कहना है कि रिश्ता पूरी तरह सहमति से तय हुआ था। दोनों परिवार लगातार मिल रहे थे, वीडियो कॉल होती थी, डिनर होते थे और शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। माता पिता का दावा है कि सिया ने कभी ये नहीं कहा कि वो केतन से शादी करना नहीं चाहती।
2: क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: यही नहीं, परिवार का कहना है कि बाली हनीमून की तैयारी हो चुकी थी, 50,000 रुपए की शॉपिंग कराई गई, प्री वेडिंग शूट की तैयारी थी और उदयपुर में शादी की प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में अगर बेटी शादी नहीं करना चाहती तो फिर इतनी तैयारियां क्यों होती? यही सवाल अब सिया के माता पिता उठा रहे हैं।
2: तो बाली के जो उनकी शॉपिंग थी, जो मैंने उसको 50,000 रुपए में शॉपिंग कराई थी, अगर मुझे पता रहता था इनको कुछ है या नहीं जाना है तो फिर हम क्यों शॉपिंग कराते थे उसे?
1: गोयल परिवार ने अग्रवाल परिवार के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया कि सिया के फोन बिजी रहते थे और परिवार सब जानता था। सिया के पिता का कहना है अगर केतन को कोई शक था तो अग्रवाल परिवार को उसी वक्त उनसे बात करनी चाहिए थी।
0: उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फोन बिजी आता है तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फोन नहीं अभी तक और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में कि सिया का फोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से।
3: देखो
1: इंटरव्यू में एक और बड़ा दावा किया गया। सोशल मीडिया पर चल रही करोड़ों की शादी, चार्टर फ्लाइट और 17 करोड़ के महल वाली चर्चाओं को भी गोयल परिवार ने फर्जी बताया। उनके मुताबिक शादी का बजट पहले से तय था और दोनों परिवार अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से खर्च कर रहे थे। पुलिस की जांच अभी जारी है और अदालत में सबूतों की कसौटी पर ही होगा कि साजिश किसने रची और हत्या का असली जिम्मेदार कौन है। लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया साजिश का हिस्सा थी। पुणे से ओंकार वावले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, केतन मर्डर केस में लोनावला पुलिस में सिया के भाई साहिल गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पुलिस सूत्र के मुताबिक साहिल को सिया के चेतन चौधरी के साथ रिश्ते की जानकारी थी। समझिए इस बात को, साहिल को सिया के चेतन चौधरी के साथ रिश्ते की जानकारी थी और पुलिस इस मामले में बयान दर्ज कराना चाहती है। फिर आपको बता दें, साहिल सिया का भाई बताया जा रहा है, साहिल गोयल, और उसको सारी जानकारी थी कि सिया और चेतन एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बयान दर्ज कराने की तैयारी है। तो पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पुलिस के पास सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि घटनाक्रम की पूरी थ्योरी है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची, तो दूसरी तरफ पूछताछ में सिया ने रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया। अब एक नया गवाह, एक नया मोबाइल फोन और एक नई लोकेशन पुलिस की थ्योरी को और मजबूत करती दिखाई दे रही है।

लोहागढ़ किले की यही वो खाई है जहां से 18 जून को केतन अग्रवाल 340 फीट नीचे गिरा था। शुरुआत में से हादसा माना गया, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश थी। इसी दावे को मजबूत करने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस एक बार फिर क्राइम सीन पर पहुंची।

0: पे जाके पाई गई। वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की पहाड़ी चल रही है अभी।
1: पुलिस की थ्योरी साफ है, अगर कोई व्यक्ति फिसल कर गिरता है तो उसका शरीर पहाड़ी के बिल्कुल करीब मिलेगा, लेकिन अगर किसी को जोर से धक्का दिया जाए तो शरीर काफी दूर जाकर गिरता है। इसी वैज्ञानिक आधार पर फॉरेंसिक टीम ने मौके का दोबारा निरीक्षण किया ताकि हादसे और हत्या के बीच का फर्क स्पष्ट हो सके।
2: वारदात पे मौजूद है जहां से सिया ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। सबसे अहम बात यह है, इससे पहले अलग अलग टीमें यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब खुद सुपरिटेंडेंट आ चुके हैं, वे फॉरेंसिक टीम के साथ यहाँ आ पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से कुछ एविडेंसेस है वो कलेक्ट करेंगे। इससे पहले जहाँ से जिस खाई में ढकेला गया था वहां से नीचे भी तहकीकात हुई है, उसके बाद अब सब लोहगढ़ के ऊपर ये जो टॉप है यहाँ सब आ चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या क्या हुआ, ये सबकी अब तहकीकात शुरू है। अभी तक 29 तारीख तक ये चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगी। वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि कन्फेशन शुरू है, उनके स्टेटमेंट लेना शुरू है और इंट्रोगेशन भी इस पूरे मामले में अब सामने आएगा।
1: पुलिस की कहानी सिर्फ क्राइम सीन तक सीमित नहीं है, जांच में एक नया नाम सामने आया है, नीरज कुमार। नीरज चेतन चौधरी की ड्राई फ्रूट फर्म धनश्री सील्स में काम करता है। पुलिस के मुताबिक 18 जून की सुबह चेतन अपना मोबाइल नीरज के पास छोड़ गया और नीरज का मोबाइल लेकर लोहागढ़ पहुंचा। यहीं से पुलिस को शक और गहरा हुआ। जांच में सामने आया कि 18 जून सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन के मोबाइल का इंटरनेट बंद रहा। इस दौरान उसके फोन पर सिर्फ इनकमिंग कॉल आती रही। उधर जिस मोबाइल को लेकर चेतन गया था, यानी नीरज कुमार के फोन की लोकेशन सीधे लोहागढ़ किले पे मिली। पुलिस मान रही है कि यह सिर्फ मोबाइल बदलने का मामला नहीं बल्कि लोकेशन और डिजिटल सबूत छिपाने की कोशिश भी हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका कहना है कि ये रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तय हुआ था और वो चेतन चौधरी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पुलिस का दावा है कि यही इस पूरी साजिश का मकसद बना। हालांकि सगाई और रोके की तस्वीरें एक अलग कहानी दिखाती हैं। दोनों परिवार साथ थे, मुस्कुराते चेहरे थे, शादी की तैयारियां थी और सोशल मीडिया पर भी दोनों की नजदीकियां दिखाई देती थी। यही विरोधाभास अब जांच का बड़ा हिस्सा है। पुलिस का दावा है कि हत्या से करीब 15 घंटे पहले सिया और चेतन शहर के कैफे में मिले। यही केतन की हत्या की आखिरी योजना बनाई गई। अगली सुबह तीनों लोहागढ़ पहुंचे और पुलिस के मुताबिक पहले से तय योजना के तहत केतन को खाई में धक्का दे दिया गया।
3: शुरुआत में 18 जून को जब ये वारदात हुई उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ था और सब लोग एक्सीडेंट के तौर पे ही उस पर देख रहे थे, लेकिन जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वो प्रीप्लान करके प्रॉपरली मर्डर किया हुआ है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ। उस अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर करके दोनों एक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रोड्यूस किया तो उन्होंने 7 दिन की पीसी देके 29 जून तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है।
1: पुलिस की नजर में कैफे की मुलाकात, सीसीटीवी में इशारे, मोबाइल बदलना, लोकेशन और क्राइम सीन, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसी आधार पर पुलिस इसे सुनियोजित हत्या बता रही है। वहीं मामले में बचाव पक्ष की दलील भी अलग है। चेतन चौधरी के पिता का दावा है कि अगर धक्का दिया भी गया तो सिया ने दिया और उस वक्त चेतन कुछ दूरी पर खड़ा था। परिवार का कहना है कि चेतन को इस केस में फंसाया जा रहा है।
4: उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
5: किस तरह फंसाया जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है?
4: क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं।
5: अच्छा,
4: चेतन ने उस हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था।
1: एक तरफ सिया का कथित बयान, मोबाइल बदलने की कहानी, लोकेशन, सीसीटीवी और क्राइम सीन का फॉरेंसिक विश्लेषण, तो दूसरी तरफ चेतन का परिवार हर आरोप से इनकार कर रहा है। अब जांच का अगला चरण डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा, एफएसएल रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले सबूत तय करेंगे कि क्या पुलिस की थ्योरी कानून की कसौटी पर भी उतनी ही मजबूत साबित होती है जित

0: गलतियां भी जांच में दिखाई दे रही है। गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, आज तक पुणे।
1: और एक और अहम खबर आपको बता दें, केतन अग्रवाल हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी इजाजत दे दी है। आज केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपने बेटे के लिए न्याय मांगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की अपील की और अभी खबर आ रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। केतन के पिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। तो आखिर कैसे लोहगढ़ मर्डर की साजिश रची गई, कैसे कैफे के सीसीटीवी कैमरे ने 340 फीट गहरी खाई में हत्या की पोल खोल दी, हम आपको बताते हैं।
2: किसी मर्डर की प्लानिंग कैसे होती है, किसी कत्ल की साजिश कैसे बुनी जाती है, किसी मर्डर की साजिश को रचने के लिए साजिश में शामिल दो लोग आपस में क्या बात करते होंगे, कैसे बात करते होंगे, साजिश रचने के लिए वो कहां जाते होंगे, साजिश रचते वक्त उनके दिमाग में क्या चलता होगा, क्या साजिश रचने वालों के चेहरे से कुछ जाहिर होता होगा। आप में से ज्यादातर लोग अक्सर टीवी पर या अखबारों में ये पढ़ते देखते होंगे कि कातिल ने पहले कत्ल की साजिश रची फिर कत्ल किया, पर अब तक आप सिर्फ पढ़ते या सुनते ही आए होंगे। पहली बार आज आपको एक मर्डर की साजिश का लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपके अंदर जितने भी साजिशी सवाल कौन रहे, उम्मीद है उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अब से ठीक 17 घंटे बाद कत्ल करने जा रहे इन दो कातिल किरदारों से मिलते हैं। नीली टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर के साथ चप्पल में ये कोई और नहीं सिया है। सिया के ठीक पीछे पीछे धारीदार टी शर्ट, जीन्स और चप्पल में ये चेतन है। इन दो किरदारों से अब तक तो आप कहानी समझ ही चुके होंगे, तो चलिए अब कास्टिंग के बाद फिल्म और कहानी पर आते हैं। ये पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे है। अब सीसीटीवी कैमरे को चालू करता हूँ। तारीख ध्यान से देखिए, 17 जून लिखा है इस पर, साल 2026। अब वक्त पर भी नजर घुमा लीजिए। शाम के 4:32 और सेकंड चालू, ठीक यही वक्त था जब इस कैमरे में सबसे पहले सिया एंट्री मारती है। सिया से कुछ कदम पीछे कुछ पल के बाद चेतन कैफे में एंट्री मारता है। अब फ्रेम बदल चुका है, अब हम कैफे के अंदर है, सामने काउंटर है। सीन के हिसाब से कैफे के अंदर भी आगे आगे सिया पहले दाखिल होती है, फिर उसके पीछे पीछे चेतन। कैफे में 3 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। फ्रेम फिर बदलता है, अब चेतन काउंटर पर खड़ा है और उसके बराबर में सिया। चेतन मेन्यू कार्ड देखता है, रिया से कुछ पूछता है और फिर अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करता है। फ्रेम एक बार फिर बदला, अब दोनों काउंटर से बाहर की तरफ जाते नजर आते हैं। इस बार चेतन आगे आगे और सिया पीछे पीछे। जाहिर है सीन को एक बार फिर बदलना था। अब दोनों कैफे के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं। दोनों इधर उधर बैठने की जगह देखते हैं और फिर सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। कैफे
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
4: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
5: Score what you need for summer perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, elf beauty's best and Levi's denim shorts. Summer's best perfectly picked for you now and new at Target. Shop today.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
7: Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
6: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: Tune in's how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
11: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
12: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
14: जांच करा रही है जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर उनके ऊपर एफआईआर हो गया उनका क्या मतलब है वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे रबर बैंड लगाते थे उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना और जो चोर होता है ना उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा 10-20 नोट चुरा लेगा जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं उस बारे में क्या है उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है हाँ वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था उसका कहाँ नाम आया अभी

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भूकंप से भारी तबाही हुई। अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, वहीं 70,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। वेनेजुएला में 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है, जिसको लेकर राहत और बचाव काम जारी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
4: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या एसआईटी को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या एसआईटी ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये चार नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। एफआईआर में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया?
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
1: ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता ना रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। भारी दबाव के बाद हुई है छुट्टी। दोनों पर थी दान के रखरखाव की जिम्मेदारी। चढ़ावा चोरी पर गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, कहा जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं होगा। विपक्ष पर उठाए सवाल का, सबूत हो तो लाओ वरना बंद करो आरोप लगाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। चंपत राय के ड्राइवर टीनू भी अरेस्ट। 3 महीने के सीसीटीवी में 70 बार चोरी के मिले सबूत। पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियां तेज। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा पूरी प्रक्रिया के तहत आएगा बिल। गुजरात असम उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। असेंबली में देंगे डिटेल। महाराष्ट्र सरकार ने मानी केतन मर्डर केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील। सीएम फडणवीस से मिले पिता। आरोपी सिया गोयल के पिता ने कहा बेटी दोषी हो तो उसे खाई में फेंक दो।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 खबर 100 शहरों से। राम मंदिर दान मामले में रिकवरी का दावा। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के बाद 60 लाख पार आंकड़ा और बढ़ सकता है। राम मंदिर दान सिस्टम प्रक्रियागत खामियों में एसआईटी ने आंतरिक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियों के संकेत पाए। एसआईटी जांच में निगरानी व्यवस्था पर उठे हैं सवाल। पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज न होने की बात सामने आई है। 3 वित्तीय वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियों के संकेत मिले, जांच का दायरा बढ़ गया है। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। आंतरिक ऑडिट बन रहा है अहम आधार। राम मंदिर दान मामले में बड़ा इस्तीफा चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। एसआईटी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इस्तीफे से हलचल होगी। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में 70 बार गबन की गतिविधियों के संकेत हैं। जांच में सामने आया है नया दावा। 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी में कई संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। अयोध्या मामले में बड़ा खुलासा। कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर कॉपी सामने आई है। चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, एसआईटी रिपोर्ट आते ही शुरू हुई कार्रवाई। दूध का दूध पानी का पानी होगा। राम जन्मभूमि और आस्था को लेकर विपक्ष का साधा निशाना। बोले, सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद करे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। देवरिया में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले हैं, पहले यूपी माफिया और दंगों से ग्रस्त था। मोहर्रम पर सीएम योगी का सख्त संदेश। अब यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। उपद्रवियों को भुगतान होगा परिणाम। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। राम मंदिर में 3 लोगों ही असली करता धरता है। चंपत राय, गोविंद देवगिरी और अनिल मिश्रा पर भी हो कार्रवाई। चढ़ावा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा कि रामलला के चढ़ावे की चोरी महापाप है। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर दान विवाद को केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले कि एफआईआर दिखावा, असली जिम्मेदार तक नहीं पहुंच रही है जांच। चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष का तीखा आवार। अखिलेश यादव बोले कि फुनगी को फांसी और शाखाओं को माफी। आप सांसद संजय सिंह के चंपत राय की भूमिका पर उठाए सवाल। निष्पक्ष जांच की मांग की है। राम मंदिर दान विवाद में संतोष दुबे का बड़ा बयान। बोले कि छोटे आरोपियों पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। संतोष दुबे ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए हैं सवाल। निष्पक्ष जांच और सभी पर समान कार्रवाई की मांग की है। संजय राउत ने दान मामले की जांच पर खड़े किए गंभीर सवाल। कहा है कि कई हमारी कहां गई है हमारी चांदी की ईंट। संजय राउत का आरोप, अयोध्या दान पेटी चोरी का इस्तेमाल सांसदों और विधायकों को तोड़ने के लिए किया गया। राम मंदिर दान मामले पर विपक्ष का पलटवार। दिनेश शर्मा बोले हैं कि सरकार की कार्रवाई सबसे तेज और पारदर्शी है। ट्रस्ट ने खुद दर्ज कराई एफआईआर, एसआईटी ने की है तेज कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बड़ा खुलासा। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में 5 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक कई अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच के दायरे में है। रमाशंकर उर्फ चीनू यादव पर अहम जिम्मेदारियों के हस्तक्षेप के आरोप है। गणना कक्ष की चाबी रखने और व्यवस्था में दखल देने के दावे सामने आए। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के रिश्तों की भी जांच की जा रही है। अविनाश के खातों में 5 लाख रुपए मिलने की बात भी जांच में सामने आई। चढ़ावे के निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई संभव है, जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा संदेश। ट्रक तस्करों का रूथलेस कार्रवाई की, पीड़ितों के प्रति अपनाए संवेदनशील रवैया। 2029 तक ड्रग्स मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह ने बोले हैं सभी एजेंसियों और समाज को साथ आना होगा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास से हटाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मकान खाली करने की तैयारियां तेज हो गई। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सख्त चेतावनी, कहा कि बगावत करने वालों का कोई भविष्य नहीं होगा। ममता बनर्जी का बड़ा हमला, पार्टी छोड़ने वालों को बताया गद्दार, कहा कि अब कोई माफी नहीं है। कल से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी इसमें भाग लेंगे। 28 जून को भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका से में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया इसका ऐलान। पासपोर्ट बनवाना होगा और महंगा, अब 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल सेवाओं की फीस 5000 रुपए। 1 जुलाई से नियम होगा लागू। पासपोर्ट नागरिकता के मुद्दे पर एआईएम प्रमुख ओबीसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगी। कुणाल बॉर्डर पर नियंगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेटिंग तोड़। उत्तराखंड में घुसे नियंग, तोड़फोड़ कर लहराई तलवारें। हाईवे पर मची हड़कंप, दहशत में आए लोग, जान बचाने के लिए मची भगदड़, जिसके चलते देर के लिए पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित नियंगों ने एक यात्री बस को भी रोक दिया, जिसमें यात्रियों से खौफ का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर खड़े लोग, कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे और तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन नियंगों को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। नियंगों पर जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरता हुआ देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के एस कोर्ट स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई है बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने का सहमति जताई है। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश से भारी तबाही हुई है। पहाड़ में आया मलबा बाजार में घुस गया है। मलबे की चपेट में कई दुकानें और वाहन भी आ गए हैं। बाजार में मची है अफरा तफरी। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य तेज कर दिया है। हावड़ा कोलकाता में तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया। 50 और 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। लगातार बारिश और वज्रपात के शहर में जल भराव की और कई इलाकों में सड़कें बनी हैं तालाब। बिहार के शिवहर में मोहर्रम अखाड़े के दोनों पक्षों में विवाद हो गया। क्रॉसिंग और रास्ता दोनों को लेकर शुरू हुआ विवाद। विवाद के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट भी हुई। घटना में 10 से 15 लोगों को घायल होने की सूचना है। 45 नामजद और 30 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हापुड़ में मामलों विवाद के बाद दो पक्ष बड़े हैं। लाठी डंडे और पथराव से मचा बवाल। हापुड़ हिंसा में छतों से भी चल रहे ईंट पत्थर, 6 घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर संभाला हालात। और हमसे पहले प्रतापगढ़ की शक्ति राजा भैया के पिता समेत 13 लोगों को किया गया हाउस अरेस्ट। कौशाम्बी में LPG टैंकर में भीषण आग लग गई है। कोखराज टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी। दरभंगा में मोहर्रम से पहले फ्लैग मार्च किया गया। 500 जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया। CCTV और ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। गढ़वा में मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांति समिति बैठक और फ्लैग मार्च जारी रखा गया। सहारनपुर में DIG के फ्लैग मार्च, मोहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था। झांसी में मोहर्रम के फ्लैग मार्च किया गया। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। SP ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में भाई की सांस नशीले पदार्थ देकर रेप करने के आरोपों में शख्स गिरफ्तार किया गया। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी, करंट लगने से बाल बाल बची। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया। खाने में मिलाई थी नींद की गोलियां, वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। मेरठ में ब्लैकमेलिंग का वायरल वीडियो घरेलू झगड़ा निकला, पुलिस ने अपहरण की बात नकारी है। यूपी के जालौन थाने में कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल होते ही सिपाही हुआ सस्पेंड। पंजाब के मोगा में पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगई दिखाने वाला वो भारी पड़ी है। ये दबंगई 13 लोग गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के बारापुला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा है, 10 लोग घायल हुए। पटना में फैजल खान के कोचिंग में बने बिजली घर में लगी आग, धुआं देखकर मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, 15 साल के युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई, आक्रोशित महिला ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के खारगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, 2 बाइक सवार घायल हो गए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में प्री स्कूल की 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट की गई, स्कूल की लापरवाही पर उठे हैं सवाल। यूपी के महुआ में दबंगों ने तांडव घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंदे रहते हासिल किया है लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी है बटकनी। शेफ अली वर्मा ने 53 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है, जेमिमा ने 26 रन बनाए, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन भी रहा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजेय रहा भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ यह भारत की लगातार 4th जीत है। इंडिया ए के ओपन साई सुदर्शन की गोल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाए शतक, 175 गेंदों पर बनाए शानदार 132 रन। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का ये 9वां शतक है, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल है। आज से शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज, IPL 2026 के बाद मैन इन ब्लू की ये पहली T20 सीरीज होगी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू कर बना सकते हैं रिकॉर्ड। T20 सीरीज में एक दिन पहले मैच के समय में हुआ है 1 घंटे का बदलाव, 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया है समय। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.2 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया है कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए भी किया है क्वालिफायर। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल आज बड़े पर्दे पर होगी रिलीज, इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बड़े सितारे भी मौजूद रहेंगे। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म तेरा मेरा नाता, ये फिल्म फैमिली ड्रामा फिल्म है और 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ इसका प्रीमियर। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र की भी आज सिनेमाघरों में होगी दस्तक, फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल में होंगे। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम की आज होगी रिलीज, एथलीट से सामने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती फिल्म की है कहानी। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए आज दस्तक दे रही है फिल्म सुपर गर्ल, सुपरमैन की ही कजिन कारा जोर एल किरदार पर आधारित है ये फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। SIT सूत्रों के मुताबिक CCTV में कई बार चोरी करते दिखा है मनीष कुमार यादव, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई और रामशंकर यादव यानी टिन्नू का रिश्तेदार है मनीष, रामशंकर यादव टिन्नू ने भी मनीष को दिलाई थी नौकरी और आप बता रहे हैं कि खास तौर पर CCTV में कई बार अनियमितताएं करता हुआ छेड़छाड़ करता हुआ ये पाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ गए। आशीष देखिए कई रिपोर्ट कई छेड़खानियों का मामला सामने आया, कई बार ऐसा कहा गया कि देखिए 70 बार से ज्यादा ये चीजों का सबूत मिले हैं, और क्या जानकारी सबूतों को लेकर मिल रही है?
2: देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि ये चोरी एक बार नहीं, लगातार हो रही थी। और टिन्नू यादव का जो खास सबसे आदमी है, या कह सकते हैं जो रिश्तेदार है, जो हमारे पास जो डिटेल है, वो उसमें लगातार इस तरीके से बना हुआ था कि वह जो दान में चोरी पैसे आ रहे थे, रुपए आ रहे थे, उनको लगातार वो चोरी कर रहा था। और सीसीटीवी में आप पिछले 3 महीने का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 70 बार चोरी हुई। तो ये 3 महीने का ही रिकॉर्ड है, अगर आप 3 साल का निकालेंगे तो 700 बार हो जाएगी चोरी। तो 700 बार का चोरी, अगर आपने 500 रुपए भी चोरी करना शुरू कर दिया तो आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। इस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ था और लगातार इस तरीके से किया जा रहा था। इसका तो ये सोचिए कि टिन्नू यादव जो कि वहां पूरा मालिक बनकर,
3: बिल्कुल बिल्कुल आशीष आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे लगातार इन बड़ी खबर पर अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। अब तक 60 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई है और गिरफ्तारी किए गए आरोपियों से रकम की बरामदगी हुई है। सूत्रों के अनुसार जांच जारी है और जांच के दौरान यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आरोपियों में टिन्नू और सुभाष ने डोनेशन चोरी के मामले में कई अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने कई बैंक अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जो उनके साथ इस मिलीभगत में, या फिर इस पूरी आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार या चोरी में शामिल थे। और अब बात नारकोटिक्स के खिलाफ सरकार की बड़ी जंग की करते हैं। दरअसल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नारकोटिक्स के खिलाफ जंग में निर्णायक मोड पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा और दोबारा खड़ा ना हो पाए ऐसा काम करना होगा।
4: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।
3: और नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट गृह मंत्री का है, वो है नार्को मुक्त। और यही वजह है कि उन्होंने कई बड़ी बातें इसका जिक्र भी किया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
7: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
8: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
9: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
10: Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
9: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
11: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
12: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
11: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
12: They score!
11: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू विमल बोलो जुबां केसरी
1: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस
2: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
3: देखिए बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।
4: राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं, दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी, भारी दबाव के बीच छुट्टी, सभी आठों आरोपियों की पेशी। चढ़ावा मामले में एक्शन के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। एसआईटी का बड़ा खुलासा, सूत्रों के अनुसार 2022 से 25 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत, 60 लाख बरामद। बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, गुजरात असम और उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब में चुनाव आयोग और एसआईआर को मिली जगह, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीफ।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से ही कार्रवाई और पद छोड़ने का भारी दबाव था। दरअसल चंपत राय ही ट्रस्ट के सर्वे सर्वा की भूमिका में थे और उनको पद छोड़ने के पीछे का आधार है एसआईटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। रिपोर्ट में सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है, क्योंकि सवाल यही है कि भगवान राम के घर लूट की छूट किसने दी, क्यों रामलला के दरबार में चोरी होती रही और ट्रस्ट के पदाधिकारी खामोश रहे। संतोष शर्मा हमारे साथ सीधे अयोध्या से इस समय जुड़ रहे हैं। संतोष, सबसे बड़ा कारण क्या रहा इन इस्तीफों के पीछे?
1: देखिए, इन इस्तीफों के पीछे सबसे बड़ी कारण यही था कि भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा जो भी लोग थे, ट्रस्ट के पदाधिकारी थे और चोरी हो रही थी श्रद्धालुओं के जो चढ़ावा था, तो इनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। भले इनको लोग कहते हो कि ईमानदार, इनके ईमानदारी पर शक नहीं किया जा रहा, लेकिन आपकी निगरानी में, आपकी निगरानी में एक आदमी नहीं, पूरा कुनबा का कुनबा चोरी कर रहा है, लाख दो लाख नहीं करोड़ की संख्या में चोरी हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज देखिए तस्वीरों के जरिए भी कि जो आठों आरोपी है उनको कोर्ट में पेश किया जा चुका है और जो इंस्पेक्टर राम जन्मभूमि है वो अपनी पूरी पत्रावली लेकर आए हैं, जो आठ आरोपी हैं। देखिए, आठों आरोपी, चाहे वो लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर यादव, रमाशंकर मिश्रा, ये तमाम सभी आठ आरोपियों के लिए अलग अलग जो पत्रावली है वो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जा रही है। तो अब इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन रही बात चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की, तो नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी, इनकी निगरानी में ट्रस्ट चल रहा था और ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसी कैसे निगरानी हो रही थी। और एसआईटी ने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही बरती गई, जो लोग आ रहे हैं वो नियम कायदे के बिना आ रहे हैं, कौन किस बैकग्राउंड का, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा है, जब घर जा रहे हैं तो उनकी जामा तलाशी नहीं हो रही है, नोट गिनने का काम है, नोट गिनने के काम में बिना जामा तलाशी लिए किसी को भी आप घर जाने दे रहे हैं, तो ये एक बेसिक लैप्स था। और इसी बेसिक लैप्स के चलते ही लगातार ये चोरी की जो घटनाएं हो रही थी, ये ऐसा नहीं था कि ये पहली बार में आया और पकड़ में आ गया, ये लगातार चोरी हो रही थी। जब पानी नाक से ऊपर हो गया तब ये पूरी बातें चर्चा में आई। चर्चा में होने के बाद शुरुआत में ही चंपत राय ने तो मना कर दिया था कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है। चंपत राय ने ही जब पहली बार जब ये मामला
0: हुआ तो अगर उस समय ही कोई ऐसी चोरी उन आरोपों को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में पहली एफआईआर के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पता चला है कि एसआईटी ने तफ्तीश के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कुल 70 बार कथित चोरी और गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। इन घटनाओं को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। चढ़ावा मामले को लेकर सूत्रों के अनुसार एक और बड़ी खबर यह है कि मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते मनीष कुमार यादव दिखा था। एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष यादव पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मनीष यादव रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार है। टिन्नू ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी और टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है। संतोष, सीधे तौर पर यह बात, चंपत राय को लेकर इस तरह की आरोप बहुत लगते रहे कि वो कुछ अक्खड़ स्वभाव के रहे, अपनी अपने सामने किसी दूसरे की बात सुनते नहीं थे। जी
1: चंपत राय, बिल्कुल, ये जो आपने बात कही यही सबसे बड़ा लब्बो लुआब है इस पूरा जो पूरा बवंडर खड़ा हुआ है कि चंपत राय कभी किसी की सुनते नहीं थे। अगर किसी ने बताया भी तो उसको डपट करके भगा दिया। इतना बड़ा प्रोफाइल हो गया था। आलम यह था कि अयोध्या के जो अधिकारी हैं, चाहे जो डीएम हो चाहे एसएसपी हो, उनकी भी हैसियत नहीं होती थी कि चंपत राय को कुछ कह दे। और उसके बाद सारे लोग, सारे अधिकारी, यही जो रामशंकर यादव टिन्नू भैया हो गया था, तमाम अधिकारियों को मैंने फोन पे उसका नंबर टिन्नू भैया के नाम से सेव किए हुए श्वेता जी देखा। तो ये आलम था कि चंपत राय तो चंपत राय, चंपत राय का ड्राइवर तक यहाँ पे माननीय हो गया था। तो टिन्नू यादव का भाई मनीष यादव जैसे सीसीटीवी में पकड़ में आया, मनीष यादव पे कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टिन्नू यादव का भाई है। टिन्नू यादव कौन है? चंपत राय के करीबी है। अब चंपत राय को ये बताए कौन? चंपत राय किसी की सुनने नहीं है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि जो बेसिक सिक्योरिटी के जो एसओपी होती है कि अगर किसी के घर में जा रहे हैं, कोई बेशकीमती जगह पर कोई काम कर रहा है तो वहां पे जामा तलाशी लेकर के अंदर जाया जाएगा और जामा तलाशी लेकर के ही बाहर जाएगा, यही फॉलो नहीं हो रहा था। हाई सिक्योरिटी इलाका है राम मंदिर, कितनी बार टेररिस्ट अटैक की कोशिश हुई है, कितनी बार टेररिस्ट थ्रेट्स आए हैं, लेकिन वहां पर ये कर्मचारी है, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। ये ट्रस्ट मनमाने ढंग से कोई किसी का भतीजा, कोई किसी का जीजा, कोई किसी का साला नौकरी देते चले गए और वो नौकरी करने वाले सब अंदर गए, नोट गिना, जेब में भरा, घर में भर लिया। तो ये तरीके से जो मनमानी चल रही थी, ट्रस्ट नहीं काम कर रहा था, प्राइवेट एजेंसी के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी काम कर रही थी चंपत राय की, तो यही वजह है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनी कि ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार लोग थे, भले ही इन्होंने चोरी ना की हो, लेकिन
0: जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सीधे ये नहीं कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार उनके तरफ से है, लेकिन अगर आप आंख भी मूंद रहे हैं इस तरह की चीजों को लेकर या फिर शिकायत सुन नहीं रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी हो ही जाती है। अब मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर ट्रस्ट को थी, मई के आखिरी हफ्ते में ही ट्रस्ट को पता चल गया था कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन चंपत राय ने इसे रोका नहीं, उल्टे जब मीडिया में मुद्दा उठा तो ये कहने लगे कि सब ठीक है, कोई धांधली नहीं हुई है।

0: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का खुलासा अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब मई के आखिरी सप्ताह में ट्रस्ट ने दान पेटियों से निकलने वाली रकम और बैंक में जमा हो रही राशि का मिलान किया। एक दान पेटी से आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए निकलते थे, लेकिन लगातार 500 रुपए की गड्डियों में कमी दिखने लगी और यहीं से शक गहरा गया।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही FIR दर्ज कर ली गई हो, लेकिन इस चोरी का खुलासा कुछ वक्त पहले ही हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लगातार शिकायतें मिलने लगी कि दान पात्र से मिली रकम चोरी हो रही है, जिसके बाद जिस कमरे में नोट गिने जाते थे वहां कुछ हिडन कैमरे लगाए गए और इन हिडन कैमरे की फुटेज देखी गई तो कुछ कर्मचारी इसमें चोरी करते पकड़े भी गए।
0: शक के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। जांच में दावा है कि कैमरों में फुटेज में कर्मचारी सामने लगे CCTV को ढाल बनाकर खड़े हो जाते थे और दूसरा कर्मचारी नोटों की गड्डियों से नकदी निकालकर कपड़ों में छुपा लेता था। यही नहीं, जांच में चोरी का एक और तरीका सामने आया। आरोप है कि नोटों की गड्डियों में अतिरिक्त नोट रख दिए जाते थे। बैंक में हर नोट गिनने के बजाय पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता था। बाद में बैंक ले जाते समय गड्डियों से अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह रिकॉर्ड भी सही दिखाई देता था और चोरी भी पकड़ में नहीं आती थी।
1: एक गड्डी में जो 100 नोट जमा होते थे उसमें 110, 120 नोट जमा कर दिए जाते और जब उस 100 नोटों की गड्डी का वाउचर बनता और बैंक में जमा करने से पहले ये कर्मचारी उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लेते। इस तरह से जिसको जहां मौका मिल रहा था चढ़ावा चोरी कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही निगरानी रखने वाले, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या फिर मुख्य व्यवस्थापक के तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव या फिर सुपरवाइजर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव।
0: जांच एजेंसियों का दावा है कि वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। इसी मामले में अनुकल्प मिश्रा, उनके बहनोई लवकुश मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जांच में ये भी सामने आया कि नोट गिनने वाले कई कर्मचारी आपसी रिश्तेदार या परिचित थे। आरोप है कि मुख्य आरोपित रामशंकर यादव और तिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को इस काम में लगाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को। ड्यूटी के बाद कर्मचारियों की तलाशी न होने का भी आरोपियों ने कथित तौर पर फायदा उठाया।
1: पुलिस ने इस मामले में इन सभी 8 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है और अब हर एक व्यक्ति की भूमिका की जांच और उसके बाद इनके शरणदाताओं संरक्षणदाताओं आकाओं के बारे में ही पूछताछ की जाएगी।
0: SIT का दावा है कि सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए देवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, कंगन और पायल जैसे जेवरों को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले ही निकाल लिया जाता था। जांच में अविनाश शुक्ला के बैंक खाते में संदिग्ध रकम जमा होने का दावा किया गया है। फिलहाल इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस और SIT पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक में इतनी बड़ी कथित

0: इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर, अब तक 60 लाख से ज्यादा रुपए की रिकवरी हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से रकम की बरामदगी सूत्रों के अनुसार जांच जारी है। जांच के दौरान यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। जो आरोपी हैं टिन्नू यादव और सुभाष, उन्होंने डोनेशन चोरी के मामले में कई अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ के दौरान कई बैंक अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जो उनके साथ मिले हुए थे। संतोष, यानी कि हम ये समझें कि ये मुख्य लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ये कई नाम ऊपर के भी आ सकते हैं, कई नाम नीचे के भी आ सकते हैं, कई नाम उन विभागों के भी आ सकते हैं जिनके ऊपर किसी न किसी रूप में कोई जिम्मेदारी थी।
1: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसी धागे का एक सिरा पकड़ करके आप खींचते जाइए तो पूरा सिरा खुल जाता है। बस अब इनकी ये पकड़ में आ गए हैं, अब इनकी जितनी खिंचाई होगी ये उतना ही ज्यादा सारे राज उगलेंगे। ये पुलिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पुलिस को कितना फ्री हैंड मिलता है, क्योंकि ये अपने संरक्षणदाताओं अपने आकाओं के नाम बता देंगे, लेकिन क्या पुलिस इतना फ्री हैंड होकर के उनके नाम खोल पाएगी ये भी बड़ी बात है। कौन किसका, क्योंकि अगर हम नॉर्मली एक आम आदमी के तौर पर देखें ये इस चेन में, तो चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव, टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव, टिन्नू यादव का ही करीबी अनुकल्प मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लवकुश मिश्रा, ये वो किरदार हैं जो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में SIT के द्वारा ये पुष्टि की गई है। SIT के द्वारा जो बयान लिए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लिए गए, जो तमाम CCTV खंगाले गए, उसके बाद ये FIR हुई है। SIT के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये FIR हुई है और उसके बाद ये आठों लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि टिन्नू यादव, रामशंकर यादव टिन्नू यादव और उसके साथी सुभाष चंद्र, ये दो लोग थे जो नोट गिनने की प्रक्रिया में नहीं थे, लेकिन ये सुपरवाइजर थे। टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की जो ताला लगा होता उसकी चाबियां तक रहती थी। कई बार देखा गया कि जब वो आता था तभी दान पेटियों के ताले खुलते थे। अब तो डबल लॉक का सिस्टम कर दिया गया, लेकिन सिंगल लॉक में ही ये दान पेटियां होती थी। दूसरे सुभाष चंद्र, ये बैंक कर्मी है, इनको बैंक ने हायर किया था कि इनकी निगरानी में ही ये गणना होगी नोटों की। तो ये क्या कर रहे थे जिसकी वजह से इनके ऊपर भी FIR हुई है।
0: मतलब एक तरह से ये है कि जिस पर जितना ज्यादा भरोसा उसने उतना ही बड़ा भरोसा तोड़ दिया है। संतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SIT की रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। जन आस्था से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं, जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी सवाल उठाए हैं, कहा कि आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं, सबूत हो तो लाओ वरना आरोप लगाना बंद कर।
2: याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
0: चढ़ावा मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है। शंकराचार्य ने FIR पर सवाल उठा दिए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है।
3: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना, और जो चोर

0: होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
1: वहीं इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि FIR दर्ज हो गई है, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया।
3: FIR में नाम भी पड़ेगा,
2: ये तो आप तफ्तीश करने वाले
4: कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के,
2: जो लोग आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ।
3: विपक्ष सवाल उठा रहा है
2: बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ।
1: खबरें सरदार में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
8: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
9: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, राम मंदिर का व्यवस्थापक, गिरफ्तार। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, एसबीआई के रिटायर्ड कर्मी, नोट गिनने के प्रभारी, गिरफ्तार। मनीष कुमार यादव, दान पात्र में मिले असली नकली नोट की छटाई, गिरफ्तार। अविनाश शुक्ला, दान पात्र से हॉल तक नोट पहुंचाना, गिरफ्तार। लवकुश मिश्रा, नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। अनुकल्प मिश्रा, नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। रमाशंकर मिश्रा, नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। करुणेश पांडे, नोट गिनने वाला कर्मचारी, गिरफ्तार। इन सभी आरोपियों को राम मंदिर में भक्तों की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे की रकम की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा अयोध्या के ही राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुआ है। एफआईआर का ब्यौरा गोपनीय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305, धारा 306, धारा 316(5), धारा 317(4), 317(5), धारा 61, धारा 35 और पीसी एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं और गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पुलिस की पूछताछ भी शुरू हो गई है। कृष्ण मोहन, खबर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 6 महीने पुराने और ट्रस्ट के सबसे नए सदस्य, पूर्व ब्यूरोक्रेट और अवध प्रांत के आरएसएस संघ चालक कृष्ण मोहन ने एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि जो ट्रस्ट एसआईटी की जांच के घेरे में है, उसी ट्रस्ट को एसआईटी की वो अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें बताई गई जिनके बिना पर मुकदमा दर्ज हुआ है और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशें थी कि संदिग्धों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
1: अयोध्या में क्या हो रहा है? जिन लोगों ने इसमें अपना पूरा जीवन लगाया, आपने उनकी बात नहीं सुनी? कौन सी एसआईटी है? सब मैनेज हुए लोग हैं और ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। आप मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। इतना सोचने समझने के बाद आपने ड्रामा खड़ा किया। हमने तहरीर दी नामजद, आपने क्यों नहीं लिखा? पुलिस दोषी है, पुलिस चोरों से पैसा लेकर मौन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है? मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो राम मंदिर में, जिसने 40% कमीशन लिया? आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: हालांकि मुकदमे का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। मंदिर ट्रस्ट ने उसमें क्या शिकायत की है वो भी सामने नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में ट्रस्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रस्ट ही खुद को शिकायतकर्ता बनाकर अपनी साख बचाने की जुगत में जुटा नजर आ रहा है। आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।

0: Discover what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
4: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
5: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
4: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
6: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है।
7: मेरा सुरक्षा कमरे।
4: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इस्तीफा अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी। चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, गुजरात असम और उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। नक्सल मुक्त भारत बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का नया प्लान, आज नारकोटिक्स के खिलाफ जंग के निर्णायक मोड पर देश, अगले 3 साल बेहद अहम। चुनाव पारदर्शिता पर सियासी घमासान के बीच एनसीईआरटी का बड़ा कदम, 9वीं की किताब में शामिल हुई इलेक्शन कमीशन की गाथा, एसआईआर को मिली जगह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार, सुरंगों में दफन हो रहा हिजबुल्लाह, बौखलाए ईरान की इजराइल को धमकी, नेतन्याहू का पलटवार, नहीं छोड़ेंगे लेबनान। मध्य पूर्व से ईरान ने उखाड़े अमेरिका के पैर, क्या बेस छोड़ भाग रहा अमेरिका? ईरान ने कैसे बनाया हुर्मुज से कमाई का प्लान? ट्रंप क्यों बोले नया मार्केट है प्यारा ईरान? अब ईरान इजराइल में सीधा घमासान।
1: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना के लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान में लगातार बारूदी तबाही मचा रहे हैं। वहीं अमेरिका की लगाम कसने जाने के बावजूद नेतन्याहू ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में तब तक नहीं निकलेगी जब तक उत्तरी इजराइल सुरक्षित नहीं हो जाता। कल रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को उसी की सुरंग में कैद कर दिया। हम आपको बताने वाले हैं कि लेकिन इससे ईरान भड़क गया, उसने इजराइल पर फिर से हमले की धमकी दी है। आज की तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे डेनमार्क से आ रही है, जहां पर अजान और मुसलमानों दोनों से ही डेनमार्क परेशान है। आखिर क्यों वो अजान पर पाबंदी लगाने की तैयारी में, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर रूस से आ रही है, जिस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़े ड्रोन से हमले किए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर दक्षिणी लेबनान से आ रही है। अमेरिका और ईरान के सीजफायर के बावजूद इसराइल दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए। बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल के हमले में 6 हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लगभग 30 सुरंगों के अंदर वो फंसे हुए हैं। जिंदा है या दफन हो गए इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन मारे गए 6 आतंकियों में से 5 को गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों के पास देखा गया था। वहीं एक आतंकी को अली ताहिर रिज पर मारा गया है। वही रिज के नीचे एक बड़े टनल में 30 आतंकवादियों की मौत का सामना करना पड़ा है। कल पूरी रात इजरायली वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। वो चुन चुन कर पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे थे। इजरायली हिजबुल्लाह को जिस तरीके से घेर रहा है, उसने उसकी सुरंगें और तहखाने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं, और इसी वजह से वो उनके लोकल कमांडर्स को भी मार रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने यह आरोप लगाया है कि इजरायली सेना अपने घर लौटकर नागरिकों की निशाना बना रही है। और इसी बीच कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो बयान दिया वो सीधे ईरान की नहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौती बन गया है। नेतन्याहू ने नए सैनिकों के समारोह में दो टूक कह दिया कि इजरायली सेना कब्जे वाले इलाकों से वापस नहीं आएगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान, सीरिया और गाजा में जब तक जरूरत होगी तब तक वहां पर मौजूद रहेगी, और जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर लेती वापस नहीं आने वाली है।
2: ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים. ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
1: बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनन में इजराइल के हमले ने ईरान बौखला गया। IRGC कुर्द फोर्स के चीफ इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि वो लेबनन छोड़ दे और हार का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान के IRGC कुर्द फोर्स की तरफ से इस्माइल कानी की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी गई है कि वो खुद ही लेबनन से हट जाए। कानी ने यह धमकी दी है कि अगर इजराइल वहां से नहीं हटा तो उसे शर्मिंदगी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा। ईरान का कहना है कि लेबनन प्रतिरोध का प्रतीक है, ना कि कब्जे की जगह। खानी ने साल 2002 में लेबनन में इसराइल सेना की वापसी का जिक्र करते हुए कहा कि वही नजारा फिर से दोहराया जाएगा। ये चेतावनी हिजबुल्ला के इसराइल की तेज कार्रवाई के खिलाफ की है और बिगड़ते हालातों के बीच आई है। हिजबुल्ला को बचाने के लिए ईरान इससे पहले भी इसराइल पर 7 जून की देर रात हमला कर चुका था और IRGC की रमत डेविड एयरबेस को मुख्य टारगेट बताया गया था। हमले के बाद लगभग 15 घंटे तक दोनों तरफ से हमले और जवाबी कार्रवाई चलती रही, फिर दोनों पक्षों ने हमले रोक दिया। अब भी लेबनन पर इजरायली कार्रवाई शुरुआत हो चुकी है, जिसको लगातार ईरान अब धमकी भरे लहजे में चुनौती दे रहा है। ईरान खोखली धमकी नहीं देता, उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को वाकई नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिका की कई एजेंसियां और अमेरिका खुद कर चुका है। ईरान के हाथों पड़ी मार के बाद अब अमेरिका अपने कुछ बेस इजराइल से शिफ्ट कर सकता है। ईरान के डर से ठिकाना छोड़कर भागने में जुटी है बड़ी संख्या में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर एक सामने आई है। इस खबर में हवाला देकर कहा गया है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य स्थिति को फिर से आकलन कर रहा है। रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला भी दिया गया है, जिसमें पता चलता है कि वहां पर मौजूद यानी बहरीन में भी मौजूदा एक अहम नौसैनिक ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने जितना कबूल किया है उसमें भी ये ज्यादा नुकसान सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बहरीन के स्थित अपने अड्डे को फिर से तैयार करने का विचार कर रहा है, जबकि कुवैत और सऊदी अरब में अपनी सैन्य मौजूदगी को कम कर सकता है। वो अपने अड्डे को पश्चिमी और की ओर शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन की पहुंच से दूर रहने वाले बेसिस का चुनाव कर सकता है। रिपोर्ट में जिन अधिकारियों का जिक्र किया गया है उसमें से दो ने अमेरिकी अखबार को बताया कि इसराइल एक ऐसी जगह हो सकती है, यानी ये तैनाती ऐसी जगह हो सकती है जहां से ईरान के मिसाइल और ड्रोन के हमले उस तक ना पहुंच सके। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका अपने बेस छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो गया है। इसका सबूत बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बहरीन के आपको मनामा एयरबेस पर आपको बताते हैं कि सबसे पहले बड़े अपडेट क्या है। दरअसल बहरीन में मनामा में अमेरिकी बेस है। दो बड़े रडार ड्रोन्स इसमें पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। ये ईरान के हमले से पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर। दरअसल लेकर लगातार सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। यानी पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई पहले कैसा था ईरान के हमलों से पहले और उसके बाद हमलों के बाद वो कैसा हो गया। और इसके बाद बहरीन की बात करते हैं दूसरे बड़े आप कह सकते हैं अटैक की या फिर दूसरे बड़े नुकसान को लेकर भी बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि कैसे लगातार जो दो ड्रोन हैं इसको नुकसान पहुंचा है। ये हमने आपको बहरीन की तस्वीरें दिखाई। अब आपको बताते हैं कि बहरीन में अमेरिका का एयरबेस भी मौजूद है। बहरीन में मनामा में अमेरिकी एयरबेस को कैसा नुकसान पहुंचा है ये भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि जो शेख ईसा बेस को भी क्षति पहुंची है उसको भी नुकसान पहुंचा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कि कई तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि अब सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक करती है कि अमेरिका को कितना ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ा बहरीन, इसलिए क्योंकि बहरीन ही सबसे ज्यादा फोकस रहा है ईरान के हमलों का। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई है उसमें अमेरिका के बेस को नुकसान पहुंचना साफ देखा जा सकता है। नुकसान उससे कई गुना ज्यादा हुआ जितना अमेरिका ने कबूल किया था। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़ा का हेडक्वार्टर है, साथ ही शेख ईसा एस बेस भी मौजूद है। ड्रोन और मिसाइल से ईरान के सदे हुए हमलों ने एक प्रिसाइज हमलों से अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ऐसा ही एयरबेस को ईरान की पहुंच से दूर शिफ्ट करना चाहता है और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि ईरान के इन हमलों से अमेरिकी बेसिस को और नुकसान ना पहुंचे। और अब बड़ी खबर हॉर्मुज से भी आ रही है, जहां पर महायुद्ध से पहले सभी के लिए खुला था, मगर अब उस पर ईरान ने अपनी ताकत का सिक्का जमाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह कि ईरान ने एक कार्गो शिप को पर गोलीबारी की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, यानी उसकी खुद की जिम्मेदारी उस टैंकर या उस ऑयल शिप पर मौजूद होगी। जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। इस बीच यूएन की शिपिंग एजेंसी ने जहाज पर हुए ताजा हमलों के बाद हॉर्मुज में फंसे जहाजों और नाविकों को निकालने की अपनी योजना को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। ब्रिटिश सेना ने बताया कि ओमान के तट के पास ये जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया और यह हमला तब हुआ जब कई टैंकर्स यूएन की ओर से सुझाए गए रास्ते यानी यूएस की तरफ से सुझाए गए रास्ते की वो गुजर रहे थे। दूसरी तरफ इस हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 2% और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं ओमान रूट से जहाजों की आवाजाही एक बार फिर से रुक गई है। खाड़ी क्षेत्र में स्टोरेज 50-60% तक फुल है। अगर जहाजों की आवाजाही बंद रही तो उत्पादन को और कम करना होगा। आपको बता दें कि लगातार कल इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या हॉर्मुज वैसे ही खुलेगा जैसा 28 फरवरी से पहले खुला था या फिर ईरान जब चाहे इसको क्लोज कर सकता है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर थे। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर हो जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें ईरान जहाज को धमकी दे रहा है और रूबियो कह रहे हैं कि ईरान धमकी देता है तो अमेरिका को इस पर आपत्ति होगी, लेकिन उनके ऐलान के बाद ही अमेरिका ने आपके से ईरान ने उस जहाज पर हमला कर दिया।
3: This rhetoric is backed up by actual ships being threatened and ships are not moving. That's a violation of the agreement and we're going to have a problem with it.
1: अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ईरान चाहता क्या है? इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावा किया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज में जहाजों को सेवा देकर अरबों डॉलर कमाना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की कोशिश है कि 40 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष वो इससे कमाए और अपनी इकोनॉमी को इससे जो सैंक्शन से नुकसान पहुंचाए उसकी भरपाई कर सके। तेहरान का कहना है कि इस योजना में सालाना उसे 40 अरब डॉलर का मुनाफा होगा जिससे वो अपने देश की इकोनॉमी में सुधार कर सकता है। तेहरान हॉर्मुज और स्ट्रेट की तुलना उसने कई और तुर्की के जहाजों से ट्रांजिट टैक्स वसूलने के तौर पर की है जिसे गोल्ड फैंक वसूला जाता है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि आखिरकार अगर ईरान अगर तुर्की वसूल कर सकता है तो फिर वो क्यों नहीं। दरअसल हॉर्मुज में ऐसी कमाई करेगा ईरान कि टोल की बजाय सर्विस फीस वसूलने का रास्ता होगा, यानी उसको नाम टोल नहीं सर्विस टैक्स के तौर पर दिया जाएगा। सुरक्षा, पर्यावरण और नेविगेशन लाइट हाउस फीस के तौर पर इसको नाम दिया जाएगा। प्रति जहाज करीबन 1-2 मिलियन तक हो सकती है। आप मान के चलिए अगर 1-2 मिलियन प्रति डॉलर की कमाई करेगा तो आप मानिए ईरान की क्षमता या फिर उसको आर्थिक तौर पर कितना मुनाफा होगा, ओमान को शामिल कर सकता है। दरअसल इसी के तुरंत बाद ईरान ने और ओमान से बातचीत की, चीन और अन्य देशों से भी बात कर रहा है ईरान सहमति बनाना चाह रहा है कि आखिरकार कई देशों को अपने साथ लाए। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है और इसी अथॉरिटी के तहत ये पैसा वसूला जाएगा और फिर ईरान इसका इस्तेमाल अपनी आर्थिक तरक्की के तौर पर करेगा। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, रूट फीस की शर्तें लगाएगा, यानी रूट क्या होगा, ट्रांजिट कैसे होगा, कितने समय पर कितना पैसा देना होगा, ये तमाम चीजें तय की जाएंगी और बैन से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी और युआन में पेमेंट की जाएगी, यानी या तो चीन की करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में इसकी पेमेंट की जाएगी ताकि अगर अमेरिका कोई सैंक्शन लगाए दोबारा से तो उसका असर सीधे तौर पर ईरान पर ना पड़े। वहीं ईरान हॉर्मुज से कमाई का प्लान बना रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कारोबारी दिमाग भी तेजी से चल रहा है। बड़ी खबर यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जब्त संपत्ति से अमेरिकी अनाज खरीद कर ईरान को सौंपने के सपने दिखा दिए। दरअसल कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसानों को संबोधित करते हुए उनके साथ एक मुलाकात की। ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादन बेचने के लिए एक नए बाजार का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि एक नया बाजार ईरान है जो खूबसूरत और प्यारा है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की जब्त संपत्ति से अमेरिकी गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदकर ईरान को दे देंगे क्योंकि वहां अनाज की किल्लत है। आपको इस पर ईरान का जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप का वो ऐलान सुनाते हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है।
4: Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
1: और ट्रंप के सुनहरे सपने को ईरान ने पल भर में चूर चूर कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर और उनकी तरफ से प्रमुख वार्ताकार वागीर गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल गालिबाफ ने एक्स पर तंज कर पोस्ट किया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। उन्होंने लिखा कि हम तुम्हारे कृषि उत्पादन नहीं खरीदने वाले, हम जो फसल काट रहे हैं वो तुमने ही बोई है। दशकों का अविश्वास है, ये फसल ऑर्गेनिक भरपूर और घरेलू है। अमेरिका तो केवल 3 चीजें एक्सपोर्ट करता है, जीएमओ सोयाबीन यानी जेनेटिकल सोयाबीन और टूटे हुए वादे बकवास खाली धमकियां। गालिबाफ ने व्यंग करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता और अमेरिका के साथ पिछले कई दशकों के अनुभव में कारण ईरान गहरा अविश्वास पैदा हो गया और ईरान अब अमेरिकी कृषि सामान खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो डेनमार्क से। खबर डेनमार्क से है कि जहां पर वामपंथी सरकार इस्लामिक अजान पर रोक लगाने की तैयारियों में। डेनमार्क के इमिग्रेशन मंत्री अजान पर रोक लगाने की योजना का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के कुछ हिस्से इस्लामाबाद की बस्तियों जैसे लगने लग गए हैं और मध्य वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी के सदस्य मॉर्टन बॉट्सकोव ने कहा है कि नई सरकार रोक लगाने की कानूनी वैधता की फिर से जांच शुरू करेगी। मंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को कहा कि डेनमार्क की छतों पर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। डेनमार्क ने इसके लिए कई जगहों पर कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में घूमते समय आपको ये शक नहीं होगा, होना चाहिए कि आप इस्लामाबाद के किसी उपनगर में आए हुए हैं।

0: हवाले की लगातार ये दावा किया जा रहा है कि डेनमार्क में धीरे धीरे बढ़ रहा है इस्लामीकरण को सार्वजनिक जगहों पर बहुत ज्यादा जगह ली जा रही है और इसको लेकर अब डेनमार्क की सरकार इसको लेकर सख्त हो रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत है जो आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार सरकार का फैसला। गौरव, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, शामिल हो रही है, बताएं कि आखिरकार डेनमार्क पहले भी ये ट्राई कर चुका था दो बार, लेकिन आखिरकार क्या इस बार उस फैसले को लागू कर पाएगा डेनमार्क?
1: तो डेनमार्क में अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वैसे भी मैटे फ्रेडरिक्सन जो लगातार ये कहती आई हैं कि डेनमार्क में जो डेनमार्क के लोग हैं, डेनिश लोग हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कहीं बाहर हैं या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसीलिए डेनमार्क क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जब आप सार्वजनिक रूप से बाहर आए तो आपके चेहरे पर कोई नकाब नहीं होना चाहिए, आप अलग कपड़े नहीं पहन सकते, आपकी वेशभूषा वैसी ही होनी चाहिए जैसी वेशभूषा वहां के लोगों की है। इसीलिए डेनमार्क लगना चाहिए, डेनमार्क पाकिस्तान इस्लामाबाद का कोई नुक्कड़ या अफगानिस्तान इस तरह का बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यह समस्या केवल एक डेनमार्क की नहीं है, स्कैंडिनेविया में और खासतौर पर यूरोप में आप जैसा जानते हैं कई देशों में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या इस समय ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आप जानते ही हैं, कैसे पाकिस्तानी मूल के लोग और ज्यादातर वो जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान लोग जो
0: पंजाबी प्रांत के लोग,
1: पाकिस्तान के पंजाब के लोग जो इस समय इंग्लैंड में हैं, वो वहां 11-12 साल की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। न केवल बलात्कार कर रहे हैं बल्कि एक गैंग के रूप में गैंग बलात्कार, गैंग रेप करके, और एक दिन दो दिन नहीं महीनों तक कर रहे हैं, और फिर एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर बेच देते हैं या वहां उनका यौन शोषण करते हैं।
0: गौरव, आप क्योंकि पूरे इस यूरोप के इलाके में घूमे, ये समस्या पूरे यूरोप की बनती जा रही है, एक दो देश नहीं पूरे यूरोप के देश जो है इससे त्रस्त है,
1: बहुत बुरी तरह त्रस्त है, और कई देश अब खड़े हो गए हैं यह कहने के लिए कि अब ऐसा नहीं होगा। तो डेनमार्क ने एक शुरुआत की है, बेल्जियम में समस्या बहुत ज्यादा है, वहां पर तो लड़ाइयां हो जाती हैं, कुछ इलाके इंग्लैंड में भी कहे जा रहे हैं कि वो नोगो एरियाज हो गए हैं ब्रिटिश पुलिस के लिए, या फिर ब्रिटिश पुलिस का एक वर्ग है जो वहां पर उन इलाकों में जाता है। तो अब प्रयास डेनमार्क ने तो यह शुरुआत कर दी है, वो चाहते हैं कि कानूनन अब ऐसा हो जाए कि जो लोगों की वेशभूषा ऐसी रहे जैसे डेनमार्क की है, नकाब पहने लोग पब्लिक में ना आए, और जैसा वो कह रहे हैं कि अजान की आवाज डेनिश घरों की छतों पर नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो क्या लाउडस्पीकर पर अंकुश लगेगा, संसद के थ्रू ये वहां की पास होगा, या केवल एक अंकुश लगाने का ये प्रयास भर है, ये बड़ा प्रश्न है।
0: और देखिए ऐसी कोशिश, जैसा गौरव भी बता रहे हैं कि ऐसी कोशिश साल 2020 और 2025 में भी हुई थी, जिसमें के बाद तो ये कोशिश की गई है, तीसरी कोशिश है डेनमार्क में मुस्लिम आबादी को लेकर भी खबरें आ रही है। उस समय करीबन 4.4 थी, फिर ये 5.5 तक पहुंच गई, यानी करीब 2,05,000 से 3.5 लाख की मुस्लिम आबादी इस समय डेनमार्क में रहती है, जबकि डेनमार्क की कुल आबादी 60 लाख है। गौरव, यह भी बड़ा कंसर्न है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, यह भी डेनमार्क का और यूरोप के कई देशों का कंसर्न रहा है।
1: देखिए, दो तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक जनसंख्या जो लोग अपने परिवार को वहां बुला लेते हैं, और एक यूरोप में, पूरे यूरोप में जो बहुत बड़ी समस्या है सुमित, जैसा आप भी रिपोर्ट कर चुके हैं, जो इलीगल इमिग्रेशन वहां पर हो रहा है। ब्रिटेन में तो कई लोग इसे एक तरह से इन्वेजन कह रहे हैं, यूरोप का इन्वेजन कह रहे हैं। डेनमार्क की नीतियां बहुत कड़ी हैं, डेनमार्क अपने देश में लोगों को आने नहीं देता आसानी से। पोलैंड की नीतियां बहुत कड़ी हैं, पोलैंड नहीं आने देता, लेकिन जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कई ऐसे देश हैं जहां समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। कई इलाकों को तो अगर आप देखिए लगता ही नहीं कि ये यूरोप के देश हैं या यूरोप के शहर हैं, लगता है जैसे ये इस्लामाबाद या कराची पहुंच गए हैं, क्योंकि उसी तरह का खान पान, उसी तरह की वेशभूषा और उसी तरह की हिंसा अब होने लगी
0: बिल्कुल
1: है।
0: और गौरव जैसा बता रहे, देखिए प्रॉब्लम वहां पर लोगों के आने की नहीं, वहां पर पाकिस्तान के लोग द्वारा क्राइम करना सबसे बड़ा कंसर्न, और यही क्रिमिनलाइजेशन रोकने के लिए अब ये देश बड़े कदम उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ हमारे सहयोगी थे जो हमें बता रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, जो रूस और यूक्रेन के जंग को लेकर आ रही है, इस फ्रंट को लेकर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछली रात यानी 25 और 26 जनवरी की जून की रात यूक्रेन ने 660 फिक्स्ड विंग आत्मघाती ड्रोन से रूस पर हमला किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसमें से 660 ड्रोनों को मार गिराने का दावा भी किया है। ये ड्रोन रूस के 12 विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार आकर गिरे, जिसमें क्रीमिया भी और ब्लैक सी और ओजोव सी भी एक मुख्य इलाका था। आपको बता दें कि इस जंग शुरू होने के बाद एक रात में हुआ ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। और अब बात उस त्राही की या फिर उस त्रासदी की जिससे पूरा वेनेजुएला बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप की वेनेजुएला में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 235 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि आज इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये विमान भूकंप के बाद राहत कार्यों के लिए मदद के लिए वहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही ना सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी की एक मेडिकल टीम बल्कि वहां पर मौजूद उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में राहत सामग्री भी भारतीय सेना द्वारा वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट भी मौजूद है। 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाई और मेडिकल उपकरण इसमें शामिल है, जिसमें दो जो क्यूब्स भी मौजूद हैं। भारत इस मुश्किल में समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार ऐसे और भी साजो सामान या सहायता सामग्री जो है वेनेजुएला को दी जाती रहेगी।
2: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही हुई है। राजधानी काराकास समेत कई इलाके भूकंप से दहल गए। वेनेजुएला के तटीय शहर ला गुआयरा से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रिहायशी इमारतें, पूरे के पूरे मोहल्ले और औद्योगिक इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। वेनेजुएला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के मुताबिक इस आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 200 से अधिक लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ला गुआयरा में रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोग दिन रात मलबे को हटाकर अपनों की तलाश में जुटे हैं।
0: चले रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेद। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Today's Match Day Preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: रामजी के चढ़ावे की चोरी के केस को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था और इसके बाद से ही सियासी गलियारे में राम गबन का मामला गरमाया हुआ है। SIT की रिपोर्ट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन FIR में जिन लोगों के नाम है उससे सरकार सवालों के घेरे में है। अखिलेश यादव ने फिर एक बार ट्वीट कर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने BJP पर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
6: जब तक सामने बातें ना आए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
5: राम मंदिर चढ़ावे के गबन के मामले में आम आदमी पार्टी भी BJP पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में चंपत राय की भूमिका की जांच की मांग की है। आपका आरोप है कि लोग चंपत राय से डरे हुए हैं।
7: उसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है।
5: सूत्रों के हवाले से खबर है कि लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को FIR दर्ज होने के बाद की गई कार्रवाई का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा की भी हुई गई कुर्सी, सभी आठों आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी, कांग्रेस संसद में इस मुद्दे को उठाने का किया ऐलान। चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, गुजरात असम और उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। नक्सल मुक्त भारत बनने के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा प्लान, आज नारकोटिक्स के खिलाफ जंग के निर्णायक मोड पर प्रदेश, अगले तीन साल बेहद अहम। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन ने की मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया, सीएम फडणवीस से मिले मृतक के प्रति पिता।

खुल रही है साजिश की परतें। पुलिस के रडार पर हर किरदार, सीएम तक पहुंचा पीड़ित परिवार, आर पार पर अड़ा केतन का परिवार, फांसी वाले गुस्से में सिया का परिवार, प्यार पर क्यों साजिश भारी, तफ्तीश जारी। केतन के कत्ल को लेकर घमासान जारी है, पीड़ित परिवार में गम है, गुस्सा है, आरोपी परिवार में हैरानी है, बेबसी है। पुलिस की तफ्तीश मुख्य आरोपी से होते हुए अब परिवार के बाकी सदस्यों तक पहुंच गई है, ताकि कोई भी राज दफन न रह सके।

0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। आज हम बात करेंगे उस रणभूमि के बारे में जहां साजिश ने रिश्तों को तार तार कर दिया। केतन हत्याकांड के बाद पुलिस तफ्तीश में जारी है। अलग अलग जगहों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस पूरी साजिश के पीछे लगातार इस साजिश के पीछे छुपे एक एक राज पर से पर्दा हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। केतन का परिवार एक तरफ गम के डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ उसकी ही मंगेतर सिया और बाकी दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम भी लगातार जारी। केतन के पिता ने आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग की है। बाद में सीएम फडणवीस ने भी कहा है कि इस तरीके की वारदात बेहद हैरान कर देने वाली है और समाज में बड़ी विकृति की तरह उभर रही है। पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी इस तरीके के अपराध में लिप्त है तो इस पर सोचा जाना जरूरी है। इधर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा और बढ़ा दिया है और सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिया के भाई को सिया और उसके दोस्त के रिश्ते के बारे में जानकारी थी और इस जानकारी के आधार पर हत्या की पूरी साजिश को कितार जोड़े जा सकते हैं। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि सिया के माता पिता दोनों ने ही आज तक से बातचीत में साफ कर दिया है कि वो सिया और चेतन की दोस्ती के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, बल्कि सिया के पिता का तो ये भी दावा है कि उन्होंने कभी चेतन को देखा तक नहीं और ना ही उसके बारे में कोई बात सुनी। गुस्सा सिया के पिता ने इतना तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए और उसे उसी किले से धक्का दिया जाना चाहिए जहां से उसने केतन को दिया था। देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अपने दर्शकों को बता दे कि केतन के पिता ने सीएम से मुलाकात की है। आपको बता दे कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं उसके पिता और इस मामले पर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की गई और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाद में सीएम फडणवीस ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बेहद चौंकाने वाली है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर पढ़े लिखे युवा इस तरीके के जघन्य अपराधों से लिप्त क्यों हो जाते हैं।
1: खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत। मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
2: मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
3: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से?
2: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
3: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
2: जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए।
3: मामला फास्ट ट्रैक पे
2: जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर हो।
3: क्या आपने एसआईटी की वगैरह कुछ मांग की है? सर एसआईटी की मांग की है आपने इस पर?
2: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला।
0: और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश का रुख करते हैं। दिवेश देखिए लगातार पिता जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की है, दोषियों को कड़ी सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश अब तक कहां बढ़ पाई है क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि सिया के भाई से भी पूछताछ की जा रही है, कई और सीसीटीवी कैमरा की वीडियोज को भी खंगाला जा रहा है।
4: जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिया के भाई से भी सुबह से पूछताछ की जा रही है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है पुणे ग्रामीण की, वो सुबह से सिया के भाई से पूछताछ की जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये शक जताया जा रहा है कि सिया के भाई को सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में पता था, उसे जानकारी थी और उसके बावजूद उसने क्या घर वालों को ये बात बताई थी, क्या सिया के माता पिता को इस बारे में जानकारी दी थी, सिया ने इस बारे में जो उसका चेतन चौधरी से रिश्ता था उसके बारे में जानकारी दी थी या नहीं, ये सब कुछ जानते हुए भी क्या सिया के परिवार जनों ने उसे प्रेशराइज किया कि वो केतन अग्रवाल से ही शादी करे, चेतन चौधरी से उसका रिश्ता था, पर फिर भी उसे प्रेशराइज किया गया। पूछताछ में ये भी पता चला है इन्वेस्टिगेशन में कि चेतन चौधरी ने ही सिया गोयल को ये कहा था कि वो लोहगढ़ फोर्ट पर, लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल को बुलाए और वहां पर इशारा करे, और इशारा करने के बाद चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को धक्का मार गिरा दिया उस खाई में जहां पर उसकी मौत हो गई।
5: बिल्कुल।
4: अब इन सारी कड़ियों की जांच पुलिस कर रही है। 18 दिन में क्यों तीन बार आपको बता दें, 18 दिन में तीन बार केतन अग्रवाल सिया के कहने पर लोहगढ़ किले पर गया था, 14 जून।
5: बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ दिवेश लगातार। इस बीच अपने दर्शकों के चौंकाने वाला बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सिया के पिता ने कहा है कि देखिए, आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है, साफ साफ कहा कि अगर मेरी बेटी सिया दोषी है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए, फिर उसी किले से उसे धक्का दे दिया जाए जहां से उसने केतन को गिराया। और आपको बता दें कि सिया के भाई साहिल से भी पूछताछ जारी है, लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। चेतन की दोस्ती के बारे में उसके भाई को पता था और यही वजह कहा जा रहा है कि सिया के भाई से भी लगातार घंटों से पूछताछ की जा रही है। और जैसा हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे दिवेश सिंह कि देखिए, आज सुबह से ही लगातार साहिल से पूछताछ की जा रही है। सिया के भाई को उसके उनके रिश्ते के बारे में, उसकी दोस्ती के बारे में पहले से ये जानकारी थी।
6: अब तो पुलिस ने
7: हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
8: और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
7: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
6: देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी।
7: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
6: मैं
9: आप माँ हो उसकी?
7: हाँ जी, अगर वो उसने ये
8: तो बोलता
7: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
9: हाँ जी,
8: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
5: कुछ दिन पहले तक जो दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़कर

0: सिया की 19 साल में ही शादी कर ली। उनके पिता का दावा है कि रिश्ता आने पर शुरुआत में उन्होंने ये बात भी कही थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में वो तैयार हो गए।
1: उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों।
0: दूसरा सवाल, विदेश यात्रा से पहले पासपोर्ट गायब क्यों? केतन के परिवार ने केतन और सिया के साथ बाली जाने की तैयारी की थी, लेकिन आरोप है कि सिया केतन के साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए उसने केतन का पासपोर्ट इधर उधर कर दिया था।
2: रिश्ता पक्का हुए बाद उनका वो क्या रहता है, प्री शूटिंग के लिए वो बाली जाने वाले थे। बाली जाते टाइम भी उनका कुछ ऐसी चालाकी हुई कि ये लड़की मेरी पोती, पोता और उसका भाई लड़की का, ये चारों जा रहे थे, तो शायद वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, उसने मेरे पोते का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो टूर उनको कैंसिल करके वापस आना पड़ा।
0: लेकिन सिया के पिता का साफ कहना है कि सिया इस रिश्ते से बेहद खुश थी और अगर केतन को किसी बात पर शक था भी तो उसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी।
1: वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: तीसरा सवाल, किले में बार बार जाना क्यों? एक ही किले में बार बार जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सिया अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश में थी?
2: पुलिस स्टेटमेंट में लड़के के जवाब में आया ये कि भाई हम 14 तारीख को भी गए थे और 18 तारीख का तो वो टीवी में आ गया था, मतलब कैमरों में आ गया था कि लड़का इनका पीछा कर रहा था, कभी आगे था कभी पीछे था, जिससे पुलिस वहां तक पहुंची और ऊपर ये चले गए। ऊपर गए बाद इसने कुछ उनके इशारे होंगे पता नहीं, लड़का जब ऐसा कर रहा था हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी।
0: लेकिन केतन के परिवार वालों के इस आरोप को सिया के परिवार ने निराधार बताया है। सिया की मां का साफ कहना है कि लोहगढ़ किले जाने के लिए सिया ने मना भी किया था, लेकिन केतन ही वहां जाने की जिद कर रहा था। ये सब कुछ दोनों के फोन के चैट रिकॉर्ड में दर्ज है।
3: आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
4: हाँ, मुझे इसमें पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
3: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
4: हाँ भरी थी।
0: शुरुआती जांच में सिया को केतन की हत्या का आरोपी माना गया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है और किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा गया है, क्योंकि जब तक सिया और चेतन की दोस्ती और साजिश का हर राज खुल नहीं जाता, दोषी को सजा दिलाने की मुहिम पूरी नहीं होगी। पुणे से ओंकार वाबले और श्री कृष्ण पांचाल के साथ आज तक ब्यूरो।
5: दोनों ही माओ के अपने दर्द, कम है गुस्सा है, फिर वो चाहे केतन की माँ हो या फिर सिया की माँ, दोनों के ही सपने टूटे, दोनों का परिवार बिखर गया, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, दूसरी माँ ने अपनी बेटी पुलिस गिरफ्त में और मर्डर के आरोपों में फंसती हुई देख रही है। अब ये दोनों माँ आमने सामने, केतन की माँ का साफ कहना है, आरोप है कि हमसे ये छिपाया गया था कि सिया शराब भी पीती थी, पार्टी करती थी, जबकि सिया की माँ का कहना है कि हमें पार्टी वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
6: मेरा बेटा मतलब मेरे को एक ही बेटा है, वो 26 साल का, वो मुझे पता था वो ना ड्रिंक करने का ना कोई पार्टी में जाने का, और ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक के सब लेती है, हमको बात छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने, तो हमको वो बहुत शॉक लगा है।
4: नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह।

0: हाँ वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक
1: जी
0: बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब
1: जी
0: का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है।
2: और चलिए इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष सदस्य गोपाल राव का दावा है कि महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर खबरें मिल रही थी, लेकिन अब गोपाल राय की तरफ से कहा जा रहा है, गोपाल राव की तरफ से कहा जा रहा है कि महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है।
3: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है,
4: बाकी तो भगवान जाने।
3: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है,
4: बाकी तो भगवान जाने।
3: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है,
4: बाकी तो भगवान जाने।
2: चलिए रणभूमि में आज इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
10: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

0: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है, हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चंपत राय के इस्तीफे को लेकर नया पेज, ट्रस्टी के विशेष सदस्य गोपाल राव का दावा, नहीं हुआ इस्तीफा, आठों आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी। चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी कांग्रेस। केजरीवाल ने कहा फर्जी एसआईटी, फर्जी एफआईआर, फर्जी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, गुजरात, असम और उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। नक्सल मुक्त भारत बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का नया प्लान, कहा आज नारकोटिक्स के खिलाफ जंग के निर्णायक मोड़ पर देश, अगले 3 साल बेहद अहम। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन ने ही मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया, सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर है। राम के दान की चोरी और अमानत में खयानत का यह संपूर्ण अयोध्या कांड इतना अफसोसजनक है कि आज कबीर दास का एक भजन याद आता है। कबीर दास अक्सर एक भजन गाया करते थे, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोइया का सोवे, 5-25-3 है चोरवा, यही सब किन्हा सोर, बटोइया का सोवे। तो कबीर दास ने जो 5 इंद्रियों, 25 विकारों और 3 तत्वों वाले चोर से सतर्क रहने की सीख दी थी, वो आज राम मंदिर मामले में सटीक बैठती नजर आ रही है। क्योंकि यहां 5 की जगह चोरी के 8 आरोपी 14 दिन की हिरासत में जेल भेजे गए हैं। पता नहीं और कितने बचे हैं। और दान की चोरी का शोर भी तो ट्रस्ट ने ही मचाया था। पहले ट्रस्ट को ही शक हुआ था कि चोरी हो रही है, तो हिडन कैमरे लगाए गए और उसमें दिखा कि 42 दिन में 70 बार चोरी की गई है। फिर यह भांडा फूटा और ऐसा फूटा कि अयोध्या से उठी चिंगारी सियासी लहर पर सवार होकर दिल्ली पीएमओ तक जाकर पहुंच गई। अब जांच शोलों में तब्दील हो चुकी है, तो पता चला कि रामदान की गठरी में चोर न जाने कब से लगे हुए थे, क्योंकि इस ट्रस्ट ने चोरी रोकने के कोई उपाय ही नहीं किए थे। चोरी रोकने के उपाय तो छोड़ दीजिएगा, दान के पैसे को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया था और उसका भी पालन नहीं हो रहा था। बही खाते मेंटेन नहीं किए जा रहे थे, दान की हंडी कुछ, रजिस्टर में कुछ, इंटरनल ऑडिट में भी आधा अधूरा सच बताया गया था। SIT ने तो साफ कह दिया है कि ट्रस्ट को एक बार फिर रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, रोजमर्रा के कामकाज के लिए CEO या COO बनाए जाए, क्योंकि ट्रस्ट के पिछले 5 से 6 साल के सारे अकाउंट्स की भी विस्तृत ऑडिट अब जरूरी हो गई है। कितने सोने चांदी जेवरात आए, कितने जमा हुए, कितने रजिस्टर में दिख रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। इतनी खामियां और SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। लेकिन सवाल इस्तीफे से आगे का है, आगे क्या क्या होना बाकी है, क्योंकि इस इस्तीफे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: लोग गली गली भटके, राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया।
2: जून का महीना चढ़ा ही था कि अयोध्या के राम मंदिर के अंदर चढ़ावे की चोरी की बात आई। पहले हफ्ते सियासत हुई, दूसरे हफ्ते PMO तक खतों की ताबत हुई, तीसरे हफ्ते से जांच शुरू हुई, चौथा हफ्ता आते आते खुलासे हो गए, मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, चंपत राय का इस्तीफा भी हो गया। अभी हफ्ते के 4 दिन बाकी, अब तो बस इंसाफ की खातिर बची तवक्कोए खाकी है। और नजर खाकी में जो जुर्मों की दरख्वास्त आई है उसका मजमून कुछ यूं है। थाना राम जन्मभूमि में जून की 25वीं तारीख को आई अर्जी की बुनियाद पर मुकदमा नंबर 90/2026 दर्ज हुआ है। अर्जी में आरोप है कि गिनती के दौरान चढ़ावे की चोरी हुई है। ये यूं पता चला कि SIT ने अंतरिम जांच रिपोर्ट दी। चोरी करने वाले कोई और नहीं, नोट गिनने वाले कुछ कर्मी ही हैं। उनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव और टिन्नू है। इन्होंने चढ़ावे की चोरी, गबन, अमानत में खयानत, आपराधिक विश्वासघात, चोरी का धन छिपाने, साठगांठ से अपराध, आपराधिक साजिश और अन्य गुनाह किए हैं, जिनका मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। अर्जी की मांग के मुताबिक काम हुआ। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित कुमार के पास अर्जी गई, केस दर्ज हो गया, जांच DSP आशुतोष तिवारी को सौंपी गई। 8 नामजद गिरफ्तार हो गए। अब पूछताछ हो रही है, बाकी आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। कृष्ण मोहन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 9 महीने पुराने और ट्रस्ट के सबसे नए सदस्य, पूर्व ब्यूरोक्रेट और अवध प्रांत के RSS संघ चालक कृष्ण मोहन ने मुकदमा लिखाया। पता चला है कि चढ़ावे की चोरी तो हो रही थी, कब से हो रही थी पता नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहले ट्रस्ट के लोगों को ही शक हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों से 500 के नोटों की गड्डियां कम आने लगी थी। पहले एक दान पात्र से 7-8 लाख रुपए निकलते थे, वो घटने लगे। तो ट्रस्ट ने पहले से लगे सीसीटीवी के अलावा हिडन सीसीटीवी भी लगा दी। उसी में दिख गया कि कर्मचारी ही चोरी कर रहे हैं। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 42 दिन में ही 70 बार चोरों की गतिविधि दिखी। चोरी दो तरीके से हो रही थी, एक तो सीसीटीवी के सामने एक चोर खड़ा हो जाता था, दूसरा नोट गहने चढ़ावा चुरा लेता था। दूसरी गिनती के वक्त 500 की गड्डी बनाते वक्त उसमें से 100 से ज्यादा नोट निकाल दिए जाते थे। वाउचर बनाने में सिर्फ गड्डियां गिनी जाती थी, फिर गड्डी बैंक में जमा होने जाती, उससे पहले ही एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते। खैर, वो चोरी के आरोपी पकड़े जा चुके हैं, अब दान के धन की रिकवरी होना बाकी है। लेकिन चोरी का मामला खुला है तो ट्रस्ट का कामकाज भी घेरे में आ गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट देखे तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की रिपोर्ट में भी कमियां हैं। दान के लिए लगी पेटियों की संख्या और रिकॉर्ड में दर्ज पेटियों की संख्या में फर्क है। चढ़ावा के मैनेजमेंट में रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से नहीं की गई, सीसीटीवी कवरेज की निगरानी तक पर्याप्त नहीं थी। ऐसी तमाम खामियां, नाकामियां और सवाल उस ट्रस्ट पर उठे जिसके कर्ता धर्ता चंपत राय हैं।
3: जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है।
4: चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है?
5: जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है।
6: ये मेन चोरों को बचाने के लिए, मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक सिस्टमैटिक ड्रामा है।
2: चंपत राय के इस्तीफे के बावजूद उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और दूसरे आरोपों की सियासी फहरिस्त कम नहीं हुई है, क्योंकि ट्रस्ट के खिलाफ एसआईटी ने भी बहुत कुछ कहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कहा है कि एक तो दान पेटी, ऑनलाइन कैश काउंटर, जहां भी चढ़ावा आ रहा है उसकी रोजाना अनिवार्य एंट्री नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए। उसके बाद हर हफ्ते ऑडिट नहीं होता है जो होना चाहिए। 5 साल में जो भी चढ़ावा आया है उसका व्यापक ऑडिट भी जरूरी है। और तो और, एसआईटी ने मौजूदा ट्रस्ट की जगह नई व्यवस्था की सिफारिश की है, जिसमें रोज के कामकाज के लिए सीईओ या सीओओ नियुक्त किया जाए। मंदिर में आगे चोरी न हो और सबूत जिंदा रहें, इसके लिए 180 दिन तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की सिफारिश भी एसआईटी ने की है। लेकिन बात सिर्फ चढ़ावे तक नहीं थमी, अब देश भर से तरह तरह के दावे सामने आने लगे। कभी सिंधी समाज अपने 200 किलो चांदी का हिसाब मांग रहा है, तो कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी चांदी वाली ईंटों की पर्ची मांग रही है। जबकि एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि जो रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनमें 21 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 के दौरान कुल 38 किलोग्राम चांदी प्राप्त होने का उल्लेख दर्ज है। फिर 29 जुलाई 2020 को 25.576 किलोग्राम चांदी की ईंटें दान में प्राप्त होने का रिकॉर्ड भी अभिलेखों में मिलता है। उधर बात पैसे, सोने, चांदी, जेवरात से भी आगे जमीन घोटाले तक जा पहुंची है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने पेश होकर चंपत राय की ओर से की गई जमीन खरीद वाले प्रकरण के 13 दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। अब सवाल यही है कि चंपत राय के इस्तीफे के पीछे क्या गंभीर आरोप है या कुछ गंभीर गड़बड़ी भी है? चंपत राय के इस्तीफे के बाद चंपत राय का क्या होगा? चंपत राय के ट्रस्ट का क्या होगा? आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: तकलीफ देने वाली बात यह है इस पूरे मामले में कि पहले आस्था थी तो कोई हिसाब नहीं मांगता था, दान देने के बाद पर्ची की मांग नहीं करता था, लेकिन अब जब चोरी सामने आई है तब हर कोई खड़ा होकर यह हिसाब मांग रहा है कि जो हमने दान दिया था क्या वो सही जगह इस्तेमाल हुआ है या नहीं। ये जो है ये कैसे भरा जाएगा, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजय शंकर तिवारी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद वो भी चर्चा में शामिल होंगे। अब तक विश्व हिंदू परिषद ने मांग कर चुके हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच भी होनी चाहिए। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे। पवन पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले पवन पांडे हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद परतें खुलती गई और आज जाकर FIR जब रजिस्टर हुआ 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि संसद के अगले सत्र में इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठाए जाएंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? चंपत राय का इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर कई बातें हो रही है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी है इस ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं उन पर भी उठाए जा रहे हैं कि ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल, क्या SIT की अंतरिम रिपोर्ट में ट्रस्ट पर उठे सवालों के बाद ट्रस्ट पर एक्शन जरूरी है क्या? क्या उस पर एक्शन की बारी है क्या? आस्था के खिलाफ खिलवाड़ मंजूर नहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो क्या ट्रस्ट पर भी कार्रवाई होगी? तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर में चोरी का मामला चढ़ावा दान तक ही सीमित है या अब जमीन का मामला भी उठाया जाएगा? कई सारे मामले इसमें हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे वो जेल भेजे गए, यानी सोमवार तक सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 79,85,000 रुपए 493 आरोपियों से बरामदगी हुई है। करीब 80 लाख की रकम आरोपियों से बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर है। ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्य और मंदिर निर्माण सहायक गोपाल राव ने चंपत राय के इस्तीफे की खबर से इनकार कर दिया है। गोपाल राव ने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा नहीं हुआ है, प्रचार माध्यम से इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है, जो लगता है कि इस्तीफा देकर ही लेकर ही मानेंगे। क्या कहा है गोपाल राव ने, जरा सुन लेते हैं एक बार।
7: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
8: बाकी तो भगवान जाने।
7: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं
8: हुआ, बाकी तो भगवान जाने।
7: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
8: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने।
7: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है,
0: ये कहा जा रहा है, गोपाल राव जी ये कह रहे हैं। लेकिन इस बीच और एक बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है। आलोक कुमार ने कहा है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 ट्रस्टियों के खिलाफ ही आरोप है और ऐसे में पूरे ट्रस्ट को भंग करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आलोक कुमार ने ही कल मांग की थी कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अब वो कह रहे हैं सिर्फ 2 ट्रस्टियों पर आरोप लगे हुए हैं, यानी ट्रस्ट भंग करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा आलोक कुमार ने, सुनते हैं।
9: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने के लिए 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव, प्रशासन का अनुभव।
0: ये बड़ी बात है कि एक तरफ अब विश्व हिंदू परिषद, 3 बड़ी खबरें इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। पहली खबर यह है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर जांच के लिए पुलिस कस्टडी मांग लेती है, यानी पुलिस कस्टडी दी जाती है, लेकिन पुलिस ने इन 8 आरोपियों की कस्टडी मांगी ही नहीं। ये सारे आरोपी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए, यानी जेल कस्टडी में रहेंगे। कब इनकी पुलिस जांच करेगी वो फिलहाल पता नहीं है। विष्णु जैन जी, इस पर आपसे सवाल पूछना जरूरी है, आप वकील है, आपको पता है कि ऐसे मामलों में जब जांच होती है तब पुलिस कस्टडी मांगती है, लेकिन इस पे कस्टडी नहीं मांगी गई है, नंबर 1। नंबर 2, आलोक कुमार जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ट्रस्टियों पर आरोप लगे हैं, इसके वजह से पूरे ट्रस्ट को भंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एक दिन पहले तक विश्व हिंदू परिषद ने अचानक यह मांग उठाना शुरू कर दिया था कि क्या इस पूरे मामले में इंडिपेंडेंट जांच की गुंजाइश बनती है, तुरंत FIR करके इस पे जांच की जाए। शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी, क्यों आपका मामला इस तरीके से बदल रहा है? कभी आप कहते हैं कि अगर कोई भी इसमें शामिल है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ट्रस्ट को भंग मत करिएगा, क्या करना
10: है? वो तो अभी भी है। नहीं, बिल्कुल वो स्टैंड अभी भी है कि FIR हो गई है और उस पर सबकी जांच होनी चाहिए, और 8 लोग तो गिरफ्तार भी हो गए हैं, और उससे उनसे जब पूछताछ होगी, बातचीत होगी, तो सारी चीजें निकल के आएंगी, तो स्टैंड तो अभी भी है। वो तो केवल ट्रस्ट भंग करने की बात करें, ट्रस्ट भंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जिस पर आरोप लग रहा है तो उनके साथ चर्चा होनी चाहिए। तो आप पूरे ट्रस्ट के भंग करने की बात यही कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे माननीय आलोक जी। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि SIT की जांच की मांग किसने की, ये जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो मांग किसने की, वो ट्रस्ट ने की। और इसके बाद FIR होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, तो वो FIR के लिए किसने कहा, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई अब जांच तो हो गई होगी, अब आप जो दोषी निकल के आए हैं जिनकी की जांच हो गई है, इतने दिन से पूछताछ हो गई है, आपको ध्यान में आ गया होगा कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ FIR करिए, उनको गिरफ्तार करिए और आगे जांच बढ़ाइए। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, हर तरीके की जांच होनी चाहिए। SIT के पास संपूर्ण अधिकार है, वो वित्तीय भी कर सकती है, क्रिमिनल भी, हर तरीके का जांच कर सकती है, तो वो आगे बढ़े और जो भी इसके दायरे में आए उसको।
0: जांच की मांग आपकी तरफ से रखी गई थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा जब पहली बार इस पर आरोप लगाना शुरू हो गया था तब तो विश्व हिंदू परिषद कह रही थी कि भाई ये आरोप लगाने वाले पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सरकार के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आरोप लगाने वालों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन विष्णु जैन, जो सवाल मैंने ओरिजिनली यहां पर उठाया था, बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे कि आमतौर पर हर मामले में लंबी लंबी पुलिस कस्टडी ली जाती है पुलिस की तरफ से, इतना बड़ा गंभीर मामला है, इतनी बड़ी चोरी का मामला सामने आ रहा है, 80 लाख रुपए लौटाने की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस कस्टडी मांगी नहीं गई। 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, ऐसा कभी आपने सुना है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में?
11: देखिए, आपको पहले यह समझना पड़ेगा जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क होता है। जुडिशियल कस्टडी में भी व्यक्ति जेल में जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भी व्यक्ति जेल में जाता है, और अगर पुलिस को जरूरत होगी कि उनको पूछताछ करनी है, उनको उसकी कस्टडी चाहिए, उनको बयान चाहिए, तो पुलिस कभी भी पुलिस कस्टडी मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल कस्टडी में चले गए तो बाद में पुलिस कस्टडी में नहीं आ सकते हैं। पर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, जो गंभीर प्रश्न है, मैं स्वयं ये बात कहना चाहता हूं कि एलिगेशन बहुत सीरियस है। इस केस से जुड़े होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी थरो जांच होनी चाहिए। हम सारे लोग इस जांच पे अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, और कोई भी दोषी, जो क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि निर्दोष जो है उसको फंसाया ना जाए और कोई भी दोषी छूटे ना, हम उस बात को लेके आगे चल रहे हैं। जब हमने पूरा ये लिटिगेशन लड़ा 1950 से लेकर 2019 तक, पूरे समाज ने लड़ा, और जब वहां पे भगवान राम की, प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना की, तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा और इस तरह के सीरियस एलिगेशंस लगेंगे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, राम मंदिर पूरे देश के लिए आज एक मॉडल है। और जहां पे आज हम बात कर रहे हैं कि मंदिर को सरकारी नियंत्रण से बाहर लिया जाए, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं 5 फरवरी 2020 को इस पूरे ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने गठित किया था। इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो सरकार द्वारा नॉमिनेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड है, डीएम अयोध्या इसके मेंबर हैं। तो अलग अलग जो बहुत ही मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार का टोटल इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद अगर ऐसी घटना सामने आ रही है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत पीड़ादायी है, और हम सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन।
0: विष्णु जैन जी, सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। आपने टेक्निकली जो बात कही एक वकील के नाते, वो मैं भी मानता हूं कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाने का मतलब यह नहीं है कि आप पुलिस दोबारा उनकी हिरासत नहीं मांग सकती, कस्टडी नहीं मांग सकती, जांच के लिए उनको नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन जितना संगीन मामला यहां पर नजर आ रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें है ट्रस्ट बनाने में, 12 मेंबर सरकार के द्वारा वहां पर मनोनीत किए जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी यहां पर हो रही है। फिलहाल तो हमें चोरी पता चली है अप्रैल से लेकर जून तक की, इससे पहले क्या होगा, पिछले 6 साल में क्या हुआ होगा, यह सब जांच होना अभी भी बाकी है। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस जाकर अदालत के सामने कहती है कि फिलहाल हम कस्टडी नहीं लेंगे, तो आप अगर लॉयर होते वहां पर, डिफेंस के लॉयर होते, तो आप क्या कहते हैं? आप सरकारी वकील होते तो क्या कहते हैं? आप अगर ये केस लड़ रहे होते तो आप क्या कहते हैं कि पुलिस ज्यादा सीरियस नहीं है इस मामले में, गंभीरता से नहीं ले रही है, नहीं कहते आप इस बात को?
11: आप इस बात
0: आप
11: को
0: बड़े बेबाक है, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूं।
11: नहीं, मैं फिर से, मैं देखिए इसमें कोई लाग लपेट की बातें नहीं है, क्योंकि हम सारे लोगों का ये इंटरेस्ट है कि यहाँ पे जो गलत हुआ है वो सामने आए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पुलिस कस्टडी की अगर जरूरत पड़ेगी तो आज हम लोग ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं साहिल जी कि पुलिस कस्टडी नहीं मांगेगी। अगर कभी भी पुलिस कस्टडी की जरूरत पड़ेगी तो मांगी जाएगी। अब मुझे ये बात नहीं पता है कि जब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जो 8 लोगों को हिरासत में लिया है, हिरासत में तो लिया गया, हिरासत में लेके उनको जुडिशियल कस्टडी, जिसे जेल कहा जाता है, वहां भेजा गया है। अब अगर उनको लग रहा है कि इस समय उनके बयान, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जहां तक मेरी जानकारी है, जब पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उन सारे लोगों के धारा 161 में जिसे सेक्शन 161 सीआरपीसी कहते हैं उसमें बयान दर्ज किए गए होंगे और जो सारी चोरी है वो पकड़ी गई होगी, तो पुलिस कस्टडी की जरूरत तब पड़ती है।
0: हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन पवन पांडे जो यहाँ पर विसल ब्लोअर बैठे हुए हैं, क्योंकि नहीं ठीक है पवन पांडे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विसल ब्लोअर माने जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आरोप पवन पांडे जी ने लगाए थे और तब कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। पवन पांडे जी आप सुन रहे हैं विष्णु जैन क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं वीएचपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जो अब जांच हो रही है आपके आरोप लगने के इतने दिन के बाद एफआईआर होकर जो फाइनली जांच हो रही है, क्या आप संतुष्ट है इस पूरे मामले से?
12: नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। जब से यह ट्रस्ट बना है तभी से डकैती चालू है। 2020 और 21 में हमने खोला था कि 2 करोड़ रुपए की जमीन ली गई और आधे घंटे के बाद वही जमीन 20 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी, तो लगातार 2020 और 21 से ही ट्रस्ट के पैसे में डकैती पड़ना शुरू हो गई थी। जब 5 या 7 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पेज पर और ट्विटर हैंडल पर लिखा कि राम मंदिर में डकैती हो रही है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, तो लोगों ने उसके बाद लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया। और आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर यह ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीय और भगवान श्रीराम में आस्था रखने वाले लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया। जो महिपाल सिंह गणना प्रभारी थे उन्होंने कई साल पहले जब यह देखा कि रजिस्टर में रुपया लिखा जाता है कम और बक्से में रुपया जाता है ज्यादा, जब उसकी सूचना उन्होंने चंपत राय जी को, गोपाल राव को और अनिल मिश्रा को दी, तो इन लोगों ने गंभीरता से क्यों नहीं इस बात को लिया, क्यों नहीं उस समय उस चोरी को रोकने का प्रयास किया, क्यों नहीं उस जो डेली रुपए की डकैती हो रही थी उस पर रोका, जो लोगों ने हीरे का हार चढ़ाया गायब हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मुकुट गायब हो गया, सोने की 200 किलो ईंटे गायब हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब चंपत राय जी की बगैर मर्जी के ट्रस्ट में पत्ता नहीं हिलता था, अनिल मिश्रा के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, तो इतनी बड़ी चोरी डकैती जो आस्था की हुई है, जो चढ़ावे की लूट हुई है, इसके जिम्मेदार भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल हैं। ये जो 8 लोगों पर छोटे मछलियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और जो धाराएं लगी हैं, ये तो एक दिन में जमानत हो जाएगी सारी धाराओं में, कुछ है ही नहीं है इसमें, तो बाकायदा चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को नामजद करना चाहिए था, गंभीर मुकदमे धाराएं लगानी चाहिए थी जिसमें जमानत ना हो सके। ये क्यों ही देखिए, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था आस्था के आधार पर, तो चोरी डकैती भी 140 करोड़ लोगों की आस्था पे वार है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास पर विश्वासघात
0: है। ये बड़ा सवाल है,
11: कड़ी कार्रवाई होनी
0: चाहिए आस्था के आधार पर। अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का बेंच फैसला दे सकता है तो आस्था के आधार पर पवन पांडे जो सवाल उठा रहे हैं कि आस्था के आधार पर इन सभी लोगों पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े कानून के तहत इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाना चाहिए, बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ा जाना चाहिए। जी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए,
11: होने दीजिए आप पहले। जमीनों का घोटाला
13: जवाब दूं या बीच में अभी चालू रहेगा?
11: जमीनों का घोटाला किया गया
0: पवन पांडे जी, सारे सवाल आप एक ही इसमें मत पूछिएगा, बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास उस पर भी आएंगे, लेकिन जो गंभीर सवाल उठाए आपने पहले उस पर जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी
13: देखिए, जो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी ये जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध के जैसे ही प्रकाश में आया तत्काल एसआईटी गठित की गई। 24 घंटे के भीतर एसआईटी ने तत्काल उस पर जो है अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी, उसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर तत्काल तीव्रता से कार्रवाई हुई और कोई भी गुनाहगार, कोई भी दोषी बचने नहीं पाए गए। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, ये बाबर के वंशज बीच में ना बोले, बाबर के वंशज
0: ये बाबर बाबर छोड़िए आज जरा, ये चोरी करने वाले भी बाबर के वंशज है। प्रेम शुक्ला जी, चोरी करने वाले भी बाबर के वंशज है। चोरी करने वाले किसके वंशज है जरा बताइए फिर, चोरी करने वाले किसके वंशज है? पवन पांडे जी, प्रेम शुक्ला जी को मामला भटकाने का मौका मत दीजिएगा, हंगामे में समय मत व्यस्त करिएगा। पवन पांडे जी हंगामे में समय मत व्यस्त करिएगा। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट पवन पांडे जी, एक मिनट जरा, दोनों की आवाज कम कराइएगा। ये सदियों पुराना डिबेट नहीं चलेगा आज कि बाबर का वंशज कौन है, फलाने का वंशज कौन है, जो चोरी करने वाले किसके वंशज है उसका भी जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, ये पुराना पॉलिटिकल डिबेट आज नहीं होगा, आज पुराना पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगा, आज नहीं, आज मुद्दे पर बात होगी। नहीं नहीं, आप मुद्दे पर बात होगी। जो 15 विष्णु जैन सही कह रहे थे, 12 सदस्य सरकार के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं, 3 सदस्य आईएएस अधिकारी इसमें मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी भी मनोनीत किए जाते हैं। उसके बावजूद अगर ट्रस्ट किसी भी तरीके से चोरी को दबाने में कामयाब नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आज इस डिबेट को डिरेल नहीं होने दिया जाएगा। पवन पांडे जी, एक सेकंड प्लीज, आप जरा रुकिए, बीच में मत बोलिए, वरना वो डिबेट को डिरेल करते रहेंगे। दोनों की आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी, प्लीज। पवन पांडे जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर बात करेंगे। आप प्लीज आज मुद्दे पर बात करेंगे, प्लीज।
13: मैं मुद्दे पर ही,
0: मुद्दे पर ही रहिए प्लीज। जो सवाल पूछा है उसका जवाब, सवाल पूछा है उसका जवाब।
13: मैं शत प्रतिशत मुद्दे पर हूं,
0: बोलिए।
13: मैं शत प्रतिशत मुद्दे पर हूं। कोई भी जो भी इसमें रंच मात्र भी इस चोरी में शामिल है, किसी भी चोर को, क्योंकि ये आस्था पर प्रहार है। राम मंदिर आंदोलन करोड़ों की आस्था के आधार पर चला, करोड़ों लोगों के जो है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से राम मंदिर का निर्माण हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर कोई उसमें 1 रुपए की भी चोरी करता है तो 1 रुपए का चोर भी कहीं से भी बचने नहीं पाएगा, क्योंकि ये राम भक्तों की सरकार है।
0: बिल्कुल,
13: बाबरवादी
0: प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दीजिए।
13: राम को काल्पनिक मानने वाले,
0: ये तो भूमिका हो गई। SIT जांच के बाद में, SIT के अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद में FIR दर्ज होने में 2 दिन का समय गया हुआ है, और VHP को इसके लिए आरक्षण मांग करनी पड़ी है।
13: लेकिन हो गया ना FIR,
0: प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए अभी। अरे हो गया FIR, मतलब FIR तो पहले करना चाहिए था। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, और इसीलिए FIR तुरंत हो जाना चाहिए था। अगला सवाल तो ये भी है, SIT के अंतरिम रिपोर्ट में एक मिनट पवन पांडे जी, एक सेकंड, SIT के अंतरिम रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष, आवाज बंद करिएगा। SIT की रिपोर्ट पे क्या लिखा गया है वो जरा लोगों के सामने आने दीजिएगा। SIT के ट्रस्ट के आंतरिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2022-2023, 2023-2024, 24 और 25 इनके ऑडिट रिपोर्ट में भी खामियां हैं। पिछले 3 साल के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट में खामियां हैं, यह भी उसमें लिखा गया है प्रेम शुक्ला जी। नंबर 2, दान के लिए जो पेटियां लगी थी उनकी संख्या और रिकॉर्ड में दर्ज पेटियों की संख्या में अंतर है, दूसरी बात उसमें लिखी गई है। और तीसरी बात उसमें लिखी गई है, चढ़ावा के मैनेजमेंट में रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से नहीं की गई है। अब इसके लिए आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं SIT के तरफ से, किसको गिरफ्तार कर रहे हैं? जो कैश वहां पर गिनने का काम करते थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जो ट्रस्ट का मैनेजमेंट है उन पर कब कार्रवाई होगी प्रेम शुक्ला जी, उसका जवाब दीजिए।
13: जांच होगी और कोई बचने नहीं पाएगा, एक एक पाई की राम,
0: क्योंकि 12 मेंबर तो आपकी सरकार ही बनाती है उसमें।
13: आप राम लला के प्रति आस्था रखने वाले लोग जो है उनकी, उनके भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनका आदर करते हुए, एक पैसा भी अगर किसी ने चुराया है तो वो कार्रवाई का पात्र होगा। उसने कभी भी चुराया होगा वो कार्रवाई का पात्र होगा, बचेगा नहीं, ये निश्चय है। ये सरकार का निश्चय है, ये केंद्र सरकार का निश्चय है, राज्य सरकार का निश्चय है, ये होकर रहेगा।
0: ट्रस्ट ये बात विष्णु जैन जी आपसे मुझे समझनी है, क्योंकि ये बात तो ठीक है, SIT ने रिपोर्ट बनाई, SIT ने उसमें जांच करी, SIT की जांच में ट्रस्ट के काम में खामियां भी नजर आ रही है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट ट्रस्ट को ही सौंपी जाती है। सरकार खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? 3 मेंबर तो इसमें IAS अधिकारी है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो भी उसमें मेंबर है, होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के वो भी इस ट्रस्ट के मेंबर है, केंद्र सरकार के तरफ से IAS अधिकारी इस ट्रस्ट में मेंबर है। 12 मेंबर आप ही ने कहा कि केंद्र सरकार के तरफ से मनोनीत किए जाते हैं, उसके बावजूद भी ट्रस्ट को रिपोर्ट दी जाती है, इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत नहीं महसूस होती विष्णु जैन जी?
11: देखिए, जब SIT फॉर्म की गई थी राज्य सरकार द्वारा, तो वो SIT ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो ACS होम को की थी, इन द कैपेसिटी ऑफ ACS होम, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें साहिल जी, जो हम लोगों को समझने की है कि आज जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं, चाहे वो चांदी की सिल्लियों का हो, चाहे वो हार का हो, चाहे वो चरण पादुका का हो, चाहे वो कमीशन का हो, चाहे वो डोनेशन बॉक्स का हो, सबसे पहले तो ये बात करते हुए भी अपने आप में बहुत पीड़ा हो रही है, और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। पर बी दैट एज इट, में अब जो हुआ है तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी बहुत ही सीरियसली इसकी जांच की जाए, और जो अब FIR,
0: लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है विष्णु जैन जी, कानूनी बातों में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
11: ये बिल्कुल सही बात है।
0: मैंने चीजें देखी हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो ट्रस्ट अंतरिम रिपोर्ट में देखता है कि चोरी हो रही है वो सीधा जाके एफआईआर तो नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद एसआईटी की रिपोर्ट उस ट्रस्ट को दी जाती है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप देख रहे हैं चोरी हो रही है फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
11: जो मैंने देखा था एसआईटी की रिपोर्ट एसीएस होम को दी गई थी, श्री संजय प्रसाद जी को, एसीएस होम को एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की थी। बट बी डेट एज इट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो लोग भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जिनसे डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया या जो उसमें इंडल्ज्ड है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। और अगर आज अगर छूट गए तो फिर से वही काम होगा और कभी भी जो मंदिर स्थापना का जो पर्पज है वो हमेशा के लिए डाइल्यूट हो जाएगा।
0: विजय शंकर तिवारी, आपकी बड़ी भूमिका है इस पूरे मामले में, आप लोगों की बड़ी भूमिका है।
10: साहिल जी, राम से बड़ा कोई नहीं है, और हम तो एक बात कहते हैं कि राम जी ने जो रामद्रोही रहे अभी तक उनको भी दंड मिला है, और रामद्रोही अब है उनको भी दंड मिलेगा। तो भगवान राम किसी को नहीं बख्शते, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी तक तो दंड दिया ही है, ये तो आपने देखा है कि उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो सबसे बड़े राम है और उनसे कोई दोषी बच नहीं पाएगा।
0: नहीं, जो बाण किस पर चलेगा उस पर भी नजर रहेगी। आप अगर बाणों से छोटे छोटे लोगों को मारेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा इस बार।
10: नहीं साहिल जी,
0: अखिलेश प्रताप सिंह संसद में क्या मामला उठाएंगे?
10: ठीक है साहिल जी, राम पर
14: मैं बोलूं,
10: उन पर विश्वास है, हमें राम पर विश्वास है।
0: एक सेकंड अखिलेश जी, वो खत्म कर रहे
10: हैं। किसी से भी गलती हुई है उसका परिणाम उसको भगवान राम स्वयं देंगे।
0: ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह।
14: देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो अब यहीं पे कंफ्यूजन आ गया। आपने शुरू में अभी कुछ देर पहले सारे देश के मीडिया को बताया गया कि ये दो लोग ट्रस्टियों ने इस्तीफा दे दिया, अब उस पर भी डाउट आ गया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये क्या हो रहा है ये समझने की बात है। ये बड़ा गंभीर विषय है, आर्थिक तो है, ये आस्था का भी है। और दूसरा एक गंभीर विषय ये है कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस के सारे लोग उसमें हैं, और ये उनका रोल मॉडल ये है कि भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है और निष्पक्षता से जांच भी नहीं हो रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जमीन बड़ा लंबा क्राइम है। जमीन की खरीद फरोख्त का कई साल का उसमें घोटाला है, निर्माण में घोटाले हैं, बताया गया 40-40 कमीशन आते थे, इन्हीं के लोगों ने जो बताए जो उजागर हुआ, चढ़ावा का मामला है, चंदा का मामला है, सोना चांदी हीरे जवाहरात इसके मामले हैं, हीरे के हारों का मामला है, चांदी के शिलाओं का मामला है, भूमि पूजन में खर्चे का मामला है, उद्घाटन में खर्चे का मामला है, पताका आज संपन्न करने में तमाम कार्यक्रमों में खर्चे का मामला है। और देखिए ये पहली घटना नहीं है, शुरू में जब ये शुरू हुआ था तो जमीन भूमि घोटाले की आरोप लगे थे, सीएजी तक ने उसको उजागर किया। आंतरिक ऑडिट में भी बताया गया कि इस तरह से घोटाले हो रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है, ठीक किया जाए। नोटों को उजागर करने वाले महिपाल सिंह को हटा क्यों दिया गया, सीसी कैमरे हटा दिए गए, उसके तमाम चीज़ें डिलीट कर दी गईं। और माननीय चंपत राय जी ने शुरू में कहा कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं मिली, नृपेंद्र मिश्रा जी ने इसे डांका शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीजों को, इस गंभीरता को और इसकी पवित्रता को, आस्था को बनाए रखने के लिए ये लीपापोती करेंगे, इनसे उम्मीद कुछ नहीं है। अदालत की देखरेख में हो ये ट्रस्ट, पूरा भंग हो, नए सिरे ट्रस्ट बने, साधु संतों शंकराचार्यों को उसमें जगह मिले
0: अदालत की देखरेख में, और बिना किसी व्यक्ति के इस पूरे मामले में दखलंदाजी देने के बिना अगर जांच होगी तभी जांच के बारे में कहा जाएगा। नहीं आपको लगता इस बात को, क्योंकि ग्लेयरिंग मिस्टेक्स आंतरिक जो इंटरिम रिपोर्ट इसमें आई है उसमें दिखाई दे रही है।
15: साहिल, मैंने बहुत गंभीरता से सभी को सुना है, इसलिए लोग सुनना पसंद करें। अच्छी बात है कि अखिलेश जी की आस्था राम मंदिर में आ गई है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बुरा बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरा धक्का लगा है, और अखिलेश जी की पार्टी तो इसका पॉलिटिकल कैपिटल के लिए यूज कर रही थी। आपको याद होगा कि अखिलेश जी ने कहा था जांच होनी चाहिए, जब जांच होने लगी तो अखिलेश जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब साधु सन्यासियों के क्या जांच पुलिस करेगी। अरे घर के अंदर बैठ जाते, एक कमरे में बैठ जाते, आंख मूंद कर लेते और कहते कि भाई जो है जिन्होंने लिया है वो दे दो। यही बात शायद चंपत जी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन यह आपराधिक चीज है जिससे भी जो कुछ भी जहां भी मिला था उसके बाद तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए थी, ये मैं आज कह रहा हूं। मुझे लगता है वहां चंपत जी ने भूल कर दी, वहां उनको भरोसा वहां पर उनका तोड़ा गया था, वहां पर उनको FIR तुरंत दर्ज की कर देनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसका अभी विष्णु जैन जी ने जिक्र किया, इस सवाल को उठा कौन रहा है, इस सवाल को ढकने की कोशिश कोई क्या संघ का स्वयंसेवक होने देगा? संघ के स्वयंसेवक ही इसे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो बौद्धिक जमात के लोग हों, वो भी उतनी ही जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं तो कई पैनलों में बैठता हूं और जो संघ से जुड़े हुए पत्रकार हैं या उन जिनकी निष्ठा है वो भी उतनी
16: तो कार्रवाई सही हो रही है संगीत रागी जी,
15: सवाल को पूछ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं, ये सुनिश्चित चाह रहे
16: कार्रवाई सही हो रही है।
15: मैं अभी तक कहूंगा बिल्कुल साहिल 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, इसके बाद अखिलेश जी जो बोलना हो बोल लें। साहिल
16: नहीं, कार्रवाई सही हो रही है क्या?
15: अभी की जो कार्रवाई है मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि शुरुआत ठीक है लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ट्रस्ट के लोगों को के मिलीभगत से ये हुआ है तब तो ये बहुत ही अपने आप में घटिया, और मेरा डर आगे का है, मेरा डर इसलिए आगे का है।
16: और एक चीज
15: कि पूरी निष्ठा
16: चंपत राय का इस्तीफा होना चाहिए,
15: जिसने राम मंदिर को यहां तक
16: लिया है, होना चाहिए।
15: मैं मानता हूं कि इस स्तर पर चंपत राय जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए।
16: ठीक है, ट्रस्ट को नए सिरे से बनाना चाहिए, जो SIT बोल रही है
15: आवश्यक है।
16: SIT बोल रही है उस तरीके से नए सिरे से ट्रस्ट को बनाया चाहिए,
15: नैतिकता के आदर्श मानदंडों को मानते हुए उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए।
16: ठीक है, पवन पांडे जी,
15: साहिल 10 सेकंड,
16: साहिल आता हूं, दोबारा आता हूं। पवन पांडे आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
17: इस तरह से मंदिर के जिस तरह से
16: एक
17: मर्यादा
16: आज इसी पर रही है,
17: मथुरा मंदिर में लूट हुई है, जिस तरह से रुपए से लेकर आभूषण से लेकर और जमीनों की खरीद फरोख्त में 200 करोड़ रुपए की लूट हुई है, उस आधार पर तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले पूरे ट्रस्ट को ही भंग कर देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर इस पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ही जांच हो। जब तक सारी जांच परतें खुल न जाए, सारी परतें बाहर ना जाए, तब तक इन सारे ट्रस्टियों के मंदिर के प्रवेश पर भी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, जो लोगों ने चढ़ावा किया उसमें चोरी हुई है और जमीनों की खरीद फरोख्त में भी भारी पैसे की बंटरबांट हुई है। इसलिए जो आस्था से खिलवाड़ हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास से खिलवाड़ हुआ, इसलिए सारी कार्रवाई बहुत मजबूती के साथ होनी चाहिए।
16: ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी।
14: साहिल जी, मेरा कहना यह है कि अब किसी भी मामलों में विपक्ष के भी मुख्यमंत्रियों तक को CBI ED अरेस्ट करती है, कर लेती है और कहा जाता है कि ये बाहर रहेंगे तो प्रभावित करेंगे। इसमें अभी तक सारे लोग अरेस्ट क्यों नहीं, CBI जांच क्यों नहीं शुरू हुई? जिस दिन से ट्रस्ट बना है उसी दिन से घोटाले की भी सूचनाएं सार्वजनिक होती रही हैं, पब्लिक डोमेन में सारे साक्ष्य भी आते रहे हैं,
15: बोफोर्स कांड आया था
14: और सारे साक्ष्य चीख चीख के बताते रहे हैं कि इस तरह से है। बीच में मैंने किसी के नहीं बोला था, ये ज्ञान देने वाला ही होंगे, RSS वाले, पर उपदेश कुशल बहुतेरे वही होंगे, ये मुझे सुना, मुझे पता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये आप लोगों का रोल मॉडल दिख गया, आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा तीनों दिख गया, सरकार का भी, RSS का भी, विश्व हिंदू परिषद का भी। ये देश को एक, प्लीज साहिल भाई ने खामोश करें, ये इनकी प्रॉब्लम देखिए यही है कि ये अपने आप को, सुनिए जिन लोगों ने,
16: ठीक है,
14: एक मिनट,
16: प्रेम शुक्ला जी,
14: साहिल भाई ने
16: 15 में से 12 सदस्य केंद्र सरकार के मनोनीत वहां पर किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ट्रस्ट के 3 लोग ये पूरा ट्रस्ट का काम चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की तरफ भी आती है, उंगली सरकार की तरफ भी आती है कहीं ना कहीं, ये ट्रस्ट का काम कैसे चल रहा है।
18: सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है,
13: ये कोई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति चोरी कर लेने वाले 420 के मुकदमा होने पर आंदोलन करें, ऐसा अवसर नहीं दिया।
16: वही तो वो बोल रहे हैं नेशनल हेराल्ड में जैसे ईडी आई है इसमें भी
13: चोरी है, आएंगे लाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ तो 420 के बाद भी अध्यक्ष बनी पड़ी, 420 के बाद भी कोई लीडर है तो इनसे नैतिकता
14: का आपने खारिज कर दिया आपके सारे आरोपों को।
13: स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति खा गए ऐसे चोर, ये 420 जो है ये जो है जांच के लिए तय कर रहे थे ना भाई, चोर तय करेगा, चोर के शोर मचाने के लिए आस्था पर हुए।
16: अभी तक ईडी ने केस कैसे दर्ज नहीं किया है इस पे? प्रेम शुक्ला जी, अभी तक ईडी कैसे नहीं आई है इसमें?
13: आएगी ना,
14: ईडी आएगी।
13: एड्रेस मिला है सोनिया गांधी का,
14: एड्रेस नहीं मिला है,
13: 420 का एड्रेस मिल गया है।
14: देखिए पागल हो रहा है
13: ये पागल हो रहा है, ये लुटता हो
16: रहा है, ये हमेशा की तरह। दो और चीजें इस एसआईटी के रिपोर्ट में कही गई, विष्णु जैन जी आपकी बात खत्म, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ईडी की भी जांच होनी चाहिए ना विष्णु जैन जी?
11: देखिए आप बात समझिए, आप जो अभी बात यहाँ पे कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बोल दिया गया कि ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें बेल हो जाएगी, मतलब मैं तो शॉक हूँ। मतलब जो एफआईआर में धाराएं लिखी है सर उसको तो पढ़ लीजिए, 305, 306, 316, 4, 317, सॉरी 316, 5, 317, 4, 316, 5 और 317, 4 में लाइफ की सजा है। तो लाइफ की सजा में कैसे बेल हो जाएगी, कौन से बेलेबल ऑफेंस बात, मतलब एक नेशनल टेलीविजन पे आप एक गलत बात कर रहे हैं कि वो धाराएं लगाई गई हैं जिसमें बेल हो जाएगी। 300
16: धाराएं गंभीर लगाई गई है, उसी गंभीरता दे, आपने सही कहा, ठीक है आपने सही फैक्ट्स रखी हुई है, उसी गंभीरता से कार्रवाई भी हो यही उम्मीद के साथ में आज आप सभी का शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस ट्रस्ट के कामकाज का 5 साल का ऑडिट भी होना जरूरी है, यह भी एसआईटी की रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट कहने की कोशिश कर रही है, यह अंतरिम ऑडिट में बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है, इस पर ध्यान रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
2: Oh, yeah.
1: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Today's Match Day Preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points.
4: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
6: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
5: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
7: Williams keeps it. First down. Touchdown!
5: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
8: Los Cervantes.
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा, खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
11: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
12: Vimal, Bolo Zubaan Kesri.
13: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
14: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
15: 20 साल से India Today Media Institute देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार. अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
16: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: की एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
2: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है।
3: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं।
4: मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए।
5: तो बात एफआईआर तक आ पहुंची है। एसआईटी ने अपना काम कर दिया, अब पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में बचा कौन और फंसा कौन, बचाने वाला कौन और फंसाने वाला कौन? जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उनमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम है। टिन्नू के अलावा अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव।

का नाम है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अत्यंत गंभीर है। ये सीधे तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। जिन लोगों को SIT ने मुख्य किरदार बनाया है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। पहला नाम तिन्नू यादव का है। ये चंपत राय का सहयोगी है, केस में मुख्य आरोपी है। ये मंदिर में कहीं भी आ जा सकता था। दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा, जो भगवान के चढ़ावे की गिनती करता था। इस पर आरोप है कि इसने चढ़ावे की रसीदों में हेर फेर किया। तीसरा नाम लवकुश मिश्रा का है। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से कई लाख रुपए बरामद हुए हैं। चौथा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। ये SBI का रिटायर्ड कर्मचारी है और चढ़ावा गिनती का इंचार्ज था, यानी पूरी गिनती इसी की देखरेख में होती थी। पांचवा नाम मनीष यादव का है। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। ये तिन्नू यादव का भतीजा है। इसके घर से भी कैश मिले थे। छठा नाम अविनाश शुक्ला का है। ये भी गिनती में शामिल था। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। सातवां नाम है करुणेश पांडे का। ये भी राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में शामिल था। आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का। ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से भी कैश बरामद हुआ है। क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी इतना सेंट्रलाइज था कि इन 8 व्यक्तियों के अलावा कोई और शामिल नहीं था? क्या यही वो 8 लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया? इस FIR के बाद विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, BJP राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को पासी, शाखाओं को मिलेगी माफी। छोटे कर्मचारियों पर मुकदमे से विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के अजय राय तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि पैसा दिल्ली तक गया है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था कि बड़े खिलाड़ियों को बचाया गया है, अब विश्व हिंदू परिषद भी खुलकर सामने है। VHP के आलोक कुमार ने तो हर संदिग्ध की जांच की मांग कर दी, चाहे उसका नाम FIR में हो या ना हो। चढ़ावा चोरी के खुलासे के 20 दिन बाद पुलिस ने FIR लिख ली है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सभी बड़े लोग बच गए हैं। ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम FIR में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नामजद किया गया है और जिन्हें बचा लिया गया है, अब इसको लेकर सियासत भी जारी है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुआ है। एफआईआर का ब्यौरा गोपनीय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305, धारा 306, धारा 316(5), धारा 317(4), 317(5), धारा 61, धारा 35 और पीसी एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं और गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पुलिस की पूछताछ भी शुरू हो गई है। कृष्ण मोहन, खबर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 6 महीने पुराने और ट्रस्ट के सबसे नए सदस्य पूर्व ब्यूरोक्रेट और अवध प्रांत के आरएसएस संघ चालक कृष्ण मोहन ने एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि जो ट्रस्ट एसआईटी की जांच के घेरे में है, उसी ट्रस्ट को एसआईटी की वो अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें बताई गई जिनके बिना पर मुकदमा दर्ज हुआ है और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशें थी कि संदिग्धों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
6: अयोध्या में क्या हो रहा है, जिन लोगों ने इसमें अपना पूरा

0: प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारियां बता रही हैं कि अभी जांच के कई सिरे खुलने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की वजह से दान मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद चंपत राय के ड्राइवर रह चुके रमाशंकर यादव और उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई है। इन कार्रवाइयों के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि दोषी पक्षे नहीं जाएंगे, लेकिन राम की आस्था पर राजनीति ना हो।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट पर जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक ट्रस्ट का मैनेजमेंट सिस्टम, डोनेशन सिस्टम और रिकॉर्ड सिस्टम सही नहीं था। हुंडी की संख्या और लिखित रिकॉर्ड में अंतर है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव का रिश्तेदार मनीष यादव सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी ने जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 70 मौकों पर चोरी या गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। मंदिर ट्रस्ट को लेकर एसआईटी जांच में सामने आ रहे ये तथ्य विपक्ष को सरकार पर और बड़ा हमला करने का मौका दे रहे हैं। अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है।
2: वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है
3: कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए।
0: विपक्ष का ये हमला तब है जबकि अभी एसआईटी ने अपनी जांच खत्म नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट्स को भी देखा है। ऑडिट रिपोर्ट्स में हुंडियों की संख्या को लेकर दर्ज रिकॉर्ड और सीसीटीवी की व्यापक कवरेज समेत कई प्रक्रियाओं में कमी पाई गई है। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जांच में असली दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा दिया है।
4: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है।
0: राम मंदिर का दान करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सारे तथ्य सामने आने तक ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आता। एसआईटी की जांच ट्रस्ट प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन दान की गई कुछ वस्तुएं गायब होने पर वायरल हो रही कुछ तथ्यहीन खबरों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आज तक ब्यूरो।
5: ये एक ऐसा मामला है जो सबको आहत कर रहा है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें जब तक पूरी तरीके से सारे दोषी सामने नहीं आएंगे, तब तक न्याय उस भरोसे के साथ नहीं होगा जिसको छला गया है। इसीलिए हमने आज हल्ला बोल में निर्णय किया कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें इस चर्चा में, जिन सबका योगदान समाज को जोड़ने के लिए कभी ना कभी हुआ है, किसी न किसी रूप में हुआ है। संत समाज से लोग हमारे साथ हैं, वीएचपी से हमारे साथ हैं और हम एक एक कर सबसे आपका परिचय करा दें। कुछ और लोग भी हमारे साथ अब जुड़ेंगे। नवल किशोर दास जी हमारे साथ, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद की तरफ से। परवेश चौधरी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा के, और महंत सीताराम दास प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। एक एक कर मैं सबसे पहले तो महंत सीताराम दास जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं, क्योंकि जिस आंदोलन में लाठियां खाई इन संतों ने, आज ऐसा लगता है कि उनमें से रुपए चुरा कर उस दान पेटी में से उन सभी लाठियों पर जो आपकी मरहम लगा था राम मंदिर निर्माण के साथ,

0: आज फिर लगता है जैसे कि उन जख्मों को फिर किसी ने खुरच दिया।
1: श्वेता जी, ऐसा है कि मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि ये चोरी की जो योजना है ना, वो आज से नहीं, जिस दिन से ट्रस्ट बनना शुरू हुआ था उसी दिन से इन लोगों ने चोरी की योजना बना ली थी कि हमें ऐसे ऐसे ऐसे ट्रस्ट को चलाना है, ऐसे ऐसे चोरी करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को रखना है जो हमारी चोरी में लेकिन किंतु परंतु ना करें, कोई इंटरफेयर ना करें, हम आराम से चोरी करते रहें, ऐसे लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में रखा। आप अच्छी पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जजमेंट को भी पढ़ा होगा निश्चय ही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एकमात्र निर्मोही अखाड़े का नाम लिया गया है कि निर्मोही अखाड़े का संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता है, अतः निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित और पर्याप्त मात्रा में सम्मानित स्थान दिया जाए। ये शब्द हैं, पैरा नंबर 804 और 805 आप पढ़िएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंपत राय जी एंड कंपनी ने निर्मोही अखाड़े से इतना भी नहीं समझा कि निर्मोही अखाड़े के संतों से, सरपंच से, उप सरपंच से, पंचों से संपर्क करके कहें कि आप हमें प्रस्ताव दीजिए कि हमें किसको रखना है। तो मूल बात यह है कि निर्मोही अखाड़े को स्थान ही नहीं मिला। ये तो ये कहिए, अभी आप कह रही थी जो कि हमें प्रसन्नता थी कि भगवान अपने मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं, भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए हमें कोई अब प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई संघर्ष नहीं करना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा नहीं गए, ये रहा कि चलो भगवान बैठ जाए। लेकिन यदि हमें पता होता कि ये सबले चोर हैं और ये चोरी करने के लिए ट्रस्ट बना है और ये सब चोर ट्रस्ट में बैठ रहे हैं, तो हम जरूर सुप्रीम कोर्ट गए होते और आने वाले समय में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट कंटेम का मुकदमा भी इन पर करेंगे।
0: ताकि ट्रस्ट की संरचना बदले।
1: नहीं, ट्रस्ट की संरचना तो बदलनी ही चाहिए, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से बना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उस हिसाब से बनाया ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से चोर ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट नहीं है तो चोर ट्रस्ट है, ये सेवा करने वाला ट्रस्ट नहीं है, ये तो चोरी करने वाला ट्रस्ट है। छावनी वाले महाराज जी जैसे महापुरुष को रखा, अध्यक्ष बनाया, जो स्वयं बीमार हैं, जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर कमांड नहीं रख सकते, उन्हें अध्यक्ष बनाया इन्होंने। आप यहीं से विचार करिए, गोविंद देव गिरी जो इनका चेला है, कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो इन्हीं की प्रशंसा करने वाला भाट है, तो ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। चंपत राय शुरू से चोर है, संतोष दुबे कह रहे हैं कि जब कार सेवक पुरम में जब ईंटें आती थी उस समय से चंपत राय चोरी कर रहा है, तो चंपत राय पुराना चोर है, ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में महासचिव बना दिया गया। और जितने बाकी की मंडली रखी गई वो सब ऐसे जो मौन रहने वाले हैं, ये लोग केवल कागज देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं, ये लोग रजिस्टर भेज देते हैं कि महाराज जी साइन कर दीजिए, महाराज वो जितने सदस्य हैं वो बिना देखे पढ़े और महाराज आंख बंद करके साइन कर देते हैं बस। तो ऐसे लोग इन्हें चाहिए थे, हम कह रहे हैं यदि ये चाहते हैं कि ट्रस्ट में योग्य लोग रहें, जो संघर्ष किया है उनके अनुगत रहें, तो ट्रस्ट में निर्मोही
0: ठीक है
1: अखाड़े के
0: परवेश परवेश चौधरी जी, चूंकि
1: सारे को पर्याप्त मात्रा में रखते
0: चूंकि
1: तो
0: चूंकि सारे आरोपों, चाहे वो राजनीति की तरफ से लगे, चाहे भक्तों की तरफ से लगे, चाहे संतों की तरफ से लगे,
1: मतलब नहीं है
0: नहीं
1: श्रद्धा
0: नहीं
1: जी,
0: मैं वही
1: एक विशेष
0: संतों भी
1: बात
0: कहा
1: कहते
0: मैंने
1: हैं,
0: जी
1: राजनेताओं से प्रार्थना
0: महन
1: करता
0: जी,
1: हूं कि
0: मैंने
1: श्रद्धा
0: कहा
1: जी
0: कि चाहे राजनीति से लगे, चाहे संत समाज से लगे, चाहे भक्तों की तरफ से लगे, जवाब देना पड़ेगा। और ट्रस्ट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ट्रस्ट लोगों का रहे उनमें। परवेश चौधरी जी, अभी देखिए, अभी आरोप लग रहे हैं, हम अपनी तरफ से किसी निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब अभी तो एसआईटी की तरफ से ये चीजें अब एक एक करके आ रही हैं कि ये तो कंप्लेन पहले जा चुकी थी, वो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने थी, लेकिन उस समय उस पर एक्शन न होना भी अपने आप में भरोसा तोड़ने वाली बात थी।
2: नहीं श्वेता जी, पूज्य महंत जी ने तो जो भी बातें कही ठीक है, वो अलग बातें हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने कब ये कहा कि जो आरोपी है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, या विश्व हिंदू परिषद ने कभी क्या इस पूरे विषय में कोई लीपापोती करने का काम किया? विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से कहा कि जिसने भी कोई ये महापाप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने में सब लोग आते हैं, जिसमें में सारे ही लोगों को शामिल किया जाता है ना, तो
1: प्रवेश जी, आप
2: जो भी
1: बहुत
2: अपराध
1: अच्छे
2: करता
1: व्यक्ति
2: है, जो
1: हैं,
2: भी महापाप
0: महान जी, वो
2: करता है
0: बात पूरी कर लेते हैं, फिर
2: संविधान
0: एक एक
2: सम्मत
0: करके सब
2: तरीके
0: बात
2: से
0: करेंगे जी।
2: उसको, उसके साथ उसके साथ वैसा ही दंड देना चाहिए जैसा कि दंड संविधान सम्मत है, यह विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से ही कहा है। ठीक है, अब बात रही निर्मोही अखाड़े की, तो निर्मोही अखाड़े के एक संत उसमें हैं, उनकी उनमें निर्मोही अखाड़े का क्या योगदान है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन पूज्य महंत जी को आप देखिए कि क्या ये संत का स्वभाव है क्या? श्वेता जी, ये क्या संत का स्वभाव है क्या? बीच बीच में इंटरप्ट करना, लेकिन हमारे लिए तो ये पूजनीय है, इनकी एक एक बात हमारे लिए आशीर्वाद है।
0: मान जी,
2: हमारे लिए आशीर्वाद है, जो भी वर्तमान में बोले, जो मर्जी बोले, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं, परंतु हम तो इतना कह
0: रहे हैं। नहीं देखिए परवेश जी, खाली एक चीज का आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्योंकि महंत जी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है निर्मोही समाज की तरफ से, निर्मोही अखाड़े की तरफ से कोई भी नहीं है उस ट्रस्ट में, हाँ या ना? आप कह रहे हैं
2: नहीं है, हाँ उसमें है, उनसे पूछिए, महंत जी से बता देंगे, वो उसमें है उसके अंदर,
1: नहीं है।
2: मुझे महंत जी से बताइए, मुझे महंत जी को दिक्कत है कि मुझे क्यों नहीं रखा।
1: प्रवेश चौधरी जी सुनिए मेरी बात को,
2: मुझे पूज्य सीताराम जी, पूज्य सीताराम जी, क्यों आप संतों का सम्मान गिरा रहे हैं?
0: कौन है निर्मोही अखाड़े?
2: पूज्य सीताराम जी, आप संतों का सम्मान क्यों गिरा रहे हैं? आप कहिए कि निर्मोही अखाड़े से मुझे रखा जाए, लड़ाई आपकी ये है और कुछ नहीं है।
1: आप प्रस्ताव दिखा दीजिए,
2: आप ये कहिए कि मुझे रखा जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ श्वेता जी के आगे इस बात।
0: नहीं प्रवेश जी, पर कौन कौन है निर्मोही अखाड़े की ओर से?
2: बिना प्रस्ताव से ही कोई व्यक्ति आ गया उसके अंदर?
1: प्रस्ताव मांगा क्या आपने? प्रस्ताव मांगा, प्रस्ताव दिखा दो।
2: बिना मांगे ही आ गया क्या कोई?
1: बिना मांगे
2: आप छोड़े, ट्रस्ट का विषय नहीं है, हम विषय ये कह रहे हैं, हम ये विषय कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े से उसमें व्यक्ति है, और निर्मोही अखाड़े का राम मंदिर मुक्ति आंदोलन में योगदान को सारा हिंदू समाज जानता है,
0: कोई नहीं नकार सकता है।
2: हिंदू परिषद उसको नकारता नहीं है, विश्व हिंदू परिषद को संतों ने ही काम सौंपा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा भी शामिल था, संतों की स्वीकृति से, संतों की आज्ञा से हिंदू परिषद ने काम को बढ़ाया, उसमें हमको जीत मिली, तो हिंदू समाज और संतों के आशीर्वाद के कारण जीत मिली।
1: एक लेख अपने पक्ष में दिखा दो प्रवेश चौधरी, कागज लेके आए हो, एक लेख।
2: मुझे आपसे स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी, आप अपने स्वभाव के कारण से सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन में संत ऐसा नहीं है,
0: मन जी
2: संत की तो निर्मल होता है मन उसका।
0: महंत जी, अभी चलिए, बाकी भी जो हमारे प्रतिभागी हैं, हम सबसे एक एक बार बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं है निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व वहां पर, प्रवेश जी कह रहे हैं कि है। हम देखते हैं कि प्रवेश जी, अगर आप नाम बता पाए तो बेहतर होगा, थोड़ी देर में हम आपसे फिर जानेंगे। लेकिन कंप्यूटर बाबा,
2: आप गूगल पे डालिए, आपको पता चल जाएगा, योगेंद्र नाथ ऐसे कुछ करके नाम है उनका।
1: आपको नाम ही पता नहीं है, यही
2: अभी बता देता हूँ आपको।
1: आपको नाम पता होगा, मैं बता रहा हूँ, उनका नाम दिनेंद्र दास है, मैं नाम बता रहा हूँ।
0: दिनेंद्र है निर्मोही अखाड़ा से,
1: अखाड़े के द्वारा
2: दास जी
1: साबित नहीं है।
2: मैं इसीलिए चुप रहा श्वेता जी, मैं इसीलिए चुप रहा कि इनको ये खुद बता देंगे।
1: निर्मोही अखाड़े,
2: उन्होंने स्वयं बता दिया ना।
1: आप निर्मोही अखाड़े के द्वारा प्रस्तावित लाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तब बताऊंगा आपको।
0: चलिए कंप्यूटर बाबा, आपकी बात भी
2: चाहते हैं जी, जाइए, वो आपकी स्वेच्छा है, परंतु ये कहना कि निर्मोही अखाड़े से कोई नहीं है,
1: नहीं है।
2: दूसरी चीज श्वेता जी, हम ये कह रहे हैं कि SIT जांच कर रही है, अच्छे से जांच कर रही है, अपराधी को पकड़ा जाएगा, पकड़ कर उसको सजा।
0: ठीक है कंप्यूटर बाबा, आपको भरोसा है कि SIT की जांच उस जगह तक उसकी आंच पहुंचेगी जहां तक पहुंचना चाहिए?
3: मुझे लगता नहीं है, विश्वास नहीं है। पहले मेरी बात को सुन लिया जाए
0: जी,
3: राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। हम संत समाज का उस पर आस्था है, और जिस तरीके से चंपत राय को हमने कहा कि जब उस समय भी हम लोगों ने बार बार कहा कि जमीन घोटाले में भी चंपत राय ने किया, बहुत सारी चीजें चली, उनको बाहर नहीं किया गया। अब फिर जब समय आया तो फिर आकर के इन्होंने हमारे ये जो महाघोटाला किया है, दान में लोग आस्था जो रखते हैं, 1 रुपया दान करते हैं उसी में खा गए। चंदा चोरी कर लिए। ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल मुख्यमंत्री था, उन्हें जो है जेल में डाल दिया और जेल डालने के बाद उसका केस चला, बरी हुए बाहर आए। हेमंत सोरेन को भी इसी तरीके से यही किया, तो फिर चंपत राय को अंदर क्यों नहीं? हमारा कहना है चंपत राय को अंदर किया जाए। हमारे संविधान में सिस्टम में, भारत के संविधान में है कि चोर यदि चोरी करता है तो चोर को पहले अंदर करिए, जो निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद फिर यदि वो बरी होगा, यदि उसने नहीं किया तो बरी होगा वो। पर चंपत राय को बचाने का काम कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, पहले इनको अंदर करें। जब विश्व हिंदू परिषद से जानबूझ के, जिस ढंग से अभी हम सुन रहे थे, इन्होंने कोई संत नहीं है क्या? भारत में कोई संत नहीं है क्या? आपको निर्मोया घर से क्यों नहीं किया आपने? भारत के बहुत सारे संत है, मैं तो कह रहा हूं विश्व हिंदू परिषद में खुद ही इतने सारे संत है, हम लोग को किसी को नहीं चाहिए। आप कई संतों को कर दो, चंपत राय को मत करो, क्योंकि इन्होंने चोरी की है, चढ़ावा किया है, चढ़ावा में जो चोरी की है, जो महापाप किया है संतों के प्रति और जो मंदिर के प्रति, आज हमारी आस्था ही लोगों की खत्म हो जाएगी। लोग क्यों एक रुपए डालेंगे? लोग मंदिरों में पैसा नहीं डालेंगे, कहेंगे चोर है। अरे ये तो राजा महाराजाओं के जमाने में भी कोई ने चोरी नहीं की, मंदिर के प्रति आस्था रखी, और कांग्रेस के राज में भी कभी चोरी नहीं हुई, मंदिर के प्रति आस्था रखी है, लोगों ने जमीन दी है। ये तो खा रहे हैं, ये मंदिर क्या बना रहे हैं? तो ये तो जमीन को खा रहे हैं, 2 रुपए की चीज 4 रुपए खरीद रहे हैं, मैंने पूरा चरपट कर रहे हैं। इसलिए चंपत को चंपत कर दिया जाए। अब इस्तीफा कब दिया है? जब भारी दबाव आया है। मैं विश्व हिंदू परिषद के महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अब विश्व हिंदू परिषद की बजाय भारत के संतों को वहां बैठा लें। संचार शंकराचार्य हैं, बहुत सारे संत हैं, जो जिसको आपको लगे वो बिठा दो, चंपत राय को नहीं, विश्व हिंदू परिषद को नहीं।
0: ठीक है चक्रपाणी जी, आपको उम्मीद है। देखिए अभी SIT की जांच शुरू ही हुई है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था 15 दिन कम से कम, जिसमें दूध पानी का पानी होगा, और उन्होंने कहा कि उससे पहले ही होने लगा है। चंपत राय छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा, अभी तक 8 लोगों का नाम सामने आया है, और ये पहले 8 नाम नहीं है, अभी और जांच आगे चलेगी। भरोसा है आपको कि इंसाफ न्याय होगा?
4: नहीं, देखिए मुझे तो भरोसा है बिल्कुल, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो एक भगवाधारी हैं, मुख्यमंत्री के साथ वो एक सनातनी है, तो मुझे लगता है वो करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो परिदृश्य चली है, निश्चित रूप से श्वेता जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू विरोधी चाहते हैं कैसे मठ मंदिर और संतों को जो है किस प्रकार से आरोपित करके, आक्षेप करके सनातन को कमजोर किया जाए, निश्चित रूप से 1528 में जो मीर बाकी ने मंदिर हमारे तोड़ा, एक संघर्ष हुआ, हिंदुओं ने अपनी जान दी, और एक लंबी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय से जिस प्रकार निर्णय आया, सबको एक आशा और विश्वास थी कि पूरे विश्व के हिंदू और सनातनियों का जब भव्य मंदिर राम का बनेगा तो कहीं ना कहीं राम राज्य स्थापित होगा, लेकिन वहां पे तो भ्रष्टाचार हो गया। तो आखिर सवाल इस बात का है, देखिए यहां पे जितने वक्ता बैठे हैं, कोई सब सही अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो मां अपने पुत्र को 9 महीने गर्भ में रखती है, जब जन्म देती है, तो उससे ज्यादा लगाव होता है, अपेक्षाकृत सौतेली मां का दूसरा ही होता है। जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, आप जरा सोचिए, प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के नाम से, और हिंदू महासभा की पहली केस थी 1949 से, और अनेक पक्षकार थे, धर्मदास जी थे, निर्मोही अखाड़े थे, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, और तमाम और भी पक्षकार थे, लेकिन उन पक्षकारों को जब राम मंदिर का निर्णय आया तो अनदेखा किया गया, यहां तक कि भूमि पूजन में भी नहीं बुलाया गया, और जो बॉलीवुड के बीफ खाने वाले हैं उनको बुला करके वहां पे नाच गाने और रील बनाने का काम करवाया गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा कलंक है। तो कलंक तो लग चुका है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी आशा नहीं थी कि 45 दिन में सैकड़ों सीसी कैमरे में दिखाई दे रहा कि कैसे धन चोरी हो रहा है। अरे भाई, जो राम राज्य में कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, वहां पे आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हो? और पूज्य कंप्यूटर बाबा जी महाराज ने ठीक कहा, इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, आरोप लगने पे तुरंत राम राज्य में जब एक धोबी आरोप लगता है तो तुरंत माता सीता को वनवास जाना पड़ता है, और यहां पे राम मंदिर में इतने आरोप लगे बैठे हुए हो ढीठ की तरह, और उस पे कोई वो नहीं हो रहा है। हमें लगता है आदर्श प्रस्तुत करिए, भगवान राम चित्र नहीं बल्कि एक चरित्र है, और हमारे यहाँ चरित्र की पूजा हुआ करती है, तो इसलिए मेरा ये मानना था कम से कम कि वहां मंदिर में लोग अपने चरित्र दिखाएंगे। ट्रस्ट में ऐसे लोग अब टिन्नू पिन्नू पता नहीं कहां से आ गए, बताओ संघर्ष किया किसी ने? विश्व हिंदू परिषद के भी संघर्ष को नहीं वो किया सकता है? माननीय अशोक सिंघल जी ने एक आंदोलन खड़ा किया, सभी पूज्य संतों ने किया, और निश्चित रूप से निर्मोही अखाड़ा का बहुत बड़ा योगदान है कि उसको बुलाया नहीं जा सकता, या हिंदू महासभा, जिन पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच बेच के लड़ी है, मुकदमे को लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। और आज देखो उसी का परिणाम स्वरूप है कि वहां पे अनेक टुन्नू मुन्नू आकर के चोरी और वो कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरी छवि खराब हो रही है। जबकि एक मंदिर में अगर धन आता है, कुछ लोग कह रहे हैं जी मंदिर में मत दो, वृद्धशाला में दो, गौशाला में दो, मैं कहना चाहता हूं जब मंदिर में देता है तो वहीं से गुरुकुल चलता है, वहीं से भंडारा और भोजन चलता है, वहीं से गरीब आश्रितों को सहयोग होता है। और ये तो राम मंदिर है, यहां से तो अनेक चिकित्सालय से लेकर के हर प्रकार के काम होने चाहिए, हर सनातनियों को, हर व्यक्ति के लिए वहां से सब कुछ जन उपयोगी कार्य होने चाहिए। लेकिन वहां पे तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके जो पेश किया है, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, काला अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिन जिन लोगों ने चोरी किया है, निश्चित रूप से परमात्मा भी उसे माफ नहीं करेगा, उसे रौरव नामक नरक मिलेगा, क्योंकि मंदिर की द्रव देव द्रव की चोरी सबसे बड़ा पाप कहा गया है। लोग आस्था और श्रद्धा से दान देते हैं और वहां पे बैठ करके बताओ, ये कैमरे में सरेआम उसमें हुआ है और 45 दिन पहले की कैमरा काट दिया गया, बंद कर दिया गया। नृपेंद्र मिश्रा जी जो स्वयं निर्माण समिति के अध्यक्ष है, उनका बयान है कि कोई वहां व्यवस्था नहीं था, कोई भी ऐसे आता था कोई भी जाता था। अब बताइए वो आरोप लगा रहे, ये तो कंप्यूटर बाबा हम या निर्मोही
5: आज की बात नहीं रही, ये शिकायतें होती रही, शिकायतें होती रही, लेकिन चाहे किसी भी वजह से, पर उन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। अब उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, उसी को पता लगाने की अभी SIT कोशिश कर रही है। प्रमोद कृष्णम जी जो कि पीठाधीश्वर हैं श्री कल्की धाम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में नवल किशोर दास प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। अभी तक प्रमोद कृष्णम जी जो कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें संत समाज ये कहता है कि ट्रस्ट का जो गठन हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से जो बातें कही गई थी उसको नजरअंदाज किया गया निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधित्व को देकर। और जो हमारे अभी तक के वक्ता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उसका गठन दोबारा हो, दूसरे रूप में हो, संतों का उसकी उसमें मौजूदगी हो, ताकि भ्रष्टाचार बाहर जाए।
6: देखिए श्वेता जी, ये एक अलग विषय है कि ट्रस्ट का गठन हो, ट्रस्ट का पुनर्गठन हो, ट्रस्ट में कौन कौन लिए जाएं, ये सवाल एक दूसरा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने है और करोड़ों लोगों के सामने है वो ये है, करोड़ों लोगों के मन में है कि ये कोई किसी बिजनेस हाउसेज में चोरी नहीं हुई है, ये कोई किसी लालाजी की दुकान में चोरी नहीं हुई है, ये कोई किसी MNC में, किसी के दफ्तर में चोरी नहीं हुई, ये घोटाला हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर में, और जिन्होंने किया है वो कोई बाहर के लोग नहीं है, भीतर के हैं। तो ये अपराध बहुत बड़ा है, महापाप है। अब सवाल उठता है कि जो ट्रस्ट का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट के ट्रस्ट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, वो भी देखनी पड़ेगी। तो आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट पहुंची है, नंबर एक। लेकिन उनका एक भरोसा है, उनका भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका भी भरोसा है कि जिन्होंने राम मंदिर के अंदर चोरी की है, वो अभी 7-8-9 लोग जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके पीछे कौन है, उनको शक्ति देने का काम कौन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जो खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट से कुछ इस्तीफे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस्तीफे हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए हैं तो बहुत विलंब हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस साख को रखने के लिए सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, विश्वास बहुत बड़ा है, आस्था टूटनी नहीं चाहिए। करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो उस आस्था को डेंट ना लगे, उस आस्था के ऊपर कुठाराघात जितना हुआ है और ना हो, उसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपनी इच्छा से त्यागपत्र देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिएगा आप ट्रस्ट में बने रहते हैं
5: और इतना, हाँ
6: जी मैं कह रहा हूं, एक दो इस्तीफे की बात नहीं है, पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हम एक व्यक्ति के गले में फंदा डाल दें, एक व्यक्ति को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका एक एक एक कारण ये भी है कि मान लीजिएगा ये 10 दिन में 20 दिन में, एक महीने में जांच पूरी होती है और उसके बाद ये रिपोर्ट आती है कि साहब ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी जाती है, तो फिर लोग कहेंगे साहब तुम्हारा ही ट्रस्ट, तुम ही जांच करने वाले, तुम ही उसमें थे, तो तुमने खुद ये गलत कर लिया। तो मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हुए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और हमें भरोसा है कि चोर के पीछे मदद करने वाले व्यक्ति कितने भी बड़े हों, उनका कितना भी बड़ा मर्तबा हो, लेकिन ये भगवान राम के मंदिर की चोरी है। वो भगवान राम जिन्होंने एक व्यक्ति के सवाल पर अपनी प्रिय जानकी की भी अग्नि परीक्षा लेना स्वीकार किया था। तो जब सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो फिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की अग्नि परीक्षा लेने में दिक्कत क्या है?
5: प्रवेश जी, ये इस सवाल को इससे बेहतर रखने का तरीका क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई ये बताइए कि क्यों ना ऐसा हो? ये राजनीति नहीं है कि यहां पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष और कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। यहां पर उससे बड़ा मामला है ये। भरोसे का जब खून होता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है पाप, और रामलला के प्रांगण में यह हुआ।
2: श्वेता जी, ये जघन्य अपराध है, महापाप है, और जिन्होंने भी किया है वो अपराधी है, उनको सजा मिलना चाहिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। और जहां तक रही ट्रस्ट का विषय, न्यास का विषय, तो उनको उनको उनकी उनको सोचना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले। विश्व हिंदू परिषद उस पर क्या कह सकता है? विश्व हिंदू परिषद तो जो श्वेता जी सोचती है, जो प्रमोद कृष्ण जी सोचते हैं, जो हिंदू समाज सोचता है, वही सोचता है कि भाई हिंदू समाज की भावना है कि कुछ गड़बड़ अगर हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से यही स्टैंड लिया, श्वेता जी हम आपके साथ हैं, हिंदू समाज के साथ हैं, हिंदू समाज जो चाहता है हम उसको उसको करने की बात करते हैं। अब उसमें ट्रस्ट के मेंबर अगर शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, एसआईटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, वो तो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने के बाद हमको समझ में आएगा। लेकिन एक अच्छा निर्णय है कि कुछ सदस्यों ने, जैसी कि सूचना सूत्रों से ही आ रही है, अभी कंफर्म है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने को अलग कर लिया, ये भी एक अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं
5: है। हालांकि उसमें तो भी
2: जब, लगता जब, है कि जिस आंदोलन के लिए
5: काफी समय बीतने के बाद,
2: उसमें तो एक रत्ती भर का भी कुछ नहीं होना चाहिए।
5: ये पहली बार नहीं है कि किसी गड़बड़ी की बात हुई हो, कुछ समय पहले भी इस तरह की चीज हुई थी और उसको पूरी तरीके से उसको झाड़ दिया गया कि नहीं ये सब तो चीजें बस ऐसे ही चर्चा हो रही है, जबकि चाहे साउंड रिकॉर्डिंग के लीक होने से लेकर लैंड डील्स से लेकर अब चंदा चोरी, मतलब जो शब्द भी मुंह से निकलना मुश्किल हो जाता है। महंत नवल किशोर दास जी, जो जो कुछ हुआ है उसकी भर्त्सना करने से कोई खुद को, मतलब कितना भी आप कह दें उससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन आज अगर हम कहें कि पुनर उस भरोसे के पुनर्निर्माण की बात जहां से शुरू होती है, तो वो कहां से उसकी बुनियाद रखी जानी चाहिए?
7: देखिए बहन जी, भव्य मंदिर बनाने के लिए पूरे देश के संतों ने हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद से ऊपर करके राम के साथ लगने के लिए निरंतर प्रयास किया, और भगवान की कृपा से आज भव्य और दिव्य मंदिर बना है। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई भी भगवान की जो संपत्ति, हमारे यहाँ कहा है संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति ठाकुर जी की, हम केवल प्रबंधक हो सकते हैं, और प्रबंधक होने के साथ आपने प्रबंधन ठीक नहीं किया तो आपको अपराध से अलग नहीं माना जा सकता। वहां जो लोग प्रबंधन कर रहे थे, इतनी बड़ी भूल चूक एक दिन में नहीं हो गई होगी, अनायास नहीं हो गई होगी। मुझे लगता है ट्रस्ट में जितने सदस्य हैं सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि किसी कोई भी कारण रहा हो पर कहीं ना कहीं अपराध तो हुआ है। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक सो जरही, भगवान का अपराध, लोग बाहर अपराध करते हैं तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, या तो भगवान के घर में ही अपराध हो गया। और आज पूरा साधु समाज कितना व्यथित है, कितना परेशान है, कितना चिंतित है, ये वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और ट्रस्ट का पुनः सभी सदस्यों का चयन हो, और मैं चाहता हूं कि इसमें अखाड़ों की सहभागिता हो, क्योंकि संतों ने बहुत परिश्रम किया है। विश्व हिंदू परिषद और चंपत जी को अलग नहीं किया जा सकता, चंपत जी विश्व हिंदू परिषद के आधार स्तंभ हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बहुत परिश्रम किया है आदरणीय अशोक जी के साथ, आचार्य जी के साथ, परंतु उनके प्रबंधन में, देख रेख में क्या चूक हुई हमें नहीं पता, वो तो जो समीक्षा करने वाले लोग करेंगे, परंतु हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आश्रम में बैठे हैं और मेरे रहते कुछ गलती हो रही है तो मुझे ही कहा जाएगा। मेरे यहाँ आरती पूजा करने वाले को नहीं कहा जाएगा, झाड़ू लगाने वाले को नहीं कहा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पुणे ट्रस्ट के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और हिंदू समाज को जो श्रद्धा में आघात लगा है उसको पुनः उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं के विश्वास को स्थिर रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है संतों से प्रार्थना की जाए, संतों का मार्गदर्शन हो। अभी पूज्य जिन संतों का मार्गदर्शन है, मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे पूज्य महाराज जी हमारे छावनी वाला अस्वस्थ रहते हैं, एक गुरु जी अस्वस्थ रहते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती भी अस्वस्थ रहते हैं, तो जो संत वास्तव में सामाजिक और कहीं कहीं संबंध से जुड़े रहे, ऐसे कुछ अच्छे संतों को निर्णय भले वो लोग करें पर संतों की इसमें सहभागिता हो और वहां पारदर्शिता हो। सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता हो। कोई एक रुपए भी चढ़ाता है तो इसलिए चढ़ाता है ठाकुर जी के राग भोग पे,
0: और कहीं से शिकायत हो महंत जी तो शिकायत हो तो उसे सुनने वाले लोग चाहिए। महंत सीताराम दास जी, ये होता रहा कि शिकायत हुई किसी ने सुना नहीं, सुना यहां तक कि बाहर भी कर दिया गया। एक व्यक्ति ने तो ये तक आरोप लगाया कि उसकी तरफ से शिकायत हुई और उसको सीधा बाहर कर दिया गया। तो अब ये चीज, लेकिन अभी तक जिस स्वरूप की बात हो रही है, आपको लगता है कि संत समाज मिलकर बेहतर कर सकता है, ट्रस्ट को एक नए सिरे से गठित किया जाए, एक हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुत आसानी से जो अंग्रेजी का एक शब्द है ना, स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि अरे ये तो चोर ही होंगे, उसको तोड़ने के लिए एक पूरे संत समाज ने बहुत परिश्रम किया था, लेकिन अगर वहां पर आप पहुंच रहे हैं तो यहां से पुनर्निर्माण उस भरोसे का कैसे?
1: देखिए श्वेता जी, मैं यहां से शुरुआत करूंगा, एक श्लोक सुनाता हूं मैं
0: जी।
1: श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यहां पर विद्वान संत भी बैठे हुए हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः, षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। अर्थ है स्वयं के द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ, जो कोई दान के धन का, धर्म के धन का, ब्राह्मण के धन का, गौ के धन का हरण करता है, चोरी करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा करता है। तो इनका, इनकी दुर्दशा दुर्गति होना तो तय है, भगवान छोड़ेंगे नहीं इनको, ये तो बात पक्की है। अब रही बात कानूनी प्रक्रिया की, मैं कह रहा हूं, एक भरत तिवारी जिसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई FIR दर्ज ठीक से नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उसको गोली मार दी जाती है। और यहाँ इतना बड़ा घोटाला बाहर आने के बावजूद भी SIT ने पहले FIR दर्ज नहीं की, पहले जांच हो रही है उसके बाद में FIR हो रही है, तो जिन्होंने चोरी की है वही FIR करा रहे हैं, वही चोर वही FIR करने वाले, वही गिरफ्तार होने वाले वही गिरफ्तार करने वाले। अब आप आइए आपके प्रश्न में, आपने कहा है कि क्या आगे विश्वास किया जा सकता है, निश्चय किया जा सकता है। अभी नवल किशोरदास जी महाराज कह रहे थे कि छावनी वाले महाराज जी बीमार हैं, वासुदेवानंद जी बीमार हैं, परमानंद जी बीमार हैं, हमारे जिनेन्द्र दास जी भी जिनको ये कह रहे हैं कि रखा है वो भी बीमार ही रहते हैं, वो एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं रहते, इसीलिए इनको रखा गया है। तो बीमार लोगों को बाहर करके अच्छे सुव्यवस्थित योग पढ़े लिखे युवा अच्छे जो सक्रिय लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, इन्होंने अभी ऐसे लोगों को रखा, मैं कह रहा था ना शुरुआत में कि ये रजिस्टर भेज दे वो साइन करके भेज दे बिना पढ़े लिखे, ऐसे लोगों को रखा। तो आवश्यकता है योग युवा पढ़े लिखे सक्रिय महापुरुषों को महात्माओं को उसमें रखा जाए, विशेष रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। और फिर कह रहा हूं ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, चंपत राय अनिल मिश्रा आदि को जेल में डाला जाए जल्दी से जल्दी। और भैया प्रवेश जी, आप कह रहे थे कि हम चंपत राय जी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, चंपत राय जी से हमारा कोई मतलब नहीं है, चंपत राय जी को स्वयं सोचना चाहिए। अरे चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अभी भी उपाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की विश्व हिंदू परिषद ने, कम से कम आप विश्व हिंदू परिषद से तो उनको बाहर कर ही सकते थे, ट्रस्ट में ठीक है कानूनी प्रक्रिया होगी, आपने अपने संगठन से उनको बाहर क्यों नहीं किया? चंपत राय चोर है, चोर है, चोर है, उसको जेल जाना पड़ेगा, हम पीछा छोड़ेंगे नहीं।
0: अच्छा महन जी, एक कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है इसीलिए मतलब हम थोड़ा सा शब्दों को सोच कर बोले यहाँ पर, वहां पर अगर निकल आए तो ठीक है।
1: एफआईआर होती तो हम विश्वास करते ना कानूनी प्रक्रिया पर।
0: तो अभी पहली एफआईआर हुई है ना,
1: प्रक्रिया से नहीं चल रही है एसआईटी, अपनी प्रक्रिया से नहीं चल रही है तो हम उनकी प्रक्रिया का पालन क्यों करें?
0: तो आपको उम्मीद नहीं है कि एसआईटी आगे चलकर उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई करेगी?
1: भरत तिवारी पर कोई जांच नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, उसको गोली मार दी गई, और चंपत राय इतना बड़ा चोर चोरी करके बैठा है उस पर एफआईआर भी नहीं कर सकते।
0: कंप्यूटर बाबा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, बताएं।
3: मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल सही कहा कि किसी होटल में चोरी नहीं, किसी दुकान में चोरी नहीं, किसी कार्यालय में चोरी नहीं। ये सनातन के जो धर्म स्थल है, एक राम मंदिर है, उस पर चोरी की गई है, तो इस कदापि छोड़ा नहीं जा सकता। और रहा सवाल मुख्यमंत्री जी, हम सबको मुख्यमंत्री जी के पे विश्वास है कि हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री जो बराबर यदि ये चोरी करते मिले हैं तो निश्चित हमारा है कि अब बुलडोजर का मुंह जो है वो जितने चोर हैं इस बुलडोजर का मुंह अब उधर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली है चोरी कर करके। और हम पूरा संत समाज बार बार कहना चाहते हैं कि अब संतों का, आपने भी सिंधु परिषद को खूब देख लिया, अब साधु संतों को देखिए, भारत में एक से एक संत हुए हैं, चारों शंकराचार्य हैं और भी संत हैं, धर्माचार्य हैं, आप उनको एक बार जगह दीजिए। राम मंदिर बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ चलाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। जनता से भी कहना चाहता हूं कि आपके भी मन में एक जरूर होगा कि आने वाले जो जितने मंदिर हैं इन मंदिरों में लोग कैसे एक रुपया चढ़ाएगा ना, इसलिए चढ़ाएगा क्योंकि वो उसकी आस्था खत्म हो गई, उस पर लगा कि हमें जो है यदि एक रुपया चढ़ाओ तो चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए चंपत राय को यदि जेल में डाल दिया तो निश्चित अपने आप लोगों को लगेगा कि चोर को जो चोरी करता है उसको जेल में डाला जाता है, उसको सजा मिलती है। ये हमारे सनातन के प्रति लोगों की आस्था रही।
0: चक्रपाणी महाराज जी, आपने कहा कि ऐसे लोगों को इसमें होना चाहिए जो कि राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, ताकि सीधे तौर पर उनका उनकी उनका मन इस तरह की कोई कर्म करने के लिए, कुकर्म करने के लिए डोले ही ना कभी। ऐसा नहीं है कि चंपत राय जी नहीं रहे आंदोलन में, रामलला का पटवारी तक उनको कहा गया। आज जो बातें हो रही है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या वो कर सकते थे? मुझे तो लगता है कि पहले ही शायद आज जो इस्तीफे की बात हो रही है, जिसको कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं अभी, शायद उसकी शुरुआत पहले हो जाती, लोग ये तो देखते कि एक तरीके से जिसको धर्म पथ कहा जाता, कि जो धर्म उनसे, और यहां पर केवल एक संप्रदाय वाला धर्म नहीं बल्कि धर्म जो उनसे अपेक्षा करता वो काम करते।
4: श्वेता जी देखिए, उन पे वास्तव में सबका विश्वास था और विश्वास का कारण भी था। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपत राय जी ने अपने जीवन में त्याग नहीं किए, तपस्या नहीं किए, हिंदुत्व के काम नहीं किए, आंदोलन में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वर्तमान में भी बहुत सादगी से जीवन यापन करते, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों की संपत्ति है, विश्वास है, सब जानता है एक दूसरे को। लेकिन अभी जो संत, और उनसे किसी को व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर में ये हुआ है, ये निश्चित रूप से सबके हृदय में एक पीड़ा है, वो ये चाहता है कि कैसे उसकी प्राचीन हो, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, वर्तमान में जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मोदी जी तो स्वयं जाते हैं रामलला पे दंडवत करते हैं, देख के हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहां पे इस प्रकार से जो है जो घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बहुत ही गलत मैसेज गया है। तो निश्चित रूप से जिस पे भी आरोप, पद छोड़ना ये कोई पद नहीं है, ये तो दायित्व है, और दायित्व उस पे दिया गया है राम की सेवा करने के लिए, और वहां पे सेवा अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा दे करके अपना जो भी जिन्होंने किया उसे सजा भुगतेगा। और हमने जो बात कही कि देखो आंदोलन से जो जुड़े हो उनको, या जो जो पक्षकार रहे हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा उनको भी रखो, वो हर प्रतिनिधि को रखो, 13 अखाड़े के हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि है उनको रखो, और तमाम हर प्रकार के लोगों को रखो ताकि बैलेंस बना रहे। मेरा यह मानना है कि देखो हिंदू हर है, वहां भेद मत करो कि जी हमारी एक लोग जो हमारे पसंद के लोग हैं इसलिए जो ट्रस्ट में है उन्हीं के कोई रिश्तेदार नोट गिन रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कारण है कि वो एक संगठित गिरोह बन गया और उस संगठित गिरोह ने चोरी को अंजाम दे दिया। आज हिंदू शर्मसार हो रहा है, आज हम लोग कहीं ना कहीं व्यथित हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर प्रकार के जो जो राम भगवान राम में आस्था वाले रखते हैं, अब अभी महाराज जी ने निर्मोही अखाड़े वाले ने भी क्या कहा कि 60,000 वर्षों तक वो नरक में रहता है, वो विष्ठा का कीड़ा बन के रहता है, अगर इसको जो ये पता होगा वो क्यों करेगा वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चिंटू मिंटू है वो जानते नहीं है, वो चोरी कर रहे हैं, उनका तो ध्यान पैसे पे है। लेकिन अगर जानेगा कि इसका अंजाम भगवान चित्रगुप्त महाराज क्या देंगे, मरने के बाद जब ऊपर जाऊंगा तो हमें क्या सजा मिलेगी, तो खत्म भी नहीं करेगा। अगर जो कानून जानता है अधिवक्ता, वो जल्दी अपराध नहीं करता, समझता है कि अगर ये अपराध करूंगा तो इतनी सजा मिलेगी। तो उसी प्रकार अगर धार्मिक व्यक्ति होता, तनिक मात्र भी राम में अगर उसको आस्था होता, तो निश्चित रूप से इस तरह के कृत्य नहीं करते। ये मैं नहीं कह सकता स्पष्ट रूप से कि कौन चोर है कौन नहीं है, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई जो पद पे बैठे हुए थे उनमें पे भी दोष लगता है, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं, कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार है और जिम्मेदारी लेना चाहिए।
5: एक राज्य में पहले पहले राजा होता है और सबका विचार एक है, वो ये कि उस विश्वास को, उस भरोसे को दोबारा बहाल होने की जरूरत है, जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि पद नहीं है दायित्व है, पर उस दायित्व को भी छोड़ने की जरूरत है। जब तक लोगों का भरोसा बहाल न हो जाए, सब यही चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ हो वही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
11: राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं, दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
12: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है, वो तो

नोट को सीधा करके उसको तकी लगाते थे, तकी लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। हाँ वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: जिन्होंने प्रभु राम पर करोड़ों लोगों की आस्था को अपने लालच की तिजोरी की चाबी समझ लिया था या आंख मूंद कर भ्रष्टाचार होने दिया था, उन तक आज पहुंच चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है।
1: हालांकि ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव का दावा है कि अभी दोनों का इस्तीफा नहीं हुआ है,
0: लेकिन SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारियां बता रही हैं कि अभी जांच के कई सिरे खुलने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की वजह से दान मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई FIR के बाद चंपत राय के ड्राइवर रह चुके रमाशंकर यादव और उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, कर्मणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई है। इन कार्रवाइयों के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि दोषी पक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन राम की आस्था पर राजनीति ना हो।
2: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट पर जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक ट्रस्ट का मैनेजमेंट सिस्टम, डोनेशन सिस्टम और रिकॉर्ड सिस्टम सही नहीं था। हुंडी की संख्या और लिखित रिकॉर्ड में अंतर है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव का रिश्तेदार मनीष यादव CCTV में कई बार चोरी करते दिखा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। SIT ने जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में 70 मौकों पर चोरी या गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। मंदिर ट्रस्ट को लेकर SIT जांच में सामने आ रहे ये तथ्य विपक्ष को सरकार पर और बड़ा हमला करने का मौका दे रहे हैं। अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है।
3: वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है
4: कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए।
0: विपक्ष का ये हमला तब है जबकि अभी SIT ने अपनी जांच खत्म नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट्स को भी देखा है। ऑडिट रिपोर्ट्स में हुंडियों की संख्या को लेकर दर्ज रिकॉर्ड और CCTV की व्यापक कवरेज समेत कई प्रक्रियाओं में कमी पाई गई है। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जांच में असली दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा दिया है।
5: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: राम मंदिर का दान करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सारे तथ्य सामने आने तक ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आता। SIT की जांच ट्रस्ट प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन दान की गई कुछ वस्तुएं गायब होने पर वायरल हो रही कुछ तथ्यहीन खबरों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अल्लाबुल में आपने इस बात पर चर्चा देखी कि किस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा मामले के बाद जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद किस तरीके से भक्तों का जो विश्वास है वो दोबारा बहाल हो सकता है ताकि कोई भी दोषी जो है वो बचकर निकल न पाए। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए खबरें मारिया शकील के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, 8 आरोपी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चोरी पर महासंग्राम, योगी बोले खिलवाड़ नहीं मंजूर। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी, सोमवार को विधानसभा में हो सकता है बिल पेश। केतन हत्याकांड में पुलिस का दावा, प्रेमी चेतन ने मंगेतर सिया को हत्या के लिए उकसाया। शो की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच आज चंपत राय के इस्तीफे की खबर सामने आई है। वहीं मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच की ये आंच सीधे चंपत राय तक पहुंचेगी, जिन पर पूरी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी राम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के जरिए राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अवि मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो चुकी है। भगवंत मान के आरोपों के बाद अब मास्क मैन का वीडियो सामने आया है, जो भगवंत मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनु कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट करे, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इथो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि एदे च अखां नहीं लग सकदियां, मास्क तो बन जाता है, अखां नहीं बनदियां, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: दो जिहड़ियां जहेदार साहब ने कराईआं, ਉਹਨਾਂ 3 ਲੈਬਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ।
7: ਅਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਮਾਸਕ ਮੈਨ ਥਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ AI ਵੀਡੀਓ ਹੈ। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना, ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुम 10 लाख रुपया करते पे, होटल से कमरे बुक कराने पे हैं, तो कादे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुसीं तो फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष की तरफ से उठते सवालों के बीच एनसीईआरटी ने इसे किताबों में शामिल कर दिया है। एनसीईआरटी ने चुनाव आयोग और SIR को नवीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में शामिल किया है। इसमें भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की गई है। इतना ही नहीं, किताब में यह भी कहा गया है कि कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है और देश भर के चुनाव में भी उसकी भागीदारी होती है। किताब में SIR का भी एक अलग सेक्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है और ये कितना ज़रूरी है, जिसे लेकर अब सियासत हो रही है।
11: कुछ SIR तो उनके ही अधिकारी है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डरते क्यों हैं? और SIR के कारण यही लोग बोला है, SIR के कारण हम केरल में जीत गए।
6: उधर उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया है। काफी हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया है।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासु और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी, लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए हैं। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं दिख रही हैं तस्वीरें, वैसी आ रही हैं जहां पर उन्हें मार पीटा जा रहा है, तो कहीं अंडों में हमला, अंडों से भी हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े, तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूचबिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में है। वहीं तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
0: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
5: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
6: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
0: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
3: वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है। आयरलैंड में हो रहे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, जिसके साथ ही अब सूर्यवंशी को अपने पहले इंटरनेशनल डेब्यू के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
7: बढ़ गया वैभव सूर्यवंशी का इंतजार, आज नहीं मिला मौका, परसों होगा सपना साकार। आज सारी दुनिया की नजरें थी इस मुकाबले पर, इस सवाल के साथ कि क्या वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का आगाज करेंगे। लेकिन बेलफास्ट के इस मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की 11 में उन्हें मौका नहीं मिला और उनका इंतजार और दो दिन के लिए बढ़ गया, क्योंकि रविवार को भारत और आयरलैंड दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। वैसे सबसे कम उम्र में भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का रिकॉर्ड पुरुष क्रिकेट में 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है, जबकि ओवरऑल देखें तो शेफाली वर्मा का नाम भारतीय क्रिकेटरों की सूची में सबसे ऊपर है। अभी 3 दिन पहले ही जब वैभव को उनके नाम लिखी जर्सी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टीम इंडिया आज पहली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में T20 का मुकाबला खेल रही है, सामने है आयरलैंड की टीम। T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया में कई तूफानी बल्लेबाज पहले से ही हैं। खैर, आज नहीं तो परसों, इतिहास तो वैभव को ही लिखना है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात दुनिया की, जहां हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। सीज़फ़ायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का नजर आ रहा है।
8: अमेरिका ईरान सीज़फ़ायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं।
9: ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים, ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
8: בנג'מין נתניהו כתבר אור לבנן מישראל כהמלו זה איראן בוכלה גאה. ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: TMTT बार निर्माण का रियल हीरो
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 products. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
5: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
6: Money, money, money, money every month.
7: सोच बदलो और बैंक भी.
8: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है.
9: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें.
8: जिंदल स्टेनलेस, India's leading producer of stainless steel.
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा. अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार. देश के हीरो की पहली पसंद.
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
15: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Vimal, बोलो जुबां केसरी.
17: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
18: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक.
19: जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है. जो जितना भी निवेश है उसका 90% या 100% भारत में नहीं होना चाहिए. क्यों होना चाहिए जब भारत 3% है. गोल्ड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है. आप डॉलर टर्म्स में देखें.
20: स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है.
19: आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो. अब आपको खेलना कैसे है नॉट टू लूज. कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना. उसको तरफ जाइए ही मत. ये पूरा स्कैम है और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ.
21: हमने तब भी सवाल किया था.
22: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है.
21: हम आज भी सवाल करते हैं.
22: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी. दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं.
21: ऑपरेशन अग्नि.
22: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है. आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे.
21: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई. खबरदार, सिर्फ आज तक पर.

0: लोहागढ़ किले की यही वो खाई है जहां से 18 जून को केतन अग्रवाल 340 फीट नीचे गिरा था। शुरुआत में से हादसा माना गया, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश थी। इसी दावे को मजबूत करने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस एक बार फिर क्राइम सीन पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने नीचे उस जगह की जांच की जहां केतन का शव मिला था और फिर उस चोटी तक पहुंची जहां से कथित तौर पर उसे धक्का दिया गया। पुलिस की थ्योरी साफ है, अगर कोई व्यक्ति फिसल कर गिरता है तो उसका शरीर पहाड़ी के बिल्कुल करीब मिलेगा, लेकिन अगर किसी को जोर से धक्का दिया जाए तो शरीर काफी दूर जाकर गिरता है। इसी वैज्ञानिक आधार पर फॉरेंसिक टीम ने मौके का दोबारा निरीक्षण किया ताकि हादसे और हत्या के बीच का फर्क स्पष्ट हो सके। पुलिस की कहानी सिर्फ क्राइम सीन तक सीमित नहीं है, जांच में एक नया नाम सामने आया है, नीरज कुमार। नीरज चेतन चौधरी की ड्राई फ्रूट फर्म धनश्री सील्स में काम करता है। पुलिस के मुताबिक 18 जून की सुबह चेतन अपना मोबाइल नीरज के पास छोड़ गया और नीरज का मोबाइल लेकर लोहागढ़ पहुंचा। यहीं से पुलिस को शक और गहरा हुआ। जांच में सामने आया कि 18 जून सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन के मोबाइल का इंटरनेट बंद रहा। इस दौरान उसके फोन पर सिर्फ इनकमिंग कॉल आती रही। उधर जिस मोबाइल को लेकर चेतन गया था यानी नीरज कुमार के फोन की लोकेशन सीधे लोहागढ़ किले पर मिली। पुलिस मान रही है कि ये सिर्फ मोबाइल बदलने का मामला नहीं बल्कि लोकेशन और डिजिटल सबूत छिपाने की कोशिश भी हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका कहना है कि ये रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तय हुआ था और वो चेतन चौधरी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पुलिस का दावा है कि यही इस पूरी साजिश का मकसद बना। हालांकि सगाई और रोके की तस्वीरें एक अलग कहानी दिखाती हैं। दोनों परिवार साथ थे, मुस्कुराते चेहरे थे, शादी की तैयारियां थी और सोशल मीडिया पर भी दोनों की नजदीकियां दिखाई देती थी। यही विरोधाभास अब जांच का बड़ा हिस्सा है। पुलिस का दावा है कि हत्या से करीब 15 घंटे पहले सिया और चेतन शहर के कैफे में मिले। यहीं केतन की हत्या की आखिरी योजना बनाई गई। अगली सुबह तीनों लोहागढ़ पहुंचे और पुलिस के मुताबिक पहले से तय योजना के तहत केतन को खाई में धक्का दे दिया गया। पुलिस की नजर में कैफे की मुलाकात, सीसीटीवी में इशारे, मोबाइल बदलना, लोकेशन और क्राइम सीन, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसी आधार पर पुलिस इसे सुनियोजित हत्या बता रही है। वहीं मामले में बचाव पक्ष की दलील भी अलग है। चेतन चौधरी के पिता का दावा है कि अगर धक्का दिया भी गया तो सिया ने दिया और उस वक्त चेतन कुछ दूरी पर खड़ा था। परिवार का कहना है कि चेतन को इस केस में फंसाया जा रहा है। एक तरफ सिया का कथित बयान, मोबाइल बदलने की कहानी, लोकेशन, सीसीटीवी और क्राइम सीन का फॉरेंसिक विश्लेषण, तो दूसरी तरफ चेतन का परिवार हर आरोप से इनकार कर रहा है। अब जांच का अगला चरण डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा, एफएसएल रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले सबूत तय करेंगे कि क्या पुलिस की थ्योरी कानून की कसौटी पर भी उतनी ही मजबूत साबित होती है जितनी अभी जांच में दिखाई दे रही है। गोपाल हारने और श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे।
1: राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं, दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा, 8 आरोपी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चोरी पर महासंग्राम, योगी बोले खिलवाड़ मंजूर नहीं, अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी, सोमवार को विधानसभा में आ सकता है बिल। सियासी घमासान के बीच एनसीईआरटी का बड़ा कदम, 9वीं की किताब में इलेक्शन कमीशन और एसआईआर की तारीफ। चेतन हत्याकांड में पुलिस का दावा, प्रेमी चेतन ने मंगेतर सिया को हत्या के लिए उकसाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मारिया शकील। विशेष में आज बात पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया की माँ का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाना चाहिए, जहां से केतन को फेंका गया था। लेकिन ये सब तो जांच पर निर्भर करता है। उधर केतन के पिता ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया है।
3: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
3: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
5: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
3: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
6: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, 2 अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
7: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
6: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
3: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
8: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
5: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
8: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
5: नहीं थी, पहचानते नहीं।
8: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे,
4: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था,
8: हाँ,
4: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था,
5: हाँ, तो मेरा सही।
4: उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे, तो बोले ठीक है मम्मी जी मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
3: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
5: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
3: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
9: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
10: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
9: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
10: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
9: जी? मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी। उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है कितना
11: है अनाकलनीय अशा प्रकार की घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
3: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
0: अब मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 18 जून को यानी कि केतन की हत्या के दिन लोहगढ़ के किले में जाने का प्लान केतन का ही था, जबकि पहले दिन से केतन का परिवार यह दावा कर रहा है कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया ने बनाई थी। अब सवाल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ हो जाएगा। अगर ये साबित हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो ये भी साबित हो जाएगा कि सिया ने पहले से ही मर्डर प्लान बना लिया था।

0: 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था, तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था। लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो ये तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था। लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
1: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
2: जी,
1: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनको महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
2: जी,
1: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
2: ओके
3: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
2: मोबाइल में चैट है उसका,
3: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
2: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
3: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
2: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
3: चैट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
4: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi dabake khate hain. Goldie Hing kan kan mein jaan.

0: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
2: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है।
3: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं।
4: मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए।
5: तो बात एफआईआर तक आ पहुंची है, एसआईटी ने अपना काम कर दिया, अब पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में बचा कौन और फंसा कौन, बचाने वाला कौन और फंसाने वाला कौन? जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उनमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम है। टिन्नू के अलावा अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का नाम है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अत्यंत गंभीर है। ये सीधे तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। जिन लोगों को एसआईटी ने मुख्य किरदार बनाया है जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। पहला नाम टिन्नू यादव का है, ये चंपत राय का सहयोगी है।

में मुख्य आरोपी है। ये मंदिर में कहीं भी आ जा सकता था। दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा, जो भगवान के चढ़ावे की गिनती करता था। इस पर आरोप है कि इसने चढ़ावे की रसीदों में हेर फेर किया। तीसरा नाम लवकुश मिश्रा का है, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से कई लाख रुपए बरामद हुए हैं। चौथा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है, ये SBI का रिटायर्ड कर्मचारी है और चढ़ावा गिनती का इंचार्ज था, यानी पूरी गिनती इसी की देखरेख में होती थी। पांचवा नाम मनीष यादव का है, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। ये तिन्नू यादव का भतीजा है, इसके घर से भी कैश मिले थे। छठा नाम अविनाश शुक्ला का है, ये भी गिनती में शामिल था। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। सातवां नाम है करुणेश पांडे का, ये भी राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में शामिल था। आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से भी कैश बरामद हुआ है। क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी इतना सेंट्रलाइज था कि इन 8 व्यक्तियों के अलावा कोई और शामिल नहीं था? क्या यही वो 8 लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया? इस FIR के बाद विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी राज्य में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को पासी, शाखाओं को मिलेगी माफी। छोटे कर्मचारियों पर मुकदमे से विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के अजय राय तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि पैसा दिल्ली तक गया है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था कि बड़े खिलाड़ियों को बचाया गया है, अब विश्व हिंदू परिषद भी खुलकर सामने है। VHP के आलोक कुमार ने तो हर संदिग्ध की जांच की मांग कर दी, चाहे उसका नाम FIR में हो या ना हो। चढ़ावा चोरी के खुलासे के 20 दिन बाद पुलिस ने FIR लिख ली है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सभी बड़े लोग बच गए हैं। ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम FIR में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नामजद किया गया है और जिन्हें बचा लिया गया है, अब इसको लेकर सियासत भी जारी है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना, चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो, आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी किए हैं उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
1: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राव जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है, अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है और मुंबई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए, जो जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने के आप लोग आप विनंती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया?
2: जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्या वासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
3: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलम्ब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया। SIT ने

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी, सभी आठों आरोपी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा मामले पर सियासत तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी, सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान, सोमवार को विधानसभा में बिल आ सकता है। गुजरात असम उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन नहीं मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। सीएम फडणवीस ने पीड़ित परिवार को दिया इंसाफ का भरोसा। गुजरात से राजस्थान जा रही लग्जरी बस से करीब 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 लाख से अधिक ट्रामाडोल टैबलेट बरामद, आरोपी गिरफ्तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। रामचरितमानस का सब अयोध्या कांड जो है वो सबसे भावुक सोपान, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों से लेकर उनका 14 वर्ष के लिए वन जाना, राजा दशरथ का शोक में डूबकर निधन, भरत का चित्रकूट जाना और चरण पादुका लाकर राज्य संचालन करने तक की मार्मिक कथा और उच्च आदर्शों का वर्णन। लेकिन वो अयोध्या कांड त्रेता युग का था, आज का अयोध्या कांड कलयुग वाला है, जहां राम मंदिर बनने के बाद जमीन से लेकर चढ़ावा चोरी तक के आरोप हैं, जहां विश्वास का संकट है, 8 गिरफ्तार हैं। लेकिन सवाल बड़े चेहरों का है। चंपत राय, जिनको लेकर कहा गया कि नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे, तो सवाल है क्या नैतिकता बहुत देर से जागी? क्या FIR में आगे चंपत राय का भी नाम होगा?
1: आरोपी नंबर 1 अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान के रुपए को काउंटिंग रूम तक लाना और गिनती करना, आरोप दान में आए रुपयों की चोरी, अयोध्या के पास चोरी के रुपयों से संपत्ति खड़ी की। आरोपी नंबर 2 अनुकल्प मिश्रा, जिम्मेदारी काउंटिंग रूम में रुपयों की गिनती करना, आरोप काउंटिंग रूम से नोट चुराए, चढ़ावे की चोरी से संपत्ति बनाई। आरोपी नंबर 3 लवकुश मिश्रा, जिम्मेदारी चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य, आरोप चढ़ावा चोरी करके संपत्ति खड़ी की। आरोपी नंबर 4 मनीष कुमार यादव, जिम्मेदारी दान पात्र में आए चढ़ावे की गिनती करना, आरोप मंदिर के चढ़ावे की चोरी, घर से 36 लाख बरामद। आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपए को कमरे तक लाना, काउंटिंग कराना, आरोप दान के रुपयों की चोरी, चोरी के दान से संपत्ति बनाई। आरोपी नंबर 6 रमा शंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक लाना, निगरानी करना, आरोप आरोपियों के साथ मिलकर दान के रुपए में हेरा फेरी करना। आरोपी नंबर 7 सुभाष श्रीवास्तव, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी, आरोप निगरानी में लापरवाही, दान के रुपयों में चोरी। आरोपी नंबर 8 रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिस पर दान पात्रों की देखरेख और बेसमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, आरोप दान पात्र से करोड़ों का गबन, अयोध्या के आसपास के जिले में संपत्ति बनाई। श्री राम के मंदिर से भक्तों के समर्पण को चुराने के आरोपी पूरे 8 या केवल 8? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला नाम FIR में जो अभी अज्ञात है, वो जांच में आगे बहुत बड़ा हो सकता है। क्या आगे राम मंदिर ट्रस्ट के गोपाल राव का अगला नाम FIR में होगा? क्या वो नाम FIR में आगे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान बनने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा का होगा? क्या अब FIR में अगला सबसे बड़ा नाम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का होगा? क्योंकि FIR में 8 नाम 8 गिरफ्तारी के बाद खबर आई है कि चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी नैतिकता के नाम पर।
2: चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है,
3: कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया।
4: छोटे छोटे प्यादों को शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
5: नीचे लिखा है अन्य, सबकी जांच होगी।
6: गिरफ्तारी कैसे होगी भाई? चंपत राय से सब डरते हैं।
7: जो राम लला द्रोह किया है वो पनिश
8: हो। मुझे लगता है थोड़ा सा लेट किया, इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था।
9: जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं।
1: इस वक्त कई सवाल, जैसे पहला, क्या वाकई चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या फिर इस्तीफे पर कोई सस्पेंस है? सवाल की वजह गोपाल राव है, जो ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इनसे सवाल हुआ कि क्या इस्तीफा चंपत राय का हो गया है? शुक्रवार शाम तक का इनका जवाब सुनिएगा।
10: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हो गया, बाकी तो भगवान जाने। वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
11: यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ उनके ही साथी गोपाल राव कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मीडिया दबाव बनाकर चंपत राय का इस्तीफा लेकर ही छोड़ेगा। तो क्या चंपत राय इस्तीफा नहीं देना चाहते थे? और क्या नैतिकता के नाम पर उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? जब बात नैतिकता की है तो फिर दबाव की बात कहां से आई? कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जहां भक्तों की तरफ से प्रभु राम को अर्पित भेंट चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कैश की गिनती, उसके संचालन और प्रबंधन, इनमें सबसे बड़ी खामियां पाई गई हैं। एसआईटी ने दावा किया है अपनी रिपोर्ट में, इस पर सवाल तक उठाया है। यही वजह है कि पूछा जाने लगा कि क्या चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर होगी, जिनके नेतृत्व में सारा प्रबंधन राम मंदिर का संभाला जाता रहा।
12: जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई।
13: ये बात तो सच कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्रवाई शुरू हुई है, 8 लोग पकड़े गए हैं, सोमवार तक के लिए जेल भेज दिए गए हैं।
14: चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को सोमवार तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 29 जून तक सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। सोमवार को जब दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट होगी। पुलिस ने इन सभी 8 आरोपियों में से सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को छोड़कर 7 आरोपियों के पास से 79,85,000 से अधिक की रकम बरामद की है। अब कहा जा रहा है कि पुलिस इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी और उसके बाद इस पूरे चोरी में शामिल दूसरे बड़े चेहरों को भी सामने लाएगी।
15: कई और लोगों की जो भूमिका है वो संदेह में है, जैसे चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, क्योंकि ये ट्रस्ट के कहीं ना कहीं पूरा संचालन करते थे। इनको लेकर क्या कोर्ट में किसी तरीके की आप लोगों ने बातें रखी, या फिर इनके जो रोल है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दायित्व इनका भी बनता है, क्या आने वाले समय में आप लोगों की जांच में इनका भी नाम आ सकता है?
16: अब क्योंकि जो अभी नेम्ड एक्यूज्ड थे वो गिरफ्तार होकर आए थे रिमांड के लिए, तो इनके पास से तो बरामदगी हुई है और इनको जो है जेल भेजा भी गया है। अब इनके बयानात, इनके जो है CDR CCTV फुटेज, तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हो गए, इसके आधार पर जो IO जो इसमें विवेचना करेंगे उसके आधार पर किस किस के नाम आते हैं वो आगे का विषय है, विवेचना का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया इन लोगों के मतलब बयानों के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उसके आधार पर जो भी आएंगे, जो उसमें दोषी होंगे उनका नाम प्रकाश में आएगा, क्योंकि अज्ञात में बहुत सारी अभी चीज आ सकती है।
13: तो क्या जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चंपत राय के लिए मुश्किल बढ़ेगी? वो चंपत राय जिनको लेकर दावा यही है कि इस्तीफा नैतिकता के नाम पर दिया, अगर दिया तो क्यों ना ये माना जाए कि नैतिकता जागते जागते बहुत देर हो गई, क्योंकि नैतिकता चंपत राय की तब जागी जब केवल 3 महीने में 42 दिन के भीतर 70 बार चढ़ावे की चोरी का CCTV वीडियो SIT ने देख लिया है। चंपत राय की नैतिकता तब जागी है जब SIT को पता चला कि SOP की धज्जियां उड़ाकर चढ़ावे की गिनती और चोरी होती रही। चंपत राय की नैतिकता तब जाकर जागी जब SIT को दावा है ये भी पता चल चुका कि 2023 से ही गड़बड़ी चलती रही। चंपत राय की नैतिकता तब जाकर जागी जब आरोपियों के पास से चढ़ावे की चोरी का पैसा कैश बरामद हुआ।
15: ये भी बताया गया है कि इन लोगों के यहाँ से अमाउंट एक बड़ा वो रिकवर हुआ है, कितना अमाउंट?
16: टोटल अभी जो आज पकड़े गए हैं 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में। उसमें सुभाष जो एक एक्यूज हैं उनके वो उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनके उनके पास से नहीं, क्योंकि मतलब घटना में वो भी इन्वॉल्व थे, सबके पास से 79,85,000 रुपए लगभग।
13: तो क्या चंपत राय की नैतिकता जागने में देरी नहीं हुई? क्या चंपत राय का नाम FIR में नहीं होना चाहिए?
15: कहें कि कहीं ना कहीं अगर रोल पाया जाता है किसी वरिष्ठ अधिकारी का, चाहे वो चंपत राय को हो, तो वो उस पे आएगा।
16: बिल्कुल, ये विवेचना का विषय है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनको जो है आयोग विवेचना के क्रम में लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे और उनका रिमांड भी लिया जाएगा।
0: आज तक को SIT के सूत्र ये भी बताते हैं कि आज से नहीं बल्कि पहले से ही आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां दिखती रही हैं। जांच में ये तक सामने आया है कि पर्याप्त CCTV कवरेज नहीं रखी गई थी, जिससे चढ़ावे पर निगरानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है। SIT आगे इन सब मामलों में जांच को आगे बढ़ाएगी और तब क्या चंपत राय, अनिल मिश्र जैसे बड़े पदाधिकारियों का भी नाम शामिल होगा?
13: चंपत राय को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि ये ट्रस्ट के महासचिव ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगने पर कहा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला।
17: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। यह कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
13: दावा है कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून तक यानी 42 दिन के भीतर 70 मौके ऐसे SIT को जांच में दिखे जब चढ़ावा चोरी का वीडियो CCTV में नजर आया। सवाल है कि जब 42 दिन में 70 बार चोरी का वीडियो हो सकता है तो ये चोरी किस स्पीड से राम मंदिर में होती रही होगी? जहां चंपत राय कहते रहे कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला, वह SIT को कैसे 70 बार चोरी 3 महीने में दिख गई?
18: राम मंदिर कथित चढ़ावे की चोरी के मामले में मनीष कुमार यादव जो कई बार SIT को सूत्रों से मिली जानकारी कि वह कई बार CCTV में चोरी करते हुए दिखता था। मनीष कुमार यादव जो टिन्नू यादव का रिश्तेदार था और टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था और काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। आलम यह था कि जो हुंडियों की चाबी है वो भी टिन्नू यादव रखता था। तो ऐसे में जिस तरीके से CCTV में दिखना, उसके बाद हुंडियों की चाबी रहना, क्या चंपत राय को इसकी जानकारी नहीं थी?
9: उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी
19: मैंने FIR देखी, उसमें समूचे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा गया। 8 नाम इसलिए है कि SIT की रिपोर्ट में 8 ही है, ऐसा नहीं है। उसके नीचे लिखा है अन्य, सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सबकी होगी कॉम्प्रिहेंसिवली और फिर उसका परिणाम।
13: चंपत राय संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, जिद्दी और जुनूनी माने जाते रहे। अपना जीवन संघ परिवार और फिर राम मंदिर को सौंप दिया, लेकिन क्या ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते अगर प्रबंधन का श्रेय उनका रहा तो क्या सबसे बड़े अपराध पर जवाबदेही तय नहीं होगी?
20: जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है, उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं? अरे उसको पकड़ के जेल में डालिए ना, अनिल मिश्रा को जेल में डालिए, चंपत राय को जेल में डालिए, गोपाल राव को जेल में डालिए। यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी?
21: ये कुछ नहीं, ये मेन चोरों को बचाने के लिए, मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक सिस्टमेटिक ड्रामा है। आफ्टर थॉट ये FIR लिखी गई, सोचने के बाद, सोचने समझने के बाद। 10 दिन में आप FIR लिख रहे हैं, मैंने तहरीर दिया क्यों नहीं लिखी गई? इसका मतलब ये पूरा सिस्टम चोरी में शामिल है, पूरा सिस्टम, पूरा ये SIT सहित SIT दूध की धुली है। क्या किया एसआईटी ने? डर के मारे मेमने बन गए? यही काम किया एसआईटी का, यही धर्म है जो किया उन्होंने? हमारा बयान क्यों नहीं लिया, हमारे पास क्यों नहीं आए?
0: हाल में ही यह दावा किया गया कि राम मंदिर में श्रद्धालु कम नहीं हुए लेकिन चढ़ावा कम हुआ, तो क्या यह विश्वास का संकट है? वो संकट जिसे दूर करने की कोशिश में मुख्यमंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। सवाल हालांकि फिर भी है कि जब तक बड़े चेहरों तक जांच नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ पारदर्शी होगा, विश्वास वापस लौटेगा।

0: शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता।
1: ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग में पहुंच गए।
2: 2024 में जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद श्रद्धालु सतयुग तक आने की बातें करने लगे।
3: जिसका इतने सालों से इंतजार था वो पल आज आ गया है।
4: समझिए जिंदगी धन्य हो गया।
2: यही भरोसा करोड़ों हिंदुओं का है जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं।
5: आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा है और ये 500 वर्षों का संघर्ष की विजय हुई है।
6: इतने खुश है कि प्राण भी दे दे तो कम है। पूरी अपनी दुनिया त्यागने के लिए तैयार है। हमको इतना अच्छा लग रहा है।
2: उसी आस्था को चोट उन लोगों ने पहुंचाई जिन्हें राम के मंदिर की चौकीदारी का जिम्मा दिया गया। उनमें से 8 लोग तो पकड़े गए, लेकिन ये सब लोग क्या अपने दम पर इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं?
7: ये सबसे आगे पीले जो कुर्ते में है, ये रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत ये सभी 8 आरोपी हैं। मनीष यादव, ये सारे लोग को देखिए, ये 2 अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। और ये 8 आरोपी, जो सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, इन सभी को आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अयोध्या की SOG के द्वारा इनको पेश किया गया। भारी सुरक्षा के बीच में लाया गया, सभी 8 आरोपी लाए गए। और बीच में देखिए कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो स्कॉर्पियो के बीच में बैठा है, ये रामशंकर यादव, टिंडू यादव है। रामशंकर यादव, टिंडू यादव को बीच में रखा गया है।
2: अब आगे इन्हीं लोगों की तरफ से दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़नी, तो वो जांच के चंपत राय तक पहुंचेगी।
8: राम मंदिर मामले में SIT की जांच में 3 चीजें पूरी तरीके से फेल मिली हैं। एक तो पारदर्शिता उस मैनेजमेंट को रखने की, दूसरा रिकॉर्ड्स रखने की जो भी वहां पर सामान आया गया, और तीसरा सबसे बड़ा था जो मैनेजमेंट था ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ। इन 3 चीजों में फेल पाया गया, पारदर्शिता नहीं थी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं यही वजह थी कि चंपत राय की इस लापरवाही की वजह से ही दान पात्रों में चोरी होती गई, श्री राम मंदिर में चोर चोरी करते रहे और ये चोरी आगे बढ़ती रही।
9: कौन सी SIT है? सब मैनेज हुए लोग हैं और ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। आप मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। इतना सोचने समझने के बाद आपने ड्रामा खड़ा किया। हमने तहरीर दी नामजद, आपने क्यों नहीं लिखा? पुलिस दोषी है, पुलिस चोरों से पैसा लेकर मौन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है? मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया।
8: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बैंक की SOP और ट्रस्ट के बीच में एक SOP तैयार की गई थी। SIT के सूत्रों का दावा है कि उस SOP का पालन नहीं किया गया। वह SOP जो SBI बैंक के कर्मचारी और ट्रस्ट के अनिल मिश्रा के बीच में हस्ताक्षर हुई थी, लेकिन उस SOP का पालन नहीं हुआ। इसी वजह से लगातार दान पात्रों से चोरी और चढ़ावा चोरी जैसे मामले सामने आते गए। तो आखिर इसमें अब किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट में चंपत राय जो महासचिव थे उनके सामने ही इस SOP को पालन कराया गया था।
10: अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई। मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूँ। चंपत राय चोर है, चोर है।
8: राम मंदिर मामले में SIT की जांच में ये साफ आया है कि जो भक्त चढ़ावा भेंट श्रद्धालु जो देते थे उसको मन मर्जी के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में बांटकर लिया जाता था और उसको गिनने की प्रक्रिया में डाल दिया जाता था, जिसमें ना ही किसी की जिम्मेदारी थी और ना ही कोई उसकी देखरेख में था। इसी वजह से ये माल ऐसे ही बढ़ता चला गया और चंदा चोरी होती चली गई।
11: सनातन धर्म में तीर्थ स्थान जो होते हैं वो पर्यटन के लिए यानी घूमने फिरने और खरीदारी करने की जगह नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि आत्म मंथन का माध्यम है। इसीलिए तीर्थ से धूल का कण तक ले जाना भी पाप माना जाता है। इसीलिए अयोध्या में कुछ आरोप लग रहे हैं वो धर्म की नजर में पाप से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से ये खेल चल रहा था, किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? जबकि आज तक को मिली इस विवाद की इनसाइड स्टोरी बताती है कि सारा खेल खुलेआम चलता रहा आपसी मिली भगत के साथ।
2: दान पेटी से बैंक तक राम मंदिर में चढ़ावा कैसे हुआ गायब? खुफिया कैमरे ने कैसे पकड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल? राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के रोज नए नए रिकॉर्ड को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खबरों के मुताबिक 850 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंदिर को किसी भी हमले से बचाने के लिए यूपीएटीएस, आरएएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त तैनाती भी अयोध्या में रहती। तो राम मंदिर की बाहरी सुरक्षा तो पुख्ता कर दी गई, लेकिन मंदिर के अंदर चढ़ावा गिनने वालों ने ही बड़ा खेल कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुई, तो इसको लेकर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां। मई महीने के आखिरी हफ्ते की बात, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की, तो सबसे पहले चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 7-8 लाख रुपए एक बार में जमा होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के क्रम में तब 500 रुपए की गड्डियों में कमी देखी गई। इस तरह चढ़ावा गिनने वाले सीधे 500 के नोट पार कर रहे थे। दावा है कि चढ़ावे में हेरफेर करने वाले कर्मचारी आगे पीछे छोटे नोट गड्डी में लगाते थे, लेकिन बीच में 500 के नोट रहते थे। इस तरह चढ़ाने में लूट का यह खेल काफी समय से चल रहा था। चढ़ावे की गिनती में हेराफेरी का शक गहराया तो कुछ छिपे हुए कैमरे लगाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी करके उन्हें कपड़ों में छिपा लेता है, लेकिन फिर हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है।
7: चढ़ावे की चोरी करने वाले जानते थे कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं, इसीलिए वो बेधड़क होकर इन पैसों की चोरी करते और बंदर बांट कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि ये उस सीसीटीवी कैमरे के सामने तक खड़े हो जाते और इनको किसी का डर नहीं होता और रकम चोरी कर रहे थे।
2: सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोरी एक और तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डियां ही गिनी जाती थी और उसका वाउचर बन जाता था। जब ये रकम बैंक में जमा कराने के लिए मंदिर से बैंक में ले जाते तो उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाया गया था वो चुपचाप बाहर निकाल लिया जाता। इस तरह वाउचर से गड्डियों का मिलान हो जाता और गड्डियों में एक्स्ट्रा रखे गए पैसे को चोरी कर लिया जाता, क्योंकि नोट की गड्डियों में 100 की जगह ज्यादा नोट ये चोरी करने वाले लगा दे रहे थे।
7: अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए। इतना ही नहीं, चढ़ावा गिनने वाले हर शख्स किसी न किसी से परिचित था, किसी न किसी का रिश्तेदार था।
2: जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था, तो टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगा दिया। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया, जो दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आज तक की टीम ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा से बातचीत की, जिसमें वो बताती हैं कि राम मंदिर में काम करने के बाद से अनुकल्प और उसके परिवार की संपत्ति लगातार बढ़ गई थी।
7: क्या अचानक से ये पैसा बढ़ गया इन लोगों के पास से कि पहले से था?
12: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
7: अच्छा,
12: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
7: क्या पैसा
12: बढ़ गया? हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
7: तो ये क्या मतलब, राम मंदिर जैसे चोरी का आरोप आ रहा है तो क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पैसा था?
12: अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा हमारे ससुराल वालों के पास नहीं था जिस तरीके से उन्होंने भागवत में भव्य प्रदर्शन किया है और तरह तरह के नाश्ते बनवा रहे थे, तरह तरह के खाना बनवा रहे थे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे,
7: क्या गाड़ियां भी खरीद रहे हैं लोग, गाड़ियों का काफिला?
12: हाँ, एक गाड़ी है अभी अनुकल्प के पिताजी ने खरीदा।
7: तो लोकुश का भी यही हाल है, लोकुश के यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या?
12: हाँ, मुझे जानकारी है कि लोकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 40 लाख का प्लाट लिया है जिसमें मकान बनवा रहा है।
7: तो ये सब चढ़ावा चोरी का?
12: अब जाहिर सी बात है कि जब उनके भी घर की स्थिति सही नहीं थी तो ऐसे कैसे इतना पैसा कहाँ से आ गया?
11: सोचिए, 18 से 20 हजार की तनख्वाह पाने वाले मंदिर के कर्मचारी लाखों की जमीन मकान खरीद रहे थे, ट्रस्ट के लोग बेखबर थे, किसी को इसकी कानोकान खबर नहीं लगी या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई, कान बंद किया गया। क्या इस अनदेखी में चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के दूसरे बड़े सदस्य शामिल नहीं थे? अगर थे तो फिर क्यों इन तक FIR की आंच नहीं पहुंची? तो चाहे अनुकल्प हो या फिर लवकुश मिश्रा, दोनों की आर्थिक सेहत मंदिर में काम करने के बाद से सुधरी और मजबूत हुई। सवाल है कि हजारों की सैलरी में ये कैसे हुआ? बड़ी बात ये भी कि अनुकल्प मिश्रा तो लवकुश मिश्रा का जीजा है, वहीं रमाशंकर मिश्रा लवकुश के पिता है और अनुकल्प के ससुर है। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जीजा साला ससुर दामाद का कनेक्शन जुड़ता है। यही नहीं, अनुकल्प मिश्रा की ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से रिश्तेदारी बताई जाती है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भाई भतीजावाद ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरों की एक ऐसी टीम तैयार कर दी जिसने करोड़ों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के बाद से भले ही ट्रस्ट कटघरे में आ गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। साल 2024-25 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच चढ़ावा गणना के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया उसका भी पालन नहीं किया गया।
7: अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए। इतना ही नहीं, चढ़ावा गिनने वाले हर शख्स किसी न किसी से परिचित था, किसी न किसी का रिश्तेदार था।
11: पकड़े गए अविनाश पांडे के CCTV फुटेज देखे गए और उसके तरफ से जो रकम चोरी की जा रही थी इस तारीख में बैंक में रकम जमा भी कराई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने पूछताछ के दौरान मिलान कराया तो पुष्टि हुई कि चढ़ावा चोरी से जमा की गई रकम का एक हिस्सा अविनाश अपने बैंक खाते में जमा कर रहा था। जो श्रद्धालु दान पेटी में जेवरात दान करते थे उसको भी ये लोग चोरी कर लेते। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप, रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी किए जा रहे थे। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पढ़ी होती थी। इस मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र ऐसे आरोपी हैं जो लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आते जाते थे जहां दान पेटियां खुलती थी। तो अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी नहीं डकैती हुई, क्योंकि सिर्फ पैसों का गबन नहीं हुआ, सोना चांदी जेवरात भी चुराए गए, जो बताता है कि मंदिर में चढ़ावे को गिनने की पूरी प्रक्रिया में घनघोर लापरवाही बरती गई। अब सवाल है कि मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी रोकने के लिए ट्रस्ट ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों शीशे की पारदर्शी दीवारों में चढ़ावे को गिनने की व्यवस्था नहीं की गई? सवाल ये भी कि जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो फिर मंदिर में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा किया गया होता तो फिर चढ़ावे के नाम पर इतनी बड़ी लूट नहीं होती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी छुट्टी कर दी गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय की भी गिरफ्तारी होगी? क्या चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की तरह उन पर भी कानून का शिकंजा कसेगा? पर चंपत राय कौन है? वो राम मंदिर आंदोलन में कब और कैसे उभरे और क्यों समर्थक उन्हें आंदोलन का रणनीतिकार मानते हैं जबकि आलोचक उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं?
13: आया है स्टोन डस्ट आई है, ये बुंदेलखंड से आई है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है, ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है, दो राज्य और जुड़ गए। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है।
11: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खबरदार करना हो,
14: ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी,
11: या फिर राम मंदिर की नींव से लेकर साकार रूप तक की गवाही हो।
15: नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है।
2: अयोध्या में हर चीज चंपतराय की आंखों के आगे से गुजरी है। वर्षों से अयोध्या में बसे चंपतराय का चेहरा राम मंदिर का नाम आते ही खुद ब खुद सामने आता रहा, लेकिन राम लला के पटवारी की उपाधि हासिल करने वाले अयोध्या के इतिहास के व्यापक जानकार होने से अयोध्या का ज्ञान कोश कहे जाने वाले चंपतराय कटघरे में खड़े। नौबत ये आ चुकी है कि मंदिर निर्माण से लेकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान तक हर गतिविधि पर नजर निगरानी रखने वाले चंपतराय को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपने पद से आखिरकार जाकर इस्तीफा देना पड़ा। आखिर कौन है चंपतराय, कैसे केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रभावी चेहरे के तौर पर सामने आए और अब मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठते हैं, तो चंपतराय पर सबसे ज्यादा उंगली क्यों उठती है? जबकि एक पक्ष ऐसा है जो चंपतराय की राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को देखते हुए इन आरोपों से हैरान है, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है, जिसे देश सेवा के लिए चंपतराय ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था।
15: देखिए, उनका जो 50 साल का जीवन है, इसको पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, और आम जनता भी जानती है, और देश की जनता भी जानती है। तो उनका जीवन जो है निष्ठापूर्वक, पारदर्शी, ईमानदारी का रहा है। जिस व्यक्ति ने सन 1980 में घर से नाता तोड़ के अपने स्कूल की प्रवक्ता की सर्विस, फिजिक्स के लेक्चरार थे RSM कॉलेज में, उससे इस्तीफा दे के उन्होंने अपना जीवन सारा दान दे दिया, तो वो इस तरह की किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकता।
2: चंपतराय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चंपतराय बंसल के रूप में हुआ। वो बचपन से RSS की विचारधारा से प्रभावित रहे। उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने धामपुर के आश्रम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। साल 1975 के आपातकाल के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उस दौरान वो 18 महीनों तक अलग अलग जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद चंपतराय ने नौकरी छोड़ी, पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद के काम में लग गए। साल 1991 में अयोध्या से गहरा लगाव शुरू हुआ। संगठन में उनकी भूमिका बढ़ती गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन कार सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया। राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें 1996 में संगठन का केंद्रीय सचिव नियुक्त किया। 2002 में वो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बने, बाद में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन RSS, VHP और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित किया और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक रहे। राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की।
11: राम मंदिर से जुड़ी कोई भी बड़ी घोषणा हो या प्रशासनिक फैसले का मामला हो, ट्रस्ट का सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा अक्सर चंपतराय ही होते हैं। इसीलिए जब चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे तो चंपतराय पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। चंपतराय ने शुरुआत में एक वीडियो जारी कर आरोपों का खंडन किया, लेकिन SIT की गठन के बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली।
16: जब राम जन्मभूमि मामले की अदालतों में जोरदार पैरवी चल रही थी, तो राय अक्सर हिंदू पक्ष के वकीलों को रामलला के निवास से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य को उपलब्ध कराने में मदद किया करते थे।
2: चंपत राय की छवि को देखते हुए उन्हें अयोध्या में राम मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को भव्य मंदिर के भूमि पूजन से लेकर अब तक राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के रूप में मंदिर निर्माण और सभी अहम काम में शामिल रहे। उन्हें लेकर राम भक्तों को इतना भरोसा था कि वो करोड़ों के तोहफे मंदिर में चढ़ाने को लेकर आते भक्तों के सामने इस तरह गुजारिश करते दिखते थे।
17: क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल, चांदी के
18: श्रद्धा है,
17: काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा करूँ, चांदी के फूल हैं 1000
18: जी,
17: तो मैं क्या बेचूं?
18: नहीं,
17: फिर क्या करूँ? आप ही सोच के बताओ।
18: ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा।
17: क्या मिलेगा
19: सर? अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया।
17: अयोध्या में काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हम तक अब पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जाने चली जाएगी, मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं कभी।
2: लेकिन जब राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे तो चंपत राय कटघरे में आ गए।
14: ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा प्राकार परकोटा ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है।
16: राम मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में जिस तरह 70 बार चढ़ावा चोरी की बात सामने आई उसने एक बात साफ कर दी कि चंपत राय चढ़ावे की प्रक्रिया को पाक साफ रखने की सुरक्षा दीवार नहीं बना सके।
2: राम मंदिर को मिलने वाले दान को लेकर चंपत राय सवालों में हैं। चढ़ावे से करोड़ों रुपए से ज्यादा की रकम और सोने और आभूषण गायब है। सवाल ये है कि चंपत राय की नाक के नीचे ये सारा खेल होता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी।
20: प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। निश्चित रूप से लोगों ने श्री चंपत राय जी की सादगी सरलता और मानवता का दुरुपयोग किया है, भीषण दुरुपयोग किया है।
2: लेकिन इस समर्थन के बावजूद चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल ये भी है क्या FIR में चंपत राय का नाम शामिल होगा, क्या उनकी भी आगे गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की राजनीतिक मांगों के बावजूद महासचिव चंपत राय का नाम FIR में आरोपी के रूप में अब तक नहीं, जबकि चंपत राय की तरफ से मामले की शुरुआत में इसे खारिज करने की कोशिश की गई।
15: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
2: इसके बाद इस मामले में कूल पकड़ा और 70 बार चढ़ावे में चोरी की बात सामने आई। गिरफ्तार किए गए लोगों में चंपत राय के ड्राइवर रहे और करीबी सहयोगी टिन्नू यादव का भी नाम शामिल है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि चंदे की धनराशि के कथित गबन में उसकी भूमिका है। इसके बाद से चंपत राय को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये पूछा जाने लगा कि चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। हालांकि SIT की शुरुआती जांच में चंपत राय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है और विपक्ष हमलावर, क्या चंपत राय की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं?
11: उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर माहौल अभी से गर्मा गया है। माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव में अयोध्या को लेकर BJP समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर होगी। अखिलेश जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर उतरकर BJP को घेर रहे हैं उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में अयोध्या के इर्द गिर्द ही दोनों के बीच सियासी टक्कर हो सकती है।
21: मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
2: योगी आदित्यनाथ भले ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का दूध और पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर घेर रहा है और इसे आस्था का अपमान बताता है।
22: ये आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पर डाल के, छोटे मोटे लोगों पर डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पर चल रहा। जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पर एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, दसियों सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है।
2: कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि भगवान राम का हीरे का हार भी गायब हो चुका है।
22: एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था आभूषण थे उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते राम भगवान राम की जो माला थी हीरे की वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है।
2: अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आखिरकार दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का अंत होगा और लंकाधिपति का भी। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को चढ़ावा चोरी का मुद्दा काम का लग रहा है, जिसके जवाब में योगी राम भक्तों को राम मंदिर आंदोलन में समाजवादी पार्टी के रोल की याद दिलाते हैं।
21: मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे।
2: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा

0: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
1: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
0: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
5: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल UI/UX डिजाइनर meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी, सील साथी रे।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाए।
3: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
2: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
8: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आखिर में आपको बता दें कि बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। सीएम शुभेंदु ने इसका ऐलान किया है और सोमवार को विधानसभा में वहां पर बिल आ सकता है। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जब माता सीता का पृथ्वी में समा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: की नौकरी इसलिए मिली क्योंकि वो टिन्नू यादव का भतीजा था। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि जब चोरी करने वाले ही चंपत राय के करीबी थे तो उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए इस एफआईआर में उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरा, इस एफआईआर में लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया है जो गिनती के दौरान चढ़ावे की चोरी करते थे। इन आरोपों में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों आरोपी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आरोप है कि पहले अनिल मिश्रा ने सिफारिश से अपने रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को मंदिर प्रबंधन की नौकरी दिलाई और फिर अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को वाराणसी की उस सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती कराया जिसे एसबीआई बैंक ने चढ़ावा गिनने का ठेका दिया था। यानी यहां भाई भतीजावाद के मॉडल पर मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो रही थी, लेकिन फिर भी एफआईआर से अनिल मिश्रा के नाम को बाहर रखा गया। अमूमन ऐसे मामलों में जब एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उनमें संदिग्धों का नाम भी जरूर शामिल किया जाता है, लेकिन यहां छोटी मछलियों को तो गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन जिन प्रभावशाली लोगों की इसमें मिलीभगत होने की आशंका है उनका इनमें जिक्र नहीं है। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में बड़े पदाधिकारियों का नाम नहीं है, लेकिन यही बड़े पदाधिकारी खुद नैतिकता के आधार पर अपने पदों से इस्तीफा भी दे रहे हैं, और इनमें भी वो दो नाम प्रमुख हैं जिनके बारे में हमने अभी बताया। एक है महासचिव चंपत राय, दूसरे हैं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इस देश में भगवान राम ने कई वनवास देखे हैं। एक वनवास राज्याभिषेक के लिए था, दूसरा वनवास अपनी ही जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने के लिए था, तीसरा वनवास इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए था जो 20 दिन तक चला। और अब शायद एक वनवास यानी एक लंबा इंतजार बड़े नामों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करने और न्याय मिलने के लिए भी देखना पड़ेगा।
1: जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
1: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
3: क्या पैसा
2: बढ़ गया?
1: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया। जब से उस मंदिर में मतलब काम किया तब से वो उस घर की स्थिति ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई।
3: और लवकुश मिश्रा कौन है?
1: लवकुश मिश्रा मेरे रिश्ते में दामाद लगेंगे, जेठ के दामाद हैं।
3: अच्छा,
1: हाँ।
3: तो लवकुश का भी यही हाल है? लवकुश के यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या?
1: हाँ, मुझे जानकारी है कि लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 40 लाख का प्लाट लिया है जिसमें मकान बनवा रहा है।
0: अगर इस मामले को सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित मान लिया गया तो ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ इंसाफ नहीं होगा। हकीकत में यह मामला भरोसे और आस्था की चोरी का भी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे देश में एक नई सनातन लहर दिखी। यह लहर थी अयोध्या की राम जन्मभूमि पर जाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखने की, उनके दर्शन करने की। इसके कारण साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग राम मंदिर आए, जबकि 2025 में 29 करोड़ 95 लाख लोग राम मंदिर गए दर्शन करने। अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो यह संख्या 46 करोड़ 39 लाख होती है, जो अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी से भी 12 करोड़ ज्यादा है। यही नहीं, इन्हीं 2 वर्षों में कितने लोग भारत के दूसरे मंदिरों में गए उसके आंकड़े भी आप देखिए। और इन आंकड़ों से ये समझ सकते हैं कि अगर भारत का हर व्यक्ति राम मंदिर पहुंच रहा था या वहां जाने की इच्छा रख रहा था तो उस भरोसे को इस चोरी ने किस कदर चोट पहुंचाई। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब अदालत ने अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को सौंप दी थी, लेकिन उस जमीन पर आज भी एक ईंट नहीं रखी गई और कारण यही है कि उस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों से चंदा ही नहीं मिला, जबकि इसी दौरान राम मंदिर बनाने के लिए देश के करोड़ों राम भक्तों ने दिल खोल कर चंदा दिया। 30 नवंबर 2025 तक कुल 4,575 करोड़ रुपए का चंदा भारत के लोगों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया और इनमें भी मंदिर निर्माण पर कुल पैसा खर्च होने के बाद भी लगभग 2100 करोड़ रुपए बच गए। और ऐसा नहीं है कि यह पैसा बचने के बाद लोगों ने दान देना बंद कर दिया। 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 82 करोड़ 78 लाख रुपए का चंदा और आया। और ये सोचिए कि चंदा आ क्यों रहा है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस देश के लोग चाहते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर अपने वैभव से पूरी दुनिया में चमके। लेकिन सोचिए इस चोरी ने इस चमक को और लोगों के भरोसे और आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है।
4: बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी का हम सबके बीच में। जय श्री राम, जय श्री राम।
5: अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम कि मर्यादा का पालन करना सीखो। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे, भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम नवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
0: जो लोग प्रभु श्रीराम के चरणों में आए चढ़ावे में बेईमानी कर रहे थे, उन्होंने इंसानों की निगाहों से बचने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वो CCTV कैमरों से बच गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने कैमरों की पहुंच का अंदाजा लगाया, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनकी हरकतें कहीं रिकॉर्ड न हो जाए। लेकिन शायद वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए। वो भूल गए कि इंसानों के बनाए हुए कैमरे केवल दीवारों और कमरों को देखते हैं, लेकिन ईश्वर का कैमरा इंसान के मन को भी देखता है। और यहां भी यही हुआ। प्रभु श्रीराम का CCTV 24 घंटे चल रहा था और इसमें सिर्फ हाथों की चोरी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बल्कि इसमें इन चढ़ावा चोरों की नियत को भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इसी वजह से CCTV कैमरों और फुटेज से छेड़छाड़ करने के बाद भी ये लोग पकड़े गए। और अब तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब एसआईटी ने कई घंटों की सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया तो उसमें 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच कुल 70 बार इन सभी लोगों को मंदिर के चढ़ावे से चोरी करते हुए पकड़ा गया और ये 70 चोरी भी तब पकड़ी गई जब सिर्फ 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हो चुके हैं और उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर में बड़े स्तर पर चढ़ावे को चंपत किया जा रहा था। और आज ही स्थानीय अदालत ने सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए,
6: राम मंदिर जो अयोध्या का मामला था उसी सिलसिले में एसआईटी ने जांच किया था। जांच के अनुक्रम में ये पाया गया, बहुत सारे उसमें नाम प्रकाश में आए थे, उसी एसआईटी की जांच के अनुक्रम में एफआईआर हुआ है, 8 लोगों के खिलाफ हुआ है, कुछ अज्ञात में भी हुआ है। तो अभी अज्ञात के विरुद्ध तो विवेचना जारी रहेगी, जो ज्ञात हुए हैं 8 लोग गिरफ्तार किए गए, इनकी सुबह की गिरफ्तारी यहाँ दिखाई गई है और उनका रिमांड लिया गया है, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया क्योंकि छुट्टी का दिन था तो रिमांड मजिस्ट्रेट इसमें निवेदिता जी थी, इनके समक्ष पेश किया गया और इन्होंने 3 दिन का रिमांड दिया है, न्यायिक अपरक्षा के लिए रिमांड दिया है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं भी लगी हुई हैं, वो स्पेशल न्यायालय होता है तो वो मंडे को उनको उनके समक्ष पेश होंगे, फिर से और जो विवेचना के क्रम में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से विवेचना और आगे बढ़े, उनका रिमांड आगे बढ़ेगा।
7: तो अभी सभी 8 लोगों को यहां से जेल भेज दिया गया है
6: जी, यहां से उनको रिमांड होने के बाद में न्यायालय का आदेश के उपरांत उनको वारंट बना करके जेल भेज दिया गया।
0: अब आप ये देखिए कि राम मंदिर में चढ़ावे की ये चोरी हो कैसे रही थी। पहली बार इस चोरी का शक मई महीने के आखिरी हफ्ते में जताया गया। कारण यह था कि उस वक्त हर दान पेटी में 7 से 8 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे और इनमें जो भक्त 500 रुपए के नोट दान पेटी में डालते थे उन नोटों की अलग से गड्डियां बनाई जाती थी। जब यह बात सामने आई कि दान पेटियों से 500 की गड्डियां कम निकल रही हैं और धीरे धीरे चढ़ावे का पैसा कम होते जा रहा है तो गणना कक्ष में ऐसे कैमरे लगाए जो गुप्त थे, जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। गणना कक्ष वही निर्धारित कमरा है जहां चढ़ावे के पैसों की गिनती होती थी और मंदिर प्रबंधन को शक था कि चढ़ावे का पैसा चुराया जा रहा है। इसके बाद जो हिडन कैमरा लगाए गए हैं उनमें यह पता चला कि जब चढ़ावे का पैसा गिना जाता था तब कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि सीसीटीवी कैमरों में उनकी यह चोरी रिकॉर्ड न हो। यहीं से पहली बार यह बात पुख्ता हुई कि कुछ कर्मचारी चढ़ावे के पैसों को अपनी जेब में भर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं और इसमें कई स्तर पर लोग शामिल हैं। यह भी पता चला कि जो 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी उनमें हर गड्डी में अतिरिक्त नोटों को डाल दिया जाता था। जैसे 500 रुपए के 100 नोटों की एक गड्डी है तो उसमें 20 नोट अतिरिक्त डाल दिए जाते थे। और ऐसा क्यों किया जाता था? इसलिए क्योंकि गिनती के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इन्हें बैंक में जमा करते वक्त सिर्फ ये देखते थे कि गड्डियां कितनी हैं, ये मानकर चलते थे कि हर गड्डी में 100 नोट ही होंगे। इस तरह हर गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा चढ़ावा चोर चुरा लिया करते थे और मंदिर से बाहर निकलते ही ये पैसा चंपत हो जाता था। यहां जो कर्मचारी चढ़ावे के वाउचर बनाता था अगर वो ईमानदार होता तो भी ये चोरी रुक सकती थी, लेकिन यह कर्मचारी भी बेईमान निकला और इसका नाम है अनुकल्प मिश्रा, जो मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और यही व्यक्ति चढ़ावे के फर्जी वाउचर बनाता था ताकि नोटों की गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट डाले गए हैं वो पार हो सके। जब शुरुआत में यह मामला पहली बार खुला तभी अनुकल्प मिश्रा संदेह के घेरे में था और पुलिस को जांच के बाद अनुकल्प मिश्रा के साले लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। और यहां यह मत भूलिए कि अनुकल्प मिश्रा ने लवकुश मिश्रा को चढ़ावा गिनने की नौकरी दिलाई थी। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि जो 36 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती करते थे वो सभी एक दूसरे से परिचित थे और किसी न किसी की सिफारिश से वहां पर नौकरी कर रहे थे। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सारे चढ़ावा चोर एक दूसरे को जानते हों और किसी भी तरह उनकी चोरी सामने ना आए। इसके अलावा जिस अविनाश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो चढ़ावे से चुराए गए पैसों को अपने बैंक खातों में जमा करा रहा था और एसआईटी को इसके साक्ष्य भी मिल गए।
8: ये सबसे आगे पीले जो कुर्ते में है ये रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत ये सभी 8 आरोपी हैं। मनीष यादव, ये सारे लोग को देखिए, ये दो अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जा रहा है और ये आठ आरोपी, जो सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, इन सभी को आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अयोध्या की एसओजी के द्वारा इनको पेश किया गया, भारी सुरक्षा के बीच में लाया गया, सभी आठ आरोपी लाए गए। और बीच में देखिए कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो स्कॉर्पियो के बीच में बैठा है, ये रामशंकर यादव टिंडू यादव है। रामशंकर यादव टिंडू यादव को बीच में रखा गया है और इसके अलावा बाकी तमाम अन्य आरोपियों को दो गाड़ियों में ले जाया गया।
0: राम मंदिर के चढ़ावे में हुए चोरी के बाद ये सवाल भी जरूर पूछा जाएगा कि आखिर मुगल काल और मौजूदा काल में क्या अंतर रहा। 2024 में IIM अहमदाबाद ने इस विषय पर अध्ययन किया कि भारत में पहले मंदिरों के पास इतना सोना क्यों हुआ करता था। जब ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ा और समझा गया तो ये पता चला कि आज से 1000 साल पहले भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लोगों की आस्था, श्रद्धा, राजाओं की तरफ से दान देने के कारण हमारे मंदिर सोने, हीरे, जेवरातों से भरे रहते थे। यही बातें जब विदेशी आक्रांताओं को पता चलती तो भारत के मंदिरों का सोना लूटने के लिए कई हमले करते। सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को लूटा, फिर तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी ने भी यही किया, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भारत के मंदिरों को लूटा, बाद में मुगल काल में भी कई मंदिर निशाना बने और मुगल शासक औरंगजेब ने तो कई मंदिरों को तुड़वाया और उनका सोना लूट कर अपना खजाना भरा। अब सोचिए ये सब उस मुगल काल में होता था, लेकिन आज अगर मौजूदा काल में भी इसी देश के कुछ बेईमान लोग मंदिर का चढ़ावा लूटने लगेंगे तो मुगल काल में और आज के मौजूदा काल में क्या अंतर रह जाएगा। आप सोचिए उस वक्त की लूट को हम ये कहकर भुला देते हैं कि गौरी, गजनवी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन आज तो कोई औरंगजेब नहीं है, कोई गजनवी नहीं है, कोई मोहम्मद गौरी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर के चढ़ावे से धन चुराया जा रहा है। और यह भी सोचिए कि धन चुरा कौन रहा है, वो रामशंकर यादव जो अपने नाम में ही प्रभु श्री राम का नाम लगाता है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार यही रामशंकर यादव बार बार मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आता जाता था जहां दान पेटियां खुलती थी और आरोप है कि यही लोग मंदिर में चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात, बाली, झुमके, नथ, कंगन, पायल सब चोरी कर रहे थे और ये चोरी भी पहले की जाती थी और बाद में बचे हुए जेवरातों का हिसाब रजिस्टर में लिखा जाता था। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज भी हमारे मंदिरों के पास कोई कम पैसा सोना नहीं है। संपत्ति के मामले में भारत का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी है, जिसके पास 3,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और यह पैसा हमारे कई मंत्रालयों के सालाना बजट से ज्यादा है। इसके बाद केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1,20,000 करोड़, ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के पास 1,20,000 करोड़ और अयोध्या के श्रीराम मंदिर के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं मंदिरों में दान देने में संकोच नहीं करते, लेकिन सोचिए अगर मंदिरों का यही दान चोरी होने लगे और इससे लोगों की आस्था को चोट पहुंचे तो ये कितना बड़ा छल है। और क्या हमारे देश में कोई कानून ऐसा है जो इस आस्था की चोरी के लिए लोगों को सजा दे सके। राम मंदिर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला हो, कोई नई घोषणा हो, कोई विवाद हो या फिर कोई प्रशासनिक मुद्दा सामने आए, एक नाम ऐसा रहा जो हमेशा चर्चा के केंद्र में आया है और वो नाम है चंपत राय। इस विवाद से पहले तक चंपत राय हर कैमरे के सेंटर फ्रेम में होते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि SIT की जांच और इस मामले में उन पर उठ रहे सवालों को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे, न किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। आज जब पूरे देश में चंपत राय की इतनी चर्चा है और यह भी कहा जा रहा है कि उनका नाम FIR में क्यों नहीं आया, तब हमें लगा कि पूरे देश को यह पता होना चाहिए कि चंपत राय कौन है। वर्तमान में चंपत राय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। राम मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्था, निर्माण कार्य की निगरानी, दान और चढ़ावे के प्रबंधन, ट्रस्ट की बैठकों और आधिकारिक संवाद की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं के पास है। यही वजह है कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर ट्रस्ट का सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा अक्सर चंपत राय ही होते हैं। लेकिन चंपत राय की कहानी केवल एक प्रशासक या ट्रस्ट पदाधिकारी की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिनके लिए अब तक यही माना जाता था कि उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन और संगठनात्मक कार्यों को समर्पित कर दिया। चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और बिजनौर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक रहे। लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की ओर था। 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया तब संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद के वर्षों में उन्होंने अध्यापन का जीवन छोड़कर प्रचारक बनने का निर्णय लिया और स्वयं को पूरी तरह आरएसएस के काम में समर्पित किया। 80 का दशक राम जन्मभूमि आंदोलन के विस्तार का दौर था और इस दौर में चंपत राय इस आंदोलन के सक्रिय और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में शामिल हुए। वो विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेता अशोक सिंघल के बेहद करीबी सहयोगियों में गिने जाने लगे। 1984 की धर्म संसद के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप दिया गया तब संघ के कई प्रचारकों को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया था। इनमें चंपत राय भी शामिल थे। यानी चंपत राय आरएसएस से निकले और फिर विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा बने जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और झारखंड में संगठन विस्तार का काम संभाला। 1990 की कार सेवा के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठित करने और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं संभालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया उस समय भी वो अयोध्या में मौजूद थे। आंदोलन के उग्र और निर्णायक दौर में वो अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे नेताओं के विश्वसनीय सहयोगी बनकर उभरे। कहा जाता है कि अयोध्या विवाद के इतिहास, उससे जुड़े दस्तावेजों, मुकदमों और तथ्यों की उन्हें इतनी गहरी जानकारी है कि संगठन के भीतर उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का इंसाइक्लोपीडिया तक कहा जाने लगा। जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तब हिंदू पक्ष को ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शे और साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। यानी राम मंदिर के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई उसका चंपत राय हिस्सा थे और यही कारण है कि आज जब चढ़ावे की चोरी में उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं तो अयोध्या के लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे। चंपत राय के सार्वजनिक जीवन की तरह उनका निजी जीवन भी काफी अलग रहा। उन्होंने विवाह नहीं किया, अपना पूरा जीवन संगठन और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया और इस सब के बीच उन्होंने अध्ययन और लेखन में भी रुचि रखी और जैन दर्शन पर कई पुस्तकें लिखकर प्रकाशित की। आज राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था और लंबे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक है। और इस पूरी यात्रा में चाहे समर्थक हो या आलोचक हो, एक बात पर लगभग सब सहमत दिखाई देते हैं कि चंपत राय उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने इस आंदोलन को दशकों तक बहुत करीब से देखा, समझा, उसके विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन ये बात आज किसी को समझ नहीं आ रही कि जब उन्होंने खुद को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया था तो उनके रहते इन्हीं चरणों से राम मंदिर का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया। हमारे पास चंपत राय की कई तस्वीरें और वीडियो हैं जो ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जब अयोध्या के राम मंदिर आते थे तो चंपत राय उनके साथ सेंटर फ्रेम में ही खड़े दिखाई देते थे और इस दौरान उनकी शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। लेकिन आज यही चंपत राय हर कैमरे के फ्रेम से गायब है और लोग पूछ रहे हैं कि चढ़ावा आखिर कहां चंपत हुआ।

0: जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब रावण उस युग की बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक था। आज भी जब आप दशहरे का त्योहार मनाते हैं तो उसे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार ही कहा जाता है। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि त्रेता युग में रावण जैसी बुराई का अंत करने वाले भगवान श्री राम कलयुग में बेईमानी और लालच की बुराई का अंत करने का जरिया बन सकते हैं, और हमारी सरकारों और अदालतों को इस मामले में कानूनी कार्रवाई की एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए जिससे अगली बार अगर कोई ऐसी बेईमानी और चोरी करने के बारे में सोचे तो उसके हाथ कांपे और ऐसी घटनाएं कभी ना हो। खैर, इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उसे भी आज आपको देखना चाहिए, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आज अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने इस चढ़ावा चोरी को महापाप बताया। हम भी मानते हैं कि यह महापाप है, लेकिन जब ये बातें राजनीति के लिए कही जाती हैं तो इस देश को भी यह पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बार कहा था कि जब उन्होंने विवादित ढांचे के विध्वंस के बारे बाद अपनी नानी से ये पूछा था कि अब तो वो खुश होंगी, तो उनकी नानी ने कहा था कि उनका राम किसी की मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं रहेगा। लेकिन आज यही केजरीवाल इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह SIT को इस मामले में सबूत सौंपने के लिए अयोध्या आए, और आज इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर पहुंच गए।
1: जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई, और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
2: इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से, जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे ये। इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, और मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई, भाजपा और RSS के लोग इसमें क्यों डाल रखे, उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे।
3: उसे मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो, कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार कदाचार पर, जीरो टॉलरेंस, लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ?
4: क्या अयोध्या को बदनाम करने की
3: पूरी साजिश है, और हम फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है।
4: सर, साजिश कौन कर रहा है?
3: हम कह रहे, मैं नाम तो ले रहा हूँ, जरा पूछो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से।
4: चोरी का बात तो
3: आप पूछिए, FIR हो गया है ना, तो तफ्तीश आप करोगे? तफ्तीश कौन करेगा, कौन जांच करेगा? मान्यवर, कौन जांच करेगा? तो पूछो।
0: इस मामले में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न्याय कहीं अदालतों में तारीखों के बीच फंस कर न रह जाए। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हमारा ये विश्लेषण देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे अनोखे और करीब 70 वर्ष पुराने भूमि विवाद का निपटारा किया है, जो केवल एक मुकदमा नहीं बल्कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में तारीख पर तारीख वाली परंपरा को दिखाता है। ये मामला इतना पुराना है कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से होकर गुजरा है। और जब यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन यह मुकदमा अदालतों की फाइलों में चलता रहा। सोचने वाली बात यह है कि इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दोनों जजों का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी, यानी जिस मुकदमे की सुनवाई उन्होंने पूरी की उसकी उम्र उनके न्यायिक जीवन से भी ज्यादा थी। ये विवाद 4 जून 1957 को हरिद्वार के नरसीपुर कला गांव में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को शराफत अली के पूर्वजों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन क्योंकि उस समय वो नाबालिग थे इसीलिए जमीन की खरीद उनके पिता ने की थी। इस मुकदमे का सबसे मार्मिक पहलू यही है कि इसमें केवल समय नहीं बीता बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ियां बीत गईं। जिस व्यक्ति के परिवार ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी वो अंतिम फैसला सुनने के लिए जीवित नहीं रहा। अपील करने वाले शराफत अली का इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान देहांत हो गया और इसके बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इस तरह एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां लगभग 7 दशक तक एक जमीन के अधिकार के लिए अदालतों के चक्कर लगाती रही। और यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस भारतीय न्याय व्यवस्था का भी आईना है जहां कई बार मुकदमे लोगों की पूरी जिंदगी से भी लंबे हो जाते हैं और कई लोग न्याय की उम्मीद लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन फैसला उनकी अगली पीढ़ी सुनती है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसलों को भी पलट दिया और ये माना कि अपील करने वाले व्यक्ति का ही इस भूमि पर वास्तविक और वैध अधिकार है। इस घटना के बाद फिर से बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या न्याय मिलने में 7 दशक लग जाना भी न्याय कहला सकता है। अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, एक ऐसा मुल्क जिसके राष्ट्रपतियों के हर एक फैसले से वैश्विक राजनीति की दिशा बदल जाती थी, लेकिन आज उसी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे नापसंद किए जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में सबसे आगे आ खड़े हुए हैं। यह दावा मशहूर प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में किया गया है। 36 देशों में किए गए इस सर्वे में 42,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए इस सर्वे के अनुसार 76% लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है, यानी दुनिया के 4 में से 3 लोग ट्रंप की बातों या नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते। सोचने वाली बात यह भी है कि अभी भी 37% लोग ऐसे हैं जिनके अमेरिका के बारे में राय अच्छी है, लेकिन केवल 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रंप पर भरोसा है। साफ है कि दुनिया के 2/3 लोग ट्रंप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। हालत यह है कि अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा में, जहां 2022 में 83% लोग अमेरिका को एक भरोसेमंद साथी मानते थे, आज वो आंकड़ा गिरकर केवल 35% रह गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए आंकड़ा 79% से घटकर 37% रह गया है। स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इटली जैसे तमाम देशों का यही हाल है, अब वो अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी नहीं मानते। आखिर दुनिया ट्रंप से इतनी चिढ़ी हुई क्यों है? इसकी वजह है अमेरिका फर्स्ट के नाम पर लिए गए उनके वो फैसले जिन्होंने दुनिया में शांति और स्थिरता को दांव पर लगा दिया और पूरी दुनिया का माहौल खराब कर दिया। उन्होंने दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू किया, भारत, चीन और यूरोप समेत अपने ही दोस्तों पर मनमाने टैक्स थोपे। उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन उठवा लिया, लैटिन अमेरिका में जबरन दखलंदाजी की कोशिशें की। सबसे खतरनाक रहा ईरान के साथ सैन्य तनाव, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की कगार पर धकेल दिया। प्यू रिसर्च के अनुसार 74% दुनिया ट्रंप की ईरान नीति के सख्त खिलाफ है। ट्रंप की साख गिरने की एक बड़ी वजह उनके बयानों और दावों में बार बार बदलाव, पलटना और विरोधाभास भी है। उन पर झूठ बोलने के आरोप लगते हैं। दुनिया अब अमेरिकी दावों को संदेह की नजर से देखती है। ट्रंप ने एक बार सरेआम दावा कर दिया था कि डाइट कोक पीने से कैंसर खत्म हो सकता है। मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने तुरंत इस दावे की धज्जियां उड़ा दी, इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप की इस डाइट कोक से मोहब्बत कितनी गहरी है, इसका खुलासा अब खुद उनकी पोती ने अपने व्लॉग में किया है। पोती के अनुसार ट्रंप को डाइट कोक पीने की भयंकर लत है। उन्होंने अपने दफ्तर की टेबल पर एक सीक्रेट लाल बटन लगवा रखा है। ट्रंप जैसे ही ये बटन दबाते हैं उनके सामने डाइट कोक हाजिर हो जाता है, ये उन्होंने लिखा।
5: So everything is gold because my grandpa hates gold, so he actually decided to add a lot of gold to the Oval Office.
6: Sure.
5: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out. I mean, that's the Oval Office. It's pretty cool. I mean, the paintings are really cool. This stuff that's been kind of around forever, you know? So it's really special. And yeah. This chair is actually pretty comfortable too. It's a very, very heavy big chair, but yeah, it's nice.
0: कभी मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के बारे में आज दुनिया के 56% लोग मानते हैं कि खुद अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान नहीं करती। अमेरिकी लोकतंत्र की सेहत पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ठगी के मामलों पर एक नया नियम बना दिया है जो ठगी का शिकार बनने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। मान लीजिए कि किसी दिन आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई और आपके खाते से 20-25 हजार रुपए कट गए। ठगी के शिकार लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि क्या उनके पैसे वापस आएंगे। दरअसल ऑनलाइन ठगी के मामलों में पैसे की रिकवरी बहुत मुश्किल से हो पाती है। कार्रवाई होती दिखने पर भी ठगे गए व्यक्ति को कोई खास राहत नहीं मिलती। लेकिन अब आरबीआई ने इस तरह के मामलों में नया एक्शन लिया है। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आरबीआई आपको मुआवजा देगा। ये नियम 1 जनवरी 2027 से देश के सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक इसमें शामिल नहीं है। ये नियम सभी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले पेमेंट। आमतौर पर जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बैंक अक्सर ग्राहकों को जिम्मेदार बताकर पैसे देने से बचते हैं। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक ये कहकर नहीं बच सकते, बल्कि उन्हें ग्राहक की लापरवाही को साबित करना होगा। आरबीआई ने भुगतान को लेकर तीन बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, अगर ऑनलाइन फ्रॉड बैंकों की किसी गलती से हुआ है, जैसे कि सुरक्षा में चूक, सिस्टम में गड़बड़ी या बैंक द्वारा आपको सूचना न भेजना, तो ऐसे मामले में बैंक को पूरे पैसे का भुगतान करना होगा, फिर चाहे ग्राहक ने सही समय पर जानकारी दी हो या न दी हो। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन फ्रॉड में कोई तीसरा पक्ष शामिल है, जैसे कोई पेमेंट ऐप या पेमेंट गेटवे, ऐसी स्थिति में आपको बैंक से ही पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन इस केस में आपको घटना के 5 दिनों के अंदर बैंक को जानकारी देनी जरूरी होगी। तीसरी बात, इसके अलावा अगर ऑनलाइन फ्रॉड आपकी लापरवाही से हुआ है, जैसे अगर आपने ओटीपी दे दिया या चेतावनी को अनदेखा किया या फिर कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जानकारी देनी होगी, तभी पेमेंट का प्रोसेस हो सकेगा। मुआवजे की सीमा भी तय है। नियम कहते हैं कि भुगतान पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को केवल एक ही बार मिलेगा, यानी ठगी की पहली रिपोर्ट पर ही पैसा वापस मिल पाएगा और भुगतान के तौर पर ठगी की रकम का 85% या अधिकतम 25,000 रुपए तक ही मिलेगा। मुआवजे का मतलब यह नहीं कि आप ऑनलाइन ठगी के प्रति लापरवाह हो जाएं, बल्कि ज्यादा सावधान रहना है। आरबीआई का यह कदम एक बड़ी राहत है, क्योंकि हमारे देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के 86% लोग किसी न किसी माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन ठगों का दायरा भी इसी हिसाब से बढ़ता गया है। 2022 में देश में साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के 10,29,000 मामले सामने आए थे। अगले 2 वर्षों में ये केसेस बढ़कर 22,68,000 हो गए। भारत में साइबर क्राइम पर एक्शन लेने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अब तक साइबर फ्रॉड से जुड़ी 3,962 स्काइप आईडीज, 83,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स, 9,42,000 सिम कार्ड्स, 2,63,000 से ज्यादा IMEI नंबर को ब्लॉक किया है। साइबर फ्रॉड की शिकायतों पर एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साइबर ठग नए नए तरीके निकाल लेते हैं। इसीलिए आपका सतर्क रहना जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो डिजिटल अरेस्ट की धमकी दें, AI वॉइस के जरिए पैसे और OTP मांगे या जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का लालच दें। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, पर हमारी मुलाकात का सिलसिला 9 बजे चलता रहेगा। तब तक देखते रहिए आज तक, और ब्रेक के उस पार देखिए 10 तक सईद अंसारी के साथ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
5: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
7: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
8: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
9: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
8: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
10: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
11: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
10: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
12: In association with Hind, बड़े आराम से
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Vimal, bolo zuba kesri.
13: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
14: Punjab National Bank, bharose ka prateek.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना, चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो, आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
1: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राउत जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी, जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है, अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है और बम्बई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए, जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने की आप लोग आप विनंती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया।
2: जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टीनू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
3: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलम्ब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया। SIT ने

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। इस मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान, सोमवार को आ सकता है विधानसभा में बिल। गुजरात असम उत्तराखंड की तरह अब बनेगी कमेटी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेतनी चेतन चौहान ने ही मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पीड़ित परिवार को दिया इंसाफ का भरोसा। और गुजरात से राजस्थान जा रही लग्जरी बस से करीब 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 लाख से अधिक टैबलेट बरामद, एक गिरफ्तार।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोर की। राम मंदिर चढ़ावा केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे पीछे ये 8ों हैं, लेकिन 8ों आरोपियों के आका अभी तक बचे हुए हैं। ये 3 जो आपको नजर आ रहे हैं, न तो चंपत राय का FIR में नाम है, न अनिल मिश्रा का नाम है, और न ही गोपाल राव का नाम है। जबकि इनके रहमो करम से ही श्रीराम मंदिर में चढ़ावा की गिनती करने वाले इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी टिन्नू यादव ही चढ़ावा चोरी के पाप का मास्टरमाइंड है। अब सवाल यही है कि चंपत का करीबी तो पकड़ा गया, लेकिन चंपत कैसे बच गए? तो क्या पूरे मामले में ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी, ये 3 यहां पर खड़े हैं, बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए लीपापोती का खेल शुरू हो गया है? सवाल ये भी है कि जांच के दायरे से चंपत राय आखिर कैसे बच गए? सारी जिम्मेदारी चंपत राय की थी, तो ये बच कैसे गए?

0: चंपत राय तक जांच की आंच क्यों नहीं? क्या अनिल मिश्रा को एसआईटी ने बचा दिया? आठ गिरफ्तार लेकिन बच गए बड़े नाम। एफआईआर बहाना, क्या बड़े चेहरे को बचाना है? गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोर।
1: मैं मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने उतरेंगे बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ, हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे, और राज खोलने उतरेंगे तो आरएसएस के कार्यालय हर जिले में अरबों अरबों के बने हैं, रुपया राम का है, चोरी करके गया है ये।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होते ही पूरा केस सुलझने की बजाय और उलझ गया, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर में आरोपियों की लिस्ट में राम मंदिर प्रबंधन की देखरेख करने वाले तीन जिम्मेदारों के नाम गायब हैं। एफआईआर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, राम मंदिर में दर्शन इंचार्ज और प्रबंधन देखने वाले गोपाल राव का नाम नहीं है। ये तीनों बड़े नाम राम मंदिर के प्रबंधन के कर्ता धर्ता थे और एफआईआर में नामजद आरोपियों को इनका सीधा संरक्षण मिला हुआ था। बावजूद इसके तीनों जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी शिकंजा नहीं कसा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे कारसेवक संतोष दुबे एसआईटी रिपोर्ट और एफआईआर पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही है कि उनकी तहरीर पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया?
1: एफआईआर नहीं है, ये लीपा पोती है, ये कुछ नहीं, ये मेन चोरों को बचाने के लिए, मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक सिस्टमेटिक ड्रामा है, आफ्टर थॉट ये एफआईआर लिखी गई, सोचने के बाद, सोचने समझने के बाद। 10 दिन में आप एफआईआर लिख रहे हैं, मैंने तहरीर दिया क्यों नहीं लिखी गई? इसका मतलब ये पूरा सिस्टम चोरी में शामिल है, पूरा सिस्टम, पूरा ये एसआईटी सहित एसआईटी दूध की धुली है। क्या किया एसआईटी ने? डर के मारे मेमने बन गए? यही काम किया एसआईटी का, यही धर्म है जो किया उन्होंने। हमारा बयान क्यों नहीं लिया, हमारे पास क्यों नहीं आए?
0: संतोष दुबे का सीधा आरोप है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के गुनाह पर पर्दा डालने और राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एफआईआर का खेल खेला गया है। आरोप गंभीर हैं क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारी आरोपों के कटघरे में खड़े हैं और पुलिस ने उसी ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। सबसे पहले समझिए चढ़ावा चोरी के आरोपियों में घिरी गैंग्स ऑफ चंपत की टीम 11 में कौन कौन है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। अनिल मिश्रा ट्रस्टी और आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। गोपाल राव भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ट्रस्ट में अधिकृत पदाधिकारी नहीं होते हुए भी राम मंदिर का प्रबंधन देख रहे थे। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर मिश्रा सीधे तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी सलाखों के पीछे पहुंच गए तो राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती का काम सौंपने वाले जिम्मेदारों पर कानूनी हंटर क्यों नहीं चला? चंपत राय के पास मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी तो उनकी नाक के नीचे सालों से चढ़ावे की चोरी कैसे होती रही? चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव गैंग बनाकर चढ़ावे की चोरी कर रहा था तो क्या ये संभव है कि चंपत राय पूरे खेल से अनजान थे? क्या गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोर में सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा गया जबकि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया? इसे समझने के लिए चंपत वाली मंडली की पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। आरोपी नंबर 1, रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। जिम्मेदारी, दान पात्रों की निगरानी और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। आरोप, दान पात्रों से चढ़ावा चोरी और चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदना। आरोपी नंबर 2, लवकुश मिश्रा। जिम्मेदारी, चढ़ावे और नकदी की गिनती। आरोप, चढ़ावे की चोरी कर करोड़ों की संपत्ति बनाना, घर से 12 लाख रुपए बरामद। आरोपी नंबर 3, अनुकल्प मिश्रा। जिम्मेदारी, काउंटिंग रूम में चढ़ावा गिनना। आरोप, काउंटिंग रूम से चढ़ावा चुरा कर ठिकाने लगाना। आरोपी नंबर 4, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। जिम्मेदारी, कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी। आरोप, निगरानी में लापरवाही और चोरी में पार्टनर। आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान राशि को काउंटिंग रूम तक लाना और गिनना। आरोप, चढ़ावे की रकम चोरी कर संपत्तियां खरीदना। आरोपी नंबर 6 मनीष यादव, जिम्मेदारी दान पात्रों से मिली नकदी की गिनती। आरोप, चढ़ावे की चोरी, घर से 36 लाख रुपए बरामद। आरोपी नंबर 7 अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान राशि को काउंटिंग रूम तक लाना और गिनना। आरोप, चढ़ावे की रकम चोरी कर संपत्तियां खरीदना। आरोपी नंबर 8 रामाशंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्रों को काउंटिंग रूम तक पहुंचाना और निगरानी करना। आरोप, दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर चढ़ावे की रकम चोरी करना।
1: राम जन्मभूमि के लिए अपने बच्चों को गवाए आप स्वयं गोलियां लाठियां झेलकर हम रह गए। अब आप राम के नाम पर हम राम को ही चोरी करेंगे? अब राम की मूर्ति बची है, उसको भी चुरा ले जाओ भैया, यही इतना बचा है। और इन 4 चोरों को तो आपने बचा लिया, कैसे बच जाएंगे? राम जी के दरबार से बच पाएंगे क्या? सब जगह से आप बच जाएंगे, लेकिन क्या भगवान के दरबार से बच पाएंगे? मैं वहां तक जाऊंगा।
0: SIT रिपोर्ट, FIR और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी जांच टीम चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को पकड़ पाएगी, इस पर संदेह की सुई घूम रही है। वजह है गिरफ्तार हुए आरोपियों का चंपत राय और अनिल मिश्रा से कनेक्शन। रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड है, ये कोई और नहीं बल्कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। चंपत राय ने ही टिन्नू यादव को चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा था। काउंटिंग रूम और दान पात्रों की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। चढ़ावा चोरी के खेल में टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष को शामिल कर रखा था, यानी चंपत राय का करीबी टिन्नू है और टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव है। ठीक ऐसे ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा अपने रिश्तेदारों को चढ़ावे की गिनती की टीम में शामिल करवा चुका था। चढ़ावा चोर लवकुश कोई और नहीं बल्कि अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। ठीक ऐसे ही अनुकल्प भी अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। वहीं करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर मिश्रा को मिले काउंटिंग की जिम्मेदारी के पीछे अनिल मिश्रा का हाथ है। मतलब आरोपियों का सीधे सीधे चंपत राय और अनिल मिश्रा से रिश्ता है, इसके बावजूद FIR में दोनों का नाम नहीं है। ये तब है जब खुद ट्रस्ट ने अपनी शिकायत में माना है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, मंदिर से जुड़े कर्मचारी चोरी में शामिल थे। तो क्या ट्रस्ट की तरफ से भेजी गई शिकायत पहले से स्क्रिप्टेड थी, जिसमें मंदिर से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नामों को हटा दिया गया और पुलिस ने उन्हीं नामों को आरोपी मानते हुए पहले FIR दर्ज की और फिर गिरफ्तार कर दिया, ताकि पूरे मामले में लीपापोती करके बड़े गुनहगारों को बचाया जा सके?
2: आपने चंपत 11 का सच देखा और आइए अब हम आपको दिखाते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी पड़ताल। जी हां, SIT की जांच में चढ़ावा चोरी को लेकर कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हुए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच CCTV फुटेज की जांच की गई तो ये पता चला कि 47 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई, अंदाजा लगाइए आप। इसके अलावा भेंट और चढ़ावे के गणन कक्ष में, यानी कि जहां गिनती होती है, वहां नकदी की गिनती और प्रबंधन में कई सारी कमियां और खामियां नजर आईं। इसी के बाद एक्शन हुआ, 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब चढ़ावा चोरी मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आइए हम आपको दिखाएं अब श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में क्या होगा आगे।

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी का खुलासा। बयालीस दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी, तो कुल कितनी चोरी हुई? अब तक 8 गिरफ्तार, राम मंदिर में और कितने चढ़ावा चोर? तीन दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी, अब आगे क्या होगा? अभी सिर्फ छोटे नपे हैं, बड़ी मछलियों का नंबर कब आएगा? अभी तो सिर्फ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर 8 गिरफ्तारियों से ही हड़कंप मच गया है। अभी तो जब पूरा खुलासा होगा तो कितनी बड़ी मछलियां सामने आएंगी, इसी का इंतजार है।
1: लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है, वहाँ पे भारी चोरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं जो है सैकड़ों हजारों करोड़ की लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो है चढ़ावा और चंदा जो है चोरी हुआ है। तो अब सरकार ने भी इसको मान लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा।
2: ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं।
3: कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं, कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों को, ये धर्म युद्ध है, सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
4: निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसमें निर्देश दे।
0: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। इस 15 पन्ने की रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे की गणना, कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गईं। एसआईटी की इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं तो कई सिफारिशें भी की गई हैं। गबन और चोरी की पुष्टि एसआईटी ने मंदिर के दान पात्रों से नकदी के साथ साथ आभूषणों के भी गायब होने की बात का उल्लेख किया है। पहली कार्रवाई और एफआईआर। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पुलिस ने मंदिर के चढ़ावे और दान पात्रों की व्यवस्था से जुड़े 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों के पास से 79,85,493 रुपए की बरामदगी हुई है। जिम्मेदारों पर सवाल। एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। आगे की सिफारिशें। रिपोर्ट में संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पिछले 5 साल के दान की गहन ऑडिट और मंदिर में पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। तो एसआईटी ने दान प्रक्रिया में सुधार के लिए नकदी संभालने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस, दान का साप्ताहिक ऑडिट कराने का भी सुझाव दिया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से ये तो पता चल गया है कि चढ़ावे की चोरी हो रही थी, लेकिन कब से हो रही थी इसका पता नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहले ट्रस्ट के लोगों को ही शक हुआ था कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों से 500 रुपए के नोटों वाली गड्डियां कम आने लगी थी। पहले एक दान पात्र से 7-8 लाख रुपए निकलते थे, वो घटने लगे थे। तो ट्रस्ट ने पहले से लगे सीसीटीवी के अलावा हिडन सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। उसी में दिख गया कि कर्मचारी ही चोरी कर रहे हैं। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 42 दिन में ही 70 बार चोरों की गतिविधियां दिखी। चोरी दो तरीके से हो रही थी, एक तो सीसीटीवी के सामने एक चोर खड़ा हो जाता था, दूसरा नोट, गहने, चढ़ावा चुरा लेता था। दूसरे गिनती के वक्त 500 की गड्डी बनाते वक्त उसमें 100 से ज्यादा नोट डाल दिए जाते थे। वाउचर बनाने में सिर्फ गड्डियां गिनी जाती थी, फिर गड्डी बैंक में जमा होने जाती, उससे पहले ही एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे।
5: अभी भी आज भी जब हुआ है तो केवल वो लड़के जो नोट को सीधा करके ठप्पी लगाते थे और रबर बैंड लगा के गड्डी बनाते थे, गिनते थे। लगभग तो उन्हीं को मोहरा बना दिया गया, माने अब उन्हीं के ऊपर गाज गिरा दी गई। उसके ऊपर तो सब बहुत सुंदर स्वच्छ लोग हैं, केवल गंदगी तो इन्हीं के अंदर थी। कमल है ना, जो नीचे है बेचारा, जिसने उनको ऊर्जा दी है, वही कीचड़ है, ऊपर तो सब कमल है।
6: 8 नाम इसलिए है कि SIT की रिपोर्ट में 8 ही है, ऐसा नहीं है। उसके नीचे लिखा है अन्य, सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सबकी होगी कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर उसका परिणाम आएगा।
7: ये 8 गिरफ्तार हो चुके हैं, ये 3 पदाधिकारी हैं जिसमें से 2 इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही FIR में नाम आया। क्यों? सवाल ये, अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अब राजनीतिक घमासान बिछड़ गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी श्री राम के नाम पर वोट ले रही है, अब नोट भी ले रही है। सवाल यह भी है कि अभी तो सिर्फ छोटे नपे हैं ये 8, कि अगला नंबर इन 3 बड़ी मछलियों का भी आएगा। SIT के खुलासे से श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े हो गए। SIT ने तो साफ कह दिया कि ट्रस्ट को रीस्ट्रक्चर किया जाए, मतलब गड़बड़ी है, रोजमर्रा के कामकाज के लिए CEO या COO बनाया जाना चाहिए।
0: अब चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन SIT की जांच में चोरी का मामला खुला तो ट्रस्ट का कामकाज ही घेरे में आ गया है, क्योंकि SIT ने जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में खामियां मिली। हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में अंतर मिला, पर्याप्त CCTV कवरेज नहीं मिली, सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजी नजर आई। ऐसी तमाम खामियां, नाकामियां और सवाल उस ट्रस्ट पर उठे जिसके कर्ता धर्ता चंपत राय थे। चंपत राय के इस्तीफे के बावजूद उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और दूसरे आरोपों की सियासी फेहरिस्त कम नहीं हुई है, क्योंकि ट्रस्ट के खिलाफ SIT ने भी बहुत कुछ कहा है।
8: क्या है अयोध्या का मॉडल? प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी? चंपत 420 ने जो मोदी के द्वारा यहाँ पे बैठाया गया है, उसके द्वारा जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है, उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं। तो केजरीवाल साहब के आने के बाद कल आपने आनन फानन में FIR दर्ज कर ली, 8 छोटी मछलियों को आपने गिरफ्तार कर लिया।
9: SIT भारत सरकार की तरफ से बैठ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई।
0: सिर्फ चढ़ावा और गिनती में ही नहीं, खुलासा SBI बैंक और ट्रस्ट के बीच बनी SOP यानी संचालन प्रक्रिया को लेकर भी हुआ है। सूत्रों की माने तो SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू के पास बिना अधिकृत आदेश के हुंडियों की चाबियां थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक की ओर से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने संबंधित अभिलेखों पर हस्ताक्षर किए थे। SIT रिपोर्ट में उल्लेख है कि बाद में चढ़ावा गणना की प्रक्रिया में इस SOP का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जांच में इसे जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया है।
3: जिन लोगों ने महा डकैती कर दी प्रभु श्री राम के घर में, उनके क्या इस्तीफे से खुशी मनाई जानी चाहिए? पहली चीज तो उनको सरेआम फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और दूसरी चीज उनके ऊपर वालों को कौन करेगा? ये तो केवल जरिया थे। मैंने कहा इस पूरी लूट का पैसा पहुंचा कहाँ है?
0: मंदिर में आगे चोरी ना हो और सबूत जिंदा रहे, इसके लिए 180 दिन तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की सिफारिश भी एसआईटी ने की है। लेकिन बात सिर्फ चढ़ावे तक नहीं थमी है, अब देश भर से तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कभी सिंधी समाज अपनी 200 किलो चांदी का हिसाब मांग रहा है, तो कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी चांदी वाली ईंट की पर्ची मांग रही। जबकि एसआईटी में खुलासा हुआ है कि जो रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनमें 21 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 के दौरान कुल 38 किलोग्राम चांदी प्राप्त होने का उल्लेख दर्ज है। फिर 29 जुलाई 2020 को 25.576 किलोग्राम चांदी की ईंटें दान में प्राप्त होने का रिकॉर्ड भी अभिलेखों में दर्ज मिला है। बात पैसे, सोने, चांदी के जेवरात से भी आगे जमीन घोटाले तक जा पहुंची है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने पेश होकर चंपत राय की ओर से की गई जमीन खरीद वाले प्रकरण के 13 दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं।
10: चढ़ावा चोरी पर बनी एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद अब बड़ी बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। 8 जो मुख्य आरोपी बनाए गए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल भेजे जा चुके हैं। दूसरी तरफ 79 लाख पिछले 24 से 48 घंटों में इन आरोपियों के पास से बरामद हो गए। और सबसे बड़ी बात, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफे का ऐलान हो गया। बेशक इस्तीफे की कोई कॉपी अभी तक नहीं आई हो, लेकिन अब किरकिरी से बचने के लिए कहीं ना कहीं दबाव काम आया है। अब आगे क्या, माना यह जा रहा है कि जांच तो चलती रहेगी, मगर अब नए सिरे से अब इस ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। चर्चा यह है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तर्ज पर हो सकता है आगे अयोध्या की इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चलाया जाए और सीईओ अपॉइंट हो, लेकिन क्या और नाम इसमें सामने आएंगे। अब फिलहाल जो ट्रस्ट है इन दो इस्तीफों के साथ अब लगभग ना के बराबर बचा है। देखना यह है कि अब सरकार क्या व्यवस्था आगे के लिए करती है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, किरकिरी पूरी दुनिया में। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
7: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौटकर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे हॉर्मुस पर ईरान और अमेरिका में फिर से ठनी। आप देखते रहिए दस्तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
12: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
14: Har pal manao Kesari Tyohar. Vimal, bolo zubaan Kesari.
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
20: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
21: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
22: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar ekdam solid.
23: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
24: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
25: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
23: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
26: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
24: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
23: जहां खबर वहां खबरदार।
27: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: कोर्ट इसमें देर नहीं करें, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए।
1: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ तस्वीर यही बन रही है कि सिया कोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की। लोगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस मामले में पहली बार सिया गोयल के माता पिता कैमरे पर आए। दोनों आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिया को लेकर काफी सख्त दिखे। दोनों ने कहा कि सिया ने गुनाह किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, उसे भी खाई में धक्का दे दें।
0: वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
1: एक पिता के मुंह से निकले ये शब्द उनके सदमे की कहानी भी कहते हैं। सिया के पिता का कहना है उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी का नाम किसी हत्या की साजिश में आएगा। सिया की मां पूजा कोयल ने भी अपने पति की तरह बेटी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सिया के माता पिता ने उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें चेतन चौधरी और सिया रिश्ते की पहले से जानकारी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कभी चेतन को देखा तक नहीं था और ना ही बेटी ने कभी दूसरे रिश्ते की बात बताई। गोयल परिवार का कहना है कि रिश्ता पूरी तरह सहमति से तय हुआ था। दोनों परिवार लगातार मिल रहे थे, वीडियो कॉल होती थी, डिनर होते थे और शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। माता पिता का दावा है कि सिया ने कभी ये नहीं कहा कि वो केतन से शादी करना नहीं चाहती। यही नहीं, परिवार का कहना है कि बाली हनीमून की तैयारी हो चुकी थी, 50,000 रुपए की शॉपिंग कराई गई, प्री वेडिंग शूट की तैयारी थी और उदयपुर में शादी की प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में अगर बेटी शादी नहीं करना चाहती तो फिर इतनी तैयारियां क्यों होती, यही सवाल अब सिया के माता पिता उठा रहे हैं। गोयल परिवार ने अग्रवाल परिवार के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया कि सिया के फोन बिजी रहते थे और परिवार सब जानता था। सिया के पिता का कहना है अगर केतन को कोई शक था तो अग्रवाल परिवार को उसी वक्त उनसे बात करनी चाहिए थी। इंटरव्यू में एक और बड़ा दावा किया गया, सोशल मीडिया पर चल रही करोड़ों की शादी, चार्टर्ड फ्लाइट और 17 करोड़ के महल वाली चर्चाओं को भी गोयल परिवार ने फर्जी बताया। उनके मुताबिक शादी का बजट पहले से तय था और दोनों परिवार अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से खर्च कर रहे थे। पुलिस की जांच अभी जारी है और अदालत में सबूतों की कसौटी पर ही होगा कि साजिश किसने रची और हत्या का असली जिम्मेदार कौन है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया साजिश का हिस्सा थी। पुणे से ओंकार वावले के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।

आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से ठन गई। हॉर्मुज पर ईरानी सेना ने एक जहाज पर हमला कर दिया। यह हमला अमेरिका को ईरान की सीधी चेतावनी है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की चलेगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते के लिए बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में ईरान का हॉर्मुज पर हमला करना और ये चेतावनी देना कि हॉर्मुज से बिना अनुमति के गुजरना मना है, ये बताता है कि हॉर्मुज को ईरान नहीं छोड़ेगा। संभव है ईरान का हॉर्मुज प्लान एक बार फिर से अमेरिका और ईरान को युद्ध के मैदान में पहुंचा दे, क्योंकि लेबनान पर इसराइल के हमले बंद करने से ये युद्ध रुकता है, लेकिन लेबनान लगातार फंसा हुआ है, इसराइल हमले कर रहा है। तो क्या हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ट्रंप पर दबाव बनाना चाहता है कि इसराइल को रोको, नहीं तो फिर युद्ध होगा।

0: हॉर्मुज पर फिर अमेरिका और ईरान में ठनी। ईरान का ऐलान, हॉर्मुज पर है उसका कंट्रोल। हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने की पूरी तैयारी। न हॉर्मुज पर झुकेगा, न एटमी प्रोग्राम पर। ट्रंप का सिरदर्द बन गया ईरान से समझौता। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए थे। यही माना गया कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह का रास्ता खुल गया है। लेकिन हॉर्मुज पर हुए नए हमले के बाद शांति समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल यही है कि जब दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति बन गई है तो ईरान ने हॉर्मुज पर हमला क्यों किया। दरअसल गुरुवार को ईरानी सेना ने हॉर्मुज से गुजर रहे सिंगापुर के एक जहाज को निशाना बनाया। इस हमले को ईरान की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आईआरजीसी ने हमला तब किया जब ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा था हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को इजाजत लेनी होगी। ईरान चाहता है कि समझौते के बाद भी हॉर्मुज पर उसका कब्जा युद्ध काल की तरह बरकरार रहे। प्लान यही है कि हॉर्मुज से करीब 40 अरब डॉलर टोल वसूलना। इसी कड़ी में ईरान ने ऐलान किया है कि बिना इजाजत के गुजरने वाले जहाजों पर वो कार्रवाई करेगा, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज को दोबारा बंद कर सकता है। हॉर्मुज को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री ने धमकी देते हुए कहा है हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन की गारंटी अस्पष्ट व्यवस्थाओं, समानांतर मार्गों या एक तटीय राज्य के रूप में ईरान के विचारों से परे निर्णय लेने के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। आवागमन के लिए कोई भी विश्वसनीय ढांचा ईरान के साथ समन्वय और एमओयू के अनुच्छेद 5 पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो निर्धारित रास्ते को रोक दिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि बीते दिन ही अमेरिका और खाड़ी के 6 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दावा किया था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार नहीं है। ऐसे में हॉर्मुज पर हमले और ईरान की धमकी को अमेरिका ने शांति समझौते के एमओयू का उल्लंघन बताया है।
1: And that's what we're going to judge, and that's what we're going to react to. If, on the other hand, this rhetoric is backed up by actual ships being threatened and ships are not moving, that's a violation of the agreement, and we're going to have a problem with it.
0: विवाद सिर्फ हॉर्मुज को लेकर नहीं है, ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। दावा यही है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के निरीक्षण के लिए तभी खुलेंगे जब अमेरिका समझौते की एक एक शर्त का पालन करेगा। मतलब यही है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि ट्रंप बार बार ये दावा करते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और ईरान अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के लिए तैयार है। ये डील का हिस्सा है।
2: I'd like to get a formal setting first before we do that, but I have no problem with that. It's a good document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: एक समझौता हुआ है और उस समझौते का पालन करने के लिए IAEA को वहां जाकर निरीक्षण करना होगा। हमें उम्मीद है हम वहां जल्द पहुंचेंगे। ईरान ने घोषणा की है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिर्फ इरादे ही काफी नहीं है। हमें एक बहुत मजबूत सत्यापन प्रणाली स्थापित करनी होगी और निरीक्षण जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किए जाने चाहिए। हालांकि ईरान अंतिम समझौते पर पहुंचने से पहले फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थल में यूएन के परमाणु निरीक्षकों की एंट्री के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का दावा है कि परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो ईरान दबेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। ईरान के दुश्मनों द्वारा भविष्य में की गई किसी भी गलती का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इलाके में बचे हुए अमेरिकी ठिकाने और इसराइल हमारी मिसाइलों की सीमा में हैं। स्विट्जरलैंड में वार्ता दल का मिशन मुज्तबा खामेनेई की शर्तों को पूरा करवाना है। अगर दूसरा पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करता है तो इस्लामिक गणराज्य भी पिछली स्थितियों में लौट आएगा। ठीक ऐसे ही अमेरिकी फसल की खरीद को लेकर किए गए ट्रंप के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया। पहले सुनिए ट्रंप ने क्या दावा किया था।
3: Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big.
0: Iran ne saaf kar diya hai ki Ameriki rashtrapati ka dawa jhoota hai. Amerika jhoota dawa karta hai ki hamari mukt sampatti unki krishi upaj khareed legi. Dilchasp baat hai. हम जो फसल काट रहे हैं वह वही है जो आपने बोई है। दशकों का अविश्वास, यही जैविक प्रचुर मात्रा में और स्वदेशी है। लेकिन जाहिर तौर पर अमेरिका सिर्फ अनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन, टूटे वादे और खोखली बातें ही निर्यात करता है। एक के बाद एक अमेरिकी दावों पर ईरान आक्रामक हमले कर रहा है, तो वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर भी ईरान लगातार ट्रंप पर दबाव बनाए हुए है। लेकिन नेतन्याहू तय कर चुके हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते तोड़ने भी पड़े तो लेबनान पर न तो हमले रोकेंगे और न ही लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाएंगे।
4: ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים, ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
5: हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई तनातनी में आगे क्या है, आइए समझते हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी से।
6: सही, देखिए इस समय ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आप को इकोनॉमिकली रिवाइव करना इतने सालों के सैंक्शंस के बाद, और इस लगातार दो साल से जंग झेलने के बाद ईरान को बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं। और दूसरी बात ये, ईरान को अपने भविष्य के लिए भी तैयारियां करें, क्योंकि वो मानता है कि खतरा अभी टला नहीं है अमेरिका और इसराइल के साथ। उसकी ये जंग या अदावत कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी एक ऐसे मोड पर आ सकते हैं जहां पर ईरान को दोबारा से लंबी जंग लड़नी होगी। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पॉइंट है जहां से ना सिर्फ वो अमेरिका को और इसराइल को प्रेशराइज कर सकता है एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर, बल्कि वो यहां से आर्थिक रूप से भी अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। ईरान का मानना है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार टोल वसूलेगा तो उसको हर साल 40 बिलियन से ज्यादा का पैसा मिलेगा, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि क्या वो अमेरिका की बातों को मानेगा। कल भी ईरान ने जो हमले किए वो इस बात पे किए, वो दिखाने के लिए किए कि अभी उसकी जो सुप्रीमेसी है, उसकी जो ताकत है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसी तरीके से बनी हुई है जो पिछले 110-115 दिनों से लगातार उसे दावा करता है। तो यानी अब ईरान उस जगह को, उस प्रेशर पॉइंट को छोड़ना कतई नहीं चाहेगा और कोशिश करेगा कि आने वाले वक्त में वो अमेरिका की इन शर्तों को ना माने, अमेरिका की बातों को दरकिनार करे और लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने टोल को वसूलने की कोशिश करेगा।

0: संभालने के लिए कई देश रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, इनमें अल सल्वाडोर, चिली, इक्वाडोर और अमेरिका है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि वेनेजुएला एक ऐसे जोन में आता है जिसमें समंदर के नीचे कैरेबियन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से मिलती है, इसलिए वहां भयंकर भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले भी 1812 में मेरिडा और कराकास शहरों में भयंकर भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान था। 1967 में भी कराकास में भयंकर भूकंप आया था जिसमें 240 लोग मारे गए थे। वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों ने पार्कों और सड़कों पर रात गुजारी। विदेशी मीडिया को लोगों ने बताया कि उन्हें घर लौटने में डर लग रहा है। बेहद अनिश्चितता का माहौल है, इमारतों में कुछ भी हो सकता है। लोग इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी। आपको बता दें कि वेनेजुएला इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में बड़ा हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा ले गए। अब अमेरिका दावा करता है कि वेनेजुएला की सरकार को वही चला रहे हैं। उन्होंने
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, yeah! and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
5: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
6: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
7: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा राम भक्तों की अग्नि

0: परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था, नोचा था, बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
1: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जिन्होंने प्रभु राम पर करोड़ों लोगों की आस्था को अपने लालच की तिजोरी की चाबी समझ लिया था या आंख मूंद कर भ्रष्टाचार होने दिया था, उन तक आज पहुंच चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है।
1: हालांकि ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव का दावा है कि अभी दोनों का इस्तीफा नहीं हुआ है,
0: लेकिन SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारियां बता रही हैं कि अभी जांच के कई सिरे खुलने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की वजह से दान मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई FIR के बाद चंपत राय के ड्राइवर रह चुके रमाशंकर यादव और उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, कर्मणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई है। इन कार्रवाइयों के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि दोषी पक्षे नहीं जाएंगे, लेकिन राम की आस्था पर राजनीति ना हो।
2: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट पर जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक ट्रस्ट का मैनेजमेंट सिस्टम, डोनेशन सिस्टम और रिकॉर्ड सिस्टम सही नहीं था। हुंडी की संख्या और लिखित रिकॉर्ड में अंतर है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव का रिश्तेदार मनीष यादव CCTV में कई बार चोरी करते दिखा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। SIT ने जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में 70 मौकों पर चोरी या गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। मंदिर ट्रस्ट को लेकर SIT जांच में सामने आ रहे ये तथ्य विपक्ष को सरकार पर और बड़ा हमला करने का मौका दे रहे हैं। अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है।
3: वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है
4: कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए।
0: विपक्ष का ये हमला तब है जबकि अभी SIT ने अपनी जांच खत्म नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट्स को भी देखा है। ऑडिट रिपोर्ट्स में हुंडियों की संख्या को लेकर दर्ज रिकॉर्ड और CCTV की व्यापक कवरेज समेत कई प्रक्रियाओं में कमी पाई गई है। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जांच में असली दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा दिया है।
5: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: राम मंदिर का दान करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सारे तथ्य सामने आने तक ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आता। SIT की जांच ट्रस्ट प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन दान की गई कुछ वस्तुएं गायब होने पर वायरल हो रही कुछ तथ्यहीन खबरों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, गोपाल राव ने किया इनकार, ट्रस्टी अनिल मिश्रा को दी भी गई कुर्सी, सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी पर राजनीति तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। बंगाल में यूसीसी की तैयारी में सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान, सोमवार को आ सकता है बिल, गुजरात असम उत्तराखंड की तरह बनेगी कमेटी। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया, पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ, फडणवीस से मिले मृतक के पिता। गुजरात से राजस्थान जा रही लग्जरी बस से करीब 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 लाख से अधिक टैबलेट बरामद, आरोपी गिरफ्तार।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बच्चे किसी के भी मरे, कत्ल करने वाला किसी का भी बच्चा हो, पर असल में मरते हमेशा माँ बाप ही हैं। फिर चाहे वो मरने वाले बच्चे के माँ बाप हों या मारने वाले बच्चों के माँ बाप। एक जवान मौत के गम में केतन के माँ बाप सो नहीं पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ सिया के माँ बाप अपनी बेटी की सच्चाई जानने के बाद जी नहीं पा रहे। यही हाल चेतन के माँ बाप का भी है। मौत एक हुई पर घर तीन उजड़ गए।
1: मेरे लिए तो कोहिनूर था, जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला।
2: हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग चार दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स हैं।
3: मैं जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है कोई मुंह भी नहीं बताता। मैं तड़पा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया।
4: आज मेरा बच्चा चला गया और 5.5-6 साल का बच्चा, इतना होनार बच्चा जाना परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है।
1: अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था।
5: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
6: मैं आप माँ हो उसकी?
5: हाँ जी, अगर वो उसने ये
6: मैं तो बोलता हूँ
5: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
4: हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी ना तो कभी देखा नहीं बात। पहली बार वो पुलिस चौकी में देखा उसको, लड़की को।
7: अच्छा
4: हाँ
7: आपने?
4: हाँ।
7: अच्छा मुझे एक बात बताइए,
4: और उसका नाम भी सब कल ही मालूम पड़ा।
8: अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
1: समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे, उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए।
0: जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता था मर गया होता था। न जाने कितने ही बच्चों के माँ बाप रोते ही रह जाएंगे। उन बच्चों के माँ बाप तो रोएंगे ही रोएंगे जिनका बच्चा उनसे छीन लिया गया, लेकिन वो माँ बाप भी कम नहीं रोएंगे जिनके बच्चों ने दूसरों के बच्चों को छीन लिया। दोनों ही तरह के माँ बाप के लिए दर्द बेशक जुदा जुदा हो, पर दोनों की ही टीस एक जैसी है। केतन से लेकर राजा रघुवंशी और साहिल तक के माँ बाप आज भी अपने बच्चे को खोकर उसी दर्द और गम में जी रहे। लेकिन यकीन मानिए, सिया से लेकर सोनम और मुस्कान के माँ बाप भी हर रोज घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ये हर रोज जीते हैं, हर रोज मरते हैं। गुनाह इनके बच्चों ने किए, सजा बेकसूर माँ बाप भुगत रहे। ऊपर जितने भी नाम लिए उनमें से हर गुनहगार को कानून सजा देगा, लेकिन ऐसे कातिल बच्चों के बेकसूर माँ बाप का क्या गुनाह जिसकी सजा वो हर रोज काट रहे हैं। पुणे के एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ये सिया के पापा हैं प्रवीण गोयल। जिस दिन और जिस पल जैसे ही इन्हें पता चला कि इनकी बेटी सिया को अपने मंगेतर केतन के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये उसी वक्त बेहोश हो गए। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। एक दिन पहले ही अस्पताल के आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। ये प्रवीण गोयल की पत्नी और सिया की माँ पूजा गोयल है। उधर बेटी पुलिस कस्टडी में है, इधर पूजा अस्पताल में पति की देखभाल कर रही है। जाहिर है ये दोनों इस वक्त आजाद हैं, क्योंकि केतन का कत्ल इन्होंने नहीं किया, इनकी बेटी सिया ने किया। पर दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि अब इन दोनों की आगे की पूरी जिंदगी क्या 18 जून से पहले वाली जिंदगी की तरह होगी? क्या दोनों अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने दफ्तर, अपनी दुकान या अपने घर में दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों यानी पूरे समाज के सामने कभी फिर से सिर उठाकर जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा समाज ही ऐसा है। अब ये दोनों जब तक जिएंगे, बेकसूर होने के बावजूद बेटी के कातिल होने का एक पूरा बोझ अपने सिर पर लेकर जिएंगे। जिएंगे क्या, हर रोज मरेंगे। इनका कोई कसूर नहीं है, पर सबसे बड़ा कसूर है कसूर सिया के माँ बाप होने का। वरना भला एक माँ या एक बाप कैसे अपनी बेटी के लिए मौत मांगने की दुआ कर सकता है?
5: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
6: मैं आप माँ हो उसकी?
5: हाँ जी, अगर वो उसने ये
8: तो बोलता
5: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे?
8: अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: बेशक खाई में केतन को धक्का दिया गया है, लेकिन पहाड़ एक साथ तीन घरों पर टूटा है। केतन के घर इसलिए मातम पसरा है क्योंकि घर का 25.5 साल का चराग बेवक्त बुझ गया। सिया के माँ बाप इसलिए सदमे में है कि जिस बेटी ने कभी अपने पापा से झूठ तक नहीं बोला, पुलिस ने उसी सिया के हाथों पर उसी के मंगेतर केतन का खून देख लिया। सिया के साथ केतन का कत्ल करने वाले आरोपी नंबर 2 चेतन के पिता और चाचा इस बात पर हैरान है और खुद को कोस रहे हैं कि चेतन और सिया के रिश्ते की कहानी पहले कभी वो सुन क्यों नहीं पाए। न चेतन ने कभी अपने घर सिया का सच बताया, न सिया ने कभी अपने घर चेतन का सच बताया, और केतन के घर वाले कभी इन दोनों का सच जान ही नहीं पाए। अब जब ये सच सामने आया तो एक साथ तीन परिवारों को ऐसा मार गया कि अब उनके लिए हर लम्हा गुजारना ऐसा हो गया है मानो एक लम्हे में पूरी उम्र ही बीती जा रही है।
1: हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरे चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना।
4: हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा? जब पुलिस चौकी में गए जब। अच्छा, उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10:30 बजे आपको बताते। तो हम फिर सुबह में, मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता।
5: कि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक सच हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी की जान लेना नहीं सिखाते। पर एक सच ये भी है कि घर के बाहर बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर माँ बाप को ये मालूम ही नहीं होता। दुनिया के कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिनका बेटा या बेटी घर के बाहर गलत रास्ते पर जा रहे हो और उसे जानने के बाद भी उन्हें न रोके।
6: रिवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
8: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
6: आप पहचानते नहीं थे? आप भी
8: नहीं पहचानते थे।
5: 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं उनका, कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था।
0: शायद सोनम के माँ बाप को भी सोनम की असलियत पता नहीं थी। मुस्कान के माँ बाप भी उसकी मुस्कान के पीछे की हकीकत नहीं जान पाए होंगे। सिया के माँ बाप को भी सिया पर शक कैसे होता। जब सिया की शादी तय हुई तब सबसे ज्यादा खुश तो वही थी। केतन से रिश्ता तय करने से पहले माँ बाप ने सिया से पूछा भी था
5: कि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे। तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
8: फरवरी में इंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ, रिज़ कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, दोनों परिवार बहुत खुश थे। बीच में आना जाना मिलना हमारी मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से मैंने बहुत सारी बात की। सब यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गए थे कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके। मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया।
0: सिया घर के बाहर जो कुछ कर रही थी जाहिर है उसके घर वालों को शायद पता ही नहीं था। फिर केतन के घर वाले भी सिया पर शक कैसे करते, क्योंकि अग्रवाल और गोयल परिवार के बीच 35 साल पुरानी दोस्ती थी, एक तरह से पारिवारिक रिश्ता था। इन बूढ़ी आंखों और लड़खड़ाती जुबान को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि भला 35 साल पुराने रिश्तों की कोई कैसे चौकसी कर सकता है, यानी कैसे शक कर सकता है, कैसे निगहबानी कर सकता है। ये केतन के दादा हैं।
3: इन लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से हैं, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो यारा है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। मैं जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है कोई मुंह भी नहीं बताता। मैं तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया।
0: जब केतन और सिया का रिश्ता तय हो चुका, फरवरी में सगाई हो चुकी, तब अग्रवाल और गोयल परिवार और भी करीब आ चुके थे। सिया के पापा को भी ऐसा लगा जैसे केतन की शक्ल में उन्हें एक और बेटा मिल गया है। उधर सिया भी गाहे बगाहे केतन के घर जाने लगी थी, रिश्ते और मजबूत हो रहे थे।
8: केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफी टाइम आए, और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था, और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था।
2: हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की, वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसे, हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हम बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है।
0: केतन और सिया के रिश्ते ने एक साथ दोनों घरों को खुशियों से भर दिया, मगर ये दोनों ही घर इस बात से अनजान थे कि इसी पुणे शहर में एक और घर में भी सिया की एक अलग कहानी लिखी जा रही। ये घर चेतन का था, चेतन जिसे आप सिया का दोस्त या प्रेमी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अफसोस चेतन के माँ बाप भी चेतन और सिया की कहानी से अनजान थे। यहाँ तक कि जिस 18 जून को केतन का कत्ल हुआ, उस दिन चेतन सुबह अपनी माँ को ये कहकर घर से निकला था कि वो एक मीटिंग में जा रहा है और 2-3 बजे तक लौट आएगा।
4: मेरे को तो कुछ, मेरे से बात ही नहीं हुई उस दिन।
7: घर पे किसी को बताया?
4: हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस।
7: अच्छा,
4: ऐसा बोल के गया बस।
0: यानी इस पूरी कहानी से साफ है कि ऐसी हर कहानी की तरह इस कहानी में भी सिया और चेतन के रिश्ते को लेकर केतन और केतन के घर वालों के साथ साथ खुद चेतन और सिया के माँ बाप भी शायद अनजान थे। सिया के माता पिता का कहना है कि अपना बर्थडे केतन के साथ मनाने के लिए जिस तरह सिया शॉपिंग कर रही थी, अपने कपड़े खुद से ऑल्ट्रेशन कराने में 2-2 घंटे लगा रही थी, उससे शक की कोई गुंजाइश बची कहाँ थी।
6: इतना सब कुछ हो रहा था बिहाइंड द कर्टन, क्या सिया ने आपको एक भी बार नहीं बोला कि केतन अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसे मंजूर नहीं है, उसे नहीं चाहिए?
5: अगर सिया ये बात बताती थी तो मैं क्यों ये फंक्शंस करती थी? उसके बर्थडे का ड्रेस भी मैं दिला के लाई हूँ, उसके साथ बर्थडे की शॉपिंग की है, उनकी फैमिली भी आई थी उसे बर्थडे का ड्रेस लेने के लिए। अगर कुछ भी बात रहता तो हम आगे क्यों प्रोग्राम करते थे?
8: उल्टा उसमें अल्टरनेशन करना था तो खुद बिचारी दो घंटे तक उधर बैठ के अल्टरनेशन खुद ठीक से करा के पूरा, यानी कि प्रेस वगैरह करा के पूरा ड्रेस पैकिंग करके फिर लेके आई वो।
0: इत्तेफाक देखिए, जिस दिन बकौल पुलिस सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया था, उसके अगले ही दिन यानी 19 जून को सिया 20 साल की हुई थी, 20वां बर्थडे था उसका। केतन के पिता को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि 20 साल की एक लड़की के दिमाग में इतना सब कुछ कहां से आ सकता है।
1: 20 साल की लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला।
0: यही सवाल खुद सिया के पापा भी खुद से पूछ रहे हैं। उन्हें अब भी लगता है कि सिया ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा संस्कार उसे दिया ही नहीं।
8: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत अच्छी थी, मेरी हर एक बात का कहना मानती थी, कभी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, जो भी है हमेशा सच बोलती थी और वो सच्ची की राह पे ही चली हमेशा। सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है।
0: अपने जवान बेटे को खोने वाले केतन के पिता का सबसे बड़ा दर्द ये है कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी या शादी किसी और से करनी थी तो वो बस एक बार बता देती, वो खुद ही शादी कैंसिल कर देते, बेटे की जान तो बच जाती।
1: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते।
0: और तो और, केतन के पिता ने तो यहाँ तक कहा कि अगर सिया को चेतन से शादी करनी ही थी तो भाग कर कर लेती, तब भी उनके बेटे की जान बच जाती।
1: अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था, हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है।
0: कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। 4 महीने पहले सगाई की शक्ल में जो दो परिवार एक नए रिश्ते में बंधे थे, 5 महीने बाद जिस रिश्ते को शादी की मंजिल मिलनी थी, अब उन्हीं दो परिवारों के बीच नफरत की खाई खड़ी हो गई है। केतन के कातिल या कातिलों से जितनी नफरत बढ़ेगी, बस समझ लीजिए सिया और चेतन के माँ बाप उतना ही मरमर कर जिएंगे। जानते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में से कौन सा सवाल होता है? किसी माँ बाप से सीधे ये पूछना कि आपकी बेटी ने अपने ही मंगेतर का कत्ल किया है, तो आप क्या कहेंगे? सिया की माँ ने जो कहा सो कहा, सिया के पापा ने जो कहा, इससे ज्यादा एक बाप कुछ कह नहीं सकता।
5: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
6: मैं आप माँ हो उसकी,
5: हाँ जी, अगर वो उसने ये
8: मैं तो बोलता हूँ
5: काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
8: अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: कानूनी शिनाख्त के नियम कायदे किनारे रख दे तो पुलिस हिरासत में मौजूद सिया और चेतन ने इस वक्त अपना चेहरा ढका हुआ है। जेल जाने के बाद दोनों के चेहरे से नकाब भी हट जाएंगे, कुछ बरस दोनों जेल में रहेंगे और क्या पता फिर आजाद भी हो जाएंगे। पर इन दोनों ने जो जख्म एक साथ इन तीन परिवारों को दिए, ये माँ बाप उस दर्द से ताउम्र कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। एक तरफ अग्रवाल परिवार को अपने लाडले केतन की जुदाई मारेगी तो दूसरी तरफ बेटी का कलंक गोयल परिवार को शायद फिर कभी सिर उठाने का मौका ही न दे। चेतन की घर की कहानी भी कुछ अलग नहीं होगी, यानी चाहे जान किसी की जाए, जान कोई भी ले, रोना माँ बाप को ही होता है, मरते माँ बाप ही होते हैं, चाहे वो कातिल के माँ बाप हों या मकतूल के। कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, गोपाल राव ने किया इनकार, ट्रस्टी अनिल मिश्रा को की भी गई कुर्सी, सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी पर राजनीति तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। बंगाल में यूसीसी की तैयारी में सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान, सोमवार को आ सकता है बिल, गुजरात असम उत्तराखंड की तरह बनेगी कमेटी। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया, पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ, फडणवीस से मिले मृतक के पिता। गुजरात से राजस्थान जा रही लग्जरी बस से करीब 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 लाख से अधिक का टेबलेट बरामद, आरोपी गिरफ्तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, पुणे हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, पुलिस के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी ने चैट हिस्ट्री डिलीट की थी वारदात से पहले और बाद की चैट हिस्ट्री दोनों ने मिलकर डिलीट की। केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी का पुलिस ने फोन जब्त कर लिया और इस बीच पुलिस ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से 10 घंटे तक पूछताछ की है। आइए सीधे हमारे संवाददाता ओंकार वाबले के पास हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। ओंकार, जिस तरह से चैट हिस्ट्री डिलीट की दोनों ने, क्या कुछ पुलिस को हाथ लगा है, पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है?
2: देखो, दोनों के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए जा चुके हैं और उसी में ये अपडेट सामने आई है कि इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को भेजे हुए रील्स हो या फिर व्हाट्सएप चैट्स हो, ये दोनों ने अपने जो है वो डिलीट कर दिए थे। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी डेटा था जो रिसाइकल बिन से भी निकाला गया था, तो अब फॉरेंसिक में इस सबका मतलब इस सभी को फिर से एक्सेस इसका लिया जा रहा है और ये जितना सब कुछ सामने आएगा उससे और पता चलेगा कि कब से ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे। क्योंकि एक बात तो एग्जैक्टली सामने आई कि जब 17 को ये मिले थे वारदात को अंजाम देने से पहले, तो एक घंटा पुणे के कैफे में बैठे थे जहां उन्होंने फाइनल प्लानिंग की थी, जहां सिया ने चेतन चौधरी को लोहगढ़ का एक वीडियो भी दिखाया था, मैपिंग हुआ था, वो सोशल मीडिया हिस्ट्री तो रिकवर हो गई थी लेकिन इनके चार्ट्स रिकवर नहीं हो रहे थे। तो फाइनली वो चार्ट्स भी रिकवर हो चुके हैं और ये अब सामने आया है कि इन दोनों ने ये सब कुछ डिलीट किया था। दूसरी इसमें सबसे अहम अपडेट ये है, सिया के जो बड़े भाई है साहिल गोयल, उनसे आज लगभग 8 से 10 घंटे पूछताछ हुई, क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस ने बुलाया था और फाइनली रात को वो लोनावला जो ग्रामीण पुलिस स्टेशन है वहां से बाहर निकले। तो लगभग 8 से 10 घंटे आज ये पूछताछ हुई है और पुलिस ने कहा है कि और भी जो लोग हैं उनको समन किया जाए।
0: ओंकार, ओंकार वाबले हमारे संवाददाता, बहुत धन्यवाद ओंकार आपका। पुणे के केतन हत्याकांड की हम यहां पर बात कर रहे हैं जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी सिया दोषी पाई जाती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए जहां से केतन अग्रवाल को फेंका गया था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। उधर केतन अग्रवाल के पिता ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने का निर्णय किया।
3: की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो?
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
3: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती?
5: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
3: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है, क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
6: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो और अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
7: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
6: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
3: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
8: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
5: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
8: आप पहचानती नहीं था? आप भी नहीं पहचानती?
5: नहीं थी, पहचानती नहीं।
8: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
4: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
8: हाँ।
4: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
5: हाँ। तो मेरा भी
4: उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
3: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
5: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
3: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
9: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
10: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
9: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
10: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
9: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
11: सकता। अशा प्रकार की घटना है, अनाकलनीय अशा प्रकार की घटना है, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये. पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक.
3: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक.
0: अब मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ के किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा है कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी. अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है. अगर यह सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर यह भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी.
3: जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई. आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया. केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था. 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था. अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था. लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है. केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था. लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था.
5: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
8: जी,
5: उसमें उनकी ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी. तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनको महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
8: जी.
5: क्या करेंगे, थक जाएंगे. बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं.
8: ओके
4: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो.
8: मोबाइल में चैट है उसका,
4: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं. तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं.
8: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते.
4: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे.
8: ये चैट भी है मोबाइल में. अब तो पुलिस ने
4: चैट. हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है.
12: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे. लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं. केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है. उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे.
3: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी. तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था? एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी. तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया.
9: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था. सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना.
3: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी. ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की.
13: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं. फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो, हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
3: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
14: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
5: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
4: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
3: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था।
5: केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफी टाइम आए, और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था, और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों
14: क्योंकि
5: से।
14: देखो अभी
3: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
0: कुछ दिन पहले तक जो दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़कर भविष्य के सपने देख रहे थे, केतन की हत्या ने न सिर्फ रिश्तों को तार तार कर दिया, अब आरोपों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। दोनों परिवार अब खुलकर एक दूसरे के सामने आने लगे हैं। इन आरोपों के बीच कई सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। क्या है ये सवाल और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में सिया गोयल के परिवार को भी कुछ पता नहीं चला, देखिए।

एक के बाद एक कई सवाल। केतन हत्याकांड में कभी गुत्थी सुलझती दिखती है तो कभी उलझती। एक के बाद एक सामने आते सीसीटीवी फुटेज लव, धोखा और मर्डर की कड़ियां जोड़ती तो दिखाती हैं, लेकिन परिवार वालों के विरोधाभासी बयान कई ऐसे राज की ओर इशारा करते हैं जिनके बारे में तफ्तीश होनी अभी बाकी है।

0: से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है, और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया।
1: लेकिन सिया के परिवार वालों का साफ कहना है कि ये हमारी जिद नहीं थी कि हम अपनी बेटी सिया की 19 साल में ही शादी कर दें। उनके पिता का दावा है कि रिश्ता आने पर शुरुआत में उन्होंने ये बात भी कही थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में वो तैयार हो गए।
2: उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों।
1: दूसरा सवाल, विदेश यात्रा से पहले पासपोर्ट गायब क्यों? केतन के परिवार ने केतन और सिया के साथ बाली जाने की तैयारी की थी, लेकिन आरोप है कि सिया केतन के साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए उसने केतन का पासपोर्ट इधर उधर कर दिया था।
0: रिश्ता पक्का हुए बाद उनका वो क्या रहता है, प्री शूटिंग के लिए वो बाली जाने वाले थे। बाली जाते टाइम भी उनका कुछ ऐसी चालाकी हुई कि ये लड़की मेरी पोती, पोता और उसका भाई लड़की का, ये चारों जा रहे थे, तो शायद वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, उसने मेरे पोते का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो टूर उनको कैंसिल करके वापस आना पड़ा।
1: लेकिन सिया के पिता का साफ कहना है कि सिया इस रिश्ते से बेहद खुश थी और अगर केतन को किसी बात पर शक था भी तो उसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी।
2: वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
1: तीसरा सवाल, किले में बार बार जाना क्यों? एक ही किले में बार बार जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सिया अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश में थी?
0: पुलिस स्टेटमेंट में लड़के के जवाब में आया ये कि भाई हम 14 तारीख को भी गए थे, और 18 तारीख का तो वो टीवी में आ गया था, मतलब कैमरों में आ गया था कि लड़का इनका पीछा कर रहा था, कभी आगे था कभी पीछे था, जिससे पुलिस वहां तक पहुंची। और ऊपर ये चले गए, ऊपर गए बाद इसने कुछ उनके इशारे होंगे पता नहीं, लड़का जब ऐसा कर रहा था हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी।
1: लेकिन केतन के परिवार वालों के इस आरोप को सिया के परिवार ने निराधार बताया है। सिया की मां का साफ कहना है कि लोहगढ़ किले जाने के लिए सिया ने मना भी किया था, लेकिन केतन ही वहां जाने की जिद कर रहा था। ये सब कुछ दोनों के फोन के चैट रिकॉर्ड में दर्ज है।
3: आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
4: हाँ, मुझे इसमें पता था कि
3: जी।
4: मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले
3: हाँ।
4: नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
3: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
4: हाँ भरी थी।
1: शुरुआती जांच में सिया को केतन की हत्या का आरोपी माना गया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है और किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा गया है, क्योंकि जब तक सिया और चेतन की दोस्ती और साजिश का हर राज खुल नहीं जाता, दोषी को सजा दिलाने की मुहिम पूरी नहीं होगी। पुणे से ओंकार वाबले और श्री कृष्ण पांचाल के साथ आज तक ब्यूरो।
5: खबर सचिन तेंदुलकर के एक ऐसे रिकॉर्ड की जिसे टीम इंडिया की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ने से चूक गए। आज आयरलैंड के विरुद्ध वैभव को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, जिसके साथ ही उनका सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच में डेब्यू का इंतजार बढ़ गया।
1: बढ़ गया वैभव सूर्यवंशी का इंतजार, आज नहीं मिला मौका, परसों होगा सपना साकार। आज सारी

0: दुनिया की नजरें थी इस मुकाबले पर। इस सवाल के साथ कि क्या वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का आगाज करेंगे। लेकिन बेलफास्ट के इस मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की 11 में उन्हें मौका नहीं मिला और उनका इंतजार और दो दिन के लिए बढ़ गया, क्योंकि रविवार को भारत और आयरलैंड दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। वैसे सबसे कम उम्र में भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का रिकॉर्ड पुरुष क्रिकेट में 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है, जबकि ओवरऑल देखें तो शेफाली वर्मा का नाम भारतीय क्रिकेटरों की सूची में सबसे ऊपर है। अभी 3 दिन पहले ही जब वैभव को उनके नाम लिखी जर्सी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खैर, आज नहीं तो परसों, इतिहास तो वैभव को ही लिखना है। आज तक ब्यूरो।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है. भारत को आयरलैंड ने हरा दिया है. भारत को हराकर आयरलैंड ने ये बड़ी जीत हासिल की है और दो मैचों की D20 सीरीज के पहले मैच में 34 रनों से भारत को हरा दिया है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. आयरलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए और भारतीय टीम 18 ओवर 5 गेंदों में केवल 148 रन पर ऑल आउट हो गई. पूरी टीम आउट हो गई है और इस तरह से आयरलैंड ने ये मैच जीत लिया है. एक शून्य से आयरलैंड आगे दो मैचों की ये सीरीज.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
2: After multiple assassination attempts, they can't even get...
3: They're reliable.
4: Always when I need them.
1: ...to live sports action.
5: One-hand jam by LeBron on the break!
6: That's another three, Steph Curry!
1: And your favorite music.
7: Well, the dawn begins to crack.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app, or ask your device to play TuneIn.
8: जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी अयोध्या में रहने वाले अयोध्या में आश्रम हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
9: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलम्ब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया। एसआईटी ने

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
4: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
3: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
5: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है। मेरा सुरक्षा
3: कर रहे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।

श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी, सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया, पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ, सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम, 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी, महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना।

श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपी 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल। कांग्रेस ने संसद में मुद्दे को उठाने का ऐलान किया, केसी वेणुगोपाल बोले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई, सरकार को देना होगा जवाब। श्री राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले ट्रस्ट कीजिए भंग, पीएम मोदी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। बोले राजीव शुक्ला राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल करो। विपक्ष के लगातार हमले के बीच बीजेपी बोली मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, गोपाल राव ने इस्तीफा देने से इनकार किया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीतिक घमासान, योगी बोले राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक। बोले योगी जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी साक्ष्य लाने की चुनौती। बोले योगी सबूत है तो एसआईटी को दे, एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। एसआईटी का खुलासा, सूत्रों के अनुसार 2022 से 25 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत मिले, 60 लाख रुपए अभी तक बरामद। सूत्रों के अनुसार मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव जो कि टुन्नू का रिश्तेदार है, एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, कठोर निर्णय लेंगे। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी कांग्रेस पर तुष्टीकरण टेरर फंडिंग का आरोप लगाया, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें अखिलेश। श्रीराम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, पार्टी ने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईंट दी थी लेकिन रसीद नहीं मिली। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले असली आरोपियों को बचा रही है सरकार। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, शिक्षा पर विशेष ध्यान। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का आज करेंगे उद्घाटन। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजन दर्शन। फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बोले केजरीवाल 8 के विरुद्ध एफआईआर, सिर्फ दिखावा, बड़े लोगों को बचाया। केजरीवाल ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में चुनाव आयोग और एसआईआर को मिली जगह, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीफ। चेतन हत्याकांड की जांच थी, 6 टीमें फॉरेंसिक टीम की जांच में बड़े खुलासे, सिया के परिजनों ने बयान दर्ज। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन के में ही सिया गोयल को उकसाया था। पुलिस का दावा आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सिया का भाई साहिल बोला अगर सिया ने परिवार को बताया होता तो वो केतन से कभी उसकी शादी नहीं करवाते। सिया की मां का बड़ा बयान, अगर बेटी दोषी है तो उसे भी खले से नीचे फेंक दो। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन अग्रवाल के पिता, महाराष्ट्र सरकार से हत्याकांड को फास्ट ट्रैक में चलाने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में अमित शाह की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक, 2029 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अमित शाह का ड्रग माफियाओं पर प्रहार, 6,000 करोड़ के नशीले पदार्थ किए नष्ट, 2029 तक ड्रग मुक्त भारत बनाने का संकल्प। नार्कोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 में नशीले पदार्थों की मांग कम करने, सप्लाई चेन तोड़ने, नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास पर विशेष जोर। कोहिमा में नागालैंड पुलिस ने एक दौड़ एक आवाज, नशा मुक्त नागालैंड पर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के विरुद्ध जागरूकता अभियान का शुभारंभ, सीएम विजय ने रैली को हरी झंडी दिखाई।
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नशे के विरुद्ध जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। नवी मुंबई में विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर 56 करोड़ की ड्रग्स नष्ट, नशा मुक्त अभियान को रफ्तार। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुबानी की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। केरलम के थुव्वूर रेलवे स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी हुई शामिल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयूज पर हस्ताक्षर। हरिद्वार पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा, दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। जैकब जूमा का यह पहला उत्तराखंड दौरा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज से लिया आशीर्वाद। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। यात्रा से पहले सुरक्षा पुख्ता, 7,000 जवान तैनात, 475 कैमरों से निगरानी। 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद खुला गुवाहाटी में मां कामाख्या का दरबार, श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। पहाड़ों में बदला मौसम, बागेश्वर में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत। अरुणाचल के चांगलांग में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। भूस्खलन के कारण सिक्किम सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया, पूर्वोत्तर में लगातार बारिश के बाद जगह जगह सड़क मार्ग बाधित। पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। बंगाल में भारी बारिश की आशंका, भूस्खलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के पालघर में महानगर पालिका की इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगी। गांधीनगर हाईवे पर 4 लग्जरी कारों की भीषण टक्कर, आग लगी, 4 लोग बुरी तरह से घायल। मेरठ में हाईवे पर चलती डबल डेकर एसी में अचानक से आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से 26 यात्री सुरक्षित। त्रिशूर में 2 बसों की आमने सामने टक्कर, कई यात्री बुरी तरह से घायल। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराया एलपीजी टैंकर, आग लगी, 7 लोग झुलसे। दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, दम घुटने से 3 लोगों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 सड़क मालिक ने मजदूर को बेरहमी से पीटा, दोनों में था विवाद। झांसी में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना पति को भारी पड़ा, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों रॉड से पीटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी के आधार पर 1 गिरफ्तार। बिजनौर में युवक को मरे सांप मुंह में डालकर करतब दिखाकर वीडियो बनाना भारी पड़ा, उसकी तबीयत हुई खराब, अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में सड़क पर जा रहे बाइक सवार पर अचानक पेड़ की टहनी गिरी, व्यक्ति की स्थिति गंभीर। बेंगलुरु में चलती स्कूल वैन का पिछला दरवाजा खुलने से 5 बच्चे बाहर गिरे, संतोष की बात है पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। उधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव, अचानक झुंड को देखकर मची अफरा तफरी। एमपी के रतलाम में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 3 की मौत, 12 झुलसे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कार से स्कूटी सवार को की टक्कर, 2 किलोमीटर दूर तक घसीटा। जयपुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी सामने आया। महाराष्ट्र के कल्याण थाने में यूट्यूबर नाजिया खान पर मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नशे में धुत दंपत्ति की लापरवाही, चलती बाइक से गिरा 4 महीने का मासूम। वाशिम में बड़ा हादसा, बस का टायर फटने से अनियंत्रित बस दुकान में घुसी, 2 घायल। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के सीवेज प्लांट टैंक में तेंदुए का बच्चा गिरा, तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर बनाए कई रिकॉर्ड, टीम ने 137 रनों का टारगेट चेज किया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज, शेफाली वर्मा ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए लगाई दूसरी सबसे तेज 50, 29 गेंद में पूरा कर लिया अर्धशतक। 12 विकेट के साथ श्री चरणी बनी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे अधिक विकेट लेने वाली भारतीय, तोड़ा पूर्व स्पिनर पूनम यादव का रिकॉर्ड।
फुटबॉल वर्ल्ड कप बना गोलों का नया रिकॉर्ड। टूर्नामेंट में अब तक हो चुके 177 गोल, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले कतर में 2022 में 172 गोल का रिकॉर्ड बना था। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। फैमिली ड्रामा फेस्टिवल में हुआ था प्रीमियर। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में आई। तुषार, क्षितिज और प्रतीक्षा लीड में। राजकुमार राव की प्रहार का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को होगी रिलीज। प्रहार में राजकुमार ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम का निभाया है किरदार, जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी दिलवाई थी। राजकुमार हिरानी का बड़ा ऐलान, 20 वर्ष बाद फिर से ला रहे हैं मुन्ना भाई का पार्ट 3। अमेरिकी सरकार ने ओपन एआई को जीपीटी 5.6 की रोल आउट प्रक्रिया को धीमा करने के लिए कहा। ट्रंप ने कंपनी को भरोसेमंद पार्टनर के साथ एआई वर्जन को अलग फेज में उतारने को कहा। अगले वर्ष जनवरी से लागू होने वाले नियमों के तहत डिजिटल फ्रॉड पर बैंक 25,000 का मुआवजा देंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ने के साथ डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं। एलपीजी सप्लाई पर सरकार की तरफ से सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद उद्योग जगत को मिलेगा फायदा। थोक एलपीजी सप्लाई भी 50% तक बहाल किए जाने से व्यापार जगत को होगा फायदा। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार। घर खरीदारों निवेशकों के मजबूत भरोसे से अप्रैल जून में 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने श्रेष्ठ प्रॉपबिल्ड के प्रमोटर के ठिकानों पर छापे मारे। हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों से धोखाधड़ी करके संपत्ति कब्जाने, अवैध कमाई का आरोप। ईरान ने खाड़ी देशों को दी चेतावनी, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी आपकी असुरक्षा और मतभेद की बड़ी वजह। हिजबुल्ला प्रमुख का बड़ा बयान, कहा ईरान से समझौता अमेरिका इसराइल की हार का ऐलान। हिजबुल्ला और उसके समर्थकों को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं अमेरिका इसराइल। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर हमला किया, 6 हिजबुल्ला की मौत, 30 या अधिक फंसे। ईरान के हाथों बड़ी मार के बाद अमेरिका अपने कुछ सैन्य अड्डों को इसराइल में कर सकता है शिफ्ट, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। लगातार यूक्रेनी हमलों के बाद क्रीमिया में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए रूसी सरकार ने लगाई इमरजेंसी। रूसी सेना का ज़ापोरिज़्या सुमी पर बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमला, 3 लोग घायल। डेनमार्क की सरकार इस्लामी अजान पर रोक लगाने की कर रही है तैयारी। यहां के इमिग्रेशन मंत्री ने अजान पर रोक लगाने की योजना का किया ऐलान। चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, पहला दौरा। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही, 235 से अधिक की मौत, 4300 से अधिक अभी तक घायल। जापान में 2 तूफानों की तबाही, सरकार ने लोगों को अलर्ट किया, तेज हवा, भारी बारिश की आशंका।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मुगल काल से लेकर मौजूदा काल तक इस देश ने लुटेरे बहुत देखे। उस दौर में लुटेरे विदेशी आक्रांता थे, आज के लुटेरे अपनों के भेष में छुपे चोर। भारत को सोने की चिड़िया इसके वैभव ने बनाया था, समृद्ध संस्कृति, मंदिरों में सोने के भंडार। तब का भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था और श्रद्धा का वो सोना मंदिरों की तिजोरियों में सुरक्षित था। फिर इस सोने की चमक पर गजनवी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की नजर पड़ी। उन्होंने मंदिर तोड़े, गर्भगृह लूटे, हमारे भगवान का धन छीनकर अपनी सल्तनत खड़ी की। तब हम कहते थे वो तो विदेशी आक्रांता थे, लेकिन आज 2026 में अयोध्या की पावन धरती पर कोई औरंगजेब नहीं आया, कोई गजनवी नहीं आया, फिर भी प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर डाका डाल दिया गया। चोरी, चोरी के नए नए तरीके और फिर अंत में गिरफ्तारी। नाम देखिए, रामशंकर, आरोप के जेवरात, नथ, कंगन, झुमके सब उड़ा लिए गए। रजिस्टर में एंट्री बाद में होती थी, चोरी पहले कर ली जाती थी। देश के सबसे अमीर तिरुपति बालाजी से लेकर पद्मनाभ स्वामी और अयोध्या के राम मंदिर तक भक्तों ने दिल खोल कर अरबों खरबों का दान दिया। लेकिन सवाल अब ट्रस्ट प्रबंधन पर खड़ा होता है। भक्त जानना चाहते हैं कि जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों हिंदुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई सौंप दी, वहां सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? श्रद्धा की इस डकैती का हिसाब कौन देगा? इसके बाद आपको देश भर से आई मुहर्रम के जुलूस की तस्वीरें दिखाएंगे। मुहर्रम के मौके पर देश के कई राज्यों से तनाव, बवाल और बड़े हादसों की खबर आ रही है। कहीं खूनी झड़प और पत्थरबाजी हुई, कहीं नियमों को ताक पर रखने से ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही। आखिर में आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया में अपनी साख और धाक खो चुके हैं? प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 4 में से 3 लोग ट्रंप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। आखिर क्यों दुनिया ट्रंप से चिढ़ी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भगवान श्री राम के साथ इस देश में ऐसा ही हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म एक सामान्य राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि लंबे इंतजार और तपस्या के बाद हुआ था। बहुत कम आयु में ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जाना पड़ा और राजमहल का सुख छोड़कर राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। माता सीता के साथ विवाह हुआ तो राज्याभिषेक के दिन सारे अधिकार और वैभव त्याग कर 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। यह भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन इसे भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जब इसी वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भी उन क्षणों में भगवान राम अपने पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। उनके कष्ट ज्यादा थे, लेकिन उनकी देह पर कभी इनकी परछाई तक नहीं पड़ी। 14 वर्षों के वनवास के दौरान उन्हें राजपाट छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, ऋषियों की रक्षा करनी पड़ी, राक्षसों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा और राजकुमार होकर भी एक तपस्वी जैसा जीवन उन्होंने जिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रावण का वध हो, राजधर्म के लिए पारिवारिक सुखों का त्याग हो या माता सीता का पृथ्वी में समा जाना, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कई कष्ट और अप्रत्याशित घटनाएं देखी। और जब एक एक करके इन तमाम वियोग के बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी के तट पर गुपकार घाट पर वैकुंठ की ओर रवानगी की, तब भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जब भारत में मुगल काल आया तो अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बना दी गई और इस अन्याय के खिलाफ भी उन्हें अपनी ही जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों का वनवास काटना पड़ा। और आखिरकार जब यह वनवास पूरा हुआ और अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की स्थापना से पहली बार ऐसा लगा कि अब न्याय हो गया है, तो फिर सब कुछ सही होते हुए भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए गए चढ़ावे को ही चुरा लिया गया। और इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में भगवान श्री राम के साथ ऐसा ही हुआ है और यह सब देखकर लगता है कि उनका संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ। दुनिया में 15 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां की संस्कृति में रामायण का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, भारत समेत इन तमाम देशों में 2000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम को समर्पित हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन देशों में भगवान श्री राम के मंदिरों या उन मंदिरों में चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर वैसा कोई विवाद नहीं जैसा विवाद हमारे अपने देश भारत में हुआ। वो भारत जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि, किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भगवान राम के अपने देश में उन्हीं की जन्मभूमि पर बनाए गए मंदिर के चढ़ावे से चोरी हो जाएगी। खुद सोचिए, जब साल 2019 में लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर निर्णय सुनाया, तब क्या आपने ये सोचा था कि इसी मंदिर के लिए इस देश को एक और कानूनी लड़ाई देखनी होगी, और वो लड़ाई भी उन चढ़ावा चोरों के खिलाफ होगी जो इतने बेईमान हो जाएंगे कि भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो FIR है उसमें इस चोरी को लेकर मुख्य रूप से चार बातें बताई गई हैं। पहला, मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों ने पैसे चुराए, उनका गबन किया। दूसरा, यह काम सुनियोजित और बार बार किया गया, यानी यह चोरी कोई एक बार की गलती नहीं थी बल्कि इसमें योजनाबद्ध तरीके से और कई बार अपराध किया गया। तीसरा, इस FIR में 6 लोगों को सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया है। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा का नाम शामिल है। इन पर चढ़ावे की चोरी, मंदिर को भेंट में मिले जेवरातों के गबन, आपराधिक विश्वासघात, षड्यंत्र और चोरी की संपत्ति रखने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और इस FIR की चौथी बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में मानी गई है। इनमें सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और ट्रस्ट और बैंक के कुछ कर्मचारी शामिल हैं। यहां यह भी देखना होगा कि यह FIR श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद दर्ज कराई है। इसमें ट्रस्ट के एक भी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल नहीं है। क्यों नहीं है यह पूरा देश जानना चाहता है, और क्यों जानना चाहता है उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। SIT की रिपोर्ट कहती है कि रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर के व्यवस्थापक थे, जिनके पास उस कमरे की चाबी रहती थी जहां दान पेटियों का पैसा गिना जाता था। और आरोप है कि टिन्नू यादव ने खुद इस चोरी में कई बार दूसरे आरोपियों की मदद की और वो इसमें शामिल रहा। उसके बाद मनीष यादव को लेकर यह बताया गया है कि वो चढ़ावे की गिनती करता था और जांच के दौरान पुलिस को उसके घर से कुछ कैश भी बरामद हुआ, यानी सरकार, पुलिस और मंदिर ट्रस्ट इन दोनों आरोपियों को चढ़ावा चोर मानकर चल रहे हैं। लेकिन यहां कोई ये नहीं बता रहा कि ये दोनों मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी थे। टिन्नू यादव को राम मंदिर में इसीलिए प्रवेश मिला क्योंकि वो चंपत राय का ड्राइवर था, और मनीष यादव को राम मंदिर में चढ़ावा गिनने की नौकरी इसलिए मिली क्योंकि वो टिन्नू यादव का भतीजा था। अब इससे यह सवाल पैदा होता है कि जब चोरी करने वाले ही चंपत राय के करीबी थे तो उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए इस FIR में उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरा, इस FIR में लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया है जो गिनती के दौरान चढ़ावे की चोरी करते थे। इन आरोपों में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों आरोपी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आरोप है कि पहले अनिल मिश्रा ने सिफारिश से अपने रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को मंदिर प्रबंधन की नौकरी दिलाई, और फिर अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को वाराणसी की उस सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती कराया जिसे SBI बैंक ने चढ़ावा गिनने का ठेका दिया था। यानी यहां भाई भतीजावाद के मॉडल पर मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो रही थी, लेकिन फिर भी FIR से अनिल मिश्रा के नाम को बाहर रखा गया। अमूमन ऐसे मामलों में जब SIT की प्रारंभिक जांच के आधार पर FIR दर्ज कराई जाती है तो उनमें संदिग्धों का नाम भी जरूर शामिल किया जाता है। लेकिन यहां छोटी मछलियों को तो गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन जिन प्रभावशाली लोगों की इसमें मिलीभगत होने की आशंका है उनका इनमें जिक्र नहीं है। हैरानी की बात यह है कि FIR में बड़े पदाधिकारियों का नाम नहीं है, लेकिन यही बड़े पदाधिकारी खुद नैतिकता के आधार पर अपने पदों से इस्तीफा भी दे रहे हैं, और इनमें भी वो दो नाम प्रमुख हैं जिनके बारे में हमने अभी बताया। एक है महासचिव चंपत राय, दूसरे हैं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इस देश में भगवान राम ने कई वनवास देखे हैं। एक वनवास राज्याभिषेक के लिए था, दूसरा वनवास अपनी ही जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने के लिए था, तीसरा वनवास इस मामले में सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए था जो 20 दिन तक चला। और अब शायद एक वनवास यानी एक लंबा इंतजार बड़े नामों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करने और न्याय मिलने के लिए भी देखना पड़ेगा।
1: जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
1: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
3: क्या पैसा
2: बढ़ गया?
1: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया। जब से उस मंदिर में मतलब काम किया तब से वो उस घर की स्थिति ज्यादा ही कुछ बढ़ गई।
3: और लोकुश मिश्रा कौन है?
1: लोकुश मिश्रा मेरे रिश्ते में दामाद लगेंगे, जेठ के दामाद हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ,
3: तो लोकुश का भी यही हाल है? लोकुश के यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या?
1: हाँ, मुझे जानकारी है कि लोकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 40 लाख का प्लाट लिया है जिसमें मकान बनवा रहा है।
0: अगर इस मामले को सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित मान लिया गया तो ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ इंसाफ नहीं होगा। हकीकत में यह मामला भरोसे और आस्था की चोरी का भी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे देश में एक नई सनातन लहर दिखी। यह लहर थी अयोध्या की राम जन्मभूमि पर जाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखने की, उनके दर्शन करने की। इसके कारण साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग राम मंदिर आए, जबकि 2025 में 29 करोड़ 95 लाख लोग राम मंदिर गए दर्शन करने। अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो यह संख्या 46 करोड़ 39 लाख होती है, जो अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी से भी 12 करोड़ ज्यादा है। यही नहीं, इन्हीं 2 वर्षों में कितने लोग भारत के दूसरे मंदिरों में गए उसके आंकड़े भी आप देखिए। और इन आंकड़ों से ये समझ सकते हैं कि अगर भारत का हर व्यक्ति राम मंदिर पहुंच रहा था या वहां जाने की इच्छा रख रहा था तो उस भरोसे को इस चोरी ने किस कदर चोट पहुंचाई। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब अदालत ने अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को सौंप दी थी, लेकिन उस जमीन पर आज भी एक ईंट नहीं रखी गई। और कारण यही है कि उस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों से चंदा ही नहीं मिला, जबकि इसी दौरान राम मंदिर बनाने के लिए देश के करोड़ों राम भक्तों ने दिल खोलकर चंदा दिया। 30 नवंबर 2025 तक कुल 4,575 करोड़ रुपए का चंदा भारत के लोगों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया, और इनमें भी मंदिर निर्माण पर कुल पैसा खर्च होने के बाद भी लगभग 2100 करोड़ रुपए बच गए। और ऐसा नहीं है कि यह पैसा बचने के बाद लोगों ने दान देना बंद कर दिया। 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 82 करोड़ 78 लाख रुपए का चंदा और आया। और यह सोचिए कि चंदा आ क्यों रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस देश के लोग चाहते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर अपने वैभव से पूरी दुनिया में चमके। लेकिन सोचिए इस चोरी ने इस चमक को और लोगों के भरोसे और आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है।
4: बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी का हम सबके बीच में। जय श्री राम,
5: अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे, भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
0: जो लोग प्रभु श्रीराम के चरणों में आए चढ़ावे में बेईमानी कर रहे थे, उन्होंने इंसानों की निगाहों से बचने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वो सीसीटीवी कैमरों से बच गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने कैमरों की पहुंच का अंदाजा लगाया, यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनकी हरकतें कहीं रिकॉर्ड ना हो जाएं। लेकिन शायद वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए। वो भूल गए कि इंसानों के बनाए हुए कैमरे केवल दीवारों और कमरों को देखते हैं, लेकिन ईश्वर का कैमरा इंसान के मन को भी देखता है। और यहां भी यही हुआ। प्रभु श्रीराम का सीसीटीवी 24 घंटे चल रहा था, और इसमें सिर्फ हाथों की चोरी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बल्कि इसमें इन चढ़ावा चोरों की नियत को भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इसी वजह से सीसीटीवी कैमरों और फुटेज से छेड़छाड़ करने के बाद भी ये लोग पकड़े गए। और अब तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब एसआईटी ने कई घंटों की सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया तो उसमें 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच कुल 70 बार इन सभी लोगों को मंदिर के चढ़ावे से चोरी करते हुए पकड़ा गया। और ये 70 चोरी भी तब पकड़ी गई जब सिर्फ 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हो चुके हैं। और उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर में बड़े स्तर पर चढ़ावे को चंपत किया जा रहा था। और आज ही स्थानीय अदालत ने सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए,
6: राम मंदिर जो अयोध्या का मामला था उसी सिलसिले में एसआईटी ने जांच किया था। जांच के अनुक्रम में ये पाया गया, बहुत सारे उसमें नाम प्रकाश में आए थे, उसी एसआईटी की जांच के अनुक्रम में एफआईआर हुआ है, 8 लोगों के खिलाफ हुआ है, कुछ अज्ञात में भी हुआ है। तो अभी अज्ञात के विरुद्ध तो विवेचना जारी रहेगी। जो ज्ञात हुए हैं 8 लोग गिरफ्तार किए गए, इनकी सुबह की गिरफ्तारी आज दिखाई गई है और उनका रिमांड लिया गया है। उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो रिमांड मजिस्ट्रेट इसमें निवेदिता जी थी, इनके समक्ष पेश किया गया और इन्होंने 3 दिन का रिमांड दिया है, न्यायिक अपरक्षा के लिए रिमांड दिया है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं भी लगी हुई हैं। वो स्पेशल न्यायालय होता है, तो वो मंडे को उनको उनके समक्ष पेश होंगे, फिर से और जो विवेचना के क्रम में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से विवेचना और आगे बढ़े, उनका रिमांड आगे बढ़ेगा।
7: तो अभी सभी 8 लोगों को यहां से जेल भेज दिया गया है
6: जी। यहां से उनको रिमांड होने के बाद में न्यायालय का आदेश के उपरांत उनको वारंट बना करके जेल भेज दिया गया।
0: अब आप ये देखिए कि राम मंदिर में चढ़ावे की ये चोरी हो कैसे रही थी। पहली बार इस चोरी का शक मई महीने के आखिरी हफ्ते में जताया गया। कारण यह था कि उस वक्त हर दान पेटी में 7 से 8 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, और इनमें जो भक्त 500 रुपए के नोट दान पेटी में डालते थे उन नोटों की अलग से गड्डियां बनाई जाती थी। जब यह बात सामने आई कि दान पेटियों से 500 की गड्डियां कम निकल रही हैं और धीरे धीरे चढ़ावे का पैसा कम होते जा रहा है, तो गणना कक्ष में ऐसे कैमरे लगाए जो गुप्त थे, जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। गणना कक्ष वही निर्धारित कमरा है जहां चढ़ावे के पैसों की गिनती होती थी और मंदिर प्रबंधन को शक था कि चढ़ावे का पैसा चुराया जा रहा है। इसके बाद जो हिडन कैमरा लगाए गए हैं उनमें यह पता चला कि जब चढ़ावे का पैसा गिना जाता था तब कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि सीसीटीवी कैमरों में उनकी यह चोरी रिकॉर्ड न हो। यहीं से पहली बार यह बात पुख्ता हुई कि कुछ कर्मचारी चढ़ावे के पैसों को अपनी जेब में भर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं और इसमें कई स्तर पर लोग शामिल हैं। यह भी पता चला कि जो 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी उनमें हर गड्डी में अतिरिक्त नोटों को डाल दिया जाता था। जैसे 500 रुपए के 100 नोटों की एक गड्डी है तो उसमें 20 नोट अतिरिक्त डाल दिए जाते थे। और ऐसा क्यों किया जाता था? इसलिए क्योंकि गिनती के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इन्हें बैंक में जमा करते वक्त सिर्फ ये देखते थे कि गड्डियां कितनी हैं, ये मानकर चलते थे कि हर गड्डी में 100 नोट ही होंगे। इस तरह हर गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा चढ़ावा चोर चुरा लिया करते थे और मंदिर से बाहर निकलते ही ये पैसा चंपत हो जाता था। यहां जो कर्मचारी चढ़ावे के वाउचर बनाता था अगर वो ईमानदार होता तो भी ये चोरी रुक सकती थी, लेकिन ये कर्मचारी भी बेईमान निकला और इसका नाम है अनुकल्प मिश्रा, जो मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और यही व्यक्ति चढ़ावे के फर्जी वाउचर बनाता था ताकि नोटों की गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट डाले गए हैं वो पार हो सके। जब शुरुआत में यह मामला पहली बार खुला तभी अनुकल्प मिश्रा संदेह के घेरे में था और पुलिस को जांच के बाद अनुकल्प मिश्रा के साले लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। और यहां ये मत भूलिए कि अनुकल्प मिश्रा ने लवकुश मिश्रा को चढ़ावा गिनने की नौकरी दिलाई थी। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि जो 36 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती करते थे वो सभी एक दूसरे से परिचित थे और किसी न किसी की सिफारिश से वहां पर नौकरी कर रहे थे। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सारे चढ़ावा चोर एक दूसरे को जानते हों और किसी भी तरह उनकी चोरी सामने ना आए। इसके अलावा जिस अविनाश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो चढ़ावे से चुराए गए पैसों को अपने बैंक खातों में जमा करा रहा था और SIT को इसके साक्ष्य भी मिल गए।
8: ये सबसे आगे पीले जो कुर्ते में है ये रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत ये सभी 8 आरोपी हैं। मनीष यादव, ये सारे लोग को देखिए, ये 2 अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जा रहा है और ये 8 आरोपी जो सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, इन सभी को आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अयोध्या की SOG के द्वारा इनको पेश किया गया, भारी सुरक्षा के बीच में लाया गया, सभी 8 आरोपी लाए गए। और बीच में देखिए कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो स्कॉर्पियो के बीच में बैठा है, ये रामशंकर यादव, टिंडू यादव है। रामशंकर यादव, टिंडू यादव को बीच में रखा गया है और इसके अलावा बाकी तमाम अन्य आरोपियों को 2 गाड़ियों में ले जाया गया।
0: राम मंदिर के चढ़ावे में हुए चोरी के बाद ये सवाल भी जरूर पूछा जाएगा कि आखिर मुगल काल और मौजूदा काल में क्या अंतर रहा। 2024 में IIM अहमदाबाद ने इस विषय पर अध्ययन किया कि भारत में पहले मंदिरों के पास इतना सोना क्यों हुआ करता था। जब ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ा और समझा गया तो ये पता चला कि आज से 1000 साल पहले भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लोगों की आस्था, श्रद्धा, राजाओं की तरफ से दान देने के कारण हमारे मंदिर सोने हीरे जेवरातों से भरे रहते थे। यही बातें जब विदेशी आक्रांताओं को पता चलती तो भारत के मंदिरों का सोना लूटने के लिए कई हमले करते। सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को लूटा, फिर तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी ने भी यही किया, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भारत के मंदिरों को लूटा, बाद में मुगल काल में भी कई मंदिर निशाना बने और मुगल शासक औरंगजेब ने तो कई मंदिरों को तुड़वाया और उनका सोना लूट कर अपना खजाना भरा। अब सोचिए ये सब उस मुगल काल में होता था, लेकिन आज अगर मौजूदा काल में भी इसी देश के कुछ बेईमान लोग मंदिर का चढ़ावा लूटने लगेंगे तो मुगल काल में और आज के मौजूदा काल में क्या अंतर रह जाएगा। आप सोचिए उस वक्त की लूट को हम ये कहकर भुला देते हैं कि गौरी, गजनवी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन आज तो कोई औरंगजेब नहीं है, कोई गजनवी नहीं है, कोई मोहम्मद गौरी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर के चढ़ावे से धन चुराया जा रहा है और ये भी सोचिए कि धन चुरा कौन रहा है, वो रामशंकर यादव जो अपने नाम में ही प्रभु श्री राम का नाम लगाता है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार यही रामशंकर यादव बार बार मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आता जाता था जहां दान पेटियां खुलती थी, और आरोप है कि यही लोग मंदिर में चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात, बाली, झुमके, नथ, कंगन, पायल सब चोरी कर रहे थे, और ये चोरी भी पहले की जाती थी और बाद में बचे हुए जेवरातों का हिसाब रजिस्टर में लिखा जाता था। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज भी हमारे मंदिरों के पास कोई कम पैसा सोना नहीं है। संपत्ति के मामले में भारत का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी है, जिसके पास 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, और ये पैसा हमारे कई मंत्रालयों के सालाना बजट से ज्यादा है। इसके बाद केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1,20,000 करोड़, ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के पास 1,20,000 करोड़ और अयोध्या के श्रीराम मंदिर के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं मंदिरों में दान देने में संकोच नहीं करते, लेकिन सोचिए अगर मंदिरों का यही दान चोरी होने लगे और इससे लोगों की आस्था को चोट पहुंचे तो ये कितना बड़ा छल है। और क्या हमारे देश में कोई कानून ऐसा है जो इस आस्था की चोरी के लिए लोगों को सजा दे सके? राम मंदिर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला हो, कोई नई घोषणा हो, कोई विवाद हो या फिर कोई प्रशासनिक मुद्दा सामने आए, एक नाम ऐसा रहा जो हमेशा चर्चा के केंद्र में आया है और वो नाम है चंपत राय। इस विवाद से पहले तक चंपत राय हर कैमरे के सेंटर फ्रेम में होते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि SIT की जांच और इस मामले में उन पर उठ रहे सवालों को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे, न किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। आज जब पूरे देश में चंपत राय की इतनी चर्चा है और यह भी कहा जा रहा है कि उनका नाम FIR में क्यों नहीं आया, तब हमें लगा कि पूरे देश को यह पता होना चाहिए कि चंपत राय कौन है। वर्तमान में चंपत राय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। राम मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्था, निर्माण कार्य की निगरानी, दान और चढ़ावे के प्रबंधन, ट्रस्ट की बैठकों और आधिकारिक संवाद की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं के पास है। यही वजह है कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर ट्रस्ट का सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा अक्सर चंपत राय ही होते हैं। लेकिन चंपत राय की कहानी केवल एक प्रशासक या ट्रस्ट पदाधिकारी की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिनके लिए अब तक यही माना जाता था कि उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन और संगठनात्मक कार्यों को समर्पित कर दिया। चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और बिजनौर के RSM डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक रहे, लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की ओर था। 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया तब संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद के वर्षों में उन्होंने अध्यापन का जीवन छोड़कर प्रचारक बनने का निर्णय लिया और स्वयं को पूरी तरह RSS के काम में समर्पित किया। 80 का दशक राम जन्मभूमि आंदोलन के विस्तार का दौर था और इस दौर में चंपत राय इस आंदोलन के सक्रिय और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में शामिल हुए। वो विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेता अशोक सिंघल के बेहद करीबी सहयोगियों में गिने जाने लगे। 1984 की धर्म संसद के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप दिया गया तब संघ के कई प्रचारकों को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया था, इनमें चंपत राय भी शामिल थे। यानी चंपत राय RSS से निकले और फिर विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा बने, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और झारखंड में संगठन विस्तार का काम संभाला। 1990 की कार सेवा के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठित करने और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं संभालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया उस समय भी वो अयोध्या में मौजूद थे। आंदोलन के उग्र और निर्णायक दौर में वो अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे नेताओं के विश्वसनीय सहयोगी बनकर उभरे। कहा जाता है कि अयोध्या विवाद के इतिहास, उससे जुड़े दस्तावेजों, मुकदमों और तथ्यों की उन्हें इतनी गहरी जानकारी है कि संगठन के भीतर उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का इंसाइक्लोपीडिया तक कहा जाने लगा। जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तब हिंदू पक्ष को ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शे और साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। यानी राम मंदिर के लिए जो कानून

0: जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब रावण उस युग की बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक था। आज भी जब आप दशहरे का त्योहार मनाते हैं तो उसे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार ही कहा जाता है। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि त्रेता युग में रावण जैसी बुराई का अंत करने वाले भगवान श्री राम कलयुग में बेईमानी और लालच की बुराई का अंत करने का जरिया बन सकते हैं, और हमारी सरकारों और अदालतों को इस मामले में कानूनी कार्रवाई की एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए जिससे अगली बार अगर कोई ऐसी बेईमानी और चोरी करने के बारे में सोचे तो उसके हाथ कांपे और ऐसी घटनाएं कभी ना हो। खैर, इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उसे भी आज आपको देखना चाहिए, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आज अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने इस चढ़ावा चोरी को महापाप बताया। हम भी मानते हैं कि यह महापाप है, लेकिन जब ये बातें राजनीति के लिए कही जाती हैं तो इस देश को भी ये पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बार कहा था कि जब उन्होंने विवादित ढांचे के विध्वंस के बारे बाद अपनी नानी से ये पूछा था कि अब तो वो खुश होंगी, तो उनकी नानी ने कहा था कि उनका राम किसी की मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं रहेगा। लेकिन आज यही केजरीवाल इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह SIT को इस मामले में सबूत सौंपने के लिए अयोध्या आए, और आज इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर पहुंच गए।
1: जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है, तो फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
2: इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से, जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे ये। इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध, और मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति

0: नीति से न हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई, भाजपा आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे, उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे।
1: से मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो, कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार कदाचार पर, जीरो टॉलरेंस। लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ?
2: क्या अयोध्या को बदनाम करने की
1: पूरी साजिश है? और हम फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है।
2: सर साजिश कौन कर रहा है?
1: हम कह रहे, मैं नाम तो ले रहा हूँ, जरा पूछो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से।
2: चोरी का बात तो
1: आप पूछिए, एफआईआर हो गया है ना
2: सर,
1: तो तफ्तीश आप करोगे? तफ्तीश कौन करेगा, कौन जांच करेगा? मान्यवर कौन जांच करेगा तो पूछो।
3: इस मामले में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न्याय कहीं अदालतों में तारीखों के बीच फंस कर न रह जाए। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हमारा ये विश्लेषण देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे अनोखे और करीब 70 वर्ष पुराने भूमि विवाद का निपटारा किया है, जो केवल एक मुकदमा नहीं बल्कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में तारीख पर तारीख वाली परंपरा को दिखाता है। यह मामला इतना पुराना है कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से होकर गुजरा है। और जब यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन यह मुकदमा अदालतों की फाइलों में चलता रहा। सोचने वाली बात यह है कि इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दोनों जजों का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी। यानी जिस मुकदमे की सुनवाई उन्होंने पूरी की, उसकी उम्र उनके न्यायिक जीवन से भी ज्यादा थी। यह विवाद 4 जून 1957 को हरिद्वार के नरसीपुर कला गांव में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को शराफत अली के पूर्वजों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन क्योंकि उस समय वो नाबालिग थे, इसीलिए जमीन की खरीद उनके पिता ने की थी। इस मुकदमे का सबसे मार्मिक पहलू यही है कि इसमें केवल समय नहीं बीता बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ियां बीत गईं। जिस व्यक्ति के परिवार ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, वो अंतिम फैसला सुनने के लिए जीवित नहीं रहा। अपील करने वाले शराफत अली का इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान देहांत हो गया और इसके बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इस तरह एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां लगभग 7 दशक तक एक जमीन के अधिकार के लिए अदालतों के चक्कर लगाती रही। और यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, यह उस भारतीय न्याय व्यवस्था का भी आईना है जहां कई बार मुकदमे लोगों की पूरी जिंदगी से भी लंबे हो जाते हैं और कई लोग न्याय की उम्मीद लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन फैसला उनकी अगली पीढ़ी सुनती है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसलों को भी पलट दिया और यह माना कि अपील करने वाले व्यक्ति का ही इस भूमि पर वास्तविक और वैध अधिकार है। इस घटना के बाद फिर से बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या न्याय मिलने में 7 दशक लग जाना भी न्याय कहला सकता है? अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, एक ऐसा मुल्क जिसके राष्ट्रपतियों के हर एक फैसले से वैश्विक राजनीति की दिशा बदल जाती थी, लेकिन आज उसी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे नापसंद किए जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में सबसे आगे आ खड़े हुए हैं। यह दावा मशहूर प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में किया गया है। 36 देशों में किए गए इस सर्वे में 42,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए इस सर्वे के अनुसार 76% लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। यानी दुनिया के 4 में से 3 लोग ट्रंप की बातों या नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते। सोचने वाली बात यह भी है कि अभी भी 37% लोग ऐसे हैं जिनके अमेरिका के बारे में राय अच्छी है, लेकिन केवल 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रंप पर भरोसा है। साफ है कि दुनिया के 2/3 लोग ट्रंप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। हालत यह है कि अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा में, जहां 2022 में 83% लोग अमेरिका को एक भरोसेमंद साथी मानते थे, आज वो आंकड़ा गिरकर केवल 35% रह गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए आंकड़ा 79% से घटकर 37% रह गया है। स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इटली जैसे तमाम देशों का यही हाल है, अब वो अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी नहीं मानते। आखिर दुनिया ट्रंप से इतनी चिढ़ी हुई क्यों है? इसकी वजह है अमेरिका फर्स्ट के नाम पर लिए गए उनके वो फैसले जिन्होंने दुनिया में शांति और स्थिरता को दांव पर लगा दिया और पूरी दुनिया का माहौल खराब कर दिया। उन्होंने दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू किया, भारत, चीन और यूरोप समेत अपने ही दोस्तों पर मनमाने टैक्स थोपे। उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन उठवा लिया, लैटिन अमेरिका में जबरन दखलंदाजी की कोशिशें की। सबसे खतरनाक रहा ईरान के साथ सैन्य तनाव, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की कगार पर धकेल दिया। प्यू रिसर्च के अनुसार 74% दुनिया ट्रंप की ईरान नीति के सख्त खिलाफ है। ट्रंप की साख गिरने की एक बड़ी वजह उनके बयानों और दावों में बार बार बदलाव, पलटना और विरोधाभास भी है। उन पर झूठ बोलने के आरोप लगते हैं। दुनिया अब अमेरिकी दावों को संदेह की नजर से देखती है। ट्रंप ने एक बार सरेआम दावा कर दिया था कि डाइट कोक पीने से कैंसर खत्म हो सकता है। मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने तुरंत इस दावे की धज्जियां उड़ा दी, इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप की इस डाइट कोक से मोहब्बत कितनी गहरी है, इसका खुलासा अब खुद उनकी पोती ने अपने व्लॉग में किया है। पोती के अनुसार ट्रंप को डाइट कोक पीने की भयंकर लत है। उन्होंने अपने दफ्तर की टेबल पर एक सीक्रेट लाल बटन लगवा रखा है। ट्रंप जैसे ही ये बटन दबाते हैं उनके सामने डाइट कोक हाजिर हो जाता है, ये उन्होंने लिखा।
4: So everything is gold because my grandpa hates gold, so he actually decided to add a lot of gold to the Oval Office.
5: Sure.
4: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out. I mean, that's the Oval Office. It's pretty cool. I mean, the paintings are really cool. This stuff that's been kind of around forever, you know? So it's really special. And yeah. This chair is actually pretty comfortable too. It's a very, very heavy big chair, but yeah, it's nice.
3: कभी मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के बारे में आज दुनिया के 56% लोग मानते हैं कि खुद अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान नहीं करती। अमेरिकी लोकतंत्र की सेहत पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ठगी के मामलों पर एक नया नियम बना दिया है जो ठगी का शिकार बनने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। मान लीजिए कि किसी दिन आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई और आपके खाते से 20-25 हजार रुपए कट गए। ठगी के शिकार लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि क्या उनके पैसे वापस आएंगे। दरअसल ऑनलाइन ठगी के मामलों में पैसे की रिकवरी बहुत मुश्किल से हो पाती है। कार्रवाई होती दिखने पर भी ठगे गए व्यक्ति को कोई खास राहत नहीं मिलती। लेकिन अब आरबीआई ने इस तरह के मामलों में नया एक्शन लिया है। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आरबीआई आपको मुआवजा देगा। ये नियम 1 जनवरी 2027 से देश के सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक इसमें शामिल नहीं है। ये नियम सभी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले पेमेंट। आमतौर पर जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बैंक अक्सर ग्राहकों को जिम्मेदार बताकर पैसे देने से बचते हैं। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक ये कहकर नहीं बच सकते, बल्कि उन्हें ग्राहक की लापरवाही को साबित करना होगा। आरबीआई ने भुगतान को लेकर तीन बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, अगर ऑनलाइन फ्रॉड बैंकों की किसी गलती से हुआ है, जैसे कि सुरक्षा में चूक, सिस्टम में गड़बड़ी या बैंक द्वारा आपको सूचना न भेजना, तो ऐसे मामले में बैंक को पूरे पैसे का भुगतान करना होगा, फिर चाहे ग्राहक ने सही समय पर जानकारी दी हो या न दी हो। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन फ्रॉड में कोई तीसरा पक्ष शामिल है, जैसे कोई पेमेंट ऐप या पेमेंट गेटवे, ऐसी स्थिति में आपको बैंक से ही पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन इस केस में आपको घटना के 5 दिनों के अंदर बैंक को जानकारी देनी जरूरी होगी। तीसरी बात, इसके अलावा अगर ऑनलाइन फ्रॉड आपकी लापरवाही से हुआ है, जैसे अगर आपने ओटीपी दे दिया या चेतावनी को अनदेखा किया या फिर कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जानकारी देनी होगी, तभी पेमेंट का प्रोसेस हो सकेगा। मुआवजे की सीमा भी तय है। नियम कहते हैं कि भुगतान पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को केवल एक ही बार मिलेगा, यानी ठगी की पहली रिपोर्ट पर ही पैसा वापस मिल पाएगा और भुगतान के तौर पर ठगी की रकम का 85% या अधिकतम 25,000 रुपए तक ही मिलेगा। मुआवजे का मतलब यह नहीं कि आप ऑनलाइन ठगी के प्रति लापरवाह हो जाएं, बल्कि ज्यादा सावधान रहना है। आरबीआई का यह कदम एक बड़ी राहत है, क्योंकि हमारे देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के 86% लोग किसी न किसी माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन ठगों का दायरा भी इसी हिसाब से बढ़ता गया है। 2022 में देश में साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के 10,29,000 मामले सामने आए थे। अगले दो वर्षों में ये केसेस बढ़कर 22,68,000 हो गए। भारत में साइबर क्राइम पर एक्शन लेने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अब तक साइबर फ्रॉड से जुड़ी 3,962 स्काइप आईडीज, 83,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स, 9,42,000 सिम कार्ड्स, 2,63,000 से ज्यादा IMEI नंबर को ब्लॉक किया है। साइबर फ्रॉड की शिकायतों पर एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साइबर ठग नए नए तरीके निकाल लेते हैं। इसीलिए आपका सतर्क रहना जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो डिजिटल अरेस्ट की धमकी दें, AI वॉइस के जरिए पैसे और OTP मांगे या जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का लालच दें। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, पर हमारी मुलाकात का सिलसिला रात 9 बजे चलता रहेगा। तब तक देखते रहिए आज

0: श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आज सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जाँच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्री राम मंदिर के मुद्दे ने BJP को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्री राम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्री राम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब खबर पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो गई। भगवंत मान के आरोप के बाद अब मास्क मैन का वीडियो भी सामने आया, जो मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनू कदे यही जी बात नहीं बोले, जिमे तू बोलना दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट करे, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इतों बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि ये अखा नहीं लग सकदिया, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन दिया, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: 2 जिहड़ियां जहेदार साहब ने कराईया, उन्हां 3 लैबां च कितें मास्क दा जिक्र नहीं। जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारी पा दे, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी आ, एक्टर भी होऊगा, ते सारी पा दे, नशर कर दे।
7: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था, तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना, भी ये मास्क है, वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुम 10 लाख रुपया करते पे, होटल से कमरे बुक कराने पे आ, तो कहदे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं, तुसीं तां फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
0: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो?
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
0: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
12: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
0: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
13: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
14: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
13: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
0: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
15: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
15: आप पहचानती नहीं थे? आप भी नहीं
12: पहचानती नहीं थी।
15: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
11: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
15: हाँ।
11: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। मेरा साहिल।
11: हाँ। उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
15: हाँ।
11: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
12: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
16: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी है। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
17: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
18: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
17: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
17: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है निर्णय।
19: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
16: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर यह भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
16: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
12: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
15: जी,
12: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
15: जी,
12: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
15: ओके
11: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
15: मोबाइल में चैट है उसका।
11: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
15: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
11: हाँ जी ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
15: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
11: चैट, हाँ जी तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
20: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
16: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
1: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
16: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
21: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले, गए, रिश्ता पक्का हो गया।
16: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
15: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
12: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
11: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
16: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की यह तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासु और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए हैं। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में बसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वही मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो
6: खबर, पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। मेरा तो साहिल।
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
8: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
15: सकता। अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना है, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
7: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार भाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का

0: केतन के परिवार ने तो ये तक दावा किया था कि सिया ने केतन की माँ को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
1: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
2: जी,
1: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
2: जी,
1: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
2: ओके
3: और ये सीआई के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
2: मोबाइल में चैट है उसका,
3: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है।
2: हाँ।
3: अपन और कहीं चलते हैं, तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
2: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
3: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
2: ये चैट भी है मोबाइल में।
3: अब तो
2: पुलिस ने रिकॉर्ड
3: कर लिया। हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
4: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
0: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
5: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
6: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
2: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
3: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
0: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
7: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आईं, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासु और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है, तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े, तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची, तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
0: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
5: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
6: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है? लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
0: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर ये कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
7: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: यह खबर दुनिया की है, जहाँ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव है। सीज फायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का है।
8: अमेरिका ईरान सीज फायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इसराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंकाकांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब खबर पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो गई। भगवंत मान के आरोप के बाद अब मास्क मैन का वीडियो भी सामने आया, जो मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनु कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट कर रहे हो, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इतो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन दिया, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: दो जड़ियां जहेदार साहब ने कराई, उन्होंने 3 लैबां च कि मास्क का जिक्र नहीं, जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारे पा दिओ, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी आ, एक्टर भी होऊगा, ते सारे पा दिओ, नशर कर दिओ।
7: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो साड़ी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना भी ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुम 10 लाख रुपया करते पे, होटल से कमरे बुक कराने पे आ, तो कदे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुम तो फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
0: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
0: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
12: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
0: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है। क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
13: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
14: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
13: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
0: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
15: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
15: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
15: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
11: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
15: हाँ।
11: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। तो मेरा साहिल।
11: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
15: हाँ।
11: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
12: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
16: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
17: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
18: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
17: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
17: जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
19: खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
16: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार भाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
16: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
12: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
15: जी,
12: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
15: जी,
12: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
15: ओके
11: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
15: मोबाइल में चैट है उसका,
11: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
15: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
11: हैं। हाँ जी ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
15: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
11: रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
20: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
16: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया। रही थी लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
17: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
16: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
1: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
16: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
21: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
12: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
11: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
16: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटमनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूचबिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो
6: खबर। पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो और अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। मेरा साहिल।
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
8: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है निर्णय।
15: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
7: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके आप

0: जी,
1: अपन चलते हैं।
0: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके
1: हाँ
0: आते,
1: जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल
0: ये
1: जाएंगे,
0: चार्ज भी है मोबाइल में। अब
1: सीआई
0: तो
1: के
0: पुलिस
1: मोबाइल
0: ने
1: में
0: रिकवर कर
1: चैट।
0: लिया
1: हाँ
0: होगा।
1: जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
0: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
2: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
3: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
2: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
4: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं। फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले, गए, रिश्ता पक्का हो गया।
2: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
5: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
6: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
1: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
2: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
7: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों

0: से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
1: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी, लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
2: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
3: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया, अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
2: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
0: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
4: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
5: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है? लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटकाकर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
0: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
6: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
2: यह खबर दुनिया की है, जहाँ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव है। सीज फायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का है।
7: अमेरिका अमेरिका ईरान सीजफायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं।
8: ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים. ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
7: बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इसराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी, सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गन्ना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब खबर पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो गई। भगवंत मान के आरोप के बाद अब मास्क मैन का वीडियो भी सामने आया, जो मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनु कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट कर रहे हो, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इतो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन दिया, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: दो जड़ियां जहेदार साहब ने कराई, उन्होंने 3 लैबां च कि मास्क का जिक्र नहीं, जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारी पा दिओ, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी आ, एक्टर भी होऊगा, ते सारी पा दिओ, नशर कर दिओ।
7: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो साड़ी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना भी ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुम 10 लाख रुपया खर्चते पे होटल से कमरे बुक कराने पे हैं तो कहदे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुम तो फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
0: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
0: केतन को किले से धकेलकर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
12: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
0: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है। क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
13: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो और अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
14: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
13: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
0: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
15: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
15: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
15: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
11: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
15: हाँ।
11: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। तो मेरा साहिल।
11: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
15: हाँ।
11: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
12: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
16: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
17: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
18: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
17: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
17: जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
19: खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
16: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
16: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
12: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
15: जी,
12: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
15: जी,
12: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
15: ओके
11: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
15: मोबाइल में चैट है उसका,
11: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
15: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
11: हैं। हाँ जी ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
15: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
11: चैट, हाँ जी तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
20: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
16: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
17: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
16: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
1: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
16: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
21: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
22: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
11: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
16: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए हैं। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है, तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े, तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची, तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो
6: खबर, पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। मेरा तो साहिल।
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
8: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
15: सकता। अनाकलनीय अशा प्रकार की घटना है, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
7: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो ये तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
12: ओके
8: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
12: मोबाइल में चैट है उसका,
8: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
12: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
8: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
12: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
8: चैट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
16: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।

0: 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
1: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
2: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं। फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले, गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था। लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
4: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
5: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
0: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आईं, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कई

0: मनी को वापस मांगा जा रहा है तो कई अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबंकी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो
0: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
2: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
3: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
4: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो उसकी क्या आपत्ति है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
2: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
5: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
0: यह खबर दुनिया की है जहाँ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव है। सीज फायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है जिससे ईरान भड़का है।
6: अमेरिका ईरान सीज फायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए
7: हैं।
6: बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इसराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी, सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया, पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ, सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम, 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी, महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे, राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब खबर पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो गई। भगवंत मान के आरोप के बाद अब मास्क मैन का वीडियो भी सामने आया, जो मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनु कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट करे, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इथो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि एदे च अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन दिया, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: दो जड़ियां जहेदार साहब ने कराई, उन्होंने 3 लैबां च कि मास्क का जिक्र नहीं, जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारी पा दिओ, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी आ, एक्टर भी होऊगा, ते सारी पा दिओ, नशर कर दिओ।
7: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहिंदे है ना, भी ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुसीं 10 लाख रुपया करते पे, होटल से कमरे बुक कराने पे, तो कदे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुसीं तो फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
0: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो?
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
0: केतन को किले से धकेलकर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
12: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
0: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
13: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
14: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
13: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
0: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
15: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
15: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
15: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
11: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
15: हाँ।
11: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। तो मेरा साहिल।
11: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
15: हाँ।
11: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
12: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
16: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
17: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
18: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
17: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री?
17: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
19: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
16: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार भाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
16: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
12: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
15: जी,
12: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
15: जी,
12: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
15: ओके
11: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
15: मोबाइल में चैट है उसका,
11: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
15: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
11: हैं। हाँ जी ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
15: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
11: रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
20: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
16: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
17: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
16: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
1: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
16: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
21: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
22: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
11: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप, पूरे गोयल फैमिली को।
16: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए हैं। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो
6: खबर। पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन यह सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। तो हाँ।
8: उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
15: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सबरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
7: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनको महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
12: ओके
8: और ये सीआई के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
12: मोबाइल में चैट है उसका,
8: चैट है कि हाँ। केतन मुझे नहीं जाना है
12: हाँ।
8: अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तुम मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
12: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
8: हैं। हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
12: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
8: चैट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
16: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
7: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
13: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का, अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
7: अब सवाल ये है कि सच क्या,

0: जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
1: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
2: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
3: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
4: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
0: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
5: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटमनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूचबिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं।

0: हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जग बल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो
1: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
2: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
3: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
4: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
2: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
5: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
1: यह खबर दुनिया की है, जहां हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव है। सीज फायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का है।
6: अमेरिका ईरान सीज फायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इजराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंकाकांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्रीराम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अवि मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो
6: खबर, पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। मेरा साहिल।
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
8: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
15: चाहिए। अतिशय धक्कादायक है अशा प्रकार की घटना है, अनाकलनीय अशा प्रकार की घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता है की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
7: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
12: ओके
8: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
12: मोबाइल में चैट है उसका,
8: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
12: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
8: हैं। हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
12: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
8: चैट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
16: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
7: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
13: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का, अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
7: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
17: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
7: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
12: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
9: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है, और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
8: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
7: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आईं, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटबनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े, तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
0: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
5: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो चार पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
6: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है? लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
0: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
7: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी आठों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉक। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी टीम। 148 पर आउट। और ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिक्स को FBI ने बनाया था निशाना। श्री राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं मामले में अब तक 8 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की यह आंच सीधे चंपत राय तक पहुंच पाएगी, जिन पर पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया है, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या साक्ष्य मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: जिस श्रीराम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी श्रीराम मंदिर